0: सुख समृद्धि के लिए कामना। उत्तराखंड के चमोली में विधि विधान से खुले श्री रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, बम भोले के जयकारों के साथ वैदिक रीति रिवाज से पूर्ण हुआ अनुष्ठान। विश्व प्रसिद्ध चतुर्थ केदार धाम में दर्शन को मिले श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने बैंक और बीमा कंपनियों को खर्च घटाने का दिया आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो बैठकें, ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों का करें इस्तेमाल, विदेश यात्राओं पर भी हो कटौती। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने पीएम मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। पीएम का यह 32वां वैश्विक सम्मान। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दों पर मंथन। आईपीएल टूर्नामेंट के बीच चेन्नई के एनएसजी कैंप में दिखा महेंद्र सिंह धोनी का अलग अंदाज। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ हथियारों पर आजमाए हाथ। जवानों के साथ फिटनेस पर भी की बात। बिहार झारखंड सहित देश के 12 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट में 23 मई को तक चलेगा बूंदाबांदी का दौर। दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाई और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैलाए जाते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर उसे पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी की स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो बिल्कुल असली लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे जांचे इसे सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यही शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। फैक्ट चेक में आज हम सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो की, जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि एक बंदर ने पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाई। इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, करेंगे पड़ताल। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेड़ी पटरी को बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है। और यूजर्स वीडियो के जरिए यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। लेकिन जब हमने वायरल वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच और क्या झूठ सामने आया, देखिए रिपोर्ट।
0: बंगाल में शुभेंदु सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। बंगाल के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है। गोकशी पर रोक लगा दी गई है। अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। घोटालेबाज अफसरों और भ्रष्टाचार के आरोपी टीएमसी विधायकों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर बुलडोजर का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह पश्चिम बंगाल का है। वहां बीजेपी की सरकार बनते ही अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर गरज रहा है, सब बाबा बुलडोजर का आशीर्वाद है शिवेंदु अधिकारी जी को। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में किसी सड़क के किनारे पर रेहड़ी पटरी बुलडोजर के जरिए हटाई जा रही है और कुछ लोग इस वीडियो को लगातार शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार के बनते ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी चीजें नजर आई जिसमें हमें दावे की सच्चाई पर संदेह हुआ। वीडियो में नजर आ रहे ट्रक की नंबर प्लेट बंगाल की नहीं है बल्कि बांग्लादेश की है। इसके अलावा हमें वीडियो में नजर आ रहे पुलिस कर्मियों की ड्रेस के कलर पर भी हमारा जब ध्यान गया तो इसे हाईलाइट करके हमने देखा तो सामने आया कि पुलिस कर्मियों ने नीले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। जबकि बात अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस की करें तो उनके जवान नीले रंग की वर्दी नहीं पहनते हैं, वो सफेद रंग की वर्दी पहनते हैं। इस दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि बांग्लादेश पुलिस के जवान नीले रंग की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्च के दौरान ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके। ऐसे में हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
0: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। हमें वायरल वीडियो बांग्लादेशी न्यूज के एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 15 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। बांग्ला भाषा में मौजूद जानकारी के मुताबिक वीडियो सावर इलाके का है। सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लोगों पर बुलडोजर के जरिए यहां कार्रवाई की गई थी। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो बांग्लादेश के एक फेसबुक पेज और एक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को फेसबुक चैनल पर 5 और यूट्यूब चैनल पर 11 अप्रैल 2026 को शेयर किया गया था। यहां भी वीडियो को ढाका के सावर इलाके में हुई कार्रवाई का बताया गया है। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक आधिकारिक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 6 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन के अतिक्रमण हटाकर जाने के बाद लोगों ने फिर से सड़कों पर दुकानें लगा ली थी। हमने वीडियो में नजर आ रही लोकेशन को गूगल मैप पर सर्च किया। हमें लोकेशन की हूबहू तस्वीरें मिली। ये तस्वीरें ढाका के सावर इलाके की है। इसके बाद यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो का बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। वासल में इस वीडियो का भारत से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो बांग्लादेश के सावर इलाके का है। इस इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। यह वीडियो उसी दौरान का है जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बंदर एक बच्चे को उठाकर भागता है ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी भरकम टहनी गिर जाती है। लोग इसे चमत्कार बताते हुए लगातार शेयर कर रहे हैं लेकिन सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
0: पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बंदर को पेड़ के नीचे चटाई पर सो रहे एक मासूम बच्चे को सुरक्षित उठाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है ठीक उसी जगह पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है। लोग इसे कुदरत का करिश्मा और जानवरों की संवेदना बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल हो रहे पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, एक हैरान कर देने वाली घटना में पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे को खतरे से बचाने के लिए एक बंदर आगे आता नजर आया। आसपास मौजूद लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। बताया जा रहा है कि बंदर ने बच्चे के आसपास मंडरा रहे खतरे को भांप लिया और उसे सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगा। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि संवेदनाएं और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, जानवर भी भावनाओं को समझते हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि पेड़ के नीचे सो रहे एक मासूम बच्चे की जान बंदर ने बचाई। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इस वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां नजर आई जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। मसलन पेड़ के पास लेटे हुए बच्चे में कुछ भी हरकत देखने को नहीं मिल रही, आसपास भी सब कुछ स्थिर नजर आता है। तभी वहां अचानक से एक बंदर पहुंचता है, जैसे ही बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, ठीक उसी जगह पर पेड़ की एक भारी टहनी गिरती है और यह सब कुछ अचानक होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बंदर बच्चे को उठाकर भागता है, लेकिन तब भी बच्चे के जिस्म में कोई हरकत नजर नहीं आती। इसके अलावा ना बच्चा रोता है, क्योंकि अमूमन अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है कि बच्चा घबराता, रोता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बच्चा डरा भी नहीं। यहां पर कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ सर्च के दौरान हमें

0: हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। हमारा पहला सवाल यही, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। हमारा दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही, देखिए सच और झूठ क्या है।
1: वायरल वीडियो का सच और झूठ जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यह वीडियो एक इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड हुआ मिला। इस वीडियो के कैप्शन में कोई खास जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसे चमत्कार की तरह पेश किया गया था। जब हमने इस इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाला तो पता चला कि इस पेज पर बंदरों की बहादुरी से जुड़े कई AI जनरेटेड वीडियो मौजूद है। इसके अलावा यूजर ने अपने बायो में खुद को AI वीडियो क्रिएटर बताया है। इसके बाद हमने वीडियो को AI डिटेक्शन टूल हाइव मॉडरेशन पर चेक किया। इस टूल ने अपने विश्लेषण में वायरल वीडियो को 85.6% AI जनरेटेड बताया। एक और AI डिटेक्शन टूल डीप फेक ओमीटर ने भी इस वीडियो को 100% स्कोर के साथ AI जनरेटेड बताया। हमारी पड़ताल में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पेड़ के नीचे सो रहे मासूम बच्चे की जान बचाते बंदर का यह वीडियो असली नहीं बल्कि AI जनरेटेड है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: मैं यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
3: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और जिन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: नन्ही बच्ची का ये वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है, जिसने अपनी मासूमियत और हाजिर जवाबी से नेटिजंस को लोटपोट कर दिया है।
6: हमारा नानी घर तो फोरन ट्रिप जैसा

0: दो, हम आपके साथ हैं।
1: कहानी कुछ यूं है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से कुछ खास अपीलें की थी। पीएम ने लोगों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीदारी में संयम बरतने और कुछ समय के लिए विदेशी यात्राओं से बचने की सलाह दी थी, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिले। इस गंभीर मुद्दे पर जहां बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे हैं, वहीं एक मासूम बच्ची ने इस पर ऐसा रिएक्शन दिया है कि लोग उसे बार बार देख रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बच्ची अपनी प्यारी और तूतली आवाज में सीधे प्रधानमंत्री को ढांढस बंधाती नजर आ रही है। बच्ची बेहद मासूमियत से कहती है, मोदी जी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। इसके बाद वह हंसते हुए जो वजह बताती है, उसने इंटरनेट की पब्लिक को लोटपोट कर दिया है। बच्ची कहती है कि उसके घर वालों को विदेश घूमने का कोई शौक नहीं है, वे लोग सिर्फ नानी के घर जाते हैं और उनके लिए नानी का घर ही किसी विदेश से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद ही प्यारा और भावुक कर देने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी मां को जब पहली बार साफ साफ देखा, तो उसका रिएक्शन सचमुच कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए उसे दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है, ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर जैसे ही चश्मे को फिट

करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वह पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देखता है। वीडियो में दिखाया गया है कि बच्चा जैसे ही अपनी माँ को साफ साफ देखता है, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दिखती है। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों एक साथ नजर आती है। पहले तो वह अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखता है, फिर वह अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उन्हें महसूस करता है। वीडियो में यह भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं।

0: कल मेरे बाबा सैलेश जाएंगे, मुझे बहुत रोना है। आपको पता है, आप बोलिए कुछ।
1: मैं कल चला जाऊंगा और तुमको यहाँ पर छोड़ के चला जाऊंगा।
0: मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
1: मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी।
0: मुझे तो उससे भी ज्यादा।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों दादा पोती के अटूट प्यार की एक ऐसी कहानी छाई हुई है जिसने लाखों लोगों का दिल पिघला दिया है। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद इंटरनेट की पब्लिक अपने आंसू नहीं रोक पा रही है और हर कोई अपने बचपन की यादों में खो गया है। वीडियो की शुरुआत में एक बच्ची बेहद उदास मन से कहती है, कल मेरे बाबा चले जाएंगे, मुझे बहुत रोना आ रहा है। इस पर बच्ची के दादाजी भी उतने ही लाड़ प्यार से जवाब देते हैं, हाँ मैं चला जाऊंगा। इसके बाद जब बच्ची कहती है कि उसे उनकी बहुत याद आएगी तो दादा भी भावुक होकर कहते हैं, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में दादा पोती के बीच की ये छोटी सी बातचीत और उनके चेहरे के हाव भाव ने सोशल मीडिया यूजर्स को अंदर तक झकझोर दिया है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
3: एक बार पूरा खानदान का बीपी ऊपर नीचे कर देती है और इसका बीपी देख रहे हो, बताओ ऊपर नीचे हो गया कैसे भाई? पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं कैसे हुआ बीपी। भाई तो हमारा बीपी हाई करती, तेरा बीपी कैसे हाई हो गया?
2: पति पत्नी के बीच का एक प्यारा और भावुक पल सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। हाई ब्लड प्रेशर जैसी चिंता भरी स्थिति को पति ने अपनी मजाकिया अंदाज और प्यार भरी बातों से हल्का बना दिया। दोनों की सच्ची केमिस्ट्री और हंसी मजाक ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली खूबसूरती मुश्किल समय में भी साथ मुस्कुराने में होती है। वीडियो में सबसे खास बात यह थी कि दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल असली और सहज लगा, उसमें किसी तरह की बनावट या दिखावा नहीं था। सोशल मीडिया पर ये मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पहली बार भारतीय शादी में पहुंचे एक विदेशी मेहमान का जबरदस्त अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शादी का माहौल पूरी तरह रंगीन और जोश से भरा हुआ है। चारों तरफ लाइट्स की चमक, तेज म्यूजिक और लोगों का उत्साह देखने लायक है। इसी बीच एक विदेशी शख्स भी शादी में शामिल होता दिखाई देता है जो शुरुआत में काफी शान नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे डीजे की धुन तेज होती है उसका एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगता है। माहौल का असर उस पर इतना ज्यादा होता है कि वह खुद को डांस फ्लोर पर जाने से रोक नहीं पाता। जैसे ही डीजे पर पंजाबी गाना बजना शुरू होता है, विदेशी मेहमान पूरी तरह मस्ती में डूब जाता है। वह बिना किसी झिझक के लोगों के बीच पहुंचकर डांस करने लगता है।

शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार के सनरूफ से बाहर निकलकर माइक हाथ में लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते और पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।

0: फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटरगू से परेशान ना हो। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने डंडा उठाने के बजाय अपना लैपटॉप उठाया और फिर AI की मदद से ऐसा वाटर गन बनाया जो किसी हाईटेक बाउंड्री से कम नहीं है। दरअसल इंजीनियर ने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो AI से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि वह इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, AI उसे तुरंत पहचानकर ऑटोमेटिक वाटर गन को सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है जिससे वह फौरन फुर हो जाता है। सोशल मीडिया पर यह दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वह इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे ऐसे गले की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वहां बैठे बाकी लोग भी इस नजारे को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिल्ली लगातार जवान से लिपटी रहती है और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। क्या आपने कभी किसी जलीय जीव को इंसानों के साथ दिमागी खेल खेलते और जीतते देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, अमेरिका से एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यहाँ एक महिला ने अपने पालतू एक्सोलॉटल के साथ टिक टैक टो खेला और नतीजे ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे महिला ने अपने एक्वेरियम के शीशे
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: और अब बात कान फिल्म फेस्टिवल की करते हैं, जहां रेड कार्पेट पर इस बार सिर्फ ग्लैमर और इंटरनेशनल फैशन की चमक ही नहीं दिख रही, बल्कि भारतीय संस्कृति और पारंपरिक सौंदर्य की खूबसूरत झलक भी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इस बार हिंदुस्तानी अभिनेत्रियों, कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट्स, शाही ज्वेलरी और खास अंदाज से इस इंटरनेशनल मंच पर अलग पहचान बनाई है।

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे
1: गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: सच्ची खबर।
4: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: आज पूरे देश भर में ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल की धूम, बजरंग बली के भक्तों में उत्साह। पावन दिन पर हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से हुए सम्मानित। 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर प्रधानमंत्री ने देश के सम्मान में लगाए चार चांद। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले गृहमंत्री अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में अब नए अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण का वादा, उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता। पूरे देश में प्रचंड गर्मी का दौर, उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म, दिल्ली राजस्थान में भी पारा 44 के पार, पूरे हफ्ते पड़ेगी हीट वेव की मार। मौसम विभाग की अपील, सावधानी बरते। आईपीएल 2024 में चेन्नई प्लेऑफ से बाहर, हैदराबाद ने किया क्वालिफाई। एसआरएच ने सीएसके को 5 विकेट से हराया। ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, 7 चौकों और 3 छक्कों से की 47 गेंदों पर बनाए 70 रन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
3: तो हनुमान जी कौन है? शंकर जी। और शंकर जी

अब समझ गए कि शंकर हनुमान जी की पूंछ कौन है? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी से पूछा कि आप लंका में कहां कहां लंका जला रहे? हनुमान जी बोले, हमसे मत पूछो, पीछे वालों से पूछो, ये हमारा मामला नहीं है, ये पीछे वालों का मामला है। हनुमान जी महाराज, निवक चढ़े कपि कनक अटारी, भई संभीत निसाचर नारी। सब निसाचरों की पत्नियां डरने लगी और हनुमान जी महाराज ने

अच्छा सुनो, आग थोड़ी सी लगी हो और हवा चले तो क्या होगा? बुझ जाएगी, हाँ या ना? बोलो बोलो। आग दीपक हो, दीपक, और दिया लेके बाहर बैठ जाओ, हवा चले तो क्या होगा? बुझ जाएगा। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन आग टेंट में लग जाए या किसी कपड़ों में लग जाए, कपड़ों की ढेरी में लग जाए और हवा चले, बुझेगी के बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो, बढ़ेगी के नहीं? यही हुआ। हनुमान जी महाराज ने अपने पिताजी को बुलाया। अब हनुमान जी के पिताजी कौन आए जरा सुनो। हनुमान जी आपके कौन पिताजी आए?

जी के पिताजी पवन देवता, हनुमान जी ने पहले चार पांच मकान जलाए बाबा ने, और चार पांच मकान जलाकर गर्जना की, जय।

नहीं नहीं हार गए हार गए, इससे ज्यादा देर तो तुम लोग हमारे बीच में ना बोला करो। हमारी बारी में हम बोलेंगे, तुम्हारी बारी में तुम ना, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब इस बार बहुत ज्यादा होगा।

हार गए, हार गए आप लोग, हार गए, हार हार गए, हम जीत गए। ये अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर पहुंची है, दोनों पार्टियां बराबर है नाम के अनुसार। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, हनुमान जी महाराज की जब पूंछ में आग लगी, निमुक चनो कपि कनक अटारी, उसी समय हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, क्या की? हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उंचास, अट्टहास करि गर्जा जय श्री राम, कपि बड़ी लागे आकाश। हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, गर्जना को सुनकर के राक्षसों का बीपी हाई हो गया, निशाचरों की पत्नियां सब डर गईं। हनुमान जी अब तक छोटे थे, अब बड़े हो गए। किसी ने पूछा, बाबा अभी तक छोटे थे अब बड़े क्यों हो गए? हनुमान जी बोले, अब जलने वालों को जलाना है तो बड़ा बन करके ही जलाएंगे। और यही हुआ, देह विशाल परम हरुआई।

और जिस घर के बाहर हनुमान जी रुके उस घर के दरवाजे पर चिन्ह में धनुष्मान बना था, एक तरफ रा लिखा दूसरे तरफ मां लिखा। हनुमान जी चौंक गए, अरे ये लंका है और लंका में भी कोई भक्त रहता है?

ये तो निशाचरों की बास की नगरी है, यहां सज्जन कौन आ गया, यहां पर कौन भगत आ गया, ये हनुमान जी सोच रहे थे। पर सज्जन की पहचान क्या है, सज्जन कौन और दुर्जन कौन, ये पहचान तो हनुमान जी से सीखो। आहा, ध्यान देना, सज्जन वो है जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे, और दुर्जन वो है जो अपने अलावा किसी का अच्छा ना चाहे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को जगाया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बाहर राम राम की आवाज लगाई। विभीषण अंदर सो रहे थे, अरे सोचा लंका में वो कोई राम राम राम राम राम कह रहा, यहाँ लंका में तो कोई राम राम बोलता ही नहीं है, यहाँ तो रावण रावण रावण दशानन दशानन होता है, ये राम राम वाला कौन आ गया। विभीषण जी जाग गए और जागे, इधर राम जी का नाम हनुमान जी ले रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उधर विभीषण जी जागे। और सज्जन की पहचान क्या, जरा देखना,

0: मेरे पागलो, राम राम का सुमरण करके हनुमान जी महाराज पहचान गए ये विभीषण जी सज्जन हैं, उनके मुख से भी राम राम निकला, हमें सौभाग्य है। हम जब बैठे थे ना तो हमारी नजर पड़ी सामने हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, एक समुदाय है यहाँ का गौरव समुदाय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिनको मिले, और ये परिवार धाम पर भी हमसे मिलने गया, राम नामी परिवार। एक बार इनको जोरदार ताली बजाओ। ये वो समुदाय है जो पूरे शरीर में राम राम राम राम लिखता है, पूरे शरीर में। माता जी के भी दर्शन करो, उनके पूरे शरीर में राम राम है। आज की माताओं को यदि कह दें ऐसा राम राम लिखवाओ तो वो कहेंगी हमारी शकल चली जाएगी। शकल तो एक दिन जानी ही जानी है, पर इनका प्रभाव देखो। ये हजारों लोगों में आप बैठे थे, हमारी नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि जो राम का होता है उस पर सबकी नजर टिकती है। प्राप्त करने के लिए जिद तो बहुत जरूरी है। अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को पाना हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले कल आना। जब कल गए, महाराज हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी चलो। बेचारा नदी चला गया। नदी जैसे ही पहुंचा तो फिर बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी में कूद। वो कूद गया और फिर कूदते हुए तैरते हुए बोला हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ऊपर से कूद गए। वो फिर ऊपर आया, हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ने गर्दन पकड़ ली और डुबो दिया। वो फड़फड़ा गया, अब लगा के मर जाएगा। फिर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा तो फुरफुर करता हुआ बाहर दौड़ के गया। बोले हमें पहले कंफर्म नहीं था कि तुम पागल हो, आज कंफर्म हो गया पागल हो। हमने पूछा है भगवान को पाना है, उपाय बताओ, तुम हमें नदी में लाकर के मारने ले आए। परमहंस जी बोले बेटा मारने नहीं लाए हैं, उपाय बतलाने लाए हैं। ये गला दबाना कौन सा उपाय है? बोले बेटा जिस प्रकार पानी में तू श्वास के लिए तड़प रहा था वैसे ही तू परमात्मा के लिए तड़पने लगे तो भगवान मिल जाएगा। जैसे श्वास के लिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, तड़प का आना जरूरी है। मीरा तड़पी है, इसलिए उसे कलयुग में भी गोविंद मिले।
1: क्या जल के प्रयोग से मानसिक चिंताओं को दूर किया जा सकता है? क्या जल का प्रयोग करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं? क्या जल का गलत प्रयोग करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं? क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा
12: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस विजिट SRMUP.in आज पूरे देश भर में ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल की धूम, बजरंग बली के भक्तों में उत्साह। पावन दिन पर हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर प्रधानमंत्री ने देश के सम्मान में लगाए चार चांद। छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में अब नए अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण का वादा, आज उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: आज ज्येष्ठ का तीसरा कल्याणकारी बड़ा मंगल, देश भर के हनुमान मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। बजरंगबली की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हनुमान जी को अर्पित किया जाता है चमेली का तेल और सिंदूर से बना चोला। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा का है विधान, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। आज के दिन लाल वस्तुओं का दान करना माना जाता है शुभ, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फलदायी। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं, सभी संकट हर लेते हैं बजरंगबली। तीस मई को एक दिन के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, मंदिर कमेटी ने जारी की सूचना। खाटू श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार के कारण लिया गया एक दिन मंदिर बंद रखने का फैसला, श्रद्धालुओं के लिए 19 घंटे बंद रहेंगे मंदिर के पट। आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिर के पट, 20 मई की शाम 5 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट, इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। मंदिर परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद किया जाता है बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार, इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर किया जाता है चंदन का लेप, की जाती है विशेष पूजा अर्चना। हर साल बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं देश दुनिया से लाखों भक्त, इस भीषण गर्मी में भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, कल 21,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस साल बद्रीनाथ यात्रा में बन रहे नए रिकॉर्ड, अब तक 4,28,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। मंदिर समिति पुलिस और SDRF लगातार यात्रियों की मदद में जुटी, बुजुर्गों महिलाओं और बीमार श्रद्धालुओं को दी जा रही है विशेष सहायता। जून में बद्रीनाथ यात्रा का शुरू होने वाला है, पीक सीजन है, हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद भीड़ और बढ़ने की उम्मीद। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की, बोले देवभूमि को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी। पटना दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पटना साहिब गुरुद्वारा और गुरु के बाग में टेका माथा। भगवंत मान गुरु के बाग के परिसर में लगाए एक फलदार पौधा, दुनिया में शांति और भाईचारा बनी रहने की कामना की। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया सीएम मान का सम्मान, उन्हें उपहार के रूप में सौंपा गया सरोपा। मुख्यमंत्री को गुरु महाराज से जुड़ी पवित्र वस्तुओं के भी कराए गए दर्शन, पूरे परिवार के साथ पटना पहुंचे थे सीएम मान। ने कहा तख्त हरमिंदर साहिब सिखों की आस्था का बड़ा केंद्र, यहां आकर उन्हें मिलती है आध्यात्मिक शांति। कोल्हापुर के एक शिल्पकार ने बनाई चांदी की कोल्हापुरी चप्पलें, स्पेशल ऑर्डर पर बनी है ये खास चांदी की चप्पल। सांगली के एक व्यापारी ने अपने दामादों को देने के लिए ऑर्डर की है चांदी की चप्पलें, मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों की तरह बनाई गई है ये चांदी की चप्पल। इंच लंबी और 1.5 किलो वजन वाली इस चप्पल की कीमत 4 लाख रुपए है और इसकी नेट लेबर 25,000 रुपए है। पाली में दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश। गर्मी में वन्य जीवों के लिए पहाड़ियों पर बने कृत्रिम एनीकट में की जा रही है पानी की और भोजन की व्यवस्था। समाज सेवी संगठन द्वारा वन्य जीवों की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। पाली में दिन का तापमान 43 तक पहुंचने पर सूखने लगे थे तालाब और जल स्रोत। पीएम मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ऐतिहासिक अकेशस किले का दौरा किया। प्रधानमंत्री जोनास गेहरस्टोर ने किया स्वागत। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन जिनमें भारत नॉर्वे संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में किले में रखा गया विशेष रात्रि भोज। पीएम मोदी ने 13वीं सदी के अंत में बने इस मध्ययुगीन किले के इतिहास के बारे में भी जानकारी ली। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे में इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो मंडे के तहत ऑफिस से घर लौटने के लिए भी मेट्रो से की यात्रा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। मेट्रो यात्रा के दौरान सीएम रेखा ने लोगों से बातचीत की और जाने उनके अनुभव, साथ ही लोगों संग खिंचवाई सेल्फी। ईंधन बचाने की पहल को लेकर दिल्ली सरकार के कई मंत्री मेट्रो में सफर करते आए नजर। मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी मेट्रो ट्रेन से यात्रा की। योगी सरकार की बड़ी पहल, स्किल ट्रेनिंग में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण। एसिड

0: स्किल ट्रेनिंग में दिव्यांगजनों को 5% आरक्षण, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। गृहमंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन, आज बस्तर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्रीनगर में तेजी से एक लोकप्रिय खेल बनकर उभर रहा है टच रग्बी, युवाओं में देखा जा रहा है इस खेल का उत्साह। स्थानीय खिलाड़ियों को दिया जा रहा है प्रोत्साहन, कई तरह के बूट कैंप्स का भी आयोजन। कोटायम के ईशान ने अपनी असाधारण याददाश्त से सबको हैरान किया, मात्र 60 सेकंड में डायनासोर की 60 प्रजातियों की तस्वीरें या कंकाल बताए नाम और विषय। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किए गए लू के थपेड़े, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में हीटवेव की स्थिति जारी। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आने वाले हफ्ते में हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की आईएमडी की चेतावनी, 24 मई तक कई राज्यों में तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की संभावना। पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी लगातार गर्म हवाएं चलने की चेतावनी, छत्तीसगढ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ सकता है तापमान। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश। कुतुब मीनार घूमने आ रहे पर्यटकों को गर्मी से बचने के लिए उन्हें लेना पड़ रहा है जूस और कोल्ड ड्रिंक्स, नींबू पानी का सहारा, पर्यटकों की संख्या में आई गिरावट। भीषण गर्मी की वजह से टिकट काउंटर से भी भीड़ दिखी नदारद, विदेशी सैलानियों की घटी आमद। अकोला में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, यहां का पारा 46 डिग्री के पार पहुंचा। रात में भी 35 डिग्री तक तापमान रहने से लोगों को राहत नहीं मिल रही, आईएमडी ने 21 मई तक हीटवेव अलर्ट जारी किया। विदर्भ में भी पड़ रही है भीषण गर्मी, वर्धा में 46 डिग्री और अमरावती में भी 46 डिग्री के साथ साथ सबसे गर्म शहरों में इसे शामिल किया गया।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune In is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
7: जो हम में अच्छाई

0: जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
1: So they were disallowed from speaking their language.
0: In-depth conversations with A-list celebrities.
2: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
0: True crime podcasts you just can't stop listening to.
3: Others escape justice to live and die in infamy. These
0: individuals. Plus the news and sports content you crave in podcast form.
4: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
0: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: TuneIn has the music.
0: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
6: TuneIn Poolside has the music I love.
0: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn.
7: ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं. खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर. खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है. खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है. ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
10: गुड न्यूज टुडे.
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जल के महत्व के बारे में। ये जानेंगे कि जल का ज्योतिष में क्या महत्व है और जल के प्रयोग से किस तरह के लाभ जीवन में हो सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जल से ज्यादा मूल्यवान विजिबल कोई चीज नहीं है। ज्योतिष में, धर्म में, हर जगह जल का अपना एक महत्व है। ज्योतिष क्या कहता है, धर्म क्या कहता है जल के बारे में? देखिए, जीवन के निर्माण के लिए पांच तत्व की आवश्यकता होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांचों कंपाउंड मिलेंगे तब जीवन बनेगा। इन पांचों तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व, और जल मूर्त वस्तुओं में जिनका आप अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, और जल अत्यंत चमत्कारी है। जो कुंडली का जल तत्व होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को चलाता है, साथ ही साथ उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यानी कुंडली का जो जल तत्व है वो बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आपकी योग्यता कितनी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, ये बात भी बताता है। जल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। जल के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में पाई जाती है। जब पूजा शुरू होती है तो हाथ में जल लेके क्या कहते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरं शुचिः। यानी मंत्र के साथ जल को जब छिड़कते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो आपको शक्ति देता है, आपको दिव्य बना सकता है। और जल का सही प्रयोग अगर आप करना जाने, मंत्रों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जल तत्व कुंडली में बढ़िया हो जाए, अगर जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाए, तो सामान्य जीवन में परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी। देखिए, पानी बीमारी दूर भी करता है और पानी बीमारी देता भी है। शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो शरीर सूज जाएगा, तो जल का प्रयोग सोच समझकर नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे? जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, सामान्यतः गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में थोड़ा कम, लेकिन जल का निरंतर प्रयोग आप करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय में जल ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, अच्छा नहीं है, और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। जो पानी फायदेमंद होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, ना तो ठंडा, ठंडा पानी भी बहुत नुकसान करेगा और बहुत गर्म पानी भी नुकसान करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो दवाई की तरह, जीवन की तरह काम करता है। आप पानी की बर्बादी ना करें, पानी को खराब ना करें, पानी की रक्षा करें, पानी बचाएं, तो इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव की शिकायत है, वो थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश करें और पानी का सदुपयोग करें, लाभ होगा। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, खास तौर से आजकल फैशन है शावर से नहाने का, उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति होती है। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, पानी जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है, बिना आवश्यकता के जल बहता रहता है या जल टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में पानी बेवजह बर्बाद हो, टपकता रहे, बेवजह बहता रहे, वहां घर के लोग बीमार रहेंगे ज्यादातर, और घर का ज्यादातर पैसा बेवजह फिजूल में, ऊल जलूल चीजों में खर्च होगा। देखिए, ज्योतिष में जो पांच तत्व होते हैं, हर तत्व का संबंध किसी ग्रह से होता है और वो ग्रह उस तत्व के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। चूंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं, तो जल का किस ग्रह से संबंध है? जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। हालांकि देखिए, शुक्र जो है वो रासायनिक जल है, केमिकल वाटर है, और चंद्रमा शुद्ध जल है। थोड़ा सा दोनों के जल में फर्क है, या शुक्र जो है वो फ्रेग्रेंस वाली, खुशबू वाले जल से संबंध रखता है, चंद्रमा शुद्ध और सादे जल से संबंध रखता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। मंगल के पास एक राशि है वृश्चिक, वो जल की राशि है, इसीलिए मंगल भी कुछ पार्ट में जल से संबंध रखता है। खासतौर से जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें मंगल की भूमिका आ जाती है। अगर आप जल का सही प्रयोग करें, तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और चंद्रमा को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने मन को बेहतर करते हैं, शुक्र को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें, बेवजह पानी की बर्बादी करें, पानी को नष्ट करें, जल को गंदा करें, जल स्रोतों को गंदा करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, सरोवरों को गंदा करते हैं, उनका केतु दूषित हो जाता है और उन्हें जीवन में अज्ञात बीमारियां, अज्ञात बाधाएं परेशान करती हैं। इसीलिए जल का सही प्रयोग करना जरूरी है। जल की बर्बादी मत करिए, नदियों को, सरोवरों को दूषित मत करिए। शुक्र का संबंध भी जल से होता है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे? जहां तक हो सके दोनों समय स्नान करिए। दोनों समय नहीं नहा पाते तो कम से कम रोज सुबह स्नान करना जरूरी है, रोज सुबह स्नान जरूर करिए और सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में आजकल सुगंध मिलाने की व्यवस्था आ गई है, सुगंधित जल से नहाएं या जल में गुलाब जल डाल करके उस जल से स्नान करें। जैसे चंद्रमा के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, वैसे ही शुक्र को प्रबल करने के लिए अगर आप कांच के गिलास से पानी पिए रेगुलरली तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, कमजोर है ऐसा नहीं कहता मैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में मत दीजिएगा, वरना आपके जीवन से आनंद और खुशियां चली जाएंगी। जिन लोगों को आलस्य बहुत ज्यादा रहता हो, हर समय आलस्य सवार रहता हो, ऐसे लोगों को तांबे के पात्र का जल पीना चाहिए। रात में गिलास में या जग में आप तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को घूंट घूंट करके पीजिएगा। ऐसा करने से शरीर में एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आपका आलस्य दूर होगा। कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता हो, घर में रहने पे कलेश होता हो, चिंताएं होती हो, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके रोज पूजा करिए। सुबह के समय पूजा स्थान पर बैठिए, अपने सामने जल से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा कटोरी या गिलास रख लें, उसमें पानी भरा हो। इसके बाद बोल बोल कर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उसके 10 मिनट बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। लगातार ऐसा एक महीने तक करिए, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: आज पूरे देश भर में ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल की धूम, बजरंगबली के भक्तों में उत्साह, पावन दिन पर हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर प्रधानमंत्री ने देश के सम्मान में लगाए चार चांद। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में सीना तानकर बोले गृहमंत्री अमित शाह, नक्सल मुक्त बस्तर में अब नया अध्याय की शुरुआत। आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण का वादा, आज उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता। पूरे देश में प्रचंड गर्मी का दौर, यूपी में बांदा सबसे गर्म, दिल्ली राजस्थान में भी पारा 44 के पार, पूरे हफ्ते पड़ेगी हीटवेव की मार, मौसम विभाग की अपील, सावधानी बरतें। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत, समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी 30 दिन की छूट। आईपीएल 2026 में चेन्नई प्लेऑफ से बाहर, हैदराबाद ने किया क्वालिफाई, सीआरएच ने सीएसके को 5 विकेट से हराया, ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 47 गेंदों पर बनाए 70 रन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, कहते हैं जल ही जीवन है, यानी जल के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जल का क्या महत्व है, इसे कितना पवित्र माना जाता है और कैसे जल के जादुई प्रयोग से हम अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को और अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: जिन लोगों को आलस्य बहुत ज्यादा रहता हो, हर समय आलस्य सवार रहता हो, ऐसे लोगों को तांबे के पात्र का जल पीना चाहिए। रात में गिलास में या जग में आप तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को घूंट घूंट करके पीजिएगा। ऐसा करने से शरीर में एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आपका आलस्य दूर होगा।
0: तो चलिए, बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं 19 मई 2026 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 2:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं जल के महत्व के बारे में। तो किस तरह से ये हमारे ऊपर असर डालता है, इसे काफी पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र इसे कैसे देखता है, कितना महत्वपूर्ण है।
1: जी देखिए, हमारे जीवन में जल से ज्यादा मूल्यवान विजिबल कोई चीज नहीं है। ज्योतिष में, धर्म में, हर जगह जल का अपना एक महत्व है। ज्योतिष क्या कहता है, धर्म क्या कहता है जल के बारे में? देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 की आवश्यकता होती है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये 5 कंपाउंड मिलेंगे तब जीवन बनेगा। इन 5 में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व, और जल मूर्त वस्तुओं में जिनका आप अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और जल अत्यंत चमत्कारी है। जो कुंडली का जल तत्व होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को चलाता है, साथ ही साथ उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यानी कुंडली का जो जल तत्व है वो बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आपकी योग्यता कितनी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे, ये बात भी बताता है। जल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। जल के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में पाई जाती है। जब पूजा शुरू होती है तो हाथ में जल लेकर क्या कहते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरं शुचिः। यानी मंत्र के साथ जल को जब छिड़कते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो आपको शक्ति देता है, आपको दिव्य बना सकता है। और जल का सही प्रयोग अगर आप करना जाने, मंत्रों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जल तत्व कुंडली में बढ़िया हो जाए, अगर जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाए, तो सामान्य जीवन में परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है।
1: मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, धन लाभ होगा, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो जल के बारे में आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, तो अब जानते हैं जल के प्रयोग के नियम क्या हैं और क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए।
1: देखिए, पानी बीमारी दूर भी करता है और पानी बीमारी देता भी है। शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो शरीर सूज जाएगा, तो जल का प्रयोग सोच समझ कर नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे? जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, सामान्यतः गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में थोड़ा कम, लेकिन जल का निरंतर प्रयोग आप करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय में जल ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, अच्छा नहीं है। और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। जो पानी फायदेमंद होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, न तो ठंडा, ठंडा पानी भी बहुत नुकसान करेगा और बहुत गर्म पानी भी नुकसान करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो दवाई की तरह, जीवन की तरह काम करता है। आप पानी की बर्बादी ना करें, पानी को खराब ना करें, पानी की रक्षा करें, पानी बचाएं, तो इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव की शिकायत है, वो थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश करें और पानी का सदुपयोग करें, लाभ होगा। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, खास तौर से आजकल फैशन है शावर से नहाने का, उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति होती है। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, पानी जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है बिना आवश्यकता के, जल बहता रहता है या जल टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में पानी बेवजह बर्बाद हो, टपकता रहे, बेवजह बहता रहे, वहां घर के लोग बीमार रहेंगे ज्यादातर, और घर का ज्यादातर पैसा बेवजह फिजूल में, ऊल जलूल चीजों में खर्च होगा।
0: बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय अपने ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किस व्यूअर का ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी दें।
1: जी, आज का पहला प्रश्न सत्यदेव जी ने हमें लिखा है और सत्यदेव जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी बेटी की जन्म की तारीख है 5 नवंबर 1992, रात में 11:25, जन्म स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। सत्यदेव जी कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी। उसने प्रेम विवाह अपनी इच्छा से किया था लेकिन अब शादी चल नहीं पा रही है। बेटी पिछले 6 महीने से घर पर ही है, मायके में ही है, तो क्या ये शादी चल पाएगी या सेपरेशन होगा और बेटी का भविष्य कैसा रहेगा? सत्यदेव जी, जो बालक की कुंडली आपने भेजी है अपनी बेटी के साथ, उसमें शादी चल पाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा लगता है कि बातचीत करके इसमें डिवोर्स होना चाहिए। इस साल के अंत तक या अगले साल के आरंभ तक आपकी बेटी का डिवोर्स होना चाहिए, ऐसा लगता है। शादी चलने की संभावना बहुत ही कमजोर है। आपकी बेटी का दूसरा विवाह भी आगे होगा साल 2028 में, मध्य में किसी समय इनके विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन अब की बार जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा ताकि इनका भविष्य बेहतर हो। जल्दी से इस केस से छुटकारा मिले, जल्दी से जीवन में आगे बढ़ सके, इस मामले से बाहर निकल सके, बेटी को कहिए कि मंगलवार का व्रत रखेंगी और मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करेंगी और हर मंगलवार को और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करके हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करेंगी, उनको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा सवाल ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी को याद दिला दूं कि अगर ये कार्यक्रम आपका फेवरेट है, आप रोज देखते हैं, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देखेंगे हमारी जो ईमेल आईडी है वो फ्लैश हो रही है। आप लोगों के जो भी तकलीफ है, परेशानी है, सवाल है, इस पर लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रही है।
1: जी, अगला प्रश्न राम्या ने हमें लिखा है और राम्या हमें मेल लिखती है मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 19 जनवरी 2000, जन्म का समय सुबह के अर्ली मॉर्निंग 3:32, जन्म स्थान है मुंबई मुलुंड। राम्या कह रही हैं कि मैं फैशन के क्षेत्र में काम करती हूं, कॉस्मेटिक्स का भी काम करती हूं, तो मेरे लिए क्या बढ़िया होगा कि मैं कपड़ों में और फैशन में जाऊं या कॉस्मेटिक्स में जाऊं, कौन सा क्षेत्र मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? राम्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कॉस्मेटिक्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, मेकअप में, इस क्षेत्र में जाइए, इसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है आपके लिए। कपड़े वाला काम या सामान खरीदने बेचने वाला काम उतना अच्छा नहीं है, स्किल का जो काम है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो आप कॉस्मेटिक्स पर, ब्यूटी पर, मेकअप पर फोकस करिए तो मुझे लगता है आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा।
0: तो जल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ज्योतिष शास्त्र में इसका क्या महत्व है और किस ग्रह से इसका संबंध है, इसके बारे में जान लेते हैं।
1: देखिए, ज्योतिष में जो 5 तत्व होते हैं, हर तत्व का संबंध किसी ग्रह से होता है और वो ग्रह उस तत्व के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। चूंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं तो जल का किस ग्रह से संबंध है? जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। हालांकि देखिए, शुक्र जो है वो रासायनिक जल है, केमिकल वाटर है, और चंद्रमा शुद्ध जल है। थोड़ा सा दोनों के जल में फर्क है, या शुक्र जो है वो फ्रेग्रेंस वाली खुशबू वाले जल से संबंध रखता है, चंद्रमा शुद्ध और सादे जल से संबंध रखता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। मंगल के पास एक राशि है वृश्चिक, वो जल की राशि है, इसीलिए मंगल भी कुछ पार्ट में जल से संबंध रखता है। खासतौर से जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें मंगल की भूमिका आ जाती है। अगर आप जल का सही प्रयोग करें तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और चंद्रमा को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने मन को बेहतर करते हैं, शुक्र को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें, बेवजह पानी की बर्बादी करें, पानी को नष्ट करें, जल को गंदा करें, जल स्रोतों को गंदा करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, सरोवरों को गंदा करते हैं, उनका केतु दूषित हो जाता है और उन्हें जीवन में अज्ञात बीमारियां, अज्ञात बाधाएं परेशान करती हैं। इसीलिए जल का सही प्रयोग करना जरूरी है। जल की बर्बादी मत करिए, नदियों को सरोवरों को दूषित मत करिए।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है, बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो देखिए, चंद्रमा को किस तरीके से आपकी कुंडली में मजबूत किया जा सकता है और मानसिक शांति के लिए किस प्रकार जल का प्रयोग करें, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, जल का पहला और ज्यादातर संबंध होता है चंद्रमा के साथ। तो जल का कैसे प्रयोग करें कि चंद्रमा बेहतर हो, मानसिक शांति जीवन में मिले, घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। अगर जमीन है तो जमीन में लगाएं, वरना गमले में लगाएं। ढेर सारे फूलों के पौधे लगाना अच्छा होगा। नियमित रूप से उनमें जल डालें, उनकी देखभाल करें, उनको ग्रो करने दें, उन्नति करने दें। जब भी बारिश हो, बरसात का पानी किसी बर्तन में पहले इकट्ठा कर लें और एक कांच के बोतल में भर करके बारिश के पानी को अपने बेडरूम में रखिएगा। बारिश का पानी सबसे शुद्ध पानी है और उसके अंदर चंद्रमा के तत्व सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक कांच के बोतल में बारिश का पानी भरकर अपने बेडरूम में रखिए। चांदी का गिलास अगर खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो चांदी के गिलास से पानी पीने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। या जैसे मान लिया बाल्टी में पानी स्टोर करके रखते हैं या बोतल में भर भर के पानी पीते हैं, तो बोतल में या बाल्टी में चांदी का एक टुकड़ा या चांदी का एक सिक्का डाल करके रख दें और वो पानी भी निरंतर अगर पीते रहेंगे तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए एक तो बैठ करके नहाइए और दूसरे पहले अपने नाभि पर पानी डालकर तब नहाना शुरू करें, ताकि फायर एलिमेंट थोड़ा बैलेंस हो, जल तत्व थोड़ा बढ़े, आपका शरीर ज्यादा पानी का फायदा उठा सके।
0: अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे किया जाए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: शुक्र का संबंध भी जल से होता है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे। जहां तक हो सके दोनों समय स्नान करिए। दोनों समय नहीं नहा पाते तो कम से कम रोज सुबह स्नान करना जरूरी है। रोज सुबह स्नान जरूर करिए और सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में आजकल सुगंध मिलाने की व्यवस्था आ गई है, सुगंधित जल से नहाएं या जल में गुलाब जल डाल करके उस जल से स्नान करें। जैसे चंद्रमा के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, वैसे ही शुक्र को प्रबल करने के लिए अगर आप कांच के गिलास से पानी पिए रेगुलरली तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, कमजोर है ऐसा नहीं कहता मैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में मत दीजिएगा, वरना आपके जीवन से आनंद और खुशियां चली जाएंगी।
0: तो बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और अब आज का तीसरा सवाल ले लेते हैं। तो पंडित जी, आज का अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
1: जी, अगला प्रश्न अरुण कांत जी ने हमें लिखा है और अरुण कांत जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1999। जन्म का समय रात में 11:30। जन्म स्थान है भोपाल। अरुण जी कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है? अरुण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, MPSC की तैयारी करें, SSC CGL की तैयारी करें तो इसमें आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। 2027 का अंतिम समय और 2028 इस मामले में आपके लिए सफलता दिखा रहा है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करने से आपको लाभ होगा और रोज सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल लेने का समय यहाँ पर हो चला है, लेकिन आप सभी को मैं याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी को आप नोट कर सकते हैं और अपने सवाल लिख करके इसी ईमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम सवाल यानी चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, आज का अंतिम प्रश्न रेवती जी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। रेवती की जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1984। जन्म का समय सुबह के 8:25। जन्म स्थान है बरेली। रेवती कह रही हैं कि मेरा हाल में ही डिवोर्स हुआ है और अब मैं आगे दूसरी शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरी एक बेटी भी है, तो क्या मैं आगे अच्छा करियर बना के अपना और अपनी बेटी का जीवन चला सकूंगी? रेवती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से वैसे भी आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहां भी सफलता की संभावनाएं नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपका करियर अभी भी अच्छा है और आगे और भी अच्छा होगा, पैसे को लेके, करियर को लेके कुंडली में दिक्कतें नहीं हैं और आपका संतान पक्ष अच्छा है, तो अपना और अपनी बेटी का बढ़िया जीवन आप चला सकेंगी। मानसिक तनाव कम हो, आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको लाभ होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जिनका बर्थडे, जिनका जन्मदिन 19 मई को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल, आने वाला वर्ष कैसे रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 19 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी, धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर सूर्य देव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और अब कार्यक्रम में समय हो गया है ये जानने का कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है, आज का सवाल क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
1: आज का प्रश्न है कि क्या चांदी के बर्तन से पानी पीने से या सोने के बर्तन से पानी पीने से पानी का गुण बदल जाता है? देखिए, आप चांदी के गिलास से पिए, सोने के गिलास से पिए, तांबे के गिलास से पिए, आप ये जान लें कि जल किसी भी तत्व के गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। जिस धातु के पात्र में पानी होता है उसके गुण उस जल में आ जाते हैं। ग्रहों से लाभ लेने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग धातुओं के बर्तन से जल पिया जाता है।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं 19 मई 2026 यानी कि दिन मंगलवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का कम से कम एक बार पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही।

0: आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता हो, घर में रहने पे कलेश होता हो, चिंताएं होती हो, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके रोज पूजा करिए, सुबह के समय पूजा स्थान पर बैठिए, अपने सामने जल से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा, कटोरी या गिलास रख लें, उसमें पानी भरा हो। इसके बाद बोल बोल कर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उसके 10 मिनट बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। लगातार ऐसा एक महीने तक करिए, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

0: AI is changing the rules in tech, and staying relevant takes more than just keeping up. At WGU, our online technology master's programs give you the skills to keep pace with what's next. Learn more at wgu.edu.
1: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।

0: इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर
1: का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है। जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wait.
2: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all of your favorite music, news, sports, and more all in one place. Hear all of the audio you love, whether you're a music lover, interested in what's going on around the world.
5: We know that Hamas has agreed to a deal at some point.
4: Or want to catch your team's live play-by-play. It's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: और चलिए अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियोस पर जो आपको हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, और कुछ तो ऐसे हैं जो आपको इमोशनल भी कर देंगे।
9: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच में कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए हुए दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देख पाता है। वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छू कर उसे महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार की सनरूफ से बाहर निकलकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते हैं, पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं। फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटर घूस से परेशान ना हो, लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो एआई से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वो इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, एआई उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन का सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते ही पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है, जिससे वो फौरन फुर्र हो जाता है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे गले लगा लेती है, मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इस वायरल वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आ रहा है। ये नजारा देख कई यूजर्स का माथा घूम जाता है। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। बस फिर क्या था, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर भी कर रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जल का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जानिए क्या है जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
6: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें
8: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
14: जेष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल की देश भर में धूम, पावन दिन पर हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति।
11: चारधाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या का बन रहा है नया रिकॉर्ड। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 16 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन।
14: नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री हुए सम्मानित, 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर प्रधानमंत्री ने देश के सम्मान में लगाया चार चांद।
11: पूरे देश में प्रचंड गर्मी का दौर, उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म, दिल्ली राजस्थान में भी पारा 44 के पार, पूरे हफ्ते पड़ेगी हीट वेव की मार, मौसम विभाग की अपील सावधानी बरतें।
14: पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत, समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी 30 दिन की छूट।
11: आईपीएल 2026 में चेन्नई प्लेऑफ से बाहर, हैदराबाद ने किया क्वालिफाई। ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी, 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 47 गेंदों पर बनाए 70 रन।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशखबरी शुरुआत, नमस्कार सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज के मॉर्निंग डोज लेकर।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। तो बिना रुके बिना हमें अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की पांच उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबर।
1: तो देखिए शुभ समाचार की शुरुआत हनुमान जी के खास पर्व के साथ होगी। आज ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है, इसमें हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा का विधान है। आज के दिन बजरंग बली की आराधना से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले इस तीसरे बड़े मंगल पर बजरंग बली की पूजा के 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। कौन से हैं ये मुहूर्त और कैसे करें मुहूर्त में पूजा अर्चना, आगे आपको बताएंगे।
2: तो वही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के बीच अब इसी शनिवार से हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं, इसके लिए वहां खास तैयारियां हो रही हैं। इसके लिए कैसा है श्रद्धालुओं में उत्साह, वो भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: जी हां गीतिका, देखिए साथ ही साथ श्रीनगर में युवाओं के बीच टच रग्बी की प्रतियोगिता तेजी से बढ़ रही है। घाटी में इस सुरक्षित और रोमांचक विकल्प के रूप में बहुत इसको पसंद किया जा रहा है। तो और कैसे लोकप्रिय हो रहा है ये खेल, साथ ही साथ कैसे बेटियां भी आगे आ रही हैं इसमें, आगे आपको बताएंगे।
2: तो इस बीच ईशा अंबानी सोशल मीडिया पर अपने फैशन स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोर रही हैं। ईशा मशहूर ब्रांड शनेल का एक बेहद रेयर आउटफिट पहने नजर आ रही हैं। ये खास आउटफिट मशहूर जर्मन डिजाइनर कार्ल लेगरफेल्ड के 1996 के ऑटम विंटर कलेक्शन का हिस्सा है, जिसे मशहूर इंटरनेशनल पॉप स्टार लेडी गागा 2011 में पहने नजर आ चुकी है। इसी वजह से ईशा का ये फैशन स्टेटमेंट और भी ज्यादा आइकॉनिक बन गया है। स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में और भी आगे आपको जानकारी देंगे।
1: बिल्कुल, देखिए इसके अलावा आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होने जा रहा है। ये मैच जो है शाम 7:30 बजे से जयपुर में खेला जाएगा। तो कैसी है दोनों टीमों की तैयारियां बताएंगे आपको आगे, लेकिन सबसे पहले फटाफट अंदाज में 9 बजे की नो बड़ी गुड न्यूज।
2: अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर भक्ति का सैलाब उमड़ गया। दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। बड़े मंगल को लेकर सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए।
1: चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं पर इस साल बद्री विशाल यात्रा नया रिकॉर्ड बना रही है। बद्री धाम में अब तक करीब 4,30,000 भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। वहीं पर मंदिर समिति, पुलिस और एसडीआरएफ लगातार यात्रियों की मदद कर रहा है।
2: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बेहद अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक स्थानीय शिल्पकार ने चांदी की कोल्हापुरी चप्पलें तैयार की हैं। ये चप्पलें बेहद खास हैं और इन्हें स्पेशल ऑर्डर पर बनाया गया है। लगभग 9 इंच लंबी इस चप्पल की जोड़ी को बनाने में करीब 1.5 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया है।
1: पाली में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। गर्मी में वन्य जीवों के लिए पहाड़ियों पर बने कृत्रिम एनीकट में पानी की और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। समाज सेवी संगठन द्वारा वन्य जीवों की मदद के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। पाली में दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाता है और सब कुछ सूखने लग जाता है।
2: लंदन में आरएचएस चेल्सी फ्लावर शो का आयोजन किया गया। इसमें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला भी शामिल हुए। इस साल के शो की थीम में इनोवेशन, प्राकृतिक नजारे और भविष्य शामिल रहे। दो विश्व युद्धों को छोड़ दिया जाए तो ये शो 1913 से हर साल चेल्सी में होता आ रहा है।
1: अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर गुची के शानदार फैशन शो का आयोजन किया गया। इस इटालियन लग्जरी ब्रांड ने अपना पहला क्रूज कलेक्शन पेश किया। फैशन शो के लिए ब्रांड के लिए क्रिएटिव डायरेक्टर ने टाइम्स स्क्वायर को एक रनवे में तब्दील कर दिया, जिसे देखने के लिए हजारों लोग उमड़े। शानदार शो मैनहट्टन में इसका बिलबोर्ड भी लगाया गया।
2: टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का चेन्नई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रीजनल हब के दौरे में एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। वहां उन्होंने जवानों के साथ समय बिताने के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए। धोनी ने कमांडो से एक ऐसा मजेदार सवाल भी पूछा। उन्होंने अपनी ओर इशारा करते हुए कमांडो से पूछा कि फिट लग रहा हूं ना, ये सुनकर वहां मौजूद जवान हंस पड़े। सोशल मीडिया पर उनका ये मोमेंट तेजी से वायरल हो रहा है।
1: आईपीएल का 64वां मैच राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज खेला जाएगा। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए राजस्थान हर हाल में जीत दर्ज करनी चाहेगी। राजस्थान इस सीजन में अपनी होम ग्राउंड पर अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है, वहीं लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है।
2: फिल्म रजनी की बारात का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी शुरुआत एक पंडित के डायलॉग से होती है, जहां वो कहते हैं जनपत्री में बारात घर पर आने के योग नहीं है। फिल्म में उल्का गुप्ता, कनिष्क, इशिता सिंह, सुनीता राजवार, जरीना वहाब और अक्षय भट्ट अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 29 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
3: शादी का सपना बोल रही है।
4: पापा, हम रजनी से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं।
5: हम तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स किए हैं।
6: मन भर गया ना, तो अब लगे राधा के पीछे डोलने।
7: एक बार जो चीज हम पसंद कर लिए ना,

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत करेंगे शुभ मंगल के साथ। आज का दिन बहुत शुभ है, आज तीसरा बड़ा मंगल है। बजरंग बली के भक्तों के लिए आज का दिन विशेष महत्व अपने आप में रखता है। इसी आस्था, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि बड़े मंगल के दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो साधक के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन को ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी इसको माना जाता है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगल के दिन ही हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था और इसी दिन भगवान श्री राम और महाबली हनुमान की मिलन भी हुआ था। इसलिए देखिए, इसे महाबली की कृपा पाने का शुभ दिन भी माना जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में तमाम जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं अलग अलग का हनुमान मंदिरों में। उसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश भर से, किस प्रकार से विशेष चोला भी उनको चढ़ाया जा रहा है। बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु कतारबद्ध होकर आज बड़ा मंगल के दिन पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के। देखिए तस्वीरें।

0: और चलिए अब आपको सीधे अयोध्या की हनुमानगढ़ी लिए चलते हैं। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। बड़ा मंगल पर महाबली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहां उमड़े हुए हैं। रामनगरी में हर ओर बजरंग बली की जय जयकार है। रामनगरी अयोध्या में हनुमान जी आराधना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मौका बड़े मंगल का है तो हनुमानगढ़ी का नजारा एकदम भव्य है। सुबह सवेरे से भक्त बजरंग बली के दर्शन के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। भीषण गर्मी है लेकिन भक्तों का पारा हाय नहीं है। जब संकट मोचक के आशीर्वाद के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप भक्तों को देख सकते हैं कि किस तरह से सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। और तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से हैं, जहां आप देखिए कितनी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु भक्त जो है हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, संकट मोचन के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगलवार आज मना रहे हैं लोग। और देखिए सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की जो कतार है वो देखते ही बन रही है। मंदिर के प्रांगण से लेकर अंदर मंदिर तक लंबी कतारों में भक्त खड़े हैं। तो देखिए आज का दिन बेहद खास, आज बड़े मंगल का तीसरा मंगलवार जिसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। और आज के दिन की अपनी मान्यता है, कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी संकटों से आपको मुक्ति मिलती है। आज के दिन भक्त जो है वो हनुमान जी को चोला भी चढ़ाते हैं। और अगर आपकी कोई खास मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी ना हो पा रही हो तो बड़े मंगल पर मान्यता है कि वो सारी मनोकामनाएँ आपकी सारी मन की इच्छाएँ जो हैं हनुमान जी पूरी करते हैं।
1: चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। मयंक के पास चलते हैं। मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं अयोध्या से। मयंक पहले तस्वीरें दिखा दीजिए। ज्येष्ठ माह का तीसरा बड़ा मंगल है आज, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं।
2: सैलाब है, ये अयोध्या का हनुमानगढ़ी है। और सीधे हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुविधा जो आज भीड़ है लगभग 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है, लंबी कतार है। और जो दूर दराज से लोग आए हैं, आज ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगलवार है, उसको लेकर काफी खासा भीड़ देखी जा सकती है। क्योंकि जहां तक अगर आप तस्वीर देखेंगे वहां तक सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे, क्योंकि काफी लंबी लाइन है और लगभग 2 किलोमीटर की ये लाइन है। और जो सैलाब आज उमर पड़ा है भगवान बजरंग बली के मंदिर में, तो आप इसका आज एक जोड़ एक अलग ही हिसाब किताब नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह से ही भक्त जो इंतजार में खड़े हैं बजरंग बली के दर्शन हेतु, और हाथ में माला लिए प्रसाद लिए वो बजरंग बली को चढ़ाने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। तो सुबह से आज जो पूरी अयोध्या जो है राममय और हनुमान जी के नाम से गूंज रही है, जय श्री राम जय बजरंग बली के लगातार लोगों के मुख पर जो है जो शब्द है जो नारे हैं वो लगते नजर आ रहे हैं। और जो आप भीड़ देख रहे हैं, अगर हम धीरे धीरे चल के भी आपको दिखाएंगे तो वो भीड़ जो है खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये लगभग 2 किलोमीटर की लंबी कतार है। ऊपर से लेकर सीढ़ियों तक जो टीला है हनुमान जी जहां पर बैठे हैं वहां से लेकर पूरा पीछे तक, ये लगभग जो श्रृंगार हाट बैरियर है वहां तक पूरी कतार है। और जो लोग हैं वो यहाँ पे आस्था का सैलाब है वो उमड़ पड़ा है, पूरी में नजर आ रहा है। दूर दराज से लोग आए हैं और तीसरा मंगलवार है, जगह जगह जो है बैरिकेटिंग भी की गई है सुरक्षा के कड़े।
0: जी बिल्कुल मयंक, लौटेंगे आपके पास। और हमारी सहयोगी मनीषा भी हमसे जुड़ रही हैं दिल्ली से। मनीषा जरा नजारा दिखाइए, किस तरह की हलचल है हनुमान मंदिर में। आप सुबह से वहां मौजूद हैं तो कितने भक्त जो हैं अब तक श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। आज बड़ा मंगल का तीसरा मंगलवार है।
3: बिल्कुल गीतिका, आज तीसरा मंगलवार और ऐसे में मैं इस वक्त सबसे पहले बता दूं कि कश्मीरी गेट के पास जो मरगढ़ वाले हनुमान मंदिर है मैं उसकी तस्वीरें दिखा रही हूं। और ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, भक्तों के अंदर इस मंदिर को लेकर जो आस्था है ना वो आपको ये लंबी लंबी कतारें बता देगी कि किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है आपको इस मंदिर परिसर के अंदर जो है वो आपको दिखने वाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अच्छी खासी भीड़ आपको नजर आएगी। और ये तो मैं मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, बाहर का नज़ारा एकदम अलग है गीतिका। यहाँ पर 2-2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें आपको जो है मंदिर के चारों ओर दिखने वाली है, लेकिन अंदर आके आप व्यवस्था दिखा सकते हो कि जिस तरीके से भीड़ है उसको नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी है। हर एक प्रति व्यक्ति को जो यहाँ पर 3 सेकेंड का समय मिलता है कि वो हनुमान जी के दर्शन कर सके और आगे बढ़ सके। हालांकि प्रसाद यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन भक्त जो है यहाँ पर फिर भी प्रसाद लेकर आते हैं और भोग के तौर पर जो है बस दूर से ही हनुमान जी को वो भोग दिखाते, ताकि उनका उनको यही लगता है कि भगवान ने वो भोग जो है स्वीकार कर लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी आस्था आपको इस मंदिर में नजर आने वाली है और बजरंग बली की भक्ति में पूरी हुई ये जो पूरा मंदिर है वो रंगा हुआ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों के अंदर उत्साह है, जो जोश है वो नजर आ रहा है। और वैसे ही कहते हैं कि खास तौर पर जो ज्येष्ठ महीने के जो मंगलवार होते हैं, इस दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो उनके हर एक मन चाहे वरदान की जो है उन्हें प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि जो है उनको मिलती है।
1: मनीषा,
3: कितना लंबा इंतजार करने के बाद आप अंदर?
4: बहुत लंबा इंतजार करने के बाद आया, पर बहुत अच्छा लगता है, इससे ज्यादा करते रहे इंतजार। पर भगवान
3: की आस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की आस्था नहीं
5: रुकी। बजरंग बली जी है, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी।
3: अच्छे से दर्शन हुए?
6: हाँ जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुए।
7: जय श्री राम,
3: जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि वैभव किस तरीके से आपको लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ पर मिलने वाली है, और ये भक्तों के यहाँ उत्साह है जो ये मंदिर में दिखाता है। हालांकि हर मंगलवार इसी तरीके की रौनक जो है वो मंदिर परिसर के अंदर नजर आती है, लेकिन जब बात बुढ़वा मंगलवार की हो, जिस तरीके से ज्येष्ठ महीने के मंगलवार है, तो आस्था अपने आप में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कोई व्रत रखा हुआ है,
1: का वरदान प्राप्त था हनुमान जी को, ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं हनुमान जी के जब भी दर्शन होते हैं। इसलिए ये भी समझना चाहूंगा आपसे, आज किस प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है हनुमान जी की? कई लोगों के इष्ट होते हैं हनुमान जी।
3: आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन अगर मैं प्रसन्न करने की बात करूं, देखो सबसे पहले हर कोई चाहता है कि हनुमान जी के हम अच्छे से दर्शन कर सके, लेकिन मंदिर में भीड़ इतनी ज्यादा है और ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भक्तों को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा रहा, क्योंकि बहुत सारे जो भक्तों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है लगातार, और सुबह से ही मंदिर जो खुला हुआ है जब से, तब से ही इस तरीके की भीड़। अगर मैं प्रसन्न करने की बात करूं तो लोग जो है भोग के तौर पर ही हनुमान जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए, खास तौर पर जो है बूंदी लेकर आए, कोई पान लेकर जो है लेकर यहाँ पर आए, तो अपनी अपनी आस्था के अनुसार जो है वो लोग लेकर आए, लेकिन किसी तरीके से रोक कर आप खास पूजा नहीं कर सकते। मैं आपको भी अंदर से दर्शन करवाती, लेकिन यहाँ पर मनाही है कि हनुमान जी की जो हम मूर्ति है वो नहीं दिखा सकते यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं वैसे चलो लोगों से भी मैं बात करती हूँ, आज हनुमान जी को किस तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश है?
8: पूजा पाठ करके अच्छे से,
3: रखा है?
8: नहीं, व्रत नहीं रखा, जेठ महीने के बड़े मंगलवार चल रहे हैं तो इस वजह से। हाँ, हम आ रहे हैं।
3: अच्छा, हर मंगलवार आ रहे हैं?
8: हर मंगलवार मेरे हस्बैंड आते हैं।
3: अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि हर मंगलवार लोग यहाँ पर आते हैं। अभी भीड़ बहुत ज्यादा है तो रुक रुक के लोगों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं मंदिर के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी वैभव, लेकिन ये मंदिर वाकई में प्राचीन है। कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जब जा रहे थे वापस, तो उन्होंने नीचे देखा कि यमुना नदी बह रही, तो उन्होंने सोचा कि मैं दर्शन कर लेता हूँ वहां आकर। तो जैसे ही वो धरती पर उन्होंने कदम रखा तो हर तरफ सिर्फ शमशान घाटी था, तो वहां जब वो रुके तो वहां की जितनी भी प्रेत आत्माएं थी उनमें हलचल जो है वो एकदम से मच गई थी, लेकिन हनुमान जी ने उन सभी आत्माओं को जो है मुक्त किया था। और उसी के बाद से हर कोई यही मानता है कि जितने भी कष्ट है आपके जीवन में, हनुमान जी जो है आपको उससे मुक्त करते हैं, और तभी से ये मंदिर की जो है स्थापना हुई। और आप यकीन नहीं मानेंगे वैभव कि यमुना नदी के ठीक पास था है ये मंदिर, लेकिन जब से ये मंदिर यहाँ पर बना है यमुना नदी धीरे धीरे पीछे होती गई, लेकिन आज भी ये मानते हैं कि जब भी यमुना माँ को हनुमान जी के दर्शन करना होता है तो इस मंदिर, क्योंकि ये मंदिर वाकई में बहुत गहराई में है, 5-6 फुट नीचे मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में आज भी जो है जब यमुना जी को मिलना होता है हनुमान जी से, तो ये मंदिर में पानी जो है यमुना नदी का पानी जो है वो आ जाता है और हनुमान जी के यहाँ मतलब आंख तक जो है वो पानी भर जाता। तो कहते हैं कि यमुना नदी जो है जिस तरीके से हनुमान जी यमुना जी के दर्शन करने आए थे वो उनसे भी दर्शन करती है, और यमुना नदी भी आकर जो है यमुना माँ जो है हनुमान जी से दर्शन करती है। तो हर कोई जो है यहाँ पर उसी आस्था के साथ आता है कि भगवान जो श्री राम के जो भक्त है हनुमान जी, वो हर उनको हर एक मनोकामना उनकी पूरी करते हैं, सुख शांति उनके जीवन में लेकर आते हैं।
0: मनीषा, वो तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कितने भक्त हैं जो मरघट वाले बाबा के दर्शन के लिए सुबह सुबह पहुंचे। हमारे साथ मयंक लगातार बने हुए हैं अयोध्या से। मयंक, अयोध्या में हनुमानगढ़ी की अपनी मान्यता है, वहां हनुमान जी जो है वो शाश्वत रक्षक के रूप में, एक राजा के रूप में विराजमान है और मान्यता ये भी है कि उनकी अनुमति के बिना जो है आपके अयोध्या के दर्शन जो है पूरे नहीं होते। और कई श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं वैभव जो पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद रामलला के दर्शन करते हैं। तो आज के दिन बड़े मंगल पर जब श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं तो कितनी भारी मात्रा में, गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी जो हम देख रहे हैं जिस तरह की भीड़ हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंची है वो अपने आप में बड़ी बात है।
2: जी बिल्कुल, सुबह से ही भक्तों का यहाँ सैलाब है और गर्मी भी ज्यादा है, प्रचंड है, लेकिन हल्की हल्की जो गुलाबी सी हल्की हल्की ठंड सी हवा चल रही है, लोगों की जो पसीनों पे लग रही है तो उनको हल्की ठंडक भी महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं जो मौसम है आज थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है और भीड़ काफी ज्यादा है, दूर दराज से लोग आए। और जिस हनुमानगढ़ी की बात अगर हम करें तो ये हनुमानगढ़ी और हनुमान जी जो कि अयोध्या के राजा कहलाए जाते हैं, जब भगवान श्री राम ने समाधि लिया था माँ सरयू के जल में, तो उसको लेकर जब राम जी अयोध्या छोड़े तो अयोध्या जो है हनुमान जी को दे के सौंप के गए और हनुमान जी को यहाँ पे राजा के रूप में देखा जाता है। तो अयोध्या में हनुमान जी की बिना अनुमति के आप श्री राम से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये यहाँ की आस्था है कि आप पहले बजरंगबली महाराज के दर्शन करेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे, उसके बाद ही भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। और बिना बजरंगबली के दर्शन किए आप भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ मानता है, क्योंकि बगल में ही यहाँ पे कनक भवन है, श्री राम जी का मंदिर है, रामलला विराजमान है, तो पूरी जो अयोध्या नगरी है वो राममय है और भगवान श्री राम के जो काफी खास भक्त हैं, जो काफी खास उनके चरणों में बैठे रहते हैं बजरंगबली, तो वो यहाँ के राजा कहलाए जाते हैं। तो उसको लेकर यहाँ पे जो सुबह से जो आस्था है, जो भीड़ है, जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे मौजूद है, दूर दराज से लोग आए हैं, अपनी आस्थाओं के साथ आए हैं। और अगर हम इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितनी देर से खड़े हैं लाइन में?
9: एक घंटा
2: हो गए। तो देख रही जैसे एक घंटे में लोगों को यहाँ पे जो है दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि आज भीड़ काफी ज्यादा है, तीसरा मंगल है, बड़ा मंगल है, तो जो पूरा एरिया है ये चिंगारहाट बैरियर का पूरा, ये पूरी जो है पूरा रो जो है ये 3 से 4 रो बनाए गए हैं जहाँ पे श्रद्धालु
1: कितनी दूर दूर तक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बहुत धन्यवाद मयंक आपका, मनीषा आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, दर्शन कराने के लिए। तो देखिए देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 19 अप्रैल को शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 6 लाख तो बद्रीनाथ धाम में करीब 4.25 लाख श्रद्धालु अब तक हाजिरी लगा चुके हैं। तो देखिए चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हम आपको बता दें 1 महीने के भीतर ही 15 लाख का आंकड़ा पार हो गया और ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में तमाम आस्था का आप मेला इसको बोल सकते हैं, अलग अलग डोलियों में विराजमान तमाम तरीके से तमाम सांस्कृतिक कल्चर को समेटे हुए तमाम श्रद्धालु पहुँच रहे हैं।

0: यह आस्था का सैलाब है, गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक। हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है, कोई पैदल, कोई घोड़े और खच्चर से, तो कोई हेली सेवा के जरिए धाम पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। जयकारे लगाते श्रद्धालु और घंटी घड़ियाल की पवित्र ध्वनि, पूरा वातावरण मानो आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को आज एक महीना पूरा हो गया है। इस एक महीने में मौसम ने भी श्रद्धालुओं की खूब परीक्षा ली है। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी तो कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
1: चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां हर रोज हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
0: वहीं बद्री विशाल के धाम में भी रौनक है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन की लंबी लंबी कतारें, ब्रह्म कपाल में पिंडदान, तप्त कुंड में स्नान, जिधर नजर फेरिए हर जगह भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां अब तक 4.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।
3: मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है तो पहाड़ों में भी अब गर्मी का एहसास होने लगा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। मौसम अब सुहाना हो चुका है, ऐसे में जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, नीचे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, छुट्टियां पड़ रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है।
0: जून में ये तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। असल में हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद सिख श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कान फिल्म फेस्टिवल के रंग।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Or more country roads.
8: Thank God I get to wake up.
7: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: देश माह के तीसरे बड़े मंगल की देश भर में धूम, पावन दिन पर हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की हो रही है पूजा, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति।
3: चारधाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या का बन रहा है नया रिकॉर्ड। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 16 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन।
2: नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से प्रधानमंत्री हुए सम्मानित, 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाकर प्रधानमंत्री ने देश के सम्मान में लगाया चार चांद।
3: सैलानियों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बंपर उछाल, भारतीय सेना का शाइनी कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का केंद्र।
2: पूरे देश में प्रचंड गर्मी का दौर, उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म, दिल्ली राजस्थान में भी पारा 44 डिग्री के पार, पूरे हफ्ते पड़ेगी हीट वेव की मार, मौसम विभाग की अपील सावधानी बरतें।
3: पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत, समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी 30 दिन की छूट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: समाचारों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब आपको लेकर चलते हैं फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा पर, जहां पर कान फिल्म फेस्टिवल का महामंच सजा हुआ है। दुनिया भर की सिनेमा हस्तियों की चमक और कला का उत्सव अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। रेड कार्पेट पर सितारों की जगमगाहट के बीच सिनेमा, फैशन और संस्कृति का अनोखा संगम जो है कान में देखने को मिल रहा है। और इस साल भारत की एक अलग ही तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल में देखने को मिली। बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर छोटे बड़े कलाकार भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय संस्कृति को इस महामंच से दुनिया के सामने पेश भी लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोहली ने महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर भारतीय परंपरा और सौंदर्य की खास झलक भी पेश की। उनके इस अंदाज ने न केवल फैशन प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया गया। प्राजक्ता ही नहीं, आपको बता दें शेरी ने भी कान के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। अपने आकर्षक का अंदाज और गोल्डन लहंगे की खूबसूरती की बदौलत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय नारी की गरिमा, आत्मविश्वास और संस्कृति का अद्भुत प्रदर्शन किया। देखिए, तीन तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन में दिखा रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल की धूम पूरे विश्व में देखने को मिलती है। ऐसे में भारतीय सिनेमा, भारतीय संस्कृति और भारतीय जो प्रधान है वो देखने को मिल रहा है।
1: और चलिए अब बात कर लेते हैं एक्ट्रेस मौनी रॉय की। जी हां, मौनी रॉय का ग्लैमरस अंदाज भी कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौनी ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। ब्लैक आउटफिट के साथ उनका बन हेयर स्टाइल उनके पूरे लुक को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा था। रेड कार्पेट पर उनका क्लासी और यूनिक अंदाज देखते ही बन रहा था। मौनी का यह फैशन स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैशन एक्सपर्ट्स भी उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
0: देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल की खूबसूरत इस मंच पर सबसे बड़े बड़े सितारे ही नहीं आपको बता दें बल्कि डिजिटल दुनिया और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कई चेहरे भी इसमें शुमार होते हैं। यही इसकी खूबसूरती है। इस साल भारत से कई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं कान फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने और खास बात इसमें यह रही कि सभी भारतीय संस्कृति को बखूबी दर्शाते हुए नजर आए। अभिनेत्री और कॉन्टेंट क्रिएटर प्राजक्ता माली ने भी महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उनके इस ट्रेडिशनल अंदाज ने फैशन प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनके इस खूबसूरत लुक में महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक साफ तौर पर देखने को मिलती है। साड़ी के साथ साथ उन्होंने क्लासिक मराठी नथ भी पहनी जिसने उनके पूरे अंदाज को और भी ज्यादा आकर्षक और शाही बना दिया। ट्रेडिशनल ज्वेलरी और सादगी भरी मेकअप के साथ प्राजक्ता का ये लुक भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का बेहतरीन संगम नजर आया। रेड कार्पेट पर उनका ये अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी उनके इस लुक की खूब चर्चा हो रही है। देखिए तस्वीरें।

तो कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिसेस यूनिवर्स शेरी सिंह ने भी जलवा बिखेरा। रेड कार्पेट पर लहंगे में शेरी ने एंट्री ली तो उनका स्टाइल काफी इंप्रेसिव लगा। शेरी के देसी लुक में मॉडर्न वाइफ का परफेक्ट मिक्स दिखा जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। शेरी सिंह वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने 2025 में भारत को पहला मिसेस यूनिवर्स का ताज चलाया था और अब उन्होंने कान में अपना डेब्यू किया जो ट्रेडिशन और मॉडर्न एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। शेरी ने क्लासी लहंगे के साथ ज्वेलरी को रॉयल टच दिया जिसने उनकी वाइब को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया, तभी तो उनके लुक को खूब ज्यादा पसंद किया जा रहा है।

0: और आपको बता दें एक बार फिर से, ईशा अंबानी अपने फैशन स्टेटमेंट से सुर्खियां लगातार बटोर रही हैं। ग्लैमरस आउटफिट के साथ सटल मेकअप और स्टाइलिश एक्सेसरीज के लिए ईशा इंटरनेट पर धमाल लगातार मचा रही हैं। एक बार फिर ईशा अंबानी ने दिखा दिया कि फैशन के मामले में उनका स्टाइल हमेशा सबसे अलग नजर आता है।
1: फैशन और स्टाइलिंग के मामले में

0: पाउच कैरी किया है जो पूरे लुक के साथ काफी स्टाइलिश लग रहा है। इसके साथ ईशा ने सैन लॉरेन के SL M161 सनग्लासेस पहने हैं, जिसकी कीमत करीब 32,000 रुपए बताई जा रही है। ये गोल्डन ड्रेस अपने आप में ही बहुत हैवी और अट्रैक्टिव है। यही वजह है कि ईशा ने अपने स्टाइलिंग को बहुत ही सटल तरीके से बैलेंस किया है। यही वजह है कि फैशन लवर्स उनके इस लुक को विंटेज और मॉडर्न ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात फिल्म पेडी के ट्रेलर की। जी हाँ, फिल्म पेडी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। इसमें रामचरण अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, लंबे बाल, दाढ़ी और गांव का रफ एंड टफ लुक। क्रिकेट में बैटिंग, कुश्ती में दमदार मूव्स और कार लिफ्ट करने जैसे पावरफुल सीन्स ट्रेलर में शामिल हैं। वहीं जानवी कपूर रामचरण के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है वो रूरल लुक में नजर आ रही है। ये फिल्म अगले महीने ही रिलीज होगी।
2: खेले हमरा घमंड,
3: चेहरा देख चेहरा,
4: ज्ञान सुन लिया तुम्हारा, बकलोली ना किया कर हमारे साथ, बिना चेक ही मर जाएगा।
5: एक लड़की के मुंह से ऐसी बात सुन।
6: चलिए कुछ और खबरों पर रुख करते हैं। अब आपको लिए चलते हैं आईपीएल के मैदान में। आईपीएल में कल जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया, तो वहीं पर आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होने जा रहा है। यह मुकाबला जो है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। प्ले ऑफ की रेस में बने रहने के लिए राजस्थान को हर हाल में जीत दर्ज करनी ही होगी। राजस्थान 12 पॉइंट्स के साथ छठे पायदान पर है। वहीं पर लखनऊ पहले प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुका है। दोनों टीमों के बीच अगर हम देखें तो अब तक 7 मैच हुए हैं, इसमें राजस्थान ने 5 और लखनऊ ने 2 मैच जीते हैं, जबकि इस सीजन में दोनों टीमों के बीच अकाना स्टेडियम में खेला गया पहला मैच राजस्थान ने जीता था। लेकिन राजस्थान इस सीजन में अपने होम ग्राउंड पर अब तक एक भी मैच नहीं जीत सकी है।
1: इस सीजन अगर धोनी की बात की जाए तो अब तक एक्शन में नजर नहीं आए हैं धोनी। कल जब धोनी पहली बार मैदान पर दिखे तो फैंस की उम्मीदें बढ़ गई। हालांकि माही खेलने नहीं आए, इसके बावजूद चेपॉक स्टेडियम धोनी धोनी की आवाज से गूंज उठा। दरअसल कल चेन्नई ने होम ग्राउंड पर इस सीजन का आखिरी मुकाबला खेला। इस दौरान धोनी ने लैप ऑफ ऑनर लेकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। उनके साथ सुरेश रैना भी मौजूद रहे। देखिए चेपॉक में माही मैजिक की एक झलक।

0: और देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई को हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं पर अगर टेबल टॉपर आरसीबी पहले ही प्लेऑफ की टिकट हासिल कर चुकी है। आपको बता दें, दिलचस्प बात देखिए इसमें यह है कि अब प्लेऑफ में केवल एक ही स्लॉट बचा है और फेवरेट फोर की रेस में अगर हम देखें तो अब भी पांच टीमें जोर आजमाइश लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब, चेन्नई, राजस्थान, दिल्ली और कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी लगातार पेश कर रही हैं। टूर्नामेंट के आखिरी दौर में जबरदस्त रोमांच बना हुआ है। सीजन 19 का फाइनल 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। श्रीनगर में युवाओं के बीच टच गर्वी की प्रतियोगिता तेजी से बढ़ रही है। घाटी में इस नॉन कॉन्टैक्ट गेम रग्बी को एक सुरक्षित और रोमांचित विकल्प के रूप में बहुत पसंद किया जा रहा है। खासकर ग्रामीण युवाओं और लड़कियों के लिए ये खेल सशक्तिकरण और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का एक नया माध्यम बन गया है।
1: नगर का प्रतिष्ठित पोलो ग्राउंड है जहां पर टच रग्बी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है। यहां मौजूद युवाओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां के युवाओं में इसका जबरदस्त क्रेज है। युवाओं के बीच टच रग्बी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यहां टच रग्बी के खेल के इस मेगा इवेंट में 21 राज्यों की 75 टीमों ने हिस्सा लिया है।
2: टच फॉर्मेट एक बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी ले रहा है। हमने रिसेंटली, आपको पता है, कुछ महीने पहले हमने यहाँ पे एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट किया था। आज भी हमने यहाँ पे एक कार्निवल फेस्टिवल टाइप टूर्नामेंट किया है जिसमें 25-26 टीमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर से, हर राज्य से आ रहे हैं बॉयज गर्ल्स। ये बेसिकली सीनियर टूर्नामेंट है, ओपन वन है। इसमें हमने खेल

0: खिलाने का एक प्रण लिया है कि बच्चों को एक और प्लेटफॉर्म दे दे ताकि वो बहुत अच्छे से, और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा जा रही है। हमें इतनी सारी क्वेरीज, दिन भर हमारा फ़ोन ही बंद नहीं होता है, क्वेरीज पे क्वेरीज आ रही है कि हम कैसे ज्वाइन करें, हम कैसे ज्वाइन करें, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है।
1: कश्मीर की युवा लड़कियों और ग्रामीण महिलाओं के लिए ये खेल आशा की एक नई किरण बनकर उभरा है। राज्य की जूनियर बालिका और सीनियर महिला टीमों ने राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में शानदार प्रदर्शन दिखाया है और कई मेडल्स जीते हैं।
2: भी अगर हम देखेंगे, जितना सोचा था हमने टच के बारे में, लाइक कितने टीम्स आएंगे, लाइक हमारी सोच से बहुत बाहर ही टीम्स, बहुत ज्यादा टीम्स आई है टच खेलने के लिए।
3: आज यहाँ पे टच रग्बी कार्निवल हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। हम तब खेलते थे सिर्फ जूनियर्स खेलते थे अंडर 14, अब ये इतनी पॉपुलर है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अब हमने सीनियर्स कैटेगरी में, मिक्स्ड कैटेगरी में बोथ वुमेन मैन में इंट्रोड्यूस की है, और बहुत फन गेम है, इसमें काफी ज्यादा स्किल्स चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए।
1: जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जमीन स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं की इसे खेलने में दिलचस्पी बढ़ रही है।
4: भी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, आई थिंक ये 2 महीने हो गए इंट्रोड्यूस किए हुए इस टच रग्बी को यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत ये हासिल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले डरते थे या जिनको लगता था कि हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, अब उनको लगता है कि जो ये टच है इसमें हम सेफर खेल सकते हैं और तेज खेल सकते हैं, तो उनको बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा चैलेंजिंग गेम है तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है लोगों को।
1: घाटी में टच रग्बी टीम भावना के साथ फिटनेस को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही यहाँ इस खेल को युवाओं को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ, अनुशासित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए बढ़ावा देने वाले एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: यूं तो पूरे भारत में ही इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में तो पारा हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। हालात ये हैं कि इस झुलसा देने वाली गर्मी के चलते लोगों के घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। हालांकि जरूरी काम से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गमछे, स्कार्फ और छाते का इस्तेमाल कर खुद को चिलचिलाती धूप से बचाते नजर आ रहे हैं।

0: चिलचिलाती धूप और लू के थपे, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी राज कर रही है। देश के इन सभी इलाकों में गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद से 3 बजे तक तो सड़कों पर इंसान से लेकर जानवरों तक के नामो निशान यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। यहाँ हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी ने अभी तक अपने सबसे भयानक तेवर दिखा दिए हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक गर्मी का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा।
1: गर्मी तो है, अभी एक सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम समझे तो आप देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं, तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है और रिजल्ट साथ में। मध्य प्रदेश और विदर्भा में हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रही है, लगातार हीट वेव कंडीशंस चल रही है विदर्भा में, जिसको देखते हुए रिजल्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो पूरी भाग है यहां पर और पश्चिम भाग दोनों में हमारा अनुमान है एक सप्ताह में आगे चल करके 2-3 दिनों के बाद में सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं।
0: मौसम विभाग ने आज और कल 20 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज गर्मी और बढ़ेगी, अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हीट वेव की स्थिति रहेगी। दोपहर और शाम के समय तेज गर्म हवाएं परेशान करेंगी। बुधवार को भी भीषण गर्मी जारी रहेगी, अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। कल भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 मई को तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि तब अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रह सकता है।
2: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अनुमान लगाया है कि लगातार जो है धूप निकलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 42, 43, 44, 45 डिग्री तक तापमान जाने का अनुमान है। उस तरीके की स्थिति बनती हुई दिन में दोपहर में नजर आ रही है।
0: वहीं कई शहरों
3: और इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील्स दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने गुदगुदाने का मौका नहीं छोड़ते। देखिए रणवीर बरार की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: क्या आप भी यस बोलते हैं? इस बोरिंग तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग बोलो। आप बोल सकते हैं
5: बाप, बाप, बागी ऐसे, बाप, खुद का काम।
6: तू पागल।
7: ओ भाई, मैं डिसाइड करूंगा कौन पागल है। जा देख कर, मैं ऑफिस में बैठाऊंगी नहीं।
6: ओके। ये देखो पागल भाग गया। ऑफिस में कॉल करके भी तो पूछ सकता था।
8: तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
3: बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
10: का प्रयोग करके कैसे मन की चिंताएं दूर की जा सकती हैं, जल का प्रयोग करके कैसे जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, और जल को बचा करके कैसे बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जानिए क्या हैं जल के चमत्कारी प्रयोग सिर्फ किस्मत कनेक्शन।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
11: गुड न्यूज टुडे
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
11: गुड न्यूज टुडे
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन
15: ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल की देश भर में धूम पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही है पूजा अर्चना चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति चार धाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या का बन रहा है नया रिकॉर्ड। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 16 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। सैलानियों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बम्पर उछाल। भारतीय सेना का शाइना कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। पूरे देश में प्रचंड गर्मी का दौर। उत्तर प्रदेश में बांदा सबसे गर्म। दिल्ली राजस्थान में भी 12-44 डिग्री के पार। पूरे हफ्ते पड़ेगी हीट वेव की मार। मौसम विभाग की अपील, सावधानी बरतें। तेल बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने लोगों से कार पुलिंग की अपील की। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर। सर्कुलर किया जा रही। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत। समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट।
16: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जल के महत्व के बारे में। ये जानेंगे कि जल का ज्योतिष में क्या महत्व है और जल के प्रयोग से किस तरह के लाभ जीवन में हो सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मई 2026 दिन मंगलवार। तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:18 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 8:41 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हमारे जीवन में जल से ज्यादा मूल्यवान विजिबल कोई चीज नहीं है। ज्योतिष में, धर्म में, हर जगह जल का अपना एक महत्व है। ज्योतिष क्या कहता है, धर्म क्या कहता है जल के बारे में? देखिए, जीवन के निर्माण के लिए 5 तत्व की आवश्यकता होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये 5ों कंपाउंड मिलेंगे तब जीवन बनेगा। इन 5ों तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल तत्व। और जल मूर्त वस्तुओं में जिनका आप अनुभव कर सकें, जिन्हें देख सकें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। और जल अत्यंत चमत्कारी है। जो कुंडली का जल तत्व होता है वो व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को चलाता है, साथ ही साथ उसकी भावनाएं, उसकी क्षमता और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यानी कुंडली का जो जल तत्व है वो बताता है कि आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आपकी योग्यता कितनी होगी, आप कितने स्पिरिचुअल होंगे ये बात भी बताता है। जल के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एनर्जी को सोखने की ताकत होती है। जल के अंदर बहुत जल्दी एनर्जी प्रवेश करती है, इसीलिए जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में पाई जाती है। जब पूजा शुरू होती है तो हाथ में जल लेके क्या कहते हैं, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सह वायाभ्यंतरं शुचिः। यानी मंत्र के साथ जल को जब छिड़कते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। आपके शरीर में जो जल तत्व है, जो वाटर कंटेंट है, वो आपको शक्ति देता है, आपको दिव्य बना सकता है। और जल का सही प्रयोग अगर आप करना जाने, मंत्रों के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याएं आप दूर कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर जल तत्व कुंडली में बढ़िया हो जाए, अगर जल की मात्रा आपके शरीर में बढ़िया हो जाए, तो सामान्य जीवन में परेशानियां आपको परेशान नहीं करेंगी। मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, धन लाभ होगा, मानसिक तनाव कम होता जाएगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय अपने ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, परिवार में शांति रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, पानी बीमारी दूर भी करता है और पानी बीमारी देता भी है। शरीर में वाटर रिटेंशन होगा तो शरीर सूज जाएगा, तो जल का प्रयोग सोच समझकर नियम और सावधानियों के साथ करना चाहिए। कैसे करेंगे? जल का आप अधिक से अधिक प्रयोग करें, सामान्यतः गर्मियों में ज्यादा, सर्दियों में थोड़ा कम, लेकिन जल का निरंतर प्रयोग आप करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। नियम ये कहता है कि दिन के समय में जल ज्यादा पीना चाहिए और रात के समय में जल कम पीना चाहिए। खड़े होकर पानी मत पीजिए, अच्छा नहीं है, और एक बार में ढेर सारा पानी मत पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। जो पानी फायदेमंद होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, न तो ठंडा, ठंडा पानी भी बहुत नुकसान करेगा और बहुत गर्म पानी भी नुकसान करेगा। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है, सामान्य तापमान का जो जल है, वो दवाई की तरह, जीवन की तरह काम करता है। आप पानी की बर्बादी ना करें, पानी को खराब ना करें, पानी की रक्षा करें, पानी बचाएं, तो इससे आपका चंद्रमा और आपका मन दोनों मजबूत होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन की या मानसिक तनाव की शिकायत है, वो थोड़ा सा पानी बचाने की कोशिश करें और पानी का सदुपयोग करें, लाभ होगा। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, खास तौर से आजकल फैशन है शावर से नहाने का, उसमें पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर आप जल की बर्बादी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की क्षति होती है। जिन लोगों के घर में जल की बर्बादी होती है, पानी जरूरत से ज्यादा यूज किया जाता है, बिना आवश्यकता के जल बहता रहता है या जल टपकता रहता है, वहां पर मानसिक समस्याएं और आर्थिक समस्याएं बहुत आती हैं। जिन घरों में पानी बेवजह बर्बाद हो, टपकता रहे, बेवजह बहता रहे, वहां घर के लोग बीमार रहेंगे ज्यादातर, और घर का ज्यादातर पैसा बेवजह फिजूल में, ऊल जलूल चीजों में खर्च होगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में मंगल कार्य होंगे। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या आ सकती है, बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, ज्योतिष में जो पांच तत्व होते हैं, हर तत्व का संबंध किसी ग्रह से होता है, और वो ग्रह उस तत्व के माध्यम से आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। चूंकि आज हम जल की बात कर रहे हैं, तो जल का किस ग्रह से संबंध है? जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। हालांकि देखिए, शुक्र जो है वो रासायनिक जल है, केमिकल वाटर है, और चंद्रमा शुद्ध जल है। थोड़ा सा दोनों के जल में फर्क है, या शुक्र जो है वो फ्रेग्रेंस वाली, खुशबू वाले जल से संबंध रखता है, चंद्रमा शुद्ध और सादे जल से संबंध रखता है। तो जल जो है वो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी होता है। मंगल के पास एक राशि है वृश्चिक, वो जल की राशि है, इसीलिए मंगल भी कुछ पार्ट में जल से संबंध रखता है। खासतौर से जो बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर है, उसमें मंगल की भूमिका आ जाती है। अगर आप जल का सही प्रयोग करें, तो आप अपनी कुंडली के चंद्रमा और शुक्र दोनों को बेहतर कर सकते हैं। और चंद्रमा को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने मन को बेहतर करते हैं, शुक्र को बेहतर करने का मतलब है कि आप अपने आप को हैप्पी बनाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं। तो ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप जल का सही प्रयोग करते हैं। अगर जल का सही प्रयोग ना करें, बेवजह पानी की बर्बादी करें, पानी को नष्ट करें, जल को गंदा करें, जल स्रोतों को गंदा करें, तो चंद्रमा और शुक्र दोनों खराब हो सकते हैं। हालांकि ऐसा ज्योतिष में माना जाता है कि जो लोग नदियों को गंदा करते हैं, सरोवरों को गंदा करते हैं, उनका केतु दूषित हो जाता है और उन्हें जीवन में अज्ञात बीमारियां, अज्ञात बाधाएं परेशान करती हैं। इसीलिए जल का सही प्रयोग करना जरूरी है। जल की बर्बादी मत करिए, नदियों को, सरोवरों को दूषित मत करिए। धनु राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में जोखिम ना लें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुक्र का संबंध भी जल से होता है, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जल का प्रयोग कैसे करेंगे? जहां तक हो सके दोनों समय स्नान करिए। दोनों समय नहीं नहा पाते तो कम से कम रोज सुबह स्नान करना जरूरी है। रोज सुबह स्नान जरूर करिए और सुगंधित जल से नहाइए। नहाने के पानी में आजकल सुगंध मिलाने की व्यवस्था आ गई है, सुगंधित जल से नहाएं या जल में गुलाब जल डाल करके उस जल से स्नान करें। जैसे चंद्रमा के लिए चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, वैसे ही शुक्र को प्रबल करने के लिए अगर आप कांच के गिलास से पानी पिएं रेगुलरली तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक बात याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, कमजोर है ऐसा नहीं कहता मैं, अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो पानी के बर्तन कभी भी किसी को भी उपहार में मत दीजिएगा, वरना आपके जीवन से आनंद और खुशियां चली जाएंगी। जिन लोगों को आलस्य बहुत ज्यादा रहता हो, हर समय आलस्य सवार रहता हो, ऐसे लोगों को तांबे के पात्र का जल पीना चाहिए। रात में गिलास में या जग में आप तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को घूंट घूंट करके पीजिएगा। ऐसा करने से शरीर में एनर्जी लेवल बेहतर होगा और आपका आलस्य दूर होगा। कि अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो, घर में घुसते ही मन भारी हो जाता हो, घर में रहने पे कलेश होता हो, चिंताएं होती हो, निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? प्रातः काल स्नान करके रोज पूजा करिए। सुबह के समय पूजा स्थान पर बैठिए, अपने सामने जल से भरा हुआ एक छोटा सा लोटा कटोरी या गिलास रख लें, उसमें पानी भरा हो। इसके बाद बोल बोल कर 27 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। उसके 10 मिनट बाद गायत्री मंत्र बोलते हुए इस जल को पूरे घर में छिड़क दें, बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। लगातार ऐसा एक महीने तक करिए, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
17: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
18: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
19: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by Monster News and Reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: विश्वास बसता है जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

अब समझ गए कि शंकर हनुमान जी की पूंछ कौन है? बोलो बोलो बोलो। तो हनुमान जी से पूछा कि आप लंका में कहां कहां लंका जला रहे? हनुमान जी बोले, हमसे मत पूछो, पीछे वालों से पूछो, ये हमारा मामला नहीं है, ये पीछे वालों का मामला है। हनुमान जी महाराज, निवक चढ़े कपि कनक अटारी, भई संभीत निसाचर नारी। सब निसाचरों की पत्नियां डरने लगी और हनुमान जी महाराज ने

अच्छा सुनो, आग थोड़ी सी लगी हो और हवा चले तो क्या होगा? बुझ जाएगी, हाँ या ना? बोलो बोलो। आग दीपक हो, दीपक, और दिया लेके बाहर बैठ जाओ, हवा चले तो क्या होगा? बुझ जाएगा। बोलो हाँ जी या ना जी। लेकिन आग टेंट में लग जाए या किसी कपड़ों में लग जाए, कपड़ों की ढेरी में लग जाए और हवा चले, बुझेगी के बढ़ेगी? बोलो बोलो बोलो, बढ़ेगी के नहीं? यही हुआ। हनुमान जी महाराज ने अपने पिताजी को बुलाया। अब हनुमान जी के पिताजी कौन आए जरा सुनो। हनुमान जी आपके कौन पिताजी आए?

के पिताजी पवन देवता। हनुमान जी ने पहले 4-5 मकान जलाए बाबा ने, और 4-5 मकान जलाकर गर्जना की, जय।

नहीं नहीं हार गए हार गए, इससे ज्यादा देर तो तुम लोग हमारे बीच में ना बोला करो। हमारी बारी में हम बोलेंगे, तुम्हारी बारी में तुम ना, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब इस बार बहुत ज्यादा होगा।

हार गए, हार गए आप लोग, हार गए, हार हार गए, हम जीत गए। ये अदालत तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर पहुंची है, दोनों पार्टियां बराबर है नाम के अनुसार। तो हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, हनुमान जी महाराज की जब पूंछ में आग लगी, निमुक चनो कपि कनक अटारी, उसी समय हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, क्या की? हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उन्चास, अट्टहास करी गर्जा जय श्री राम, कपि बड़ी लागे आकाश। हनुमान जी महाराज ने गर्जना की, गर्जना को सुनकर के राक्षसों का बीपी हाई हो गया, निशाचरों की पत्नियां सब डर गईं। हनुमान जी अब तक छोटे थे, अब बड़े हो गए। किसी ने पूछा, बाबा अभी तक छोटे थे अब बड़े क्यों हो गए? हनुमान जी बोले, अब जलने वालों को जलाना है तो बड़ा बन करके ही जलाएंगे। और यही हुआ, देह विशाल परम हरुआ।

और जिस घर के बाहर हनुमान जी रुके उस घर के दरवाजे पर चिन्ह में धनुष बाण बना था। एक तरफ रा लिखा, दूसरे तरफ मां लिखा। हनुमान जी चौंक गए, अरे ये लंका है और लंका में भी कोई भक्त रहता है?

तो निशाचरों की बास की नगरी है, यहां सज्जन कौन आ गया, यहां पर कौन भगत आ गया, ये हनुमान जी सोच रहे थे। पर सज्जन की पहचान क्या है, सज्जन कौन और दुर्जन कौन, ये पहचान तो हनुमान जी से सीखो। आहा, ध्यान देना, सज्जन वो है जो स्वप्न में भी किसी का बुरा ना चाहे, और दुर्जन वो है जो अपने अलावा किसी का अच्छा ना चाहे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को जगाया, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बाहर राम राम की आवाज लगाई। विभीषण अंदर सो रहे थे, अरे सोचा लंका में वो कोई राम राम राम राम राम कह रहा, यहाँ लंका में तो कोई राम राम बोलता ही नहीं है, यहाँ तो रावण रावण रावण दसारण दसारण होता है, ये राम राम वाला कौन आ गया। विभीषण जी जाग गए और जागे, इधर राम जी का नाम हनुमान जी ले रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उधर विभीषण जी जागे। और सज्जन की पहचान क्या, जरा देखना,

लो, राम राम का सुमरण करके हनुमान जी महाराज पहचान गए ये विभीषण जी सज्जन हैं, उनके मुख से भी राम राम निकला, हमें सौभाग्य है। हम जब बैठे थे ना तो हमारी नजर पड़ी सामने हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, एक समुदाय है यहाँ का गौरव समुदाय, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जिनको मिले, और ये परिवार धाम पर भी हमसे मिलने गया, राम नामी परिवार। एक बार इनको जोरदार ताली बजाओ। ये वो समुदाय है जो पूरे शरीर में राम राम राम राम लिखता है, पूरे शरीर में। माता जी के भी दर्शन करो, उनके पूरे शरीर में राम राम है। आज की माताओं को यदि कह दें ऐसा राम राम लिखवाओ तो वो कहेंगी हमारी शकल चली जाएगी। शकल तो एक दिन जानी जानी है, पर इनका प्रभाव देखो। ये हजारों लोगों में आप बैठे थे, हमारी नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि जो राम का होता है उस पर सबकी नजर टिकती है। प्राप्त करने के लिए जिद तो बहुत जरूरी है, अगर आप जिद्दी नहीं बनोगे तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे। आपको जिद्दी तो बनना पड़ेगा, चाहे वो भगवान को पाना हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी गया, बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले कल आना। जब कल गए, महाराज हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी चलो। बेचारा नदी चला गया, नदी जैसे ही पहुंचा तो फिर बोले हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी बोले नदी में कूद। वो कूद गया और फिर कूदते हुए तैरते हुए बोला हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ऊपर से कूद गए। वो फिर ऊपर आया, हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। परमहंस जी ने गर्दन पकड़ ली और डुबो दिया। वो फड़फड़ा गया, अब लगा के मर जाएगा। फिर छोड़ा और जैसे ही छोड़ा तो फुर फुर करता हुआ बाहर दौड़ के गया। बोले हमें पहले कन्फर्म नहीं था कि तुम पागल हो, आज कन्फर्म हो गया पागल हो। हमने पूछा है भगवान को पाना है, उपाय बताओ, तुम हमें नदी में ला करके मारने ले आए। परमहंस जी बोले बेटा मारने नहीं लाए हैं, उपाय बतलाने लाए हैं। ये गला दबाना कौन सा उपाय है? बोले बेटा जिस प्रकार पानी में तू श्वास के लिए तड़प रहा था, वैसे ही तू परमात्मा के लिए तड़पने लगे तो भगवान मिल जाएगा। श्वास के लिए भगवान का मिलना कठिन नहीं है, तड़प का आना जरूरी है। मीरा तड़पी है इसलिए उसे कलयुग में भी गोविंद मिले, सूरदास तड़पे हैं इसलिए उन्हें कलयुग में भी गोविंद मिले, तुलसीदास तड़पे हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी, कि तुलसीदास की भी आंखों में सदा भाव रहता। तुलसीदास जी भी सूरदास जी गाते अखियां हरि दर्शन की प्यासी, सूरदास भी तड़पे, तुलसीदास जी भी तड़पे। भैया जब तक अंदर तड़प नहीं होगी ना तब तक सफलता नहीं मिलेगी, चाहे भगवान को पाना हो, चाहे सफलता को पाना हो, या सक्सेसफुल को पाना हो। पढ़ने वाले बच्चे एक बात तय कर लें, जिद्दी बनो, जिद्दी बनो। जिद्दी का मतलब गुस्सेल मत बन जाना कि कल से ही तुम गुस्सेल हो जाओ। सफलता पाने के लिए जिद्दी बनो। तुम अपने ही शरीर से सीखो, नाखून और बाल बचपन से कट रहे हैं फिर भी नाखूनों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा, बालों ने कभी बढ़ना नहीं छोड़ा। कितनी बार कटे फिर भी बढ़ रहे हैं, ऐसी जिंदगी में कितनी भी बार गिरो पर चलना मत छोड़ना। तुम उड़ नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, तुम उड़ नहीं सकते दौड़ो, तुम दौड़ नहीं सकते चलो, तुम चल नहीं सकते रेंगो, पर शांत मत पड़े रहो, चुप मत पड़े रहो, लगे रहो। हमारे गुरु कहते हैं डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। भगवान के चरण पकड़े रहो। संत कहते कबहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, कभी तो भगवान के कानों में पुकार जाएगी। कभी भरत जी के चरित्र को सुनना, भरत जी कितने आर्तनाद स्वर में राम जी को पुकारते, इतने आर्तनाद स्वर में भरत जी राम जी को पुकारते, जब राम जी से मिलने जाते चित्रकूट, कि भरत जी के आर्तनाद करुण पुकार स्वर को सुनकर के पत्थर के पहाड़ों के पर्वत के

बड़े हो जाते हो पेन पकड़ा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि फिर रफ नहीं बचता, जिंदगी फेयर बन जाती है, मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं, बड़े होते ही तुम्हें पेन पकड़ा दिया जाता। ऐसी जिंदगी है, अगर पाना है तो जिद्दी बनो, अगर पाना है बहुत नींद मत लो, कम सो, अगर प्राप्त करना है तड़पो ज्यादा, अगर तुम्हें प्राप्त करना है विचार ज्यादा करो, तुम्हें जो पाना है उसके बारे में सोचो। हमको रामानंद सागर की महाभारत का एक सूत्र बड़ा प्यारा लगता, जब हमने टीवी पर देखा और शकुनी मामा एक बहुत अच्छी बात बोलते, अपने भांजों को कह रहे थे, मेरे बच्चों रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, अगर आपको रणभूमि में कुछ खेलना है तो पहले मनोभूमि में खेलो, विचार करो, विचारों का कोई टैक्स थोड़ी है, दिन ना रात विचार करो। पढ़ने वाले बच्चों हनुमान जी से सीखो लगन, जब तक लंका पहुंच नहीं गए राम काज कीन्हे बिन मोही कहां विश्राम। हनुमान जी कहते जब तक राम काज नहीं कर देंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं, मेरे पागलो तुम्हें भी जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक तुम रुकना नहीं। हम पूरी दुनिया को बदलने के ठेकेदार नहीं है, हम पूरे देश को बदलने के ठेकेदार नहीं है, हम अपने प्रदेश को भी बदलने के ठेकेदार नहीं है, हम अपने जिला को भी बदलने के ठेकेदार नहीं है, और तो छोड़ो हम अपने गांव को भी बदलने के ठेकेदार नहीं है, हम अपने परिवार को भी बदलने के ठेकेदार नहीं है, लेकिन खुद को बदलने के ठेकेदार हैं। हम पहले खुद बदलेंगे और हम बदलेंगे तो पड़ोसी बदलेगा, हमारे मित्र बदलेंगे, आप बदलोगे, आप बदलोगे तो पानीपत बदलेगा, पानीपत बदलेगा तो हरियाणा बदलेगा, हरियाणा बदलेगा तो दिल्ली पे भी असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी, और दिल्ली बदल जाएगी तो लोगों के दिल भी तो बदल जाएंगे, तो दिल बदल गए तो देश बदल गया, बदलाव तो दिल से होता है, देश का बदलाव दिल से होता है। तो मेरे पागलो हनुमान जी से सीखना है, हमें काम काज तो करना है पर काम काज को भी राम काज समझ करके करना है। एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया, हां एकमात्र हनुमान जी हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाया। आप सुन के चौंकेंगे मेरे बाप पागलो, जब रावण मर गया, दशानन मारा गया और हनुमान जी महाराज मां जानकी जी राम जी लक्ष्मण जी विभीषण जी जामवंत जी अंगद दधीमुख केहरि सब बानर पुष्पक विमान पर बैठे जाने लगे वापस, तो हाथ जोड़ लिए हनुमान जी ने, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से बहुत दिन से मिले नहीं, हम अपनी माता जी से मिले आए, बीच रास्ते में आप हमें उतार देना, हम माता जी के चरण छूने के लिए माता जी को प्रणाम करने के लिए चले जाएंगे, जब से आए हैं तब से गए ही नहीं, जब से सुग्रीव जी के पास आए हैं रक्षा के लिए बहुत दिन हो गए गए नहीं। अच्छा तुम्हारी माता जी कहाँ रहती? राम जी ने पूछा। महाराज वेंकटाचल पर्वत पर रहती हैं। राम जी ने पुष्पक विमान की ओर इशारा किया, इस विमान को अंजना पर्वत की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही हनुमान जी ने यह सुना तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप चल रहे? राम जी बोले हनुमान जब तुम इतने दिन हमारे साथ रह सकते हो, हमारे लिए इतना समर्पण कर सकते हो, हम भी तुम्हारे साथ चल करके जरा देखें तो वो कौन माँ है जिसका लाल इतना कमाल का है, जिसका लाल इतना बलवान है, जिसका पुत्र इतना बलवान है, जरा हम भी तो देखें वो कौन है। हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, प्रभु ये तो बड़ी कृपा हमारे ऊपर, और पुष्पक विमान अंजना पर्वत की तरफ जाने लगा। अंजना पर्वत के ऊपर आकर के पुष्पक विमान रुक गया, राम जी ने इशारा किया, मन के संकल्प से चलने वाला था नीचे उतारा। हनुमान जी बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पहले चले जाए, माता जी का अवगत करा दे। हाँ हाँ कराओ। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, हनुमान जी परम भक्त तो मां भी परम भक्त, माता अंजना गुफा में बैठी हुई नाम नाम जप कर रही है। हनुमान जी ने बाहर से आवाज लगाई, माते मां, अरे कौन आया है? मां आपका लाल आया है। भागी भागी अंजना माता दौड़ी दौड़ी आई, अंक में भर लिया, हनुमान जी को बहुत दिन बाद मिली, कभी चूमे, कभी सिर पर हाथ रखें, कभी पूंछ को पकड़े, कभी मुख को खिलावे।

0: गोद में ले लेवे, कभी अंक में भर लेवे। नेत्र सजल हैं, हनुमान जी के भी सजल हैं, और हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े हुए शांत भाव से चिबक गए माँ को। माँ ने सिर पर हाथ रखा, बेटा कैसे हो, बड़े दिन बाद आए। माँ ठीक हूँ, पर माँ एक बात बोलू। हाँ बोल। माँ हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ कोई आया है। कौन? चलो बाहर आओ। माँ को बाहर लेके हनुमान जी आए, राम जी भी आ गए थे। माँ ये वही राम जी हैं जिनकी सेवा में तुमने हमें भेजा था। जैसे राम जी की मूर्ति को देखा, राम जी के स्वरूप को देखा, वह धनुष बाण को हाथ में देखा, वो नीलांबर स्वरूप देखा, वो बड़ी बड़ी भ्रगुटी देखी, वो प्यारे प्यारे नेत्र देखे, आहा वो चमकता दमकता चेहरा देखा, वो पीतांबर पहने हुए देखा, वो मधुर मुस्कुराहट देखी, वो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कोमल शरीर को देखा, श्री रघुनाथ जी को देखकर, उनके चरणों को देखकर, उनके गले की माला को देखकर, उनकी भुजाओं को देखकर अंजना माता भाव विभोर हो गई, आनंदित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। और तुरंत राम जी ने तुरंत हाथ जोड़े। माँ ने कहा हाथ मत जोड़ो, आओ। तुरंत राम जी को गले लगा लिया। एक तरफ राम को गले लगाया तो दूसरी तरफ हनुमान को गले लगा लिया। और हनुमान को गले लगाकर पहली बार माता अंजना हनुमान जी के सिर पर हाथ रख करके बोली, जो भारत के इतिहास में, पूरी दुनिया के इतिहास में हुआ है, वो ये बोली, बेटा जा, आज मैं तुझे अपने दूध के ऋण से मुक्त करती हूं।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
3: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा आता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, चारधाम के उत्साह के बीच आज हम आपको उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में प्रसिद्ध टिहरी के मुखेम नागराज मंदिर में दर्शन करवाने जा रहे हैं। 13वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहां पर कालिया नाग ने प्रायश्चित तप किया था।

0: देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की गूंज इन दिनों दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसे में आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक और शांत और मनोरम स्थान पर, जिसे देवभूमि का पांचवा धाम कहा जाता है। ये है टिहरी के प्रतापगढ़ में सेम मुखेम नागराजा मंदिर। वैसे तो ये मंदिर नागों के राजा नागराज को समर्पित है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भी उपस्थिति है।
1: तो यहाँ पर 11 कते मंगसीर यानी 25-26 नवंबर को जब मेला का जो दिन होता है, उस दिन भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप जो है गंगोरमला को दिखाया और कहा, हे गंगोरमला, तुम अपने घमंड में चूर थे, अब तुम्हारा स्वभाव तो अब तुम्हें क्या चाहिए। तो गंगोरमला भगवान, मुझे अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे आप जो है ऐसी आज्ञा दो कि जिस स्थान में आपने मुझे विराट रूप दिखाया उस स्थल की मैं अब आजीवन पूजा करता रहूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे करना। फिर मरने के बाद उनका बगल में मंदिर बन गया है।
0: पौराणिक कथा है कि यमुना का पानी दूषित करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, तब कालिया नाग ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनसे भक्ति का वरदान मांगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा का एक अंश सेम मुखे में स्थित एक पवित्र पत्थर में स्थापित कर दिया। तब से इस पत्थर की पूजा नागराज के रूप में की जाती है।
1: एक पत्थर है, उसमें जो है भगवान के पांव के निशान है, घोड़े के पांव के निशान है। कहते हैं कि उसमें घोड़े से दौड़ लगाते थे और नारद जी वहां पर जो है शतरंज खेला करते थे। पहले उसका नाम चौपड़ हुआ करते थे, तो उसका पौराणिक नाम नारद चौपड़ है, लेकिन आजकल जो उसको शतरंज के रूप में बोलते हैं। जो शतरंज का खेल है वो वहां पे जो है नारद जी और भगवान कृष्ण एक बड़े सा चौड़ा पत्थर उसके ऊपर खेला करते थे।
0: 13वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर की पूजा परंपरा गढ़वाल रियासत के राजा और उनके वंशजों के पास है। ऐसे में सेमवाल परिवार के 3 घराने बारी बारी से यहाँ पूजा अर्चना का दायित्व निभाते हैं। इसके अलावा हर साल नवंबर में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस। कुछ वीडियोस आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
3: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच में कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए हुए दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देख पाता है। वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उसे महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार की सनरूफ से बाहर निकलकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते हैं, पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं। फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटर घूस से परेशान ना हो, लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो AI से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वो इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, AI उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन का सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते ही पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है, जिससे वो फौरन फुर्र हो जाता है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे गले लगा लेती है, मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इस वायरल वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आ रहा है। ये नजारा देख कई यूजर्स का माथा घूम जाता है। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। बस फिर क्या था, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर भी कर रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
7: La Que Buena.
6: ESPN Radio.
8: We know LeBron has to be the best player on the planet to
6: get The Daily.
9: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search classic rock hits or ask your smart device to play classic rock hits on TuneIn.
3: कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। Good News Today, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पहले के निर्देश में बदलाव करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने को कहा। तेल बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने लोगों से की कारपूलिंग की अपील, हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर सर्कुलर किया जा रहा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत, समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी 30 दिन की छूट। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार के देश भर में धूम, पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही है पूजा अर्चना, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। चार धाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या का बन रहा है नया रिकॉर्ड। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 16 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। सैलानियों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बम्पर उछाल, भारतीय सेना का चाइना कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
13: आज है ज्येष्ठ का तीसरा कल्याणकारी बड़ा मंगल, देश भर के हनुमान मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। बजरंग बली की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, हनुमान जी को अर्पित किया जाता है चमेली के तेल और सिंदूर से बना चोला। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा का है विधान, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। आज के दिन लाल वस्तुओं का दान करना माना जाता है शुभ, हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फलदायी। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्द ही देते हैं फल, सभी संकट हर लेते हैं बजरंग बली। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का जनसैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए अर्पित। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना, बंदरों के खिलाने के बाद सुबह से मंदिर पहुंच रहे लोग। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला, फल, चना और गुड़, बंदरों को तरबूज भी खिलाया गया। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, तीसरे बड़े मंगल पर भक्तों ने किए बजरंग बली के दर्शन। सुबह से हनुमान जी के दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए हनुमान जी के जयकारे। पुरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। उज्जैन में तीसरे बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकार। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। आरती से पहले बाबा भोलेनाथ का किया गया जलाभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। धार के भोजशाला में विशेष पूजा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए इसमें शामिल। भोजशाला में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, ओम नमो शिवाय के लगाए गए जयकारे। चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, आज 31वें दिन अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की तीर्थयात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन, अब तक 6,65,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई अपनी हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 4,500 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ के किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में भी लगा भक्तों का मेला, अब तक करीब 2,75,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में भी भक्तों का तांता, 2,70,000 भक्तों ने लगाई अपनी हाजिरी। 20 मई को एक दिन के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, मंदिर कमेटी ने जारी की सूचना। खाटू श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार के कारण लिया गया एक दिन मंदिर बंद रखने का फैसला। श्रद्धालुओं के लिए 19 घंटे बंद रहेंगे मंदिर के कपट। आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिर के पट। 20 मई की शाम 5 बजे बाद खुलेंगे मंदिर के कपाट। इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर रहेगी पूरी तरीके से पाबंदी। मंदिर परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद किया जाता है बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार। इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर किया जाता है चंदन का लेप, की जाती है विशेष पूजा अर्चना। हर साल बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आते हैं देश दुनिया से लाखों भक्त। इस भीषण गर्मी में भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। पटना दौरे पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पटना साहिब गुरुद्वारा और गुरु के बाग में टेका माथा। भगवंत मान गुरु के बाग के परिसर में लगाया एक फलदार पौधा। दुनिया में शांति और भाईचारा बने रहे इसकी की कामना। इस मौके पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया सीएम मान का सम्मान, उन्हें उपहार के रूप में सौंपा गया सरूपा। मुख्यमंत्री को गुरु महाराज से जुड़ी पवित्र वस्तुओं के भी कराए गए दर्शन। पूरे परिवार के साथ पटना पहुंचे थे सीएम मान। सीएम मान ने कहा तख्त हरमिंदर साहिब सिखों की आस्था का है बड़ा केंद्र, यहां आकर उन्हें मिलती है आध्यात्मिक शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ऐतिहासिक अकेशस किले का किया दौरा। प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने किया उनका स्वागत। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया विशेष आयोजन, जिनमें भारत नॉर्वे संबंधों की गर्मजोशी को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में किले में रखा गया विशेष रात्रि भोज। पीएम मोदी ने 13वीं सदी के अंत में बने इस मध्ययुगीय किले के इतिहास के बारे में भी ली जानकारी। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी आज नॉर्वे से इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश दौरे के तहत कई अहम बैठकों और कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सैलानियों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बंपर उछाल। भारतीय सेना का शाइना कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। पुंज में सेना ने चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का किया आयोजन, लोगों को पशु रोग के बारे में किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम नायब सैनी ने की साइकिल की सवारी, लोगों से की ईंधन बचाने की अपील। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलाया स्वच्छता अभियान, 25 टन कचरा किया गया एकत्र। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई आम की 14 किस्में। पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर, आम्रपली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबरी, जमादार, काला जमादार, हापुस और तोतापुरी आदि इसमें शामिल। क्राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके उगाए 14 किस्मों के आम। आम के पेड़ को देखने के लिए लग रही है भीड़। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज में युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का किया गया उद्घाटन। रजौरी में बैरी विकास की बयार, नए पुल से ब्लॉक सेरी और ब्लॉक लामबेरी के बीच बेहतर संपर्क। कोल्हापुर के एक शिल्पकार ने बनाई है चांदी की कोल्हापुरी चप्पलें, स्पेशल ऑर्डर पर बनी है ये खास चांदी की चप्पलें। सांगली के एक व्यापारी ने अपने दामादों को देने के लिए ऑर्डर की है चांदी की ये खास चप्पलें, मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों की तरह बनाई गई है चांदी की चप्पलें। 10 इंच लंबी और 1.5 किलो वजन वाली इन चप्पलों की कीमत 4 लाख रुपए है और इसकी नेट लेबल 25,000 रुपए है। पाली में दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गर्मी में वन जीवों के लिए पहाड़ियों पर बने कृष्ण एनिकट में भी की जा रही है पानी की और भोजन की व्यवस्था। समाज सेवी संगठन द्वारा वन जीवों की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं विशेष कदम। पाली में दिन का तापमान 43 तक पहुंचने पर सूखने लगे थे तालाब और जल स्रोत।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
14: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कई है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ, ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
2: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Service here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
3: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
4: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
3: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
5: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा। डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, एंटी रैबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने को कहा। तेल बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने लोगों से की कार पूलिंग की अपील, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर, सर्कुलर किया जारी। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार की देश भर में धूम, पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही है पूजा अर्चना, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। हजारों भक्तों के जयकारों के बीच द्वितीय केदार भगवान, मध्य मदेश्वर की डोली धाम के लिए रवाना, 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट, भक्तों में उत्साह। चारधाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बना रहा है नया रिकॉर्ड, 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 16 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। मैदानों में चढ़ते पारे के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का सुहाना मौसम, वादियों के बीच शिकारक आनंद ले रहे हैं सैलानी, बुरी घाटी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक।

नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। और आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे भीषण गर्मी से जल्द ही मिलने वाली राहत की। देखिए, मॉनसून की तारीख की हम यहां पर बात करने वाले हैं। मॉनसून जल्द ही देश में एंट्री करने वाला है। भीषण गर्मी और तपती धूप से परेशान लोगों के लिए ये राहत भरी जो खबर है वो सामने आ गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक अब जल्द ही मॉनसून दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून इस बार 26 मई को केरलम में दस्तक दे सकता है और अगर ऐसा होता है तो दक्षिण भारत में जल्द ही तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जो है वो भी बढ़ जाएगी। देखिए, कई राज्यों में तेज हवाएं और प्री मॉनसून बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार मॉनसून सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में भारत में ये एंट्री कर सकता है। फिलहाल उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी और लू का सामना कर रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, दिन के समय तापमान जो है वो काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन मौसम में बदलाव के जो संकेत हैं वो भी आ रहे हैं, जिससे हम सभी को आने वाले दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है।

0: चुभती जलती गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच राहत की खबर आई है। मानसून इस साल जल्द मेहरबान होगा। धूप और गर्मी से परेशान लोगों को आसमान में ठंडी ठंडी फुहारों की सौगात मिलेगी। मौसम विभाग के अनुमान का पूरा पूरा साथ मानसून भी दे रहा है। आमतौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार इसके पहले पहुंचने की संभावना है। इस हफ्ते मानसून को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून की गतिविधियां तेज हो रही हैं। अगले कुछ दिनों में वहां मानसून की एंट्री हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल में इसका असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिन आगे पीछे के अंतर के साथ 26 मई 2026 को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना है। केरल में दस्तक देने के बाद जून के महीने में ये उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को इस भीषण गर्मी से पक्की राहत मिलेगी। कई प्रदेशों में तो गरजते बादल, चमकती बिजली और तेज हवाएं मानसून के संकेत हैं। अब बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, आने वाले मानसून की आहट भी दे रहे हैं, यानी प्री मानसून बारिश दक्षिण भारत के राज्यों में राहत बनकर बरस रही है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र और मुंबई में 10 से 15 जून के दरमियान महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मानसून की बारिश शुरू होने का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत के राज्यों जैसे बिहार में मानसून 15 जून के आसपास पहुंचेगा। गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जून के तीसरे सप्ताह यानी 20 से 25 जून तक मानसून आगे बढ़ेगा। देश के अंतिम छोर यानी राजस्थान और पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून जून के आखिर यानी 25 जून से 5 जुलाई तक पहुंचने का अनुमान है। इस बार मानसून तय समय से पहले दस्तक देकर मौसम का नया रंग दिखा सकता है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बादलों की हलचल और तेज होगी और करोड़ों लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो देखिए, मानसून जल्द ही भारत में दस्तक दे सकता है। और अब आपको विस्तार से जो मानसून है उसका अपडेट भी मैं यहाँ पर दे देती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि कब मानसून भारत में प्रवेश करेगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने समय से पहले ही रफ्तार पकड़ते हुए निकोबार द्वीप समूह को कवर कर लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर समझने वाली बात है कि अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में भी इसकी दस्तक दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान जताया है कि इस बार मानसून तय समय से पहले ही यानी 26 मई तक केरलम पहुंच सकता है। और अगर ऐसा होता है, यानी जो अनुमान जताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है, तो ये लगातार तीसरा साल होगा जब मानसून समय से पहले ही भारत में प्रवेश करेगा। तो देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें तो साल 2023 में मानसून 24 मई को ही केरलम पहुंच गया था, जबकि सामान्य तौर पर इसकी एंट्री 1 जून के आसपास होती है। मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि शुरुआती मानसून कृषि गर्मी से राहत के लिहाज से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो बात हो रही है मौसम की। पिछले कुछ समय से मौसम में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अच्छी खबर भी सामने आ गई है कि मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है। वही बात अगर कश्मीर की करें तो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शामिल गुरेज घाटी इन दिनों सैलानियों से लगातार पटा पड़ा है। वहां पर सैलानी ही सैलानी पहुंच रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, कल कल बहती किशन गंगा नदी और हरे भरे मैदान पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पर्यटकों से गुलजार जो है घाटी इस वक्त नजर आ रही है। देखिए, घाटी अब पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभर रही है। गर्मियों के मौसम में गुरेज घाटी का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं दिखता है। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर्यटकों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि देखिए मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे निजात पाने के लिए जो पर्यटक हैं वो लगातार घाटी का रुख कर रहे हैं, गुरेज घाटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। पर्यटक यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और खान पान का भी लुत्फ उठा रहे हैं। घाटी में होम स्टे और छोटे होटल पर्यटकों से भरे पड़े हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। स्थानीय लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में गुरेज घाटी जम्मू कश्मीर का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। प्राकृतिक सौंदर्य और शांत माहौल से भरपूर ये घाटी यानी गुरेज घाटी अब सैलानियों की पहली पसंद बनती जा रही है।

0: और ठंड वेदर है, शाम को बहुत अच्छा वेदर है, बहुत कंफर्टेबल वेदर है, घूमने के लिए बहुत सही टाइम है।
1: बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग इतने अच्छे से हम लोग गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे घूमने जा रहे हैं वहाँ पे लोकल्स जो है वो लोग बहुत अच्छे से हम लोग को बिहेव कर रहे हैं। हम लोग बहुत शॉपिंग भी किए, शिकारा राइड किए, हाउस बोट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए कश्मीर में।
2: पूरे देश में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में इंसानों के साथ बेजुबानों पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बेजुबानों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दरअसल भीषण गर्मी से इंसान तो बेहाल है ही, अब इसका असर वन्य जीवों पर भी साफ नजर आने लगा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच वन्य जीवों को ठंडक पहुंचाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बाघों और तेंदुओं को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जानवरों के बाड़े में कूलर लगाए गए हैं जो दिन रात लगातार चलते रहते हैं। सिर्फ कूलर ही नहीं, गर्म हवाओं से बचाने के लिए केज के चारों तरफ ग्रीन नेट भी लगाया गया है ताकि ठंडक वहां पर रहे, ताकि तापमान का जो असर है वो कम किया जा सके। जानवरों को गर्म हवाओं से बचाने के लिए लगातार वाटर स्प्रेइंग भी वहां पर की जा रही है ताकि तापमान कम रहे। जुबान है वो लगातार बढ़ती गर्मी से बेहाल है और उसी को देखते हुए खास इंतजाम चिड़ियाघरों में किए जा रहे हैं। बाघों के लिए खास तौर पर ग्रीन नेट लगाए जा रहे हैं जो बाड़े हैं उसके आसपास, ताकि जो हीट वेव है उसका जो असर है वो कम हो सके। वाटर स्प्रेइंग लगातार की जा रही है ताकि जो तापमान है लगातार गर्म से उसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सके। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जीएनटी पे कि चिड़ियाघरों में किस तरीके से बेजुबानों को गर्मी से राहत देने के लिए लगातार कड़े जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। वाटर कूलर्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि गर्मी से बेजुबानों को निजात मिल सके। देखिए साफ तौर पर लगातार जो है तापमान में इजाफा हो रहा है और उसका असर बेजुबानों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। तो देखिए दिल्ली से मुंबई तक मौसम का मिजाज बदल चुका है, यहाँ पर चिलचिलाती गर्मी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों के लिए तेज गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए देश के कई हिस्सों में तापमान बढ़ गया है और श्रीगंगानगर प्रयागराज की अगर हम बात करें तो यहाँ तो तापमान 46 डिग्री के पार हो चुका है। दिल्ली से कोलकाता तक तपती गर्मी है। आज लखनऊ जयपुर में भी पारा जो है वो बढ़ा हुआ है। तो लू से खुद को कैसे बचाया जाए और मौसमी बदलाव से बच्चों को कैसे बचाया जाए, ये काफी अहम सवाल हैं जो आप सभी के जहन में आते होंगे। ऐसे में मैं बता दूं कि आप सूती लिनन खादी के ढीले कपड़े पहन सकते हैं। कपड़ों के अगर हम रंग की बात करें तो सफेद, लाइट पिंक, स्काई ब्लू रखें, ब्लैक ना पहने या फिर कोई डार्क कलर ना पहने। कपड़ों के हल्के रंग जो होते हैं वो धूप को सोखते नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं हीट को। घर के बाहर अगर आप निकलते हैं तो घर के बाहर निकलते समय आंखों और स्किन का खास तौर पर ध्यान रखें। अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहने और समर में हेल्दी डाइट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही शरीर को हाइड्रेटेड रखते रहें, पानी लगातार पीते रहें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप लगातार कहें कि वो पानी पीते रहें। दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो आपको पीना चाहिए क्योंकि तापमान लगातार 40 के पार चल रहा है। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ का इस्तेमाल करें और साथ ही तेल, मसाले, जंक फूड से खुद को बचाएं क्योंकि ये जो होता है ये एसिडिटी को भी बढ़ाता है और आपको ज्यादा गर्मी महसूस कराता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप जहन में रख सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि गर्मी तो भी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने इसकी संभावना जताई है, खास तौर पर यहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में जरूरी है आप सभी अपना ध्यान रखें।
3: अगर देखा जाए उष्णलहर से लेके भीषण उष्णलहर का परिस्थितियां जो है, खास करके उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी इलाके हैं उसके साथ साथ देश के मध्य भाग में आने वाले जो हफ्ता है, माने कि आज से लेके लगभग जो 23 तारीख के बीच में अधिकांश दिनों में उष्णलहर का परिस्थिति विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में 21 मई तक तापमान जो है

0: दिन का तापमान सर्वोच्च तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उसके बाद 22 से 23 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। भाई पूर्वी भारत की अगर बात करें तो उसमें 2 से 3 डिग्री तक आने वाले जो है 19 तारीख के तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद 20 से लेकर 23 में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र गुजरात में 19 तारीख तक तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें बाद 2 से 3 डिग्री तक 23 तारीख के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है।
1: देखिए, कई बार गर्मी से इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम ऐसे फूड्स का सहारा लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। देखिए, अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक, चिल्ड सोडा, पैकेज जूस, आइसक्रीम बेशक हमें ठंडक का एहसास देते हो, गर्मी से कुल पलों की फौरन राहत भी दे देते हैं, लेकिन असल में इनका शरीर पर कुछ और ही असर होता है। मैं यूं कहूं तो काफी नेगेटिव इफेक्ट इसका होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो चीजें हमें टेस्ट में ठंडी लगती हैं वो शुगरी चिल्ड आइटम्स दरअसल शरीर के तापमान का संतुलन बिगाड़ भी सकते हैं। यानी इन ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से ब्लड शुगर तुरंत बढ़ जाता है, इंसुलिन स्पाइक हो जाता है, कैफीन की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ज्यादातर लोग चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना चाहिए गर्मियों में। इन प्रोडक्ट्स के लगातार सेवन से लंबे समय में शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लिहाजा जानकार कहते हैं कि ऐसे ड्रिंक्स पिए, ऐसे पदार्थों का आप सेवन करें समर टाइम में जो कुदरती तौर पर शरीर को ठंडा रख सके और आपकी सेहत को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, नींबू पानी, नारियल पानी, दही, छाछ, बेल का शरबत, आम पन्ना वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पेट को ठंडक प्रदान करेगा। दरअसल उत्तर भारत में तो पारा हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ज्यादातर जगहों पे तापमान 40 डिग्री के पार ही चल रहा है और हालात देखिए ये है कि इस झुलसा देने वाली गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है वो दूभर हो गया है। हालांकि जरूरी काम से जो लोग बाहर निकल रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो वो गमछा, स्कार्फ और छाते का इस्तेमाल कर खुद को इस चिलचिलाती धूप से बचाते हुए नजर आ रहे हैं।

0: चिलचिलाती धूप और लू के थपेरे, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर मध्य और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी राज कर रही है। देश के इन सभी इलाकों में गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद से 3 बजे तक तो सड़कों पर इंसान से लेकर जानवरों तक के नामों निशान यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। यहाँ हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी ने अभी तक अपने सबसे भयानक तेवर दिखा दिए हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक गर्मी का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने आज और कल 20 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज गर्मी और बढ़ेगी। अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हीट वेव की स्थिति रहेगी। दोपहर और शाम के समय तेज गर्म हवाएं परेशान करेंगी। बुधवार को भी भीषण गर्मी जारी रहेगी। अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। कल भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 मई को तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि तब अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रह सकता है।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अनुमान लगाया है कि लगातार जो है धूप निकलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 42, 43, 44, 45 डिग्री तक तापमान जाने का अनुमान है। उस तरीके की स्थिति बनती हुई दिन में दोपहर में नजर आ रही है।

0: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कई है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
1: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
2: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
1: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers.
5: The hits are on.
4: And hip-hop beats.
6: I'm in the game, I should have joined with this G23.
4: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
7: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच में कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है, माँ उसे अपनी गोद में लिए हुए दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देख पाता है। वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छू कर उसे महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार की सनरूफ से बाहर निकलकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते हैं, पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
3: just
5: Jay-Z.
3: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Sage University, transforming your passion into profession.
10: सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को बरकरार रखा। डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए कहा।
11: तेल बचाने के लिए हिमाचल सरकार ने लोगों से की कारपूलिंग की अपील, हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर सर्कुलर किया जारी।
10: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार की देशभर में धूम, पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही पूजा अर्चना, चौला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों की मुक्ति।
11: हजारों भक्तों की जयकारों के बीच द्वितीय केदार भगवान महामहेश्वर की डोली धाम के लिए रवाना, 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट, भक्तों में भारी उत्साह।
10: चारधाम में हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या का बन रहा नया रिकॉर्ड, 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 16 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन, 6.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन।
11: मैदानों में चढ़ते पारे के बीच सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का सुहाना मौसम, वादियों के बीच शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी, बड़ी संख्या में गुरेज घाटी पहुंच रहे हैं पर्यटक।
8: NECC, संडे हो या मंडे, रोज खावंडे।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
10: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
11: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
10: आज है ज्येष्ठ महीने का तीसरा कल्याणकारी बड़ा मंगल, देश भर के हनुमान मंदिरों में की जा रही विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का जन सैलाब, दर्शनों के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जन सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना, बंदरों के खाना खिलाने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे लोग। उज्जैन में तीसरे बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

0: चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज 31वें दिन अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की तीर्थ यात्रा। कल एक दिन के लिए बंद रहेगा भगवान खाटू श्याम का दरबार। खाटू श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार के लिए एक दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा मंदिर। पुरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। पटना दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान। पटना साहिब गुरुद्वारा और गुरु के बाग में टेका मत्था। धार के भोजशाला में विशेष पूजा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भोजशाला में सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतार। ओम नमः शिवाय के लगे जयकारे।
1: अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग। एक ही पेड़ पर उगाई आम की 14 किस्में। ग्राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके लगाए 14 किस्मों के आम। कोल्हापुर के एक शिल्पकार ने बनाई है चांदी की कोल्हापुरी चप्पलें। स्पेशल ऑर्डर पर बनी है ये खास चांदी की चप्पलें। सैलानियों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बंपर उछाल। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य में युद्ध संग्रहालय पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया। श्रीनगर में तेजी से एक लोकप्रिय खेल बनकर उभर रहा टच रग्बी। युवाओं में देखा जा रहा इस खेल का उत्साह।
0: आवारा कुत्तों के आतंक से पीड़ित लोगों के लिए गुड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पुराने आदेश को रखा बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे पर विजयवाड़ा के बापू म्यूजियम में कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य भर में 14 अलग अलग म्यूजियम में होंगे कई आयोजन। स्वीडन के बाद नॉर्वे में भी पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से किया सम्मानित। अमेरिका के मशहूर टाइम स्क्वायर पर गुची के शानदार फैशन शो का आयोजन हुआ। इस इटालियन लग्जरी ब्रांड ने अपना पहला क्रूज कलेक्शन पेश किया। लंदन में आरएचएस चेल्सी फ्लावर शो का आयोजन हुआ। इसमें ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला भी शामिल हुए।
1: सलमान खान और संजय दत्त की इंटरनेशनल फिल्म सेवन डॉग्स ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक्शन सीन करने के लिए इस्तेमाल हुआ 21,000 लीटर पेट्रोल। भूत बंगला ने दुनिया भर में तोड़े कमाई के सारे रिकॉर्ड्स। कांतारा चैप्टर 1 के हिंदी वर्जन की वर्ल्ड वाइड कमाई को पछाड़ कर किया 276 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी की दहाड़। सैराट की 90 करोड़ की कमाई को 17 दिन में पछाड़ कर बनी मराठी की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। इंडियन आर्म कोर की 45 कैवलरी की मानद सदस्यता से सम्मानित हुए ईशान खट्टर। फिल्म पीपा में कैप्टन बलराम सिंह मेहता का किरदार निभाने के लिए मिला सम्मान। एक्टर ने शेयर की तस्वीरें। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने श्री श्री रविशंकर की गौशाला का दौरा किया। कपल ने गौशाला की सफाई की, गायों को खिलाया चारा, वीडियो भी शेयर किया।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
2: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
1: बड़ा मंगल पर आज हनुमान मंदिरों में उमड़ी आस्था, बजरंग बली के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता।
2: चारधाम यात्रा में आस्था का नया कीर्तिमान, 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन।
1: जम्मू कश्मीर पर्यटन की बहार, मैदानों में गर्मी बढ़ते ही सैलानियों की संख्या में बंपर उछा।
2: रामचरण की फिल्म पैडी का ट्रेलर रिलीज, 350 करोड़ की फिल्म में रामचरण की हर फन मोला अंदाज आप सबको देखने को मिलेगा।
1: अरबी फिल्म सेवन डॉग्स में संजय सलमान का दमदार कैमियो, रिलीज से पहले फिल्म ने तोड़ा जेम्स बॉन्ड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड।
2: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। देखिए, सलमान खान और संजय दत्त को एक फिल्म में देखने का ख्वाब फैंस का बेहद जल्द पूरा होने जा रहा है। बॉलीवुड के ये दोनों सुपरस्टार्स अरबी फिल्म सेवन डॉग्स में नजर आने वाले हैं। दोनों का फिल्म में दमदार रोल है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेवन डॉग्स के एक खास सीन ने रिलीज से पहले जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या है खास, दिखाते हैं आपको।
3: पर्दे पर फिर लौट रही है संजय और सलमान की एक्शन जोड़ी। सऊदी फिल्म सेवन डॉग्स में दिखेगा एक्शन पैक्ड अंदाज। 14 साल बाद संजय दत्त और सलमान खान एक बार फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं बल्कि सऊदी एक्शन थ्रिलर फिल्म सेवन डॉग्स में, जिसकी रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये फिल्म आज से ठीक 9 दिन बाद भारत में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म अभी से सुर्खियों में आ चुकी है और उसकी वजह से सेवन डॉग्स के रिकॉर्ड, जिसने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवन डॉग्स के खास सीन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली है। इस सीन ने 2 रिकॉर्ड बनाए, जिसमें सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा धमाका और एक ही टेक में सबसे ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड शामिल है। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्पेक्टर और नो टाइम टू डाई जैसी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के नाम था। फिल्म में असली स्टंट और लाइव धमाकों को दिखाया है। बताया जा रहा है कि स्टंट सीन में करीब 170.7 टन TNT के बराबर विस्फोट किया गया। इसके अलावा 405 किलो से ज्यादा विस्फोटक, 21,000 लीटर पेट्रोल और करीब 4,000 मीटर डिटोनेशन वायर का इस्तेमाल किया गया। सीन को और ज्यादा असली दिखाने के लिए 20 टन मिट्टी और कई बड़े ट्रकों को उड़ाया गया। इस पूरे स्टंट की निगरानी स्पेशल इफेक्ट्स एक्सपर्ट डंकन कैप और उनकी टीम ने की। फिल्म की शूटिंग सऊदी अरब के रियाद स्थित अल हसन बिग टाइम स्टूडियो में हुई। ये पूरा स्टूडियो कॉम्प्लेक्स करीब 3 लाख वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। सेवन डॉग्स में मिस्र के मशहूर एक्टर करीम अब्देल अजीज और अहमद एज लीड रोल में हैं। साथ ही मशहूर इटालियन स्टार मोनिका बेलुची भी इस फिल्म में नजर आने वाली हैं। जबकि भारतीय दर्शकों के लिए इस फिल्म की USP तो संजय दत्त और सलमान खान ही होंगे। मतलब ये कि फिल्म में अरब सिनेमा, बॉलीवुड और हॉलीवुड का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सेवन डॉग्स का बजट करीब $70 मिलियन यानी लगभग 330 करोड़ रुपए है। इसे अब तक की सबसे महंगी अरबी फिल्मों में से एक बताया जा रहा है। सेवन डॉग्स 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रिलीज की जाएगी। जबकि भारत में ये फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
4: Sit with me. I'm keen to know more about you.
5: Perfecto.
3: Bureau report. Good news today.
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण और जानवी कपूर की बात कर लेते हैं, जिनकी फिल्म पेडी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक दिन पहले मुंबई में ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें रामचरण, जानवी समेत फिल्म की पूरी टीम शामिल हुई है।
2: बिल्कुल, देखिए करीब 350 करोड़ के बजट से बनाई गई है ये फिल्म, जिसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। इस फिल्म में जो स्टार कास्ट है वो भी दमदार है। रामचरण का देसी अंदाज इसमें आपको नजर आएगा, भारी एक्शन इसमें नजर आएगा, रॉ लुक्स आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। दो बार पोस्टपोन हो चुकी ये फिल्म फाइनली 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।
6: साउथ सुपरस्टार रामचरण का हर फन मौला अंदाज,
7: खेले हमरा खमंड,
6: क्रिकेट से लेकर पहलवानी तक रामचरण बने महारथी।
8: 35
6: साउथ सुपरस्टार रामचरण और बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की अपकमिंग फिल्म पेडी का मच अवेटेड ट्रेलर आखिरकार लॉन्च हो गया और इसी के साथ फैंस का इंतजार भी खत्म हुआ।
9: सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं।
6: ट्रेलर में रामचरण एक पहलवान के रोल में नजर आ रहे हैं, तो उनके अपोजिट जानवी कपूर भी दमदार रोल में है।
10: ज्ञान सुन लिया तुम्हारा, बकलोली ना किया कर हमारे साथ।
6: सोमवार को मुंबई में पेडी का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जिसमें रामचरण, जानवी कपूर, बोमन ईरानी, देवेंद्र शर्मा समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और मेकर शामिल हुए। ट्रेलर लॉन्च के दौरान रामचरण ने फिल्म के हालिया ब्लॉकबस्टर गाने चिकरी चिकरी पर जबरदस्त डांस स्टेप करके वहां मौजूद फैंस का दिल जीत लिया। 3 मिनट के इस ट्रेलर में आंध्र प्रदेश के विजयनगर शहर की कहानी दिखाई गई है।
11: सर, सर, सर, इमरजेंसी सर।
6: फिल्म में रामचरण का क्रॉसओवर एथलीट अवतार दिखाया गया है।
12: पेटी कोई भगवान है क्या?
13: हमारा फेवरेट क्रिकेटर। पेटी सर।
6: ट्रेलर की शुरुआत में सभी लोग रामचरण को इंट्रोड्यूस करते हैं। रामचरण पहलवानी करते दिखते हैं, क्रिकेट खेलते दिखते हैं, और तो और दौड़ में भी उनका कोई सानी नहीं है।
14: हमें
6: मतलब खेल कोई भी हो, सबका मास्टर एक ही है, पेडी सर। देवरा पार्ट 1 के बाद जानवी कपूर की दूसरी साउथ इंडियन फिल्म है, जिसमें उनका किरदार बेहद दमदार और बेबाक है। जानवी कपूर इस फिल्म में देसी ग्रामीण लड़की अच्छी अम्मा का किरदार निभा रही हैं।
10: बकलोली ना किया कर हमारे साथ।
6: लेकिन उनका स्वभाव फायर ब्रांड यानी बेहद निडर और मुंहफट लड़की का है, जो किसी से नहीं डरती।
9: मान से धरती पर तारे गिरते हैं।
15: पहले तो ऐसे लग रहा है कि बहुत वक्त के बाद आप सबको ऐसे मंच पर मिल रही हूँ, तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। हम ये फिल्म पर पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने पहली बार आप सबके साथ ट्रेलर देखा है और सबकी मेहनत को देखकर, सबका प्यार को देखकर मैं इतनी खुश हूँ। एंड यहाँ इट्स अ वेरी स्पेशल डे आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस।
9: सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं।
6: इवेंट के दौरान जब जानवी से उनके किरदार के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने सारा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना को दिया।
10: ज्ञान सुन लिया तुम्हारा, बकलोली ना किया कर हमारे साथ।
15: जी सर, ये जैसे कि इन्होंने कहा ना, ये लग रहे हैं से छुए हुए से, ये है नहीं, ये सबसे राउडी डायरेक्टर है इंडिया का। True, but honestly, it's been an honor for me. I think ये फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना superb trailer दिया, आप सबसे इतना प्यार दिया, hopefully for June के बाद और भी प्यार आएगा। But really, इस movie के दौरान मैं सब लोगों को जान पाई हूँ। Of course, देवेंदु जी के साथ काफी कम सीन्स रहे हैं, but hopefully in the future.
14: हमें खेल खिलवाना भी है।
6: ट्रेलर देखकर पता चलता है कि पेडी में देवेंदु शर्मा का रोल भी काफी अहम है। देवेंदु मेन विलन का किरदार निभा रहे हैं।
16: अखाड़े में जीतते की मर्दानगी।
6: ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेडी में रामचरण और देवेंदु के बीच जबरदस्त हाई वोल्टेज एक्शन और भिड़न देखने को मिलेगा।
16: ऐसा खिलाड़ी जो दो खेलों को मिलाकर एक खेल में।
6: बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए देवेंदु ने बकायदा तेलुगु भाषा सीखी है।
5: होगी हम।
6: पेडी एक पैन इंडिया फिल्म है जिसमें साउथ और बॉलीवुड के कलाकारों को लिया गया है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी रिलीज होगी। थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही पेडी ने जबरदस्त असर दिखाना शुरू कर दिया है। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, खासकर ओवरसीज में फिल्म का क्रेज साफ देखने मिल रहा है।
7: खेले हमरा घमंड।
6: रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ अमेरिका में एडवांस बुकिंग खुलने के कुछ ही घंटों के अंदर $1,00,000 यानी करीब ₹83,00,000 का आंकड़ा पार हो गया, जो ऑडियंस के बीच बढ़ती डिमांड और एक्साइटमेंट को दिखाता है।
8: वो बेहतर और हम जहाँ रहे थे वो बेकार।
5: साला न गांव न पहचान न कुछ, ये भी हम काम दिया एहसान किया।
6: पेडी 4 जून को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी, जबकि इसका ओवरसीज प्रीमियर एक दिन पहले 3 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब बात न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर आयोजित एक फैशन शो की करते हैं, जिसे इटली के मशहूर लग्जरी ब्रांड गुची ने आयोजित किया और अपना नया क्रूज कलेक्शन यहां पर पेश किया।
1: इस शो के जरिए गुची ने अपने इतिहास और न्यूयॉर्क से पुराने रिश्तों को खास अंदाज में दुनिया के सामने रखा है।

आधुनिकता चकाचौंध और चहल पहल से भरे टाइम्स स्क्वायर की रौनक और बढ़ गई जब मशहूर मॉडल्स ने यहाँ रैंप वॉक किया। इटालियन लग्जरी ब्रांड गुची ने अपने पहले क्रूज कलेक्शन को अनोखे अंदाज में पेश करने के लिए न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को ही चुना। इस फैशन शो ने भीड़ भाड़ वाली इस जगह को एक खूबसूरत रैंप में तब्दील कर दिया। इस फैशन शो को टाइम्स स्क्वायर के विशाल बिलबोर्ड पर लाइव भी दिखाया गया।

0: ये शो मैनहट्टन से गुची के चुड़ाव को दिखाने की एक कोशिश भी थी। दरअसल टाइम्स स्क्वायर ही वो जगह है जहां से गुची ब्रांड के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत हुई थी। इस मशहूर इटालियन ब्रांड ने 1953 में इटली के बाहर अपना पहला स्टोर खोला था। वॉक में सिंडी क्रॉफर्ड और पूर्व फुटबॉलर कार्टर बैक ट्रॉम ब्रैडी समेत कई मॉडल्स ने ब्रांड के लेटेस्ट स्टाइल्स को शोकेस किया। इनमें बिजनेस सूट, ट्रेंच कोट, फुल लेंथ गाउन जैसे बेहतरीन आउटफिट शामिल थे। अन्ना विंटूर और मारिया कैरी जैसी हस्तियां भी इस फैशन शो का हिस्सा बनी। क्रूज कलेक्शन को पहले सिर्फ रिसॉर्ट के आउटफिट के तौर पर ही देखा जाता था, लेकिन अब गुची ने इसके दायरे को और भी बढ़ाने की कोशिश की है। कंपनी अब इस कलेक्शन को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की पसंद के आधार पर डिजाइन कर रही है। यही वजह है कि ऐसे कलेक्शन को गुची के सालाना 2 बार होने वाले तय फैशन शोज के अलावा पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
1: तो वही ईशा अंबानी एक बार फिर से अपने फैशन स्टेटमेंट से सुर्खियां बटोर रही हैं। ग्लैमरस आउटफिट के साथ सटल मेकअप और स्टाइलिश एक्सेसरीज लिए ईशा इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं।
2: और देखिए, ईशा अंबानी ने दिखा दिया कि फैशन के मामले में उनका स्टाइल हमेशा सबसे अलग नजर आता है।
3: फैशन और स्टाइलिंग के मामले में इन दिनों हर कहीं ईशा अंबानी के चर्चे हैं। फिर चाहे कान का रेड कार्पेट हो या फिर हाल ही में वायरल हो रहा उनका ये विंटेज गोल्डन लुक। अपने लुक्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाली ईशा अंबानी ने फैशन हिस्ट्री के इस आइकॉनिक लुक को रिक्रिएट करके फैशन लवर्स का दिल जीत लिया है। इन तस्वीरों में ईशा विश्व प्रसिद्ध ब्रांड शनेल का एक बेहद रेयर आउटफिट पहने नजर आ रही हैं। यह खास आउटफिट मशहूर जर्मन डिजाइनर कार्ल लगरफेल्ड के 1996 के ऑटम विंटर कलेक्शन का हिस्सा है, जिसे मशहूर इंटरनेशनल पॉप स्टार लेडी गागा 2011 में पहने नजर आ चुके हैं। इसी वजह से ईशा का ये फैशन स्टेटमेंट और भी ज्यादा आइकॉनिक बन गया है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके महंगे बेल्ट की हो रही है, जिसकी कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है। ये एक सिग्नेचर ग्रिपोइक्स बेल्ट है जो पूरे लुक को डिफाइन करते हुए स्टाइलिंग में ड्रामा ऐड कर रहा है। जैकेट पर किया गोल्ड थ्रेड वर्क और रंग बिरंगे स्टोन्स वाला एम्बेलिशमेंट इसे और ज्यादा लग्जरी टच दे रहा है। ईशा ने गोल्डन आउटफिट के साथ ब्लैक कलर का छोटा सा शनेल मिनी पाउच कैरी किया है, जो पूरे लुक के साथ काफी स्टाइलिश लग रहा है। इसके साथ ईशा ने सैन लॉरेंट के SL M161 सनग्लासेस पहने हैं, जिसकी कीमत करीब 32,000 रुपए बताई जा रही है। ये गोल्डन ड्रेस अपने आप में ही बहुत हैवी और अट्रैक्टिव है। यही वजह है कि ईशा ने अपने स्टाइलिंग को बहुत ही सटल तरीके से बैलेंस किया है। यही वजह है कि फैशन लवर्स उनके इस लुक को विंटेज और मॉडर्न ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्रांस में चल रहे कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की धमाक।

0: और देखिए फ्रांस के फ्रेंच रिवेला में कान फिल्म फेस्टिवल का महामंच सज गया है। दुनिया भर की सिनेमा हस्तियों की चमक और कला का उत्सव अपने चरम पर है। रेड कार्पेट पर सितारों की जगमगाहट के बीच में सिनेमा फैशन संस्कृति का अनोखा संगम कान में देखने को मिल रहा है।
1: इस साल भारत की एक अलग ही तस्वीर कान फेस्टिवल में दिख रही है। बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर छोटे बड़े कलाकार भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय संस्कृति को इस महामंच से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर प्रजक्ता कोहली ने महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर भारतीय परंपरा और सौंदर्य की खास झलक बिखेरी।
0: देखिए उनके इस अंदाज ने न केवल फैशन प्रेमियों का ध्यान खींचा बल्कि भारतीय संस्कृति की गरिमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खूबसूरती से प्रदर्शित किया। प्राजक्ता ही नहीं शहरी भाटिया ने भी कान के रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा। अपने आकर्षक अंदाज और गोल्डन लहंगे की खूबसूरती के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय नारी की गरिमा आत्मविश्वास संस्कृति का शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया।

0: तो वही मौनी रॉय का ग्लैमरस अंदाज भी कान फिल्म फेस्टिवल में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौनी रॉय ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। ब्लैक आउटफिट के साथ उनका बन हेयर स्टाइल उनके लुक को पूरी तरीके से शानदार बना रहा था। रेड कार्पेट पर उनका क्लासी और यूनिक अंदाज देखते ही बन रहा था। मौनी का ये फैशन स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है
1: और देखिये फैशन एक्सपर्ट्स भी उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए कान फिल्म फेस्टिवल की खूबसूरती ये है कि इस मंच पर सिर्फ बड़े बड़े सितारे ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े कई चेहरे भी शामिल होते हैं। इस साल भारत से कई इन्फ्लुएंसर्स ने कान में हिस्सा लिया और खास बात यह है कि सभी भारतीय संस्कृति को बखूबी यहाँ पर दिखाने का काम कर रहे हैं।
0: अभिनेत्री और कंटेंट क्रिएटर प्रजक्ता कोहली ने महाराष्ट्र की पारंपरिक साड़ी पहनकर रेड कार्पेट पर भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश किया। उनके इस ट्रेडिशनल अंदाज ने फैशन प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनके इस खूबसूरत लुक में महाराष्ट्र की संस्कृति की झलक साफ देखने को मिली। साड़ी के साथ उन्होंने क्लासिक मराठी नथ पहनी जिसने उनके पूरे अंदाज को और भी आकर्षक और शाही बना दिया।
1: देखिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी और सादगी भरे मेकअप के साथ प्रजक्ता कोहली का ये लुक भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का बेहतरीन संगम नजर आया। रेड कार्पेट पर उनका ये अंदाज लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर उनके इस लुक की जमकर सराहना की जा रही है।
0: कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की सुंदरी यानी कि मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह ने जलवा बिखेरा। रेड कार्पेट पर लहंगे में शेरी ने एंट्री ली तो उनका स्टाइल काफी इम्प्रेसिव लगा।
1: देखिए शेरी का ये देसी लुक मॉडर्न वाइब का परफेक्ट मिक्सचर दिखाई दिया जिसने लोगों का ध्यान खींचा। शेरी सिंह वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2025 में भारत को पहला मिसेज यूनिवर्स का ताज दिलाया था। उन्होंने कान्स में अपना डेब्यू किया। वो ट्रेडिशन और मॉडर्न एलिगेंस का परफेक्ट मिक्सचर उन्होंने अपनी इस ड्रेस में दिखाया। शेरी ने क्लासी लहंगे के साथ ज्वेलरी को रॉयल टच दिया जिसने उनकी वाइब को काफी इंटरेस्टिंग बनाया। तभी तो उनके लुक को खूब पसंद किया जा रहा है।

0: अब देखिए, श्रीनगर में युवाओं के बीच में टच रग्बी की लोकप्रियता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। घाटी में इस नॉन कॉन्ट्रैक्ट गेम रग्बी को एक सुरक्षित और रोमांचक विकल्प के रूप में बेहद पसंद किया जा रहा है।
1: खासकर ग्रामीण युवाओं और लड़कियों के लिए ये खेल सशक्तिकरण और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का एक नया माध्यम बन गया है।

0: श्रीनगर का प्रतिष्ठित पोलो ग्राउंड है, जहां पर टच रग्बी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है। यहां मौजूद युवाओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां के युवाओं में इसका जबरदस्त क्रेज है। युवाओं के बीच टच रग्बी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यहां टच रग्बी के खेल के इस मेगा इवेंट में 21 राज्यों की 75 टीमों ने हिस्सा लिया है।
1: टच फॉर्मेट एक बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी ले रहा है। हमने रिसेंटली, आपको पता है, कुछ महीने पहले हमने यहाँ पे एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट किया था। आज भी हमने यहाँ पे एक कार्निवल फेस्टिवल टाइप टूर्नामेंट किया है, जिसमें 25-26 टीमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर से, हर राज्य से आ रहे हैं, बॉयज गर्ल्स। ये बेसिकली सीनियर टूर्नामेंट है, ओपन वन है। इसमें हमने खिलाने का एक प्रण लिया है कि बच्चों को एक और प्लेटफॉर्म दे दे, ताकि वो बहुत अच्छे से, और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा जा रही है। हमें इतनी सारी क्वेरीज, दिन भर हमारा फ़ोन ही बंद नहीं होता है, क्वेरीज पे क्वेरीज आ रही है कि हम कैसे ज्वाइन करें, हम कैसे ज्वाइन करें। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है।
0: कश्मीर की युवा लड़कियों और ग्रामीण महिलाओं के लिए ये खेल आशा की एक नई किरण बनकर उभरा है। राज्य की जूनियर बालिका और सीनियर महिला टीमों ने राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में शानदार प्रदर्शन दिखाया है और कई मेडल्स जीते हैं।
2: भी अगर हम देखेंगे, जितना सोचा था हमने टच के बारे में, लाइक कितने टीम्स आएंगे, लाइक हमारे सोच से बहुत बाहर ही टीम्स, बहुत ज्यादा टीम्स आई है टच खेलने के लिए।
3: आज यहाँ पे टच रग्बी कार्निवल हो रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है।
4: हम तब खेलते थे सिर्फ जूनियर्स खेलते थे, अंडर 14। अब ये इतनी पॉपुलर है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अब हमने सीनियर्स कैटेगरी में, मिक्स्ड कैटेगरी में, बोथ वुमेन मेन में इंट्रोड्यूस की है, और बहुत फन गेम है। इसमें काफी ज्यादा स्किल्स चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए।
0: जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जमीन स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं की इसे खेलने में दिलचस्पी बढ़ रही है।
5: भी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, आई थिंक ये 2 महीने हो गए इंट्रोड्यूस किए हुए इस टच रग्बी को यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत ये हासिल कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले डरते थे या जिनको लगता था कि हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, अब उनको लगता है कि जो ये टच है इसमें हम सेफर खेल सकते हैं और तेज खेल सकते हैं, तो उनको बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा चैलेंजिंग गेम है, तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है लोगों को।
0: घाटी में टच रग्बी टीम भावना के साथ फिटनेस को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही यहाँ इस खेल को युवाओं को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ, अनुशासित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए बढ़ावा देने वाले एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में पर्यटन की बहार लौट आई है। जी हां, बड़ी संख्या में सैलानी इन दिनों जम्मू कश्मीर के अलग अलग पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है गुरेज घाटी, जो कि पर्यटकों से गुलजार है। LOC के पास बांदीपुरा जिले में मौजूद ये घाटी अपनी अछूती प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, किशनगंगा नदी और डाचिन संस्कृति के लिए जानी जाती है। ये घाटी अब भारत सरकार की बॉर्डर टूरिज्म पहल के तहत एक प्रमुख केंद्र बन चुकी है।
7: देखिए, पिछले कुछ सालों से देश भर से सैलानी यहां घूमने आते हैं। इस साल भी भारी संख्या में पर्यटकों ने इस घाटी का रुख किया है।
8: देखते लगता है कि स्वस्थ से भी अच्छा है, ऐसा लग रहा है हमें अभी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी सीनरी भी है, जहाँ कुछ सीखने को भी मिल रहा है।
9: गुरेज वैली इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, आज तक हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ, बहुत ही अच्छा।
7: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
11: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कई है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. to top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला रहेगा लागू। कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, कहा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। चमोली के अदिबद्री धाम में नौठा कौथिग लठमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न। गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवन प्रतीक ये पर्व। हजारों भक्तों के जयकारों के बीच में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की डोली धाम के लिए रवाना। 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट, भक्तों में देखा जा रहा उत्साह। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार की देशभर में धूम। पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही है पूजा, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति।
3: मैदानों में चढ़ते पारे के बीच में सैलानियों को लुभा रहा कश्मीर का सुहाना मौसम। वादियों के बीच शिकारा का आनंद ले रहे सैलानी, बड़ी संख्या में गुरेज घाटी पहुंच रहे पर्यटक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: देखिए आज का दिन बेहद शुभ है। आज तीसरा बड़ा मंगल है। बजरंगबली के भक्तों के लिए आज के दिन का विशेष महत्व होता है। इसे आस्था, सेवा, समर्पण का प्रतीक माना जाता है।
1: कहते हैं कि बड़े मंगल के दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो साधक के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगल के दिन ही हनुमान जी को अमृत का वरदान मिला और इसी दिन भगवान श्री राम और महाबली हनुमान का मिलन हुआ, इसलिए इसे महाबली की कृपा पाने का शुभ दिन माना जाता है। तो आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल है जिसमें हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा का विधान है। आज के दिन बजरंगबली की आराधना से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
0: और पुरुषोत्तम माह में पड़ने वाले इस तीसरे बड़ा मंगल पर बजरंगबली की पूजा के 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। बजरंगबली के इन शुभ मुहूर्तों में श्रद्धा, आस्था, समर्पण से पूजा करने से दुख और दरिद्रता का सर्वनाश हो जाता है।

0: आज है ज्येष्ठ का तीसरा कल्याणकारी बड़ा मंगल। बड़ा मंगल के स्वामी हैं वीर हनुमान। बुढ़वा मंगल पर बनेंगे सारे बिगड़े काम। ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवारों को बजरंग बली की विशेष आराधना की जाती है। मान्यता है कि अगर आप संकटों का सामना कर रहे हैं तो तीसरे बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना मंगलकारी होता है। तीसरे बड़े मंगल पर भी हनुमान जी को पूजा में उनकी प्रिय चीजें अर्पित की जाती हैं। चमेली के तेल और सिंदूर से बना चोला अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इस बड़ा मंगल पर पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है। तीसरे बड़े मंगल पर भक्तों के लिए 5 शुभ मुहूर्त बने हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक। अमृत काल रात 9:14 से रात 9:40 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:34 से दोपहर 3:29 तक। और गोधूली मुहूर्त शाम 7:06 से शाम 7:27 तक। आज के दिन सच्चे मन से पूजा करने पर हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। तीसरा बड़ा मंगल पुरुषोत्तम मास में पड़ा है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम यानी ज्येष्ठ मास में किया गया कोई भी शुभ कार्य सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। इसलिए तीसरे बड़े मंगल को बहुत ही शुभ और दुर्लभ बताया जा रहा है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन इसमें हनुमान जी की पूजा का अपना अलग महत्व है। हनुमान जी राम भक्त हैं, जो श्रीहरि का अवतार हैं। इसलिए इस मास में उनकी आराधना से श्रीहरि और हनुमान जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और जीवन की बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला तीसरा बड़ा मंगल विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसलिए जो लोग लंबे समय से कोई समस्या झेल रहे हैं तो उन्हें आज के दिन व्रत रखकर पूजा करनी चाहिए। तीसरे बड़े मंगल पर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने से शुभ फल तो मिलते ही हैं, बजरंग बली की कृपा भी मिलती है। आज के शुभ मौके पर हनुमान जी की सच्चे मन से प्रार्थना करने से वो हर संकट में आपका साथ देते हैं और आपके साथ खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: बड़ा मंगल पर महाबली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़े हैं। रामनगरी में हर ओर बजरंग बली की जय जयकार हो रही है और रामनगरी अयोध्या में हनुमान जी आराधना के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।
2: देखिए, मौका बड़े मंगल का है तो हनुमानगढ़ी का नजारा एकदम भव्य है। सुबह सवेरे से भक्त बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। भीषण गर्मी है लेकिन भक्तों का पारा हाई नहीं है। सब संकट

0: से भक्त बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। भीषण गर्मी है लेकिन भक्तों का पारा हाई नहीं है। सब संकट मोचक के आशीर्वाद के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और चलिए अब चार धाम यात्रा की करते हैं। देखिए देवभूमि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 19 अप्रैल को शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं।
1: केदारनाथ धाम में 6 लाख तो बद्रीनाथ धाम में करीब 4.25 लाख श्रद्धालु अब तक हाजिरी लगा चुके हैं।

0: यह आस्था का सैलाब है, गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक और केदारनाथ से लेकर भगवान बद्री विशाल के धाम तक। हर दिन श्रद्धालुओं का रेला यूं ही उमड़ रहा है, कोई पैदल, कोई घोड़े और खच्चर से, तो कोई हेली सेवा के जरिए धाम पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर यहाँ श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। जयकारे लगाते श्रद्धालु और घंटी घड़ियाल की पवित्र ध्वनि, पूरा वातावरण मानो आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया है। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र यात्रा को आज एक महीना पूरा हो गया है। इस एक महीने में मौसम ने भी श्रद्धालुओं की खूब परीक्षा ली है। कभी बेमौसम बारिश और बर्फबारी तो कभी भीषण गर्मी, बावजूद इसके श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक 15.5 लाख से ज्यादा लोग चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,140 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, वहीं बद्रीनाथ में 4,28,973, गंगोत्री में 2,58,716 और यमुनोत्री में 2,62,275 श्रद्धालु पहुँचे हैं।
1: चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में सबसे ज्यादा हर दिन लगभग 30,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 20,000 यात्री हर रोज बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
0: सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां हर रोज हजारों की संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं।
2: अभी यात्रा को एक महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ है और 6 लाख से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों बाबा केदार के दरबार में भक्तों का मेला लगा हुआ है। हर रोज 25,000 से अधिक तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बढ़ती यात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद की गई है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स केदारनाथ धाम में तैनात की गई है।
0: वहीं बद्री विशाल के धाम में भी रौनक है, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन की लंबी लंबी कतारें, ब्रह्म कपाल में पिंडदान, तप्त कुंड में स्नान, जिधर नजर फेरिए हर जगह भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां अब तक 4.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं।
3: मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है तो पहाड़ों में भी अब गर्मी का एहसास होने लगा है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को पहुँच चुके हैं। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। मौसम अब सुहाना हो चुका है, ऐसे में जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ रहा है, नीचे मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, छुट्टियां पड़ रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है।
0: जून में ये तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। असल में हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद सिख श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम पहुँचते हैं। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुलेंगे। देहरादून से अंकित शर्मा, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।

चार धाम के उत्साह के बीच में आज हम आपको उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में प्रसिद्ध टिहरी के मुखेम नागराजा मंदिर के दर्शन करवाएंगे। 13वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यहाँ कालिया नाग ने प्रायश्चित तप किया था।

0: देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की गूंज इन दिनों दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसे में आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक और शांत और मनोरम स्थान पर, जिसे देवभूमि का पांचवा धाम कहा जाता है। ये है टिहरी के प्रतापगढ़ में सेम मुखेम नागराजा मंदिर। वैसे तो ये मंदिर नागों के राजा नागराज को समर्पित है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भी उपस्थिति है।
1: तो यहाँ पर 11 कते मंगसीर यानी 25-26 नवंबर को जब मेला का जो दिन होता है, उस दिन भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप जो है गंगो रमोला को दिखाया और कहा, हे गंगो रमोला, तुम अपने घमंड में चूर थे, अब तुम्हारा शौच है, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो गंगो रमोला, भगवान मुझे अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे आप जो है ऐसी आज्ञा दो कि जिस स्थान में आपने मुझे विराट रूप दिखाया उस स्थल की मैं अब आजीवन पूजा करता रहूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे करना। फिर मरने के बाद उनका बगल में मंदिर बन गया है।
0: पौराणिक कथा है कि यमुना का पानी दूषित करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, तब कालिया नाग ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनसे भक्ति का वरदान मांगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा का एक अंश सेम मुखे में स्थित एक पवित्र पत्थर में स्थापित कर दिया। तब से इस पत्थर की पूजा नागराज के रूप में की जाती है।
1: एक पत्थर है, उसमें जो है भगवान के पांव के निशान है, घोड़े के पांव के निशान है। कहते हैं कि उसमें घोड़े से दौड़ लगाते थे और नारद जी वहां पर जो है शतरंज खेला करते थे। पहले उसका नाम चौपड़ हुआ करते थे, तो उसका पौराणिक नाम नारद चौपड़ है, लेकिन आजकल जो उसको शतरंज के रूप में बोलते हैं। जो शतरंज का खेल है वो वहां पे जो है नारद जी और भगवान कृष्ण एक बड़े सा चौड़ा पत्थर उसके ऊपर खेला करते थे।
0: 13वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर की पूजा परंपरा गढ़वाल रियासत के राजा और उनके वंशजों के पास है। ऐसे में सेमवाल परिवार के तीन घराने बारी बारी से यहाँ पूजा अर्चना का दायित्व निभाते हैं। इसके अलावा हर साल नवंबर में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए लंच टाइम।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कई है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: From late night R&B to chart topping hip hop, these are the songs you come back to.
6: Yes, sir.
5: The ones you know by heart.
6: Peace out.
5: The ones you forgot. Hey, yeah, yeah. They're all here. Powered commercial free by Bose. Let hip hop and R&B be your soundtrack to postseason basketball as you watch your favorite team on the road to the finals. Press play and stay wild. Your music deserves Bose. Just search hip hop and R&B to start listening now.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
3: Thank God I get to wake.
2: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: यूं तो पूरे भारत में ही इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में तो पारा हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। जी हाँ, ज्यादातर जगहों पर तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है।
6: अब देखिए, हालात ये हो गए हैं कि इस झुलसा देने वाली गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि जरूरी काम से जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो गमछे, स्कार्फ और छाते का इस्तेमाल कर खुद को चिलचिलाती धूप से बचाते हुए नजर आ रहे हैं।

0: चिलचिलाती धूप और लू के थपे, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी राज कर रही है। देश के इन सभी इलाकों में गर्मी के तेवर दिखने लगे हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद से 3 बजे तक तो सड़कों पर इंसान से लेकर जानवरों तक के नामो निशान यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। यहाँ हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि गर्मी ने अभी तक अपने सबसे भयानक तेवर दिखा दिए हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले एक हफ्ते तक गर्मी का ऐसा ही असर देखने को मिलेगा।
1: गर्मी तो है, अभी एक सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम समझे तो आप देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं, तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे तो हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव और वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है ऑरेंज अलर्ट के साथ में। मध्य प्रदेश और विदर्भा में हीट वेव तो सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रही है, लगातार हीट वेव कंडीशंस चल रही है विदर्भा में, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहां पर और पश्चिम भाग दोनों में हमारा अनुमान है कि सप्ताह में आगे चल करके 2-3 दिनों के बाद में सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं।
0: मौसम विभाग ने आज और कल 20 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन दिनों अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज गर्मी और बढ़ेगी, अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। हीट वेव की स्थिति रहेगी। दोपहर और शाम के समय तेज गर्म हवाएं परेशान करेंगी। बुधवार को भी भीषण गर्मी जारी रहेगी, अधिकतम तापमान 44 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। कल भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 21 और 22 मई को तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि तब अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास रह सकता है।
2: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अनुमान लगाया है कि लगातार जो है धूप निकलेगी और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 42, 43, 44, 45 डिग्री तक तापमान जाने का अनुमान है। उस तरीके की स्थिति बनती हुई दिन में दोपहर में नजर आ रही है।
0: वहीं कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में जो लोग घरों से मजबूरी में बाहर निकल भी रहे हैं, उन्हें पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। लोग तपश से बचने के लिए छांव का आसरा खोजते हैं। सड़कों पर कई राहगीर छाते का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। बहुत से लोग अंगूठी की मदद से ही सिर ढककर धूप से बचाव करते दिखते हैं। गर्मी में तरावट के लिए लोग रुक रुक कर पानी पीते हैं, साथ ही गन्ने के रस और फलों के जूस का भी उपयोग बढ़ जाता है ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके।
3: गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। हमारी जो कोचिंग होती है वो 9 से 2 बजे तक चलती है। हम लोगों को सुबह 8 बजे निकलना पड़ता है और दोपहर को कड़ी धूप में निकलना पड़ता है। फिर यहाँ कोचिंग से 2 बजे छुट्टी होती है। रास्ते में इतनी ज्यादा धूप की वजह से हमें रुमाल और जगह जगह पर प्यास लगती है, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर इसके बचाव की बात करें तो आप जगह जगह पे लोगों को पानी पिला सकते हैं या फिर कुछ ऐसा सुविधा होना चाहिए जिससे कोचिंग के बच्चों को आने जाने में थोड़ी सी तो कुछ सुविधा मिले, जिनसे कि वो उनको राहत रहे।
0: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डॉक्टर्स भी खास सावधानियां बरतने की अपील कर रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो लू से संबंधित लक्षण जैसे चक्कर आना, उल्टी, थकान, बेहोशी आदि दिखने पर तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। लगातार बढ़ती गर्मी से दिल्ली एनसीआर में जनजीवन, ट्रैफिक और कामकाज का असर पड़ने की भी संभावना है। इसलिए मौसम विभाग लगातार राजधानी और एनसीआर की स्थिति पर नजर रखे हुए है। दिल्ली से मनीष लड्डा, आशुतोष कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। और चलिए इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला रहेगा लागू। कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, कहा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौती लठमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न। गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है ये पर्व।

भक्तों की जयकार के बीच द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वर की डोली धाम के लिए रवाना। 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट, भक्तों में उत्साह। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार की देशभर में धूम, पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही है पूजा, चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। मैदानों में चढ़ते पारे के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का सुहाना मौसम, वादियों के बीच शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में गुरेज घाटी पहुंचे हैं पर्यटक।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
1: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज की, सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजेस, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक संस्थानों और जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें और उन्हें वापस ना छोड़े, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन। उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट, 22 मई तक लगातार बढ़ सकता है तापमान। हीट वेव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित, अस्पतालों में ORS, IV फ्लूइड, दवाइयां और विशेष बेड की व्यवस्था करने के निर्देश। सभी जिलों में एम्बुलेंस सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव। जलभराव से यातायात प्रभावित, कई जगहों पर लगी वाहनों की लंबी कतार।

बिहार के तीन जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा तापमान। कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीट वेव का रेड अलर्ट। बक्सर में स्कूल बंद। वाराणसी में तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। 25 मई तक स्कूल बंद। वाराणसी में बढ़ते तापमान के चलते गंगा घाट पर पसरा सन्नाटा। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज में भी लगातार बढ़ रहा है पारा। 44 डिग्री पहुंचा तापमान। तापमान बढ़ने से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं पेड़ का सहारा। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज। पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। भगवान मद महेश्वर की दिव्य डोली कैलाश के लिए हुई रवाना। 21 मई को खुलेंगे मद महेश्वर मंदिर के कपाट। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से रवाना हुई डोली। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। हर हर महादेव के लगे जयकारे। आज डोली अपना पहला रात्रि प्रवास रासी गांव में करेगी। कल द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए अंतिम गांव गोंडार गांव पहुंचेगी बाबा की डोली। 21 मई को भगवान की डोली गोंडार गांव से धाम के लिए करेगी प्रस्थान। डोली के धाम पहुंचने पर मद महेश्वर मंदिर के खोले जाएंगे कपाट। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज 31वें दिन अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की तीर्थ यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 6,65,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। अब तक 4,500 से अधिक भक्तों ने बाबा बद्रीनाथ में दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भी लगा भक्तों का मेला। अब तक करीब 2,75,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में भी भक्तों का तांता। 2,70,000 भक्तों ने हाजिरी लगाई। आज है ज्येष्ठ का तीसरा कल्याणकारी बड़ा मंगल। देशभर के हनुमान मंदिर में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। बजरंगबली की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हनुमान जी को अर्पित किया जाता है चमेली का तेल और सिंदूर से बना चोला। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा का है विधान, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। आज के दिन लाल वस्त्रों का दान करना माना जाता है शुभ। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी होता है फलदायी। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं, सभी संकट हर लेते हैं बजरंगबली। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को ही हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना। बंदरों को खिलाने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला, फल, चना और गुड़। बंदरों को तरबूज भी खिलाया। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। तीसरे बड़े मंगल पर भक्तों ने दर्शन किए।
सुबह से हनुमान जी के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हनुमान जी के जयकारे। पुरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। प्रयागराज के बंधुआ हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़े मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में की गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। उज्जैन में तीसरे बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे।

0: भगवान महाकाल के अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या में भक्त बने साक्षी। आरती से पहले बाबा भोलेनाथ का किया गया जलाभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। धार के भोजशाला में विशेष पूजा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भोजशाला में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, ओम नमः शिवाय के लगे जयकारे। बीस मई को एक दिन के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम बाबा का दरबार, मंदिर कमेटी ने जारी की सूचना। खाटू श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार के कारण लिया गया एक दिन बंद रखने का फैसला, श्रद्धालुओं के लिए 19 घंटे बंद रहेंगे मंदिर के पट। आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिर के पट, 20 मई की शाम 5 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट, इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी। मंदिर परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद किया जाता है बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार, इस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर किया जाता है चंदन का लेप, की जाती है विशेष पूजा अर्चना। हर साल बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं देश दुनिया से लाखों भक्त, इस भीषण गर्मी में भी बाबा श्याम के दरबार में पहुंच रहे हैं लाखों श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बंपर उछाल। भारतीय सेना का शायना कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। पुंछ में सेना ने चिकित्सा से पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, लोगों को पशु रोग के बारे में किया गया जागरूक। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर सीएम राजसैनी ने की साइकिल की सवारी, लोगों से की ईंधन बचाने की अपील। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलाया स्वच्छता अभियान, 25 टन कचरा किया गया एकत्रित। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई आम की 24 किस्में। पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर, आम्रपल्ली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबरी, जमादार, काला जमादार, हापुस और तोतापुरी आदि शामिल हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके उगाई गई 24 किस्मों के आम, आम के पेड़ को देखने के लिए लग रही है भीड़। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य में युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। राजौरी में बह रही विकास की बयार, नए पुल से ब्लॉक सेरी और ब्लॉक लांबेरी के बीच बेहतर संपर्क। कोल्हापुर के एक शिल्पकार ने बनाई चांदी की कोल्हापुरी चप्पलें, स्पेशल ऑर्डर पर बनी ये खास चांदी की चप्पल। सांगली के एक व्यापारी ने अपने दामादों को देने के लिए ऑर्डर की है चांदी की चप्पलें, मशहूर कोल्हापुरी चप्पलों की तरह बनाई गई है चांदी की चप्पलें। 10 इंच लंबी और 1.5 किलो वजनी वाली इस चप्पल की कीमत 4 लाख रुपए है और इसकी नेट लेबर 25,000 रुपए है। पाली में दिया जा रहा पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गर्मी में वन्य जीवों के लिए पहाड़ियों पर बने कृत्रिम एनीकट में की जा रही है पानी की और भोजन की व्यवस्था। समाज सेवी संगठन द्वारा वन्य जीवों की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं कदम, पाली में दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने पर सूखने लगे थे तालाब और जल स्रोत।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में कई है खुशियाँ। तो कहीं ड्रामा, 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
3: From throwback R&B to modern hip-hop, your faves are all here.
4: Welcome home.
3: Powered commercial-free by Bose.
5: Yes, sir.
3: It's the perfect soundtrack for postseason basketball. Your music deserves Bose. Search high hip-hop and R&B to start listening now.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Good news today.
1: Good news today इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम मंदिर के कपाट कल सुबह बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा अर्चना के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। ऐसे में मंदिर के कपाट कल शाम 5 बजे के बाद खुलेंगे। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने लोगों से तय शेड्यूल के हिसाब से ही यात्रा करने की सलाह दी है।

0: हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यही भाव यही उम्मीद लिए सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अपने भगवान की बस एक झलक पाने के लिए ये आंखें किस कदर बेचैन हैं। मई का महीना है, तापमान चरम पर है, लेकिन खाटू श्याम के दरबार में उमड़ी ये भीड़ देखिए। लंबी लंबी कतारें, घंटों अपनी बारी का इंतजार करते लोग, मानो बस एक झलक मिल जाए और मन्नत पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप 20 मई को खाटू श्याम के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा में थोड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि 20 मई को भगवान दर्शन नहीं देंगे। शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण 19 मई की रात 10 बजे से मंदिर को आम भक्तों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। दर्शन 20 मई की शाम 5 बजे के बाद से ही दोबारा सुचारू रूप से शुरू होंगे। इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे में मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस तय शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सीकर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: Good news today is really good. It's good, right? उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला रहेगा लागू। कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, कहा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक लठमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न। गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है ये पर्व। हजारों भक्तों के जयकारों के बीच द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर की डोली धाम के लिए हुई रवाना। 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट, भक्तों में उत्साह। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगलवार की देशभर में धूम। पावन दिन पर हनुमान जी की हो रही है पूजा। चोला चढ़ाने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। मैदानों में चढ़ते पारे के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का सुहाना मौसम। वादियों के बीच शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी। बड़ी संख्या में गुरेज घाटी पहुंच रहे हैं पर्यटक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: संगीत म्यूजिक जो हर इमोशन को और भी खूबसूरत बनाता है। कभी ढोल के बीट्स पर संगीत का म्यूजिक तो कभी रोमांटिक मेलोडी पे दिल का कनेक्शन। आज तो सास बहू और बेटिया में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं म्यूजिक को और लेकर हाजिर हैं आपके लिए कहानियां जिनमें है इमोशन का सुर और एंटरटेनमेंट का तड़का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, प्रेम और अंश में होगी घमासान लड़ाई, अनुपमा देगी पलट कर जवाब।
2: इससे तो जवाब लगती है, उसमें हम लोग वो चीज पानी डालते हैं, आप अमीरों की तरह पेट्रोल नहीं डालते।
1: आशीष और बोगरा की शादी में लगेगा नच का तड़का, झूम कर नाचेंगे घर वाले। डॉक्टर आरंभी की जिंदगी में रक्षक बनकर आएगा ध्रुव, कहानी में आएगा नया ट्विस्ट।

0: अपराजिता और रक्षित में होगी दोस्ती, रक्षित देगा अपराजिता का साथ। और मिसेस इंडिया क्वींस के ग्रैंड फिनाले में खास मेहमान बनकर आएंगे गोविंदा, लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का, सभी नजारे आपके लिए लेकर आएगा सास बहू और बेटियां।
1: जगदात्री की इस कहानी में एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर बनाता है इस कहानी को और भी एंटरटेनिंग। अब आज तो हम बात कर रहे हैं संगीत की, जो देखिए कितना इम्पैक्टफुल होता है स्पेशली हमारी एंटरटेनमेंट की कहानियों में। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको जगदात्री के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज।

0: जब धात्री से माफी मांगता शिवाय।
1: इश्क बुलावा
0: शिवाय का सॉरी बोलने का फिल्मी अंदाज।

0: शिवा से इम्प्रेस हुई जगधात्री। जगधात्री में आज आ गया है मौसम रोमांस का, क्योंकि जगधात्री शिवाय से नाराज है और जैसे तैसे शिवाय को जगधात्री को मनाना है, इसलिए उन्होंने ये फिल्मी तरीका ढूंढा है। देखिए कैसे उन्होंने अपने दिल पर लिख दिया है ये बड़ा सा सॉरी और कुछ फिल्मी अंदाज में नी डाउन होकर जगधात्री से वो माफ़ी मांग रहे हैं। तो भाई जगधात्री से माफ़ी मांगने का ये तरीका बिल्कुल भी कैजुअल नहीं है, ये तो है एकदम बॉलीवुड स्टाइल। और लगता है जगधात्री इससे इम्प्रेस भी हो गई है, इसीलिए तो आ गई है जगधात्री के चेहरे पर ये बड़ी सी स्माइल। और ये स्माइल देखकर शिवाय काफी खुश है, क्योंकि उनका ये प्लान सक्सेसफुल जो हो गया है। भाई आज तो एकदम हीरो की तरह अपनी हीरोइन जगधात्री से माफी मांगते नजर आए शिवाय।
1: लगे अलग ही जहान
2: शिवाय, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, माफ तो मैं तुम्हें वैसे भी कर देती ना।
0: तो आइए जगधात्री से ही जानते हैं कि क्या उन्होंने शिवाय को माफ कर दिया।
3: मतलब शिवाय से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि शिवाय जगधात्री का साथ नहीं देंगे या उन्हें गलत समझेंगे। जब मायाताई इल्ज़ाम लगाती हैं जगधात्री पे कि जगधात्री की वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो शिवाय भी बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तुम लेकर गई थी बाहर। कोई भी मौका नहीं देता है जगधात्री को अपना पक्ष रखने के लिए। और ये भी बात है कि उसके इंटेंशंस पर क्वेश्चन किया जा रहा है। अगर एक्सीडेंट हुआ तो पहली बात तो अगर हुआ होगा तो गलती से ही हुआ होगा, और अगर हुआ है तो जगधात्री ने अपना बेस्ट दिया होगा बचाने के लिए गुंजन को। बट इसको कोई भी तवज्जो नहीं देता है इस बात को, या इस बात के ऊपर कोई भी इतना सोचता नहीं है। और ये तो बात बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी शिवाय से, जो इतना इन एंड आउट इतना अच्छे से जानता है जगधात्री को। तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई है जगधात्री, इसीलिए उनके बीच में अब चीज़ें जो हैं मतलब थोड़ी सी अनबन है। बट बाद में शिवाय सॉरी भी बोलते हैं बहुत ही क्यूट अपना बॉलीवुड तरीके में, कॉमेडी या बॉलीवुड तरीके में। और जगधात्री बोल भी देती हैं कि ठीक है तुम्हें सब माफ़ है, मतलब चिड़चिड़ के जो भी चल रहा था उनका वो सब सही हो जाता है और वो माफ़ कर देती हैं जब वो सॉरी बोलते हैं। बट ऑफकोर्स फिर वो लास्ट में ये लाइन ज़रूर बोलती हैं कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती हूँ कुछ भी, कि मैं माफ़ कर ही देती। अब नाराज़गी अपनों से होती है ना, जो विश्वास करें, अब बार बार वो विश्वास ही नहीं करता है जगधात्री पे, तो इसलिए अब उसने बोला है कि मैंने छोड़ दिया है, तुम रहने दो।
0: तो भाई यहाँ तो शिवाय का माफीनामा कबूल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जगधात्री शरद को माया से छुपा रही है, ऐसे में वहाँ माया पहुँच जाती है और इस पेंटिंग के जरिए वो शरद और गुंजन को छुपाती है। लेकिन माया को शक हो रहा है, तभी तो वो उसके साथ जा रही है उसके कमरे में गुंजन को ढूंढने के लिए।
2: आने के रूम में फिट नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा मैं अपने ही रूम में लगा दूं। मेरे घर का गेस्ट रूम एक्चुअली काम कर, जाकर देखिए देखिए कि तुमने जो बोला वाकई सच है, क्योंकि तुम्हारे मना करने के बाद भी अगर गुंजन मुझे वहाँ मिली रेडी होगी। मायाताई वहाँ पर कुछ नहीं है, मैं आपको कह तो रही हूँ।
3: हाँ जब तो क्या है कि शरद जी जो और मायाताई के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, और उन्हें वो डिफरेंसेस दिखाई नहीं दे रहे कि वो कितने ही माइन्यूट हैं, उनमें कोई भी वजन नहीं है। और कभी कभार बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं छोटी छोटी बातों की वजह से, तो वो उन्हें पता नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्ट हो रही है। और जगधात्री को ये दिखाई भी दे रहा है कि यू नो प्यार तो है दोनों तरफ, प्यार तो है और गुंजन की परवाह भी उतनी ही करते हैं, तो क्यों नहीं एक साथ आ जाते हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर लें, कम्युनिकेट करें। हर रिलेशन में जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तभी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं. तो जगधात्री अपना बेस्ट ट्राई कर रही है और यहाँ पर वो ट्राई कर रही है कि गुंजन जो छोटी सी बच्ची है जिसकी जिसका पूरा फ्यूचर अभी बाकी है वो कहीं पर निगलेक्ट ना हो और अगर हो सके तो मम्मी पापा साथ में आ जाएं. और पापा की अभी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट में वो भी घायल हुए तो अब उनकी देख रेख कौन करेगा क्योंकि वो तो अकेले रहते हैं. तो वो इस घर में लेके आई है जहाँ पर जगधात्री रहती है क्योंकि देखभाल वो ही कर सकती है उनकी. और शरद जीजू ने उसे बहन भी बोला है अपनी. तो यहाँ पर लेके आई हो और देख रेख कर रही है वो उसकी.
4: मैं तो मेरे मम्मा पापा को ला रही हूँ लेकिन मुझे तो दोनों के साथ रहना है लेकिन पता नहीं लास्ट में किसके साथ रहने को मिलेगा.
3: हाँ बट हम ट्राई कर रहे हैं ना कि मम्मी पापा दोनों इसी घर में रहें. आप हाँ. साथ में रहें सब साथ में रहें ये ट्राई कर रहे हैं ना हम तो.
4: हाँ. लेकिन वो सबको दोनों में से कोई साथ में नहीं रह रहे अब इनको साथ में लाना पड़ेगा.
3: तो ले आएंगे ना हम.
4: हाँ.
3: है ना. Do you trust जगधात्री?
4: Yes.
3: Okay, good.
0: तो भाई जगधात्री की तो कोशिश है कि शरद और माया एक साथ आ जाए. अब ये प्लान पूरा होता है या नहीं ये देखना होगा. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
5: अपराजिता और रक्षित हमारी फेवरेट टेलीविजन जोड़ी श्रुति झा और शब्बीर आलूवालिया. वेल इनकी ये नई कहानी भी बजा रही है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का संगीत. कितने अच्छे से करते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट. ओ माय गॉड दिस जोड़ी इज कंप्लीटली मेड फॉर ईच अदर ऑफकोर्स ऑन स्क्रीन. तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधा यहाँ और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है कहानी में आज. वेल शो का नाम भी है कितना खूबसूरत. ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा.
0: शुरू हुआ कॉम्पिटिशन. चाय ने किया गोलमाल. जीत हासिल करके रहेगी अपराजिता. स्टार प्लस के सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता के हाथ में चोट लगी है इसीलिए वो लेफ्ट हैंड से ये कंपटीशन पूरा करने की कोशिश कर रही है लेकिन इसी बीच उसे नींद आने लगती है तो बस उसे याद आ जाती है चाय. लेकिन जैसे ही वो चाय कप में डालने जा रही होती है चाय गिर जाती है जिसके बाद अपराजिता काफी परेशान हो गई है लेकिन उसकी मदद के लिए आ जाते हैं रक्षित. लेकिन ये सारी बातें ईरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही क्योंकि वो तो अपराजिता से जेलस है.
6: बहुत गर्म था ना जल गया हो गया. ये
7: मेरी डिजाइन सब खराब हो गए.
6: अरे तुम रोना बंद करोगी प्लीज. देखो तुम लड़ती हो या अच्छी लगती हो ना तो ये आज आंसू पूछ लो. वो रुमाल है तुम्हारे पास पूछ लो प्लीज. अगर रोने से चीजें ठीक हो जाती ना तो ये दुनिया जो है वो डूब जाती. नहीं रोने से कुछ नहीं होता है कुछ करने से कुछ होता है इसलिए कुछ करो. देखो अभी टाइम बाकी है ना. हार तो तब होगी जब हम कोशिश करना छोड़ दें.
7: हार तब होगी जब कोशिश करना छोड़ दें.
6: करेक्ट रिपीट आफ्टर मी. हार तब होगी जब हम कोशिश करना छोड़ दें इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो.
7: कोशिश करना मत छोड़ो.
6: यस
7: मैम आप मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेशनरी दे सकती हैं. वो चाय गिर गई ना तो सब खराब हो गया. आई एम सो सॉरी.
8: सो सैड. पर रूल यही है कि जो स्टेशनरी मिली है उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा. सो रिक्वेस्ट डिनाइड.
6: ओ इरा ये सिचुएशन अलग है समझो. इट्स फाइन.
8: तुम समझो रक्षित. सिचुएशंस के हिसाब से हम रूल्स नहीं चेंज कर सकते बल्कि रूल्स के हिसाब से हमें सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा. और अगर किसी एक कंटेस्टेंट को फेवर करने के चक्कर में हमने रूल बदल दिया तो अगली बार सब वही फेवर मांगेंगे राइट. और वैसे भी गलती इसी की है. किसने कहा था चाय बना के लाने को. तुम यहां कंपीट करने आई हो चाय की टपरी खोलने.
6: है फोटो का हार मान चुकी है।
0: इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपराजिता हार नहीं मानती और अपना डिजाइन लेकर आती है, लेकिन इसमें भी ईरा खोट निकालने लगती है।
9: वाओ,
10: एक मिनट, ये क्या है?
7: मैम डिजाइन
10: रुमाल पर।
7: मैम स्टेशनरी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा कि
10: तुम सोच क्यों रही हो? तुम यहाँ सोचने आई हो या कम्पीट करने आई हो? और तुम्हें क्या लगा तुम कोई स्पेशल इंसान हो जो इस कॉम्पिटिशन के रूल्स अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ लोगी?
7: नहीं मैम, मैंने रूल नहीं तोड़ा कोई।
10: अच्छा, मैंने क्या कहा था? जो सामान हमने दिया है आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं, तो तुमने वही रूल तोड़ा।
0: खैर, अपराजिता को डरने की कोई बात नहीं क्योंकि उसके साथ रक्षित जो है, ऐसे में ये दोनों निकल पड़े हैं इस चाय डेट पर, जहां पर हो गई है इन दोनों की दोस्ती की नई शुरुआत।
7: बस बस मिल जाएगा मुझे यहाँ, ऑटो मिल जाएगा।
6: और चाय भी?
7: जी
6: चाय, पानी कम, दूध ज्यादा, अदरक इलायची के साथ। भैया जी, पानी रोक के, दूध ठोक के दो स्पेशल चाय बनाना।
7: नहीं नहीं भैया, दूध मत ठोकना, दूध कम, कड़क बनाना और अदरक, अदरक से इम्यूनिटी बढ़ती है।
6: ओ?
7: अदरक डालना। हाँ
6: पतीले को ठोक दो पर ठोकना जरूर है ना। वैसे चाय पर रिसर्च कर रखी है क्या तुमने?
7: जिंदगी पर ही रिसर्च कर ली है, समझिए। चाय भी रिश्तों की तरह होती है, ज्यादा उबल जाए तो जल जाती, कड़वी हो जाती, फिर कितना भी संभालने की कोशिश करे नहीं संभलती। शक्कर डाल ले, दूध डाल ले, उसकी कड़वाहट जाती नहीं और फिर कड़वी चाय तो जिंदगी भर पीनी पड़ता।
6: कड़वी चाय कोई पिएगा ही क्यों? व्हाट अ लूजर।
7: लूजर?
6: देखो लाइफ में ना चॉइस जो है वो हमेशा होती है, बस लेने की हिम्मत होनी चाहिए।
7: आपको लगता है ये हिम्मत इन डर आउट से सारे काम हो जाते हैं?
6: तुम्हारा तो हुआ ना।
7: चाहे सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते,
6: सवाल तो पूछ सकते हैं।
11: आपकी चाय।
6: शुक्रिया, स्पेशल है ना?
11: हाँ सर।
6: ये आपकी चाय, ये मेरी चाय और इसे कहते हैं कैंडल लिट टी पार्टी।
0: इसी के साथ कहानी में नया ट्विस्ट भी आएगा, जहाँ पर अपराजिता हो जाएगी गिरफ्तार और फिर एक बार रक्षित उसे बचा लेंगे।
12: कौन रोक रहा है?
6: इन्हें बाहर निकालिए।
7: मैं भी कसूर हूँ।
6: जानता हूँ मैं।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
5: यहाँ तो इंटेंस लव स्टोरी और पैशनेट म्यूजिक हम सबको बांध कर रखता है, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं कैसे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के रंग, क्या हो रही है यहाँ पर प्यार की बारिश या फिर किसी नए ट्विस्ट की। लेट्स चेक इट आउट।
0: गुरु को समझाती रूहानी।
13: तुम्हारे लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर।
0: भाई का फूटा गुस्सा।
13: तुम्हें तो समझ आता है

एनिमल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में गुरु को सच का पता लगाना है कि आखिरकार रूहानी के भाई पर हमला किसने करवाया था, इसीलिए वो गुंडागर्दी पर फिर उतर आया है। देखिए कैसे वो इस शख्स को पिटवा रहा है। तभी वहाँ पर पहुँच जाती है रूहानी, जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।

0: छोड़िए इसे, छोड़िए।
1: भाई ये तमाशा चल ही रहा होता है कि आ जाता है रूहानी का भाई और देखिए कैसे वो गुरु और रूहानी के गले में माला डाल देता है और गुरु को खरी खोटी सुनाता है और बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। ऐसे में रूहानी भी गुरु को समझाने की कोशिश कर रही है और उसे कुछ ऐसे सच बता रही है जो गुरु को मानने ही नहीं है।
2: का बोला बे? का बोलो? हम क्या बोलें? समझ आता है इसको कुछ? तुम पे तुम्हारे लिए तो कालाक्षर भैंस बराबर तुम्हें नहीं समझ आएगा मेरे को, लेकिन तुम्हें तो समझ आता है। इस साले को ना पकड़े, इस भगोड़े को ना पकड़े, काहे ना पकड़े, इससे तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यही बताएगा उस सूत्र का नाम जिसने तुम्हारे भाई पर गोली चलाई थी।
3: भैया मुझे पता नहीं था भैया चाहते हैं कि मैं काम करूं, खुद का ऑफिस मतलब क्लिनिक वगैरह खोलूं, और वही भैया ने बात कर ली है हॉस्पिटल में मेरी काम की, बट मैं मना कर रही हूं बिकॉज मुझे अभी वापस इस चीज़ में नहीं पड़ना है। पहले मुझे घर की जो ये सारी चीज़ें चल रही है उसे सॉल्व करना है। तो वही भैया को हमारी बातचीत होती है डीन ऑफिस में, उधर के बाद हम लोग जाते हैं, तो बीच रास्ते में गुरु मुझे वही वापस से गुंडागिरदी करते हुए दिख जाता है, तो वही मैं उस इंसान को बचाना चाहती हूँ जिसको मारता है, तो वही सारा सीन जा रहा है बीच में जिसमें मेरे भैया भी आ जाते हैं, तो भैया हम दोनों को सुनाते हैं वही और हाथ भी पिनाते हैं, मतलब टॉन्ट देते हैं, टॉन्ट वे में बोलते हैं, तो वही टॉन्ट वे में गुरु को भी गुस्सा आता है, फिर मैं गुरु को वो मुझे पकड़ के ले जाता है कार में, तो वही समझाती हूँ कि हमारे घर में ही कोई है और जो माँ है वो माँ नहीं है, कोई और है, तो गुरु वो बात को समझता ही नहीं है, और आई थिंक अभी वो मुझे उस चक्कर में उसको डाउट हो रहा है कि मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, तो वो मुझे पागल करने लेकर जा रहा है। बस यही है अभी फिलहाल।
1: तो भाई रूहानी की बातें सुनकर गुरु को लग रहा है कि रूहानी के दिमाग में हो गया है केमिकल लोचा, इसीलिए तो वो ले आया है उसे डॉक्टर के पास। और यहाँ पर भी रूहानी ने किया ड्रामा, अपने हाथों में उठा लिया पत्थर और गुरु को डरा दिया, जिसके बाद अब गुरु रूहानी का पूरा ख्याल रखेगा।
2: ए, क्या कर रही हो?
1: खैर रूहानी तो सच जानती है, अब देखना होगा कि कैसे वो इस सच का खुलासा सभी घर वालों के सामने करती है और खुद को सही साबित करती है। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: कहीं रोमांस की सॉफ्ट मेलोडी तो कहीं फैमिली ड्रामा का लाउड बीट। जी हाँ, हमारी ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया की प्लेलिस्ट है ना, इसमें भी हैं अलग अलग रंग। तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ये तमाम रंग एक साथ, जिन्हें लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन। यहाँ तो आपके फेवरेट शोज की सारे हाइलाइट्स और हाई पॉइंट्स भर रहे हैं एंटरटेनमेंट की उड़ान। तो आप भी कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड और हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉनस्टॉप सफर पर।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में घर में रखी गई है पार्टी, जिसकी तैयारियों में जुट चुकी है राध्या। भाई असल में

0: घर में आने वाले हैं फॉरेनर गेस्ट जिनके लिए अलग सा खाना बनाना है, इसीलिए किचन में पहुंच गया है प्रथम राध्या को ये बताने के लिए कि आज क्या कुछ स्पेशल बनेगा। लेकिन इन डिशेस के नाम सुनकर राध्या का तो सर ही चकरा गया है।
1: इसमें मैंने की आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, पुलाव और मीठे में ना शाही टुकड़ा है।
2: राधा बस बस बस, ये ना बहुत बेकार है, ये नहीं बनेगा।
1: अरे मैं तुमसे किया क्या आपने? हमने माँ के साथ मिलकर यही सब डिसाइड किया था।
2: राधा हमारी पार्टी में ना बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं, तुम्हें पता है बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पापा ने फॉरनर्स को भी इन्वाइट किया है, इवन हमारे ये NRI क्लाइंट को भी इन्वाइट किया पापा ने। समोसे से ना थोड़ा अलग होता है राधा, ठीक है? उसके बाद लिखो बरीटो, रिसोटो और केसरिया।
1: क्या दिया? क्या?
2: कुछ नहीं दिया राधा, केसरिया।
3: मतलब
2: केसरिया।
1: राधा मसाले तो सब्जियां भर के पराठा बनाया हुआ है, और ये सब इतने ऐसे ऑर्डिनरी नाम क्यों है? राधा इतना तो दूर हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं।
0: वैसे इसी बीच इन दोनों को भी मिल गया रोमांस का बहाना, भाई राधा का पैर फिसला और हो गया ये रोमांटिक मोमेंट।

दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में आज घर में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, जहां पर युवराज ने अग्नि का पर्दाफाश कर दिया है। जी हां, युवराज और अग्नि एक ही टीम में थे, लेकिन अब युवराज ने अग्नि को धोखा देते हुए घर वालों के सामने उसका सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। इतना ही नहीं, नाहर बनकर देखिए कैसे वो सिंपैथी भी गेन कर रहा है।

0: ऐसे में अग्नि खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवराज ने ऐसा प्लान बनाया है कि आज अग्नि इस घर से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पुलिस भी जो आ चुकी है।
1: इसमें लिखा है कि इसने मेरी पत्नी रूही नहार को इनका खून मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी उसने
2: ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसने मुझे धोखे से साइन करवाया। ये पूरा परिवार इस बात का गवाह है कि मैंने कुछ नहीं किया और उसने धोखे से मुझसे साइन करवाया प्रॉपर्टी के पेपर्स बोल के। नानी आपको तो मेरे पर भरोसा है ना? नानी आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, को मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि आपने नहार के साथ? आप ही बताइए नानी।
3: अगर नहार कह रहा है कि तुमने उसे खाई में धकेल दिया था तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करूंगा?
2: मैंने मान लिया कि मैंने ही नहार को धक्का दिया था, पर आप उससे पूछिए कि मैंने तो चुप क्यों था? जब ये ठीक होके आया तो इसने परिवार और पुलिस को क्यों नहीं बताया? किस को हमने इंतजार कर रहा था ये? मुझे कुछ बोलो, तुम चुप क्यों हो? बोलो, मैं बताऊं क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम सरासर बकवास कर रहे हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल नाटक ही है सर। आपको पता है पापा इसने क्या किया? ये जो दवाई है मेरे खाने में मिला के मुझे तभी मेरा अपना हाथ आपको बैठा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या गलत है क्या सही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मुझे अजीब अजीब ख्याल आते थे पापा, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं उसको संभाल नहीं पाता था, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था पापा।
2: तो आवाज तो नहीं सुनोगे तुम्हारा झूठ ना कहता हूं।
1: और पापा आपको पता है सिर्फ दवाई नहीं है, मुझे सिर्फ दवाई नहीं मिला रहे आप सबके खिलाफ भड़काया इसने मुझे। और पापा पता है मैंने ये दवाई वाला खाना बंद किया तब मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रहा था, मैं कितना गलत था, मैं आप लोगों के साथ कितना गलत कर रहा था, उसके साथ कितना गलत कर रहा था। हाँ मैंने इसके साथ बर्ताव किया, पता है क्यों? क्योंकि इसने मुझे फोर्स किया, अग्नि ने। अगर अगर मैं इसके साथ गलत नहीं करता ना, ये मुझे ब्लैकमेल करती।
0: भाई अग्नि ने सोचा कि अगर उसका पर्दाफाश हो गया है तो वो युवराज की भी सच्चाई सबको बता दे, लेकिन इससे पहले कि अग्नि सबको ये बताती कि ये नाहर नहीं बल्कि उसका हमशक्ल युवराज है, उससे पहले ही युवराज ने खेल खेल दिया और अग्नि के मुंह पर लगा दी चिली सॉस, जिस वजह से मिर्ची के कारण वो बोल नहीं पा रही।
2: लाजला पोता समझ रही है, सच ये है कि असल में तो ये है।

0: अग्नि शौक में है कि आखिरकार युवराज ने ऐसा क्यों किया। तो आइए युवराज से ही जानते हैं कि इस सब के पीछे उसका क्या मकसद है।
1: अग्नि को डबल क्रॉस करता है युवराज। बेसिकली सीन में ऐसा होता है कि युवराज को कुछ तो एक खिंचाव फील हो रहा है रूही को लेके, क्योंकि नाहर बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, युवराज की तरह। वो युवराज सोचता है सेम शक्ल, सेम सब कुछ, पर्सनालिटी सब सेम है, अमीर भी है, फिर भी नाहर इतना अमीर हो के रूही इतनी मामूली सी लड़की बहुत नॉर्मल दिखती है, फिर इतना प्यार कैसे है दोनों में। वो एक डायरी पढ़ लेता है रूही की, तो एक बाबा मिलते हैं युवराज को, बोलते हैं तेरे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, वो है लेडी लक। और वो अचानक से रूही उसकी उसके जहन में आती है। एंड जब वो घर आता है रूही बार बार, कुछ तो ऐसा होता है, वो जैसे ही स्टार्टेड फॉलिंग इन लव विथ रूही, तो उसको कुछ तो फील होने लगता है रूही को लेके, और वो लगता है कि ये लेडी लक रूही ही है। अब रूही को इम्प्रेस करने का एक पहला फर्स्ट तरीका, अग्नि को घर से कैसे बाहर निकाला जाए, तो वो अपना दिमाग लगाता है और अग्नि का जो प्लान है एकदम से ख़त्म कर देता है सब एक ही वार में। और रूही शॉक में, सब लोग शॉक में हैं, एंड फाइनली युवराज की जीत हुई है, और रूही की भी देखा जाए तो, और रूही नार की भी, क्योंकि अग्नि घर से बाहर है। लेकिन आगे का ड्रामा क्या होगा, लेट्स सी। वहाँ
0: युवराज ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है अग्नि को, और अब अग्नि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उसने सोचा नहीं था कि युवराज उसको अचानक से इतना बड़ा धोखा दे देगा, और सबसे बड़ी बात हो कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि युवराज ने ऐसा क्यों किया है उसके साथ। तो देखते हैं आगे अग्नि कुछ करती है या कुछ कर पाती है या नहीं। तो अग्नि तो जेल जा चुकी है, और अब युवराज भी रूही से प्यार करने लगा है। अब देखना होगा कि इस प्यार में कौन से ट्विस्ट आते हैं। ये तो रही सीन की बात, लेकिन बिहाइंड द सीन यहाँ हो रहा है सेलिब्रेशन। मनाया जा रहा है सीरियल के डायरेक्टर का बर्थडे।

बैकग्राउंड म्यूजिक किसी भी इमोशनल सीन को और भी इम्पैक्टफुल बना देता है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं हम आपको एक ऐसी खबर की ओर जिसमें है एंटरटेनमेंट का इम्पैक्ट, क्योंकि ये तो है हमारी स्पेशल स्टोरी जिसे संभाल कर रखा है हमने खास आपके लिए। तो चलिए हम नहीं करवाएंगे आपका और इंतजार, गेट सेट गो।

0: नजर है मिसेस इंडिया क्वींस 2025-2026 के ग्रैंड फिनाले के, जो हुए मुंबई में, जहां पर खास मेहमान बनकर आए गोविंदा।
1: ससुरी

0: Hai. Oscar. Perkenalkan.
1: किसी ने सोचा था ऐसे? लोग कहा करते थे कि गोविंदा की फिल्में और फिल्मों के गाने तो बहुत ही पवित्र हैं, पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गोविंदा फैशन वर्ल्ड में आ जाएगा। और उस वक्त ऐसे ही हंसा करते थे लोग, और आज पूरे वर्ल्ड में जो फैशन चल रहा है वो गोविंदा छाप सिनेमा का चल रहा है।

0: Hi. Namaskar. Pranam. किसी ने सोचा था ऐसे? लोग कहा करते थे कि गोविंदा की फिल्में और फिल्मों के गाने तो बहुत ही पवित्र हैं, पर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि गोविंदा फैशन वर्ल्ड में आ जाएगा। और उस वक्त ऐसे ही हंसा करते थे लोग, और आज पूरे वर्ल्ड में जो फैशन चल रहा है वो गोविंदा छाप सिनेमा का चल रहा है।
1: श्वेता रॉय और एसआर क्वींस की पूरी टीम ने एक जगमगाती हुई शाम को आयोजित, और इंडियन आइडल जैसे शोज को होस्ट करने वाले हुसैन क्वाचर वाला ने और उनके साथ थे विपुल रॉय, विपुल हुसैन ने पूरी शाम को संभाले रखा, चाहे मेहमान हो, जजेस, जूरी के सदस्य हो या फिर हो दर्शक। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस खास शाम के नजारे। शाम का आगाज हुआ हुसैन के इस धमाकेदार डांस ने, जहां उन्होंने कभी ऋतिक रोशन के अंदाज में अपना जलवा दिखाया तो कभी बन गए रणवीर सिंह, यानी बॉलीवुड के बेटे को हुसैन ने अपने अंदाज में पेश किया।

0: जो कहा करते थे पहले कभी किसी जमाने में, हे गोविंदा, गोविंदा की फिल्में और क्या फिल्मों में गाने और क्या ड्रेसेस, अब कमाल हो गया है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैशन हो गया है।
1: यस सर, अभी भी ट्रेंड में।
0: हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, हम लोगों ने तब जो सोचा वो संभव हो पाया। किसी प्रकार का, किसी तरह का लोगों में डर या कपड़े पहनते समय किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुछ भी नहीं रहा। समय प्रधान, देश प्रधान, समाज प्रधान और साथ साथ में बिंदास, जिसमें किसी प्रकार का डर नहीं। स्त्रियों में वो शक्ति प्रधान, वो एक ऐसी कमाल की एक कृपा है। इसमें का मिस्टीरियस मदर नेचर जो समय समझती है, जो समय के साथ सिर्फ, जैसे हम लोग यहाँ मुंबई में कहते हैं ना, दर्शन मात्र मान कामना पूर्ति है, ऐसे कहते हैं ना, तो वो पूजा प्रार्थना में है, ये फैशन में है। फैशन में जिस व्यक्ति का जैसा दिल है, उसकी क्रिया में, उसकी सोच में, उसकी कल्पना में वो दिखाई देता है। एस आर क्वीन, क्या राइट टाइम पे, क्या राइट समय में आपने यहाँ पे उपस्थिति दी है, आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल।
2: इसके बाद सभी 30 फाइनलिस्ट का सवाल जवाब दिया गोविंदा ने बाकी जूरी के साथ, जिनमें शामिल थी मशहूर स्किन डॉक्टर अप्रतिम गोयल, पारस छाबड़ा, एसआर क्वींस की फाउंडर श्वेता रॉय और बाकी जाने पहचाने नाम।
3: What would you like to ask the judges? What's the biggest misconception about modern married Indian woman?
4: Thank you for the question, Govinda ji. Good evening, everyone. The most, I think, misconception about modern women would be that she would be okay with others deciding for her, which even today it gets taken for granted. My question is, if your life had a Bollywood background song now play, what would that be?
5: Thank you for the question, ma'am. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Priyanka Shirsat. Well, if there was a Bollywood song to be played, it shall be related to Chak De India, because I believe it's a very inspiring movie, and it basically inspired many other people in terms of their sports.
3: If chosen, what exceptional would you do as the winner of Mrs. India Queen?
6: Wow.
7: Thank you for the opportunity to get the question from Govinda sir. If I win today, I would definitely want to inspire other women who are sitting in their shell and thinking of doing something, however, they do not have enough support. So I would want to definitely collaborate with Shweta ma'am and SR Queen and let them know that they do not have to fear. All they have to do is just make a decision.
8: बहुत से ऐसे बच्चे हैं, उन लोग के रिस्ट्रिक्टिव के लिए है, शादियां नहीं हो पा रही है, वो इस

0: कि चांद जो माओ की माँ है उसे लोग दिल से कबूल नहीं करते। चांद का वही स्वरूप देखना चाहते हैं जो सिर्फ विनस का है। जुपिटर किसी के अच्छा नहीं रहता। तो ये जो नौ नक्षत्र, जो देवी देवता और जितने ग्रह है वो सब जो विराजमान है उन सभी का सम्मान करें। एंड हैव अ ग्रेट टाइम। मेरी बीवी फिर मुझे भड़कने वाली है, वो कहेगी सर ये प्रमोशन देंगे आप।
1: दिस इज वार गुड लव यू ऑल।
2: थैंक यू सर। थैंक यू।
1: आप लोगों ने जवाब दे प्रूफ कर दिया कि हमारे ड्यूटीज एंड हमारी क्वींस के साथ ड्यूटी के साथ साथ ब्रेक्स भी है।

0: को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे, कितना मचा रहा है।
1: धम धम धम धम धम रुक।

0: 最合适，你最合适，你最合适，我说。
1: वैसे इस मौके पर ढेर सारे मेहमान शामिल हुए, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक मेहता यानी सचिन श्रॉफ, इसके अलावा सीनियर अनुपमा की वीता कोठारी यानी शिवानी चक्रवर्ती भी खास मेहमान बनी।

0: क्राइटेरिया नहीं है, दे आर फ्रॉम एज क्राइटेरिया नहीं है, हाइट की क्राइटेरिया नहीं है. एंड आई थिंक किसी भी औरत के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है. कई बार सपने वो अपने मन के अंदर दबा देते हैं और अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो सपनों को उड़ान मिल जाती है. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म एंड कूडोस टू श्वेता रॉय अबाउट इट. कई विमेन ऐसी हैं जो अभी स्टेज पे आई थिंक अनाउंस कर रहे थे कि उन्होंने पहली बार स्टेज पे कदम रखा है, वो घबराई हुई हैं, एक्साइटेड हैं, तो आई थिंक उनको ग्रूम करके स्टेज पे वॉक करना, आई थिंक ये ऑटोमेटिकली दे आर विनर्स आई थिंक. तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म.
1: विमेन को जब भी आगे जो बढ़ाता है वो मुझे हमेशा से पसंद है. और चूंकि ये कहते हैं ना कि औरतों को घर से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है इसमें, तो हमेशा मैं ऐसी जगहों पे यू नो अप्रिशिएट करने के लिए पहुंच जाती हूँ. और मेरा शो भी कुछ ऐसा ही है जो औरतों के सम्मान के बारे में. सो यस ऑफ कोर्स कि मॉडल्स लोगों से आज और कुछ सीखने मिलेगा, स्पेशली यहाँ पे मैंने सुना है हर एज ग्रुप की महिलाएं हैं. यस yes, तो उनसे सीखने मिलेगा. ऑफ कोर्स हर जगह से सीखना चाहिए.
2: देखो मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला, बस जो अच्छा परफॉर्म करे.

0: उस वक्त जो हमारे दिल को लगेगा कि वाओ वेरी नाइस है ना, तो हम उसको अच्छा वोट करेंगे। बाकी जो अच्छा नहीं कर पाएगा वो अगले साल ट्राई कर ले, फिर से हम फिर से करेंगे। बस इस बात
1: इंडिया में ना बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता है, औरतों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो अगर हम अभी सपोर्ट करेंगे देन दे विल बी यू नो अपने लिए आवाज उठा सकती है, अपने लिए स्टैंड ले सकती है। एंड ऐसा तो कोई काम है नहीं जो लड़कियां कर सकती हैं, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती है। तो दैट्स द ओनली रीजन बिहाइंड दिस एंड सो आई सपोर्ट 50 गर्ल्स चाइल्ड एंड they are here today tonight and see my girls how they will walk the ramp now।

0: सीजन हैज जस्ट यू नो सरपास ऑल द एक्सपेक्टेशंस. बहुत अच्छा था, सबने बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एज जजेस यू नो जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर यू नो इट्स वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो. व्हाट डू यू से गरिमा?
1: एब्सोल्युटली आई अग्री विद यू. आप तो फर्स्ट सीजन से एसोसिएटेड रहे हो, मैं तो अभी अभी ज्वाइन इन हुई हूँ इस सीजन में, एंड मैंने जो जर्नी देखी है सारे कंटेस्टेंट्स की फ्रॉम डे वन व्हेन दे वर लाइक लिटरली सो शेकी टू डे थ्री एंड नाउ द फिनाले, तो मुझे वो एपिटमी देखनी है अब चीजों की. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट.

0: ऐसा है कि मतलब दे आर द लीडिंग लेडी, और जो पहचान है हमारे हिंदुस्तान की वो भी कहते हैं ना भारत माता, तो उसे ही है. सो मेरे हिसाब से शी डिड अ रियली ग्रेट जॉब कि जो हमारी आज की जनरेशन है और जो हमारी मदर वाली जनरेशन है वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे.
1: बेस्ट पार्ट एक्चुअली ऑल एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं.
2: अंदर पार समंदर हार कहीं तू जावे ना, आज तू अंबर देख लवंडर तुझको रोक ये पावे ना.
3: इसके बाद सब टाइटल्स दिए गए.

0: टॉप 12 में से चुनी गई 6। उन टॉप 6 में से टॉप 3 फाइनलिस्ट चुनी गई।
1: एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब एक हाथ ऊपर जाएगा, माहौल बदल जाएगा, लाइटें बदल जाएगी, सब बदल जाएगा। एवरीवन फिंगर्स क्रॉस्ड। 3, 2, 1।

इसके बाद श्वेता रॉय, गोविंदा और सब लोगों ने इन विनर्स को क्राउन किया।

0: और क्या चाहिए। बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ।
1: तो ये थे कुछ खास नजारे मिसेज इंडिया क्वींस 2025-2026 के जो हम आपके लिए लेकर आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अनुपमा की कहानी में तो इमोशंस का हर सुर ऑडियंस को टच करता है। एक्चुअली देखिए कितने लंबे टाइम से एंटरटेन करती आ रही है हमें अनुपमा की कहानी। वैसे आपको याद है अनुपमा में मैंने भी केमियो किया था, जी हाँ डॉक्टर चोपड़ा, और मुझे मिले थे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स और एक्सपीरियंस भी था वंडरफुल। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में।
3: और प्रेम के बीच हुई घमासान लड़ाई। परिवार में दिखी नफरतें।
4: व्यापार की सबसे पहली सीख ये है कि ग्राहक भगवान होता है।
3: अनुपमा ने सिखाया श्रुति को सबक।
4: मिट्टी का हो चाहे सोने का, उनकी तो पूजा की जाती है।
3: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर परिवार आपस में ही लड़ पड़ा है। असल में एक तरफ है श्रुति, प्रेम और राही, तो दूसरी तरफ है अनुपमा और बाकी का परिवार, और यहाँ पर दोनों ही कंपटीशन में उतर गए हैं। दोनों ने ही आमने सामने रेस्टोरेंट्स खोल लिए हैं, जिस वजह से अब इनमें लड़ाइयाँ होना तो लाजमी है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब पार्किंग को लेकर अंश और प्रेम में लड़ाई हो गई और बातों की लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। वो तो सही समय पर अनुपमा और बाकी का परिवार आ गया, जिन्होंने अंश और प्रेम को रोक लिया, लेकिन लड़ाई नहीं थमी।
5: शर्मिंदगी महसूस ना हो, क्या कर रहा है तू?
6: प्रेम ये अनुपमा

0: स्कूटी को लेके नहीं, पार्किंग को लेके मारामारी हुई है, और हम दोनों के कैफे की सेम पार्किंग है, तो हमें कोई इशू नहीं था, बट प्रेम को था कि ये पार्किंग हमारी है, एज एन प्रेम की है, बट कॉमन एरिया है वो, सोसाइटी मतलब जो गली है उसका एरिया है वो, उसकी पार्किंग कैसे हो सकती है? तो उसी को लेके अंश को भी गुस्सा आता है, तो प्रेम बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, तो थोड़ी मारामारी हो जाती है हमारे बीच, बट इतने में फैमिली वाले आके छुड़वा देते हैं, तो ज़्यादा कुछ लगी वगी नहीं बची।
1: अंश और प्रेम शांत हुए तो दूसरी तरफ राही और ईशानी में बहसबाजी छिड़ गई, जहां पर ईशानी राही और श्रुति दोनों को ही खरी खोटी सुना रही है, जिस बात पर राही काफी भड़क गई है।
2: मैं बताऊं असली बात क्या है, इन लोगों का प्रॉब्लम स्कूटी से नहीं है, इन लोगों का प्रॉब्लम हमारे सक्सेस से है। क्या इनका कैफे खाली है, हमारा खराब हुआ है, इससे ये हमारा, इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हमारा सक्सेस।
3: दो दिन में कैफे की सर्विस का करियर में तो ऐसा नहीं होगा,
2: दो दिन में इनको तो चोट तो लग जाती है।
3: मेरी कोई इगो नहीं है,
4: लड़ाई करने की कोई शराबत होती है, कोई तरीका होता है।
2: ये बात आप अपने छोटे कैफे के छोटी सोच रखने वाले सपोर्टर्स को समझाइए। तो मेरा मानना ये है कि उसको श्रुति इन्फ्लुएंस कर दिया है, एक्चुअली हमारा मानना,
5: मैं भी अगेंस्ट हूँ श्रुति के, एंड धीरे धीरे मैं मेरा मन प्रेम से भी हट जाएगा, क्योंकि श्रुति इतना इन्फ्लुएंस कर रही है और वो इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि धीरे धीरे मेरा भी मन हट जाए कि यार बाहर में जाओ।
2: ओके, तो भाई हां, अब ऐसा लगता है कि वो प्रेम बोल रही हूं, श्रुति की कठपुतली
5: है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि अनुमा सही बोल रही है, एंड ये बस इन्फ्लुएंस पर लड़े जा रहा है बिकॉज उसका कैफे बंद हो गया था, तो इट्स मेकिंग नो सेंस।
2: और श्रुति हमेशा हमें बोलती रहती है क्लासलेस पीपल, चीप बिहेवियर, तो ये हमें उनको औकात दिखानी है कि क्या है
1: भाई। लेकिन यहाँ तो लड़ाई थम ही नहीं रही, और इस लड़ाई में कूद गई श्रुति, जो अनुपमा और उसके कैफे को लेकर कई सारी बातें कहने लगी, और फिर अनुपमा ने दिया श्रुति को पलट कर जवाब।
2: ऐसे क्या बोल रहे हो, अपना सस्ता माल बेचकर तुमने एक भीड़ तो जमा कर ली, लेकिन उस भीड़ के स्कूटी और साइकिल को पार्क करने के लिए एक पार्किंग एरिया अलॉट नहीं कर पाई, व्हाट अ चीप बिहेवियर।
6: इससे तो जब आग लगती है उसमें हम लोग वो चीज पानी डालते हैं, आप अमीरों की तरह पेट्रोल नहीं डालते। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल कौन सा है? मेरा गुजरात। यहाँ की हवा में, पानी में, मिट्टी में व्यापार घुला हुआ है, और व्यापार की सबसे पहली सीख ये है कि ग्राहक भगवान होता है, भगवान चाहे मिट्टी का हो चाहे सोने का, उनकी तो पूजा की जाती है। तो ग्राहक चाहे एक रुपए की टोकी खरीदे या करोड़ों का जहाज, उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी कहना है हमें कहो, हमारे कस्टमर को नहीं।
1: लड़ाई तो थमने का नाम नहीं ले रही, तभी यहाँ दिग्विजय को बीच में आना पड़ा, और फिर दिग्विजय ने दिया पार्किंग को लेकर सलूशन।
7: हमारी पार्किंग का बोर्ड है,
8: ये हमारी पार्किंग स्पेस है,
7: ये किसी की पार्किंग स्पेस नहीं, ये गली है जहाँ पे तुमने अपनी पार्किंग का बोर्ड लगाया, हमारी शराबबंदी करने लगा रहे। ना ये गली किसी की है और ना ये पार्किंग, ये गली सबकी है, और वैसे ही ये पार्किंग भी हम सबके लिए कॉमन है। हम अगर आमने सामने बिजनेस चला रहे हैं तो एक दूसरे के साथ जीना सीखना पड़ेगा, को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, को ब्रांडिंग करनी पड़ेगी।
6: फैसला करो कि दोनों को आगे बढ़ना है या फिर एक दूसरे से टकरा कर दोनों को घाटा करना है।
1: भाई सोल्यूशन तो मिल गया है, लेकिन फिर भी ये लोग लड़ाइयां तो जरूर करेंगे, क्योंकि श्रुति, प्रेम और राही के दिल में अब नफरत जो है, अब देखना होगा कि अनुपमा इन सबको कैसे हैंडल करती है। खैर, अनुपमा को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसके साथ डटकर खड़े हैं दिग्विजय, जो हर मुश्किल में उसका साथ देंगे। अब देखना होगा कि अनुपमा अपने कैफे को कैसे सक्सेसफुल

0: बनाती है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: महादेव एंड सन्स की ये कहानी भी बजा रही है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का संगीत। अब देखिए, इस कहानी में भी आते हैं नए नए मोड़, नए नए ट्विस्ट, नई नई प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, नए नए षड्यंत्र रचे जाते हैं, जाल बिछाए जाते हैं, तभी तो है यहाँ पर इतना सारा एंटरटेनमेंट। क्योंकि अगर ये कहानी होती सीधी साधी तो हो जाती ना डल और बोरिंग। ये ड्रामा ही तो लेकर आता है हमारे लिए एंटरटेनमेंट। सो लेट्स चेक इट आउट।
0: आशीष और मोगरा की शादी में लगा नच का तड़का। जोड़ियों का दिखा नच बलिए। झूम कर नाचे धीरज रज्जी और नर्मदा केतन। कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में आ गया है मौसम शादी का, जहां पर आशीष और मोगरा शादी के बंधन में बनने को तैयार हैं और लाल रंग के आउटफिट में दुल्हनिया रेडी है और दूल्हे राजा कर रहे हैं उन्हें खूब कॉम्प्लीमेंट। वैसे इस शादी में चार चांद तब लगे जब स्टेज पर शुरू हुआ डांस। तो भाई, यहाँ पर आ गई जोड़ी धीरज और रज्जी की, जिन्होंने अपने क्यूट क्यूट अंदाज से स्टेज पर चार चांद लगा दिए और अपना नच का तड़का बिखेरा।

तो वहीं नर्मदा और केतन ने भी अपनी ताल से ताल मिलाई। देखिए तो कैसे वो आज सब कुछ खुलाकर डांस कर रहे हैं और मना रहे हैं ढेर सारी खुशियाँ।

लग्नाच का समा बंधा है, तो ऐसे में दुल्हा दुल्हन के साथ साथ पूरा परिवार आ गया है स्टेज पर और यहाँ पर शुरू हो गया इन सभी का हैप्पी वाला डांस।

0: इससे शादी में ट्विस्ट का तड़का भी लगने वाला है।
1: चुपचाप सही सलामत आशु दादा को यहाँ भेज दीजिए और फूफा जी को अपने साथ ले जाइए।

0: लू।
1: तो क्या ये शादी संपन्न होगी या आएगा ट्विस्ट, ये देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब देखिए डॉक्टर आरएमबी की एक कहानी भी बजाती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का संगीत। जब से कहानी शुरू हुई है यहाँ है ढेर सारा ड्रामा। अब तो डॉक्टर आरएमबी डॉक्टर भी बन गई हैं, निकल पड़ी हैं एक नए सफर पर, लेकिन फिर भी मनोरंजन की कमी नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो अवंतिका और विश्वास है ये कुछ ना कुछ कहानी में ऐसा करते ही रहते हैं कि आता है इस कहानी में ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर

0: रंभी के सेट पर दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
1: खतरे में पड़ी आरंभी की जान, हुई ध्रुव हीरो की एंट्री, ध्रुव बना आरंभी का रक्षक। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में फियान किडनैप हो चुका है, लेकिन उस जगह पर आरंभी पहुंच गई है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और देखिए कैसे वो इस गुंडे से भी लड़ रही है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वियान ऊंचाई से गिरने वाला होता है कि आरंभी उसे बचाकर खुद खतरे में पड़ जाती है।
2: तेरी तो हट, ये ले तेरा बच्चा गया।
1: और देखिए कैसे अब आरंभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और इसी हादसे के साथ सीरियल में हो गई है आरंभी के हीरो की एंट्री, यानी कि ध्रुव की एंट्री, जिसका किरदार निभा रहे हैं अर्जित तनेजा, जो अब आरंभी की जिंदगी में खुशियां लाएंगे। इसी के साथ देखिए कैसा है अर्जित का टशन। ध्रुव एक बिजनेसमैन है और इस बिजनेसमैन ने बड़े ही स्टंट कर आरंभी को बचा लिया।
3: मुझे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा।

0: रणबीर की जिंदगी में क्या नई उम्मीद लेकर आया है ये नया चेहरा?
1: अब ठीक है,
2: मेरी मम्मा की लाइफ की सुपर हीरो आप ही हो।
3: तो भाई इस सुपर हीरो ने आरंभी को तो बचा लिया, लेकिन ये बिजनेस माइंडेड है और यहाँ पर भी देखिए कैसे डील करने में लगा हुआ है।

0: टूट गए
1: जिसमें डाल।
0: अरे
2: आकाश है ना तो
0: हमारे पैसे 70,000।
3: सो नाउ द टोटल इज
0: 2,80,000। बिल मैसेज कर देता हूँ। नंबर क्या है तुम्हारा?
1: 9189725। पैकेट बड़ा धमाका।
0: तेरी मम्मी होगी आंटी, वो भी साड़ी के साथ जूते पहनने वाली आंटी। अंकल दिखता हूँ मैं, किस अंकल से ये मसल सी देखे।
4: तो आइए ध्रुव से ही जानते हैं उनके इस नए किरदार के बारे में और कितने एक्साइटेड हैं अर्जित सीरियल में एंट्री करके।
5: वही लोग हैं, वही सेट है, मतलब वही सेट नहीं है, लोकेशन वही है एंड सेम टीम है। सो ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक अ होम कमिंग एंड अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया ही होगा जो होगा। हैप्पीनेस, प्रॉब्ली सम हैप्पीनेस दैट आर अम्बी नीड्स, थोड़ी हंसी, थोड़ी खुशी वो लेकर आएगा एंड काफ़ी अच्छे नई चीज़ें भी लाएगा, काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लाएगा, कुछ एक्साइटिंग चीज़ें भी लाएगा, सब कुछ ही लाएगा। देखते जाइए कब क्या कैसे लाता है। ध्रुव डॉक्टर नहीं है, ही इज़ अ बिजनेस मैन एंड आई थिंक वो इनके हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करता है, दैट्स हाउ ही एंटर्स द लाइफ। सो कैसे धमाका करता है देखते हैं। आप लोग तो शो देख रहे हैं एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ शो को अच्छा प्यार भी मिल रहा है, इसकी स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, यूनिक है, ऐश्वर्या अच्छा काम कर रही है, इवन अंजुम एंड बाकी जितने भी लोग हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ आई थिंक न्यू जर्नी फॉर आरंभी इन दिस विद दिस होल एंगल एंड आई होप सभी दर्शकों को ये पसंद आए।
4: सब भी हो जाइए तैयार आरंभी और ध्रुव की ये अनोखी कहानी देखने के लिए, क्योंकि अभी तो कई ट्विस्ट आने बाकी है। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: आपकी फेवरेट कहानी में चल रही हो एक रॉकिंग सी पार्टी विद डांस एंड परफेक्ट म्यूजिक, एवरीथिंग इज वेरी रॉकिंग, लेकिन वैसे ही हो जाता है किसी नई चीज का खुलासा, या तो विलन आके कर देता है क्रिएट कोई नया ड्रामा, तो बस फिर तो बचता है यहाँ पर ऐसा एंटरटेनमेंट का म्यूजिक कि हमारे लिए मनोरंजन तो पक्का है। तो चलिए फिर पता कर आते हैं क्या कुछ हो रहा है हमारी एंटरटेनमेंट की दुनिया में, दिखाते हैं आपको रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज़।

0: rocking and shocking news.
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टेलीविजन की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग और शॉकिंग खबरों में बात करते हैं जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। वही दर्शकों का मोस्ट अवेटेड सीक्वेंस आ चुका है। जी हाँ, हो रही है अनु और आर्यवर्धन की शादी। लेकिन अब क्या ये शादी संपन्न होगी या फिर आएंगे ट्विस्ट, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।

रिश्ता क्या कहलाता है फेम, शिवांगी जोशी ने मनाया अपना जन्मदिन। आइए देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के ये सभी खास पल।

0: इन दिनों मोनी रॉय और सूरज नामबियार के डिवोर्स को लेकर काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं। ऐसे में अब सूरज नामबियार ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दोनों के म्यूचुअल कॉन्सेंट पर ये डिवोर्स हुआ है। ना ही इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ना ही एलिमनी को लेकर किसी भी बात में सच्चाई है।
1: सुना है आसमान से धरती पर तारे गिरते हैं, ये हमरी रोदी नहीं रहा, एक तारा है।
2: चेहरा देख चेहरा।
0: रामचरण और जानवी कपूर की आने वाली फिल्म पैडी का ट्रेलर सामने आया है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर।
3: हमारे लिए खेल जीतना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है।
0: मैं आपको बता दे कि इस फिल्म में नजर आएंगे दिव्येंदु और बूची बाबू भी।

0: ही बन गई है करण वाही और सुरभित ज्योति की जोड़ी, और ये इंडियाज फर्स्ट म्यूजिकल वेब सीरीज जिसका नाम है 7 1/2 डेट्स में नजर आएंगे, जो रिलीज होने वाली है 24 मई को।
1: जो भिड़ा तेरे नैनों।
2: मैं तो सुदेश जी का पार्टनर बनना है था।
0: देख लीजिए लाफ्टर शेफ का ये प्रोमो, जहाँ किचन कॉमेडी आप सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी।
3: इसका मतलब रिश्ता पक्का समझे।
1: आज होगा पार्टनर एक्सचेंज। अंकिता अली गोने, कृष्णा तुम्हारी पार्टनर है। आज देखोगे कैसे नहीं बनाएंगे स्टेशन में खाना।
3: आज पहली बार चैनल ने मुझसे कैश लेके मुझे चिल्लर थमाया है। ओ मटरी मटरी,
4: तुम्हें आटा बनाना आता है? अचारी फिलिंग कैसे बनेगी?
5: ये हम क्या कर रहे हैं?
4: तुम्हें सोते करना आता है?
5: सोते का है इसमें भाई? इसके साथ काम करके आज 4 मौतें होने वाली है मेरी। मुझे भगवान क्या?

0: थोड़ा सूखा आटा ला के दीजिए ना कहीं।
1: अरे सूखा आटा
2: फंस गया।
3: मैंने कहा था ना तीन, तूने पानी क्यों डाला अर्जुन?
4: देखा मेरे से अलग होकर पागल हो गए। करण भाई देख,
2: और पहली बार ऐसा लग रहा है अर्जुन को देख के लड़का जिंदा हो गया।
5: इतना खुशियाँ कभी मनाया नहीं स्टेशन में।
1: You can have that chemistry with anybody else, Vicky Jain.
0: You are whatever, wherever, wherever, wherever.
1: Zasti, bolu na kos.
0: Bhandkor hi hai wo.
1: Kya hai?
0: Bhandkor.
1: Bhandkor.
0: Whatever.
6: They are jealous of me.
0: Bhandkor.
6: Jealous of me.
0: Whatever, whatever.
6: Jealous of me.
0: Bhandkor.
1: Kya kar rahe bhai, ab kya kar rahe?
7: Waqt khatam. Qayamat shuru.
8: नागिन 7 के इस नए प्रोमो में देखिए कैसे राधिका की चाल को नाकाम कर आर्यमन ने बचाई सबकी जान।
9: हमला हो गया, एक्शन लो अभी।
10: हर

नजर डालते हैं महादेव एंड सन्स के इन बिहाइंड द सीन नजारों पर। आखिर देखिए कैसे आपके फेवरेट कलाकार शूट करते हैं।

0: पत्री में बारात घर आवे के योग तो है ही नहीं।
1: ठीक से देखिए ना।
2: हाँ तो धूमधाम से शादी करेंगे हैं? अब बड़का होटल में बारात आएगा, घर में क्यों आएगा? क्यों, सही कह रहे हैं ना?
3: उल्का गुप्ता की आने वाली फिल्म रजनी की बारात का ट्रेलर सामने आया है। ऐसे में आपको बता दें कि ये फिल्म में होगा ढेर सारा मनोरंजन, ढेर सारा रोमांस और कॉमेडी के साथ साथ मेलोड्रामा भी। और इस फिल्म में नजर आने वाली है सुनीता राजवर और सरीना वहाब। आपको बता दें कि ये फिल्म 29 मई को रिलीज होगी।
4: वो हमारी हो जाती है और रजन हमें बहुत पसंद है।
5: रजन का भला बुरा किसमें है वो रजन का बाप ही तय करेगा।
4: हमारा और रजन के बीच में पड़ने का कोई जरूरत नहीं है।
5: दिल से नहीं दिमाग से काम लो बेटा।
6: तुमसे बहुत प्यार करते हैं।
4: पैसा या प्यार?
6: प्यार
4: प्यार।
3: किंग की सक्सेस के बाद अब कृतिका कामरा डायरेक्टर पुष्पन मुखर्जी की आने वाली फिल्म में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जून में शुरू होगी। बहुत जल्द आने वाली है सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म सिस्टम, जिसके प्रमोशंस में पूरी टीम जुट चुकी है। ऐसे में बीती शाम ये हमारे कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आएंगी ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर। बहुत जल्द सोनी सब के सीरियल हस्तिनापुर के वीर में नजर आएंगे शैलेश दातर, जो नजर आएंगे वेद व्यास के किरदार में।

0: यहाँ तो ऑडियंस की कहानियों का, इमोशंस का और गेम का परफेक्ट मिक्स बजाता है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का म्यूजिक। मैं तो बात कर रही हूँ रियलिटी शो तुम हो ना की। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इस शो के मंच पर, क्योंकि यहाँ भी है आपके लिए एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, थ्रिल, सब कुछ एक साथ। लेट्स चेक इट आउट।
1: आज हमारे इस मंच पर जो मेहमान आए हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ मसाले, घर में खाना पति बनाए, ऑफिस में पत्नी सबको चखाए, जब कोई दूसरे किसने बनाया सारा क्रेडिट पत्नी ले जाए।
2: ऐसा कौन करता है?
3: घर में खाना बनाती भी है ना, वो भी रोज मसाला भात बनाता।
1: दो दिन पहले क्या खाया था?
3: मसाला नहीं।
1: कल क्या खाया था?
3: मसाला नहीं।
1: क्या खाओगी? ये तो ना मेरी श्रद्धा भी नहीं करती।
4: जी, जब मेरे को 2024 में अटैक आया था, जब इसने मेरे को बहुत हेल्प किया था। मैं इसको कोई भी चीज के लिए मना नहीं करता।
5: जितना अच्छा अस्था परिवार होता है और एक सेकंड में मतलब बिछड़ सकते हैं, मतलब लाइफ कुछ भी मतलब करवा सकते हैं। जिसको मिलती नहीं मंजिल, कैसे दिन निकाले हमको खुद को नहीं पता।
1: घूमने के लिए शी लव्स थाई, खाने में पसंद है मैंगो स्टिकी राइस, मम्मी है पक्का, खा ले जाती हूँ।
4: इनका चार का ग्रुप है।
1: हाँ,
4: वो चारों जाते हैं।
1: क्या क्या देखा आपने थाईलैंड में?
5: आपने क्या देखा? आप गए हुए होंगे
6: ऐसी जगहों में तो बाइक से लेके जाना चाहिए, तभी तो रोमांस बढ़ता है।
7: तो मेरे वाले तो रोमांस में जीरो है।
8: बड़ा आइटम उठा लो,
6: 1500 तो इधर ही हो गया।
1: इतने सालों से आप इनके साथ में
4: जी,
1: क्या वो एक कारण है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं सब कुछ भूल सकता हूँ क्योंकि तुम हो ना?
4: वाइफ जब जॉइंट फैमिली में आती है तो वो अपने जॉइंट फैमिली के साथ कैसा उसका व्यवहार होता है, सुबह से उठ के रात तक वो सबकी सेवा करती है, मेरे मेरे बच्चों के, मेरे डैडी मम्मी की। शी हैज गिवन मी द बेस्ट सपोर्ट इन माई लाइफ। मेरा संसार तुम ही हो, तुमसे ही मेरी जिंदगी है
6: और मेरी भी आपसे ही जिंदगी है।
0: तो म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट के इस म्यूजिकल एपिसोड के साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आप भी सेलिब्रेट करें म्यूजिक को, बस कुछ पल के लिए आप अपना समय दीजिए अपने फेवरेट संगीत को, न्यू मिनटों में आप हो जाएंगे स्ट्रेस फ्री। और ऑफकोर्स देखते रहिए सास बहू और बेटियां। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम जगह।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।

0: At DSW, we ask the important questions, like, what shoes are you going to wear? Whether you're prepping for wedding season, festival season, or just planning the ultimate vacay, the right shoes can make or break an RSVP. So own the moment. You've got big plans, and we've got just the shoes. At the perfect price, of course. Get ready to get ready with Designer Shoe Warehouse. Head to your DSW store or DSW.com today. And let us surprise you.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
4: संभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
7: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
9: देश देख रहा है
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
11: सेज यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन
12: सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला रहेगा लागू कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज कहा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते चमोली के आदिबदरी धाम में नौठा कोथी का लठमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपरा का जीवंत प्रतीक है ये पर्व हजारों भक्तों की जयकारों के बीच द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की डोली धाम के लिए रवाना 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट भक्तों में जबरदस्त उत्साह ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर भक्ति के रंग में रंगा संगम नगरी प्रयागराज सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देश भर के मंदिरों में खास रौनक मैदानों में चढ़ते पारे के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का सुहाना मौसम। वादियों के बीच शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी। बड़ी संख्या में खुरेज घाटी पहुंच रहे हैं पर्यटक।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
12: भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज। पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। भगवान मद महेश्वर की दिव्य डोली कैलाश के लिए हुई रवाना। 21 मई को खुलेंगे मद महेश्वर मंदिर के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर की मठ से रवाना हुई डोली। डोली के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। आज डोली अपना पहला रात्रि प्रवास रांसी गांव में करेगी। कल द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए अंतिम गांव गोंडार गांव पहुंचेगी बाबा की डोली। 21 मई को भगवान की डोली गोंडार गांव से धाम के लिए प्रस्थान करेगी। डोली के धाम पहुंचने पर मधुमहेश्वर मंदिर में खोले जाएंगे कपाट। चारधाम यात्रा में बड़ा आस्था का सैलाब। आज 31वें दिन अब तक 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में कल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अब तक 6,65,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ में भी 21,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। अब तक 4,500 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भी लगा भक्तों का तांता। अब तक करीब 2,75,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भी भक्तों का तांता। 2,70,000 से ज्यादा भक्तों ने हाजिरी लगाई। चमोली के आदिब दरी धाम में नौठा कोथी का लठवार बेला का धूमधाम से संपन्न हुआ। गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक। खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजेबाजे देवडोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल मंदिर पहुंचा। युद्ध के बाद ढोल दमाओं की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य की प्रस्तुति। भगवान आदिब दरी नाथ जी को नए गेहूं जौ का चढ़ाया गया भोग। रायबरेली के शुरुआ हनुमान मंदिर में पहुंचे राहुल गांधी। भगवान हनुमान की पूजा पाठ की। आज अजेश का तीसरा कल्याणकारी बड़ा मंगल। देश भर के हनुमान मंदिरों में की जा रही है विशेष पूजा अर्चना। बजरंगबली की पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। हनुमान जी को अर्पित किए जा रहे हैं चमेली के तेल और सिंदूर। ज्येष्ठ माह में हनुमान जी के वृद्धा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। आज के दिन लाल वस्तुओं का दान करना माना जाता है शुभ। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर किए गए उपाय जल्द फलकारी होते हैं। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमान गढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी हुई है लंबी कतारें। भक्तों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की, विशेष भोग लगाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमान गढ़ी के दर्शन करने पर रामलला के दर्शन के लिए भी उमड़ रहा है आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे हैं दर्शन। सुबह से राम मंदिर में परिसर में लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना। बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला फल चना गुड़। दिल्ली के मरगढ़ वाले हनुमान मंदिर में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। तीसरे बड़े मंगल पर भक्तों ने किया दर्शन। सुबह से हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लगी हुई है लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए हनुमान जी के जयकारे। पुरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। प्रयागराज में बदवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगा हुआ है तांता। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन करके जयकारे लगाए। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान जी को भव्य फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। पुरी में भगवान जगन्नाथ में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। उज्जैन में तीसरे बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की विशेष आरती उतारी गई, भक्तों ने जमकर जयकारे लगाए। भगवान महाकाल का अभिषेक करने के बाद भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ, बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। आरती से पहले बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक दुग्ध दही घी शक्कर से किया गया। धार के भूषशाला में विशेष पूजा हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भूषशाला में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ओम नमः शिवाय के जयकारे। 20 मई को एक दिन के लिए बंद रहेगा खाटू श्याम का दरबार, मंदिर कमेटी ने जारी की सूचना। खाटू श्याम के विशेष तिलक श्रृंगार के कारण लिया गया है एक दिन मंदिर बंद करने का फैसला। आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगे मंदिर के कपाट, 20 मई की शाम 5 बजे के बाद खुलेंगे मंदिर के कपाट। मंदिर परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद किया जाता है बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार, उस दौरान बाबा श्याम के मस्तक पर चंदन का लेप लगाया जाता है। हर साल बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं देश दुनिया से लाखों भक्त, इस भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लाखों भक्त। सैलानियों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, खुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या अपरंपार। भारतीय सेना का शाइना कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का मुख्य केंद्र, बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्त। पुंछ में सेना ने चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन कर दिया, लोगों को पशु रोग के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की साइकिल पर सवारी, लोगों से ईंधन बचाने की अपील। रुद्रप्रयाग प्रशासन के केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलाया गया स्वच्छता अभियान, 25 टन कचरा एकत्रित। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई गई आम की 14 किस्में। पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर आम्रपल्ली समेत तमाम किस्म शामिल। राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके उगाई गई 14 अलग अलग किस्में, आम के पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य में युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। राजौरी में बह रही है विकास की बायार, नए पुल से ब्लॉक का सेरी और ब्लॉक लंबेरी के बीच बेहतर संपर्क। मैदानों बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। आसनसोल के स्कूलों में गूंजा वंदे मातरम, छात्रों शिक्षकों में उत्साह। वियतनाम के हनोई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत हुआ, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत, समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी गई 30 दिन की छूट। कोल्हापुर के एक शिल्पकार ने बनाई है चांदी की कोल्हापुरी चप्पलें, स्पेशल ऑर्डर पर तैयार। सांगली के एक व्यापारी ने अपने दामाद को देने के लिए ऑर्डर की है चांदी की चप्पल, 10 इंच लंबी और 1.5 किलो वजन वाली इस चप्पल की कीमत 4 लाख रुपए। पाली में दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश, गर्मी में वन्य जीवों के लिए पहाड़ियों पर बने कृत्रिम एनीकट में की जा रही है पानी की बौछार। समाजसेवी संगठन द्वारा वन्य जीवों की मदद के लिए उठाए जा रहे हैं कदम, पाली में दिन का तापमान 43 डिग्री के पार।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना, जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूल, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हल्के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: कौन से ग्रह का मंत्र मोती की माला से जपना शुभ होता है? किस ग्रह का मंत्र हल्दी की माला से जपने पर लाभ होता है? और कौन सी माला है जिससे हर ग्रह का मंत्र जपा जा सकता है? क्या हैं अलग अलग ग्रहों के मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. Tune in has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला रहेगा लागू। कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, कहा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। चमोली के आदिब दरी धाम ने नौठा कौथिक नटमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न। गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। पर हजारों भक्तों की जयकारों के बीच द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की डोली धाम से लिए रवाना हुई। 21 मई को खुलेंगे भगवान के कपाट, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। देश माह के तीसरे बड़ा मंगल पर भक्ति के रंग में रंगा संगम नगरी प्रयागराज। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, देश भर के मंदिरों में खास रौनक। मैदानों में चढ़ते पारे के बीच सैलानियों को लुभा रहा है कश्मीर का सुहाना मौसम। वादियों के बीच शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी, बड़ी संख्या में गुरेज घाटी में भी पहुंच रहे हैं पर्यटक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार, और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। हनुमान जी जो स्वयं शिव के रुद्रावतार होते हुए भी श्री राम का दास कहलाना पसंद करते हैं, माना जाता है कि आप हनुमान जी से पहले यदि श्री राम के नामों का जाप करते हैं तो बजरंग बली प्रसन्न हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वाले साधक की वो सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको हनुमान जी के स्वरूपों के दर्शन तो करवाएंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हनुमान जी के किस स्वरूप से कौन सा वरदान पाया जा सकता है।

0: की पल और बुद्धि का होता है गुणगान।
1: चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम चरणों।
0: महाबलशाली और राम काज के आतुर रहते हैं हनुमान।

0: बजरंग बली के अलग अलग स्वरूप आपका करेंगे कल्याण।
1: जय जय जय जय हनुमान जी राम राम।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों से विभिन्न वरदान पाए जा सकते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताने जा रहे हैं कि भक्ति की शक्ति की पराकाष्ठा बने हनुमान जी की महिमा। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के किस स्वरूप की उपासना करने से कौन से लाभ हो सकते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के विभिन्न रूपों की चर्चा है। हनुमान जी के अलग अलग रूपों के द्वारा कई समस्याएं सुलझ सकती हैं। बजरंग बली को एकादश रुद्रावतार माना गया है, इसलिए रामायण में भी हनुमान जी की महिमा और महत्व को अद्भुत मानते हैं। इन्हें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए श्रद्धा पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से हर काम में विजय मिलती है। अलग अलग काम के लिए लिया गया संकल्प आपकी हर परेशानी को दूर कर सकता है। लगातार बजरंग बली की 40 दिन पूजा करने से अद्भुत शक्ति का एहसास होता है।
2: ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो कामना यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आप कामना करेंगे वो कामना आपकी संसिद्ध होगी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मनोजबम मार्तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि में भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी है, धनवानों में भगवान के पास कुछ ना होते हुए सबसे बड़े धनवान हनुमान जी हैं महाराज हैं।
0: कलयुग में हनुमान जी को चमत्कारिक देव माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से न सिर्फ घर की बाधा दूर हो जाती है बल्कि बिगड़े काम भी बन जाते हैं। कहते हैं समस्त दुखों का नाश महज हनुमान जी की आराधना से हो जाता है। चलिए आपको बताते हैं हनुमान के युद्ध अवतार या वीर स्वरूप की महिमा। हनुमान जी के इस स्वरूप की उपासना करने से पराक्रम और साहस की प्राप्ति होती है। वीर हनुमान स्वरूप में बल और आत्मविश्वास दिखाई देता है। हनुमान जी ने अपने साहस और पराक्रम से कई राक्षसों को नष्ट किया। संकट में श्री राम के काज सवारे। वीर हनुमान स्वरूप की पूजा से आत्मविश्वास बढ़ जाता है, साथ ही आपके साहस के आगे शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे।
2: हनुमान जी के अन्य स्वरूपों की बात किया जाए तो हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियों में एक लघिमा सिद्धि, हनुमान जी छोटे हो जाते हैं, मसक समान रूप कपिधारी लंकहीं चले सुमिर नरहारी, तो लघिमा सिद्धि से छोटे हो जाते थे। और एक सिद्धि थी जिससे हनुमान जी बहुत विशालकाय हो जाते थे, जब सुरसा के यहाँ गए थे तो सुरसा मैया ने जब उनको ग्रास बनाकर भोजन करना चाहा तो हनुमान जी उस समय सतजोजन तेहीं आनंद कीन्हा, और हनुमान जी सौ योजन के हो गए थे। भक्त जिस भावना से चाहे उस भावना से हनुमान जी का आराधन कर सकता है।
0: सूर्यदेव को हनुमान जी का गुरु कहा जाता है। धर्मग्रंथ कहते हैं कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नव निधियां थी जिससे वो हर कार्य को मन की गति से कर सकते थे। इसलिए तो चलायमान सूर्य के साथ चलते हुए वो विद्या प्राप्त कर सके। चलिए आपको बताते हैं कि सूर्यमुखी हनुमान जी के दर्शन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति हो सकती है। सूर्यमुखी हनुमान की महिमा। सूर्य गति और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से ज्ञान और कार्यों में गति प्राप्त होती है। इस स्वरूप की उपासना से विद्या उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होता है। हनुमान जी का एक और स्वरूप है कल्याण मुद्रा। हनुमान जी के आशीर्वाद देती मुद्रा को अभय मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में वे अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को भक्तों की ओर खुला रखते हैं, जो निर्भयता सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये मुद्रा नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि महाबली की इस मुद्रा से कौन से लाभ होते हैं। आशीर्वाद देती मुद्रा की महिमा। हनुमान जी की आशीर्वाद देती मुद्रा को घर की पूर्व दिशा में स्थापित करें। रोली मोली चावल धूप दीप से पूजन करें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर इनके सामने रखें। कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक न होने पर इनकी उपासना करें। खोया हुआ मान सम्मान और यश प्राप्त हो जाएगा।
2: हनुमान जी भगवान शिव के ही अवतार हैं और शंकर स्वयं केसरी नंदन भगवान शिव के जो 11वें रुद्र हैं वही श्री हनुमान जी हैं। और आशीर्वाद देती हुई जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है अभय मुद्रा। हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा के माध्यम से लोगों का और जगत का कल्याण करते हैं और उनकी अभय मुद्रा के माध्यम से जो माता सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था वही अभय मुद्रा से आठों सिद्धियाँ और नवोनिधियों को जगत को प्राप्त कराने के लिए हनुमान जी सक्षम हैं।
0: हनुमान जी का हर स्वरूप परम कल्याणकारी और वरदानी है। आप किसी भी स्वरूप की उपासना कीजिए उसमें भक्तों के लिए मंगल कामना का ही आशीर्वाद छिपा है। आगे हम आपको पवन पुत्र के और भी शुभकारी स्वरूपों के दर्शन करवाएंगे और जानेंगे इस स्वरूपों से भक्तों को कौन कौन से लाभ होंगे। तब तक आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: धर्मशास्त्र बताते हैं कि हनुमान जी के हर स्वरूप से एक कथा जुड़ी हुई है। उनके पंचमुखी वेश धारण करने का भी विशेष प्रयोजन था। साथ ही ये भी जानेंगे कि सेवक स्वरूप में हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन करने से कौन से मनोरथ सिद्ध किए जा सकते हैं।

0: अति विशिष्ट हैं हनुमान जी के पंचमुख, कर्तव्य और धर्म से नहीं होने देंगे विमुख। आज हम अपनी खास पेशकश में जान रहे हैं बजरंगबली के विभिन्न स्वरूपों की महिमा। माना जाता है कि हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य रूप है, जिसमें उनके पांच मुख और 10 भुजाएं होती हैं। यह अवतार भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण से बचाने के लिए लिया गया था, जो पांच दिशाओं की सुरक्षा, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक है। इस स्वरूप में हर मुख एक विशिष्ट शक्ति और दिशा को दर्शाता है। पंचमुखी हनुमान जी की मुद्रा। पंचमुखी हनुमान जी की मुद्रा को घर की पूर्व या दक्षिण दिशा में लगाएं। कुशा के आसन पर बैठकर धूप दीपक जलाएं, जल का पात्र भर कर रखें। परिवार पर आए संकट के नाश के लिए यह मुद्रा अमोघ है। इस मुद्रा के सामने दाएं हाथ में जल लेकर संकल्प लें। संकल्प के बाद 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। ऐसा लगातार तब तक करें जब तक आपका काम सिद्ध ना हो जाए। काम सिद्ध होने पर मंगलवार और शनिवार को पीपल के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ अर्पित करें।
1: पंचमुखी हनुमान जी के मुख की महिमा को प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि हनुमान जी के पंचमुख है और पंचमुखों में से मानो पंचानन भी भगवान को कहा गया है। जैसे शिव जी को पंचानन कहा गया, वैसे हनुमान जी को भी पंचानन कहा गया। तो पंचानन का मतलब पांच मुख है और इस प्रकार से पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करने से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। साथ साथ में हमें अनेक प्रकार के मनोवांछित कर्मों और फलों की प्राप्ति होती है।
0: चलिए अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी का एक और दिव्य स्वरूप, जिसे श्री हरि के नरसिंह अवतार से जोड़ा जाता है। दक्षिणमुखी हनुमान जी की पूजा प्रतिकूल परिस्थितियों, शत्रुओं और भय के नाश के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इनकी उपासना से यमराज का भय, शनि, राहु, केतु के दोष और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। दक्षिणमुखी हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी की वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वो हनुमान जी का दक्षिणमुखी स्वरूप है। दक्षिण दिशा काल यानी यमराज की दिशा मानी जाती है। हनुमान जी रुद्र यानी शिव जी के अवतार माने जाते हैं, जो काल के नियंत्रक हैं, इसलिए इन्हें महाकाल भी कहते हैं। दक्षिणमुखी हनुमान की पूजा करने पर मृत्यु भय और चिंताएं समाप्त होती हैं। पंचमुखी हनुमान जी का एक मुख उत्तरमुखी हनुमान भी है। माना जाता है कि हनुमान जी का ये स्वरूप घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। उत्तर की तरफ जो मुंह है उसे शुक्र कहा गया है। इनकी उपासना करने से ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु और निरोगी काया का वरदान मिलता है। शुक्र स्वरूप है उत्तरमुखी हनुमान। देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है। इसी दिशा में सभी देवी देवताओं का वास है। हनुमान जी की जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वो हनुमान जी का उत्तरमुखी स्वरूप है। ये स्वरूप घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण लेकर आता है। चलिए अब आपको पूर्वमुखी हनुमान जी के पूजन की महिमा बताते हैं। माना जाता है कि यदि कोई दुश्मन हावी हो रहा हो तो पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है और भय से मुक्ति मिलती है। वानर स्वरूप है पूर्वमुखी हनुमान। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा करने से शक्ति और साहस मिलता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का ये स्वरूप फलकारी है। पूर्वमुखी स्वरूप को वानर रूप में पूजा जाता है, जो करोड़ों सूर्यों के तेज के समान तेजस्वी माना गया है। इनकी उपासना से ज्ञान, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का पाठ करें। लाल फूल, सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के पराक्रम की कई कथाएं हमें मिलती हैं। हनुमान चालीसा में तो यहाँ तक लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये चौपाई डर, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए अचूक मानी जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं हनुमान जी की पश्चिम दिशा की तरफ मुख करने वाली प्रतिमा कितनी कल्याणकारी है। गरुण स्वरूप है पश्चिम मुखी। ये स्वरूप पंचमुखी हनुमान के रूप में गरुण मुखी माने जाते हैं। ये हनुमान जी का संकट मोचन स्वरूप है, जो नकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र के भय को दूर करते हैं। इनकी पूजा मंगलवार को करने से सभी कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं हय ग्रीव हनुमान की महिमा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने हय ग्रीव अवतार लेकर ही वेदों को चुराने वाले असुरों का वध किया था। हनुमान जी का हय ग्रीव स्वरूप। पंचमुखी हनुमान जी के पांच रूपों में से एक है, जो ज्ञान बल और सुरक्षा का प्रतीक है। हय ग्रीव स्वरूप को ज्ञान विवेक और विद्या का आशीर्वाद देने वाला

0: हम आपको हनुमान जी के कुछ और स्वरूपों की महिमा बताएंगे।
1: देखिए, कहते हैं कि हनुमान जी अगर ठान लेते हैं तो हर कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। रामायण में उनके अनेकों प्रसंग मिलते हैं जिसमें पवन पुत्र की बुद्धि और बल का कौशल हमें मिलता है। कौन है भला जो चलायमान सूर्य के संग चलते हुए शिक्षा ग्रहण कर ले। तो चलिए अब आपको बताते हैं बाल हनुमान और पर्वत हाथ में लिए हनुमान जी की प्रतिमा से कौन से वरदान पाए जा सकते हैं।

0: असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य रखते हैं पवन पुत्र। चाहे रातों रात हिमालय से संजीवनी बूटी लाना हो या पाताल लोक से अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अहरावण की कैद से मुक्त करवाना हो, ये कार्य एक निश्चित समय में करना किसी भी महारथी के लिए असंभव ही थे। लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी श्री राम की आन है, जिनका नाम लेते ही उनके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बचपन से ही हर वस्तु के प्रति जिज्ञासा का भाव रखते थे मारुति, तभी तो सूर्य को फल समझकर खाने चल पड़े। आज हम आपको हनुमान जी के विभिन्न स्वरूपों की महिमा बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं बाल रूप के मारुति का पूजन करने से कौन से लाभ होते हैं। बाल रूप बजरंगबली की पड़ती हुई मुद्रा को उत्तर दिशा में स्थापित करें। इनके सामने मोरपंख रखें और जल का पात्र रखें। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहि क्लेश विकार। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, वो इस पंक्ति का 11 से 27 बार पाठ करें। पाठ के बाद मोरपंख अपने पढ़ने के स्थान पर रखें और जल का अपने कमरे में छिड़काव करें, थोड़ा सा पी भी लें। हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं, तभी तो द्रोणागिरी पर्वत को अपनी हथेली पर उठा लिया। जो उनकी असीम शक्ति अटूट भक्ति और संकट मोचक रूप को दर्शाती है, कौन भूल सकता है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब संजीवनी बूटी को नहीं पहचानने के कारण और समय बचाने के लिए पूरा पर्वत ही उखाड़ लाए। ये घटना दर्शाती है कि सच्चे विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं हनुमान जी के इस स्वरूप की उपासना से आपको कौन से लाभ होते हैं।
1: पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का स्वरूप हमें बहुत कुछ सीख देता है। ये कहता है कि कितनी भी विपत्ति रूपी आ जाए, लेकिन उन विपत्तियों से घबराना नहीं है, उन विपत्तियों का समाधान करना है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी विपत्ति रूपी पर्वत है, उसे हटा करके हनुमान जी ने मानो हमें हर प्रकार के सब सुख लय है तुम्हारी शरणा, हर प्रकार के सुख और संपत्ति को प्रदान करने के लिए सक्षम है।
0: पर्वत उठाए हनुमान जी की मुद्रा। हनुमान जी की पर्वत उठाए मुद्रा घर दक्षिण दिशा में रखें। एक लाल आसन पर बैठाकर इनके सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। तांबे के लोटे में गंगा जल भर कर रखें। हनुमानाष्टक का पाठ 11 बार करें। व्यापार में आई समस्या दूर होगी। पाठ के पहले बजरंगबली को 5 लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें। अद्भुत है हनुमान जी का सेवा वाला स्वरूप, जिसमें सेवक हनुमान निस्वार्थ भक्ति समर्पण और विनम्रता का सर्वोच्च प्रतीक बने हुए हैं, जिसमें वे हाथ जोड़े श्री राम के चरणों में आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े दिखाई देते हैं। ये स्वरूप भक्तों में एकाग्रता, कार्य के प्रति निष्ठा और रिश्तों में समर्पण की भावना जागृत करता है।
1: हनुमान जी की जो सेवा भाव वाली मुद्रा है, वो राम लक्ष्मण और जानकी जी के पास पैरों पर बैठकर हनुमान जी हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बैठे रहते हैं, उस मुद्रा को हमारे शास्त्रों में दास्य मुद्रा कहा गया है, दास्य भाव कहा गया है। ऐसा लिखा है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वास्मवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो दास्य मुद्रा में हनुमान जी दास बन करके जगत के संकट को, जगत के अंधेरे को मिटा रहे हैं, और जो दास्य बनता है, सेवा की भावना रखता है, सेवा ही परमो धर्म है, वही मानो चारों लोक का राजा हो जाता है, और वही दास्य मुद्रा के कारण हनुमान जी चारों युगों में अजर अमर हैं।
0: बजरंगबली की सेवा भाव वाली मुद्रा। बजरंगबली की सेवा भाव वाली मुद्रा घर की

0: उत्तर या पूर्वी दिशा में स्थापित करें। ये मुद्रा लाल या पीले आसन पर स्थापित करें। हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं, गुग्गल की धूप जलाएं, एक लोटे में गंगा जल भरकर इनके सामने रखें। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के बाद धूप दीपक को पूरे घर में दिखाएं, जल का छिड़काव करें। ऐसा करने से परिवार के बच्चों में अच्छे संस्कार रहेंगे। जो बच्चे गलत दिशा में चले गए हैं उनके माता पिता ये उपाय 11 मंगलवार जरूर करें। तो आप भी हनुमान जी के चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनका अनुसरण करके अपना जीवन संवार सकते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करके एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं।
1: तो हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: तो समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: राजस्थान के सीकर में घाटू श्याम मंदिर के कपाट कल सुबह बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन के मुताबिक विशेष तिलक श्रृंगार और पूजा अर्चना के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। ऐसे में मंदिर के कपाट कल शाम 5 बजे के बाद खुलेंगे। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने लोगों से तय शेड्यूल के हिसाब से ही यात्रा करने की सलाह दी है।

0: हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। यही भाव, यही उम्मीद लिए सैकड़ों श्रद्धालु हर रोज बाबा खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि अपने भगवान की बस एक झलक पाने के लिए ये आंखें किस कदर बेचैन हैं। मई का महीना है, तापमान चरम पर है, लेकिन खाटू श्याम के दरबार में उमड़ी ये भीड़ देखिए। लंबी लंबी कतारें, घंटों अपनी बारी का इंतजार करते लोग, मानो बस एक झलक मिल जाए और मन्नत पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप 20 मई को खाटू श्याम के दर्शन का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा में थोड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि 20 मई को भगवान दर्शन नहीं देंगे। शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। बाबा श्याम की विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण 19 मई की रात 10 बजे से मंदिर को आम भक्तों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। दर्शन 20 मई की शाम 5 बजे के बाद से ही दोबारा सुचारू रूप से शुरू होंगे। इस दौरान भक्तों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे में मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे इस तय शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सीकर से हिमांशु शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस, जो कभी आपको हंसाएंगे तो कुछ वीडियोस आपको इमोशनल कर देंगे।
2: इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ को जब पहली बार साफ साफ देखा तो उसका रिएक्शन सचमुच में कमाल का था। वीडियो में नजर आता है कि बच्चा अपनी माँ के साथ अस्पताल आया हुआ है। माँ उसे अपनी गोद में लिए हुए दुलार कर रही है। वीडियो देख मालूम पड़ता है कि बच्चे की आंखों की रोशनी थोड़ी कमजोर है। ऐसे में जब डॉक्टर उस बच्चे की आंखों पर चश्मे को फिट करते हैं, वैसे ही उसके चेहरे का रिएक्शन बदल जाता है और वो पहली बार अपनी माँ को साफ साफ आंखों से देख पाता है। वो अपनी माँ को देखने के बाद सबसे पहले उनके चेहरे को छूकर उसे महसूस करता है। वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि अपने बच्चे की इस खुशी को देख माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। शादी से पहले दुल्हन का अपने होने वाले दूल्हे को दिया गया अनोखा सरप्राइज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दुल्हन कार की सनरूफ से बाहर निकलकर दूल्हे के घर पहुंचती है। उसे अचानक सामने देखकर दूल्हा पहले हैरान रह जाता है, फिर खुशी से हंसने लगता है। दुल्हन उसे फूल देकर सरप्राइज पूरा करती है। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच जमकर जश्न मनता है। लोग डांस करते हैं, पटाखे फोड़ते नजर आते हैं। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो पर लोग जमकर अपना प्यार भी लुटा रहे हैं। फ्लैट में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो बालकनी में कबूतरों की गंदगी और उनकी गुटर घूस से परेशान ना हो, लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मुसीबत में फंसा तो उसने अपनी बालकनी में एक कैमरा लगाया जो AI से कनेक्टेड है। डिवाइस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वो इंसानों, हवा से हिलते कपड़ों और कबूतरों में फर्क समझ सके। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कोई कबूतर बालकनी में बैठता है, AI उसे तुरंत पहचान कर ऑटोमेटिक वाटर गन का सिग्नल भेजता है और फिर पलक झपकते ही पिचकारी से पानी की बौछार सीधे कबूतर पर पड़ती है, जिससे वो फौरन फुर्र हो जाता है। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडॉप्शन सेंटर में कई लोग कुर्सियों पर बैठे हैं। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद जानवर उन्हें पसंद कर ले। इसी दौरान एक प्यारी सी बिल्ली को कमरे में छोड़ा जाता है। कुछ सेकंड तक वो इधर उधर देखती है और फिर सीधे जाकर सामने बैठे एक आर्मी के जवान की गोद में चढ़ जाती है। वीडियो का सबसे भावुक पल तब आता है जब बिल्ली जवान की गोद में बैठकर उसे गले लगा लेती है, मानो बरसों से उसे जानती हो। फौजी पहले मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इस वायरल वीडियो में एक बंदर गर्मी से परेशान होकर स्टेशन पर उतरकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आ रहा है। ये नजारा देख कई यूजर्स का माथा घूम जाता है। किसी ने इसे मजेदार बताया तो किसी ने कहा कि इस बार गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। बस फिर क्या था, वीडियो को देखने के बाद लोग लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं और इसे इंटरनेट पर तेजी से शेयर भी कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: उनसे ग्रह का मंत्र मोती की माला से जपना शुभ होता है, किस ग्रह का मंत्र हल्दी की माला से जपने पर लाभ होता है और कौन सी माला है जिससे हर ग्रह का मंत्र जपा जा सकता है, क्या हैं अलग अलग ग्रहों के मंत्र जप के नियम, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: आउटपुट ऑन एयर।
2: उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली समेत कई शहरों में चल रही गर्म हवाएं, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ बने सैलानियों की पहली पसंद, कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे सैलानी, गुरेज घाटी पहुंच रहे पर्यटक। जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में ओपन डे का आयोजन, 4500 से ज्यादा पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी, सिंधु सभ्यता से बॉलीवुड तक दिखी भारतीय श्रृंगार कला की झलक। चमोली के आदिबद्री धाम में नौठा कोथीक लटमार मेला धूमधाम से संपन्न, गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। पर शेष मास के तीसरे बड़ा मंगल पर भक्ति के रंग में रंगा संगम नगरी प्रयागराज, सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता, देश भर के मंदिरों में खास रौनक। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला रहेगा लागू, कोर्ट ने डॉग लवर्स और एनजीओ की याचिका की खारिज, कहा किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते।

आजादी का हक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में कुत्तों के हमलों के मामले लगातार बढ़े हैं। आवारा और बेलगाम कुत्ते अक्सर बच्चे बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। गली मोहल्ले हों, पार्क हों या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, अक्सर राहगीरों को हमलावर कुत्तों के हमले का शिकार होना पड़ता है और इसी वजह से रेबीज के मामले भी बढ़े हैं। तो इसी पर आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कब तक सड़कों से हटेंगे आवारा कुत्ते? डॉग लवर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आवारा कुत्तों के मामले में क्या समाधान निकाला गया? इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे।

0: तो आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला है और ये फैसला है आवारा कुत्तों से जुड़ा हुआ। फैसला क्या है पहले वो आपको बता देते हैं। अदालत ने साफ कहा है कि 7 नवंबर के आदेश में संशोधन नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे, यही 7 नवंबर का आदेश था। अदालत ने डॉग लवर्स और कुछ एनजीओ की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने साफ कहा है कि यह समस्या बेहद व्यापक और गंभीर है। पूरे देश में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि बच्चों, बुजुर्गों और तमाम लोगों को कुत्तों के हमलों का शिकार होना पड़ा है। ऐसे में अदालत ने यह भी बात दोहराई है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है और साथ ही साथ अदालत ने यह भी साफ किया है कि कर्तव्य में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। आदेश नहीं मानने पर अवमानना का केस भी चलेगा। और इसके अलावा अदालत ने देश भर में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि पर्याप्त एंटी रेबीज दवाएं उपलब्ध हों और ये सुनिश्चित होना चाहिए। अदालत के आदेश का मतलब ये है कि आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम में ही रखा जाएगा।
1: जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकेंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगे।
0: बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सभी याचिकाएं खारिज कर दी और साथ ही साथ नवंबर 2025 के अपने उस आदेश में बदलाव से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेसेस से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया था। इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि कड़वी सच्चाई के सामने आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं, बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी सैलानियों पर भी हमले हुए हैं और समस्या विकराल रूप ले चुकी है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डार्विन के सिद्धांत का भी जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन पर डार्विन का सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट काम करता हुआ लगता है, जहां समाज के कमजोर तबकों को प्रभावी सरकारी कार्रवाई के अभाव में अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को ऐसे खतरों से अकेले निपटने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। बेंच ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता है, जहां ह्यूमन लाइफ के लिए ऐसे खतरे जिन्हें रोका जा सकता है, ऐसी घटनाएं उन वैधानिक तंत्रों के बावजूद बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें विशेष रूप से इन खतरों से निपटने के लिए ही बनाया गया है। हालांकि जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कुछ संगठन कोर्ट के इस फैसले से निराश जरूर नजर आ रहे हैं।
2: आज का ऑर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं आया है और बहुत दुखी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्ट्रे डॉग्स के लिए ऐसा ऑर्डर निकाला है। इससे क्या होएगा, क्रूल्टी बढ़ेगी, लोग मारना शुरू कर देंगे डॉग्स को, पॉइजन करना शुरू कर देंगे डॉग्स को, सोसाइटी में कहां कहां से उठाएंगे डॉग्स। और शेल्टर्स हैं इधर, तो शेल्टर्स हैं ही नहीं कि डॉग्स को रखेंगे, बस स्टेशन से उठा लेंगे, पुलिस स्टेशन से, हॉस्पिटल से, और उधर कोई जगह नहीं है रखने की, तो इन सबको मार देंगे। ये तो बस बोल रहे हैं कि उठा के रख देंगे, और कौन कह रहा है कि ये रेबिट डॉग है और डेंजरस डॉग है। हम 10 साल से काम कर रहे हैं डॉग्स के साथ, आज तक हमारे साथ तो किसी डॉग ने काटा नहीं है या कुछ करा है। तो ऑर्डर बिल्कुल ठीक नहीं आया है और हमें बहुत डर लग रहा है कि हमारे कुत्तों के साथ क्या होएगा, जबकि वो है जो रक्षा कर रहे हैं, जो पूरे स्ट्रीट डॉग्स हैं सारी रक्षा करते हैं, रात को कोई किसी चोर को किसी को आने नहीं देते, तो बुरा लग रहा है आज के ऑर्डर पे।
0: दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि आंकड़ों से भी ये बात स्पष्ट होती कि पूरे देश में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। और आंकड़ों का हवाला देते हुए कोर्ट ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है, राजस्थान से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक केवल श्री गंगानगर शहर की अगर बात कर ली जाए तो 3 महीनों में 1483 मामले सामने आए हैं। कोट किया गया उदयपुर को भी 2026 में 1700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु जहां पर 2026 में कुत्तों के काटने के 2.4 लाख मामले सामने आए हैं। मार्च के महीने में डॉग बाइट्स के 71,000 मामले सामने आए और 34 मौतें हुई हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के अलग अलग टर्मिनल्स पर भी कुत्तों के काटने के 31 मामले सामने आए और टर्मिनल के भीतर तक रनवे तक पर आक्रामक आवारा कुत्तों की मौजूदगी देखी गई। इन सब के बीच एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी के अपने तर्क हैं, उन्होंने अपनी बात रखी इस पर।
3: आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। हमारे साथ
0: रनवे तक पर आक्रामक आवारा कुत्तों की मौजूदगी देखी गई। इन सब के बीच एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी के अपने तर्क हैं, उन्होंने अपनी बात रखी इस पर।
3: आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मशहूर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी जी।
4: यही ऑर्डर था कि नवंबर का सोचें, अब नवंबर को होते हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने में एक भी राज्य ने, एक भी डिस्ट्रिक्ट ने, एक भी गली ने उनका ऑर्डर माना नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने हाथ धोकर के कह दिया कि आज के बाद हमारे पास मत आइए, अब जाइए हाईकोर्ट में, तो अब देखा जाएगा।
3: डिसअपॉइंटेड हैं आप?
4: नहीं, मैं तो खुश हूँ। ये होना ही नहीं था, क्योंकि जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं कोई राज्य क्या, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो 1 रुपये सरकार ने नहीं डाला है जी। दूसरा, कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं। तीसरा, जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। सब लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं खाना खाने। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप करके देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। सब लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं खाना खाने। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ। अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ? झाड़ू लेकर के हटाऊँ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1 लाख बस स्टॉप्स हैं। 1 लाख बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो कैसे हटाओ और किधर डालूँ?
3: लेकिन आवारा कुत्तों का आतंक तो है, ये बात मैम दिखता है, जैसे लोगों को चलते हैं।
4: आवारा कुत्तों का आतंक नहीं है, आवारा कुत्ते काटते हैं, ठीक है, और सब तो नहीं काटते हैं। वो काटते हैं जिनको यहाँ से उठा करके कहीं और फेंके जाए। मैं आपको बता देती हूँ, इस कॉलोनी में 10 कुत्ते हैं। अब अगले दिन जब मैं उठूँ और म्यूनिसिपैलिटी ने इसमें 300 कुत्ते फेंक दिए, जो अक्सर करते हैं रात को, और तो फिर क्या करूँगी मैं 300 कुत्तों के? तो जाहिर है आतंक मचेगा।
3: एक चिंता भी है, आप यह बात मानेंगी भी कि कमजोर बच्चे अगर कोई छोटे 2-3 साल के बच्चे निकलते हैं, अगर उन पे कुत्ते हमला करते हैं, कईयों की जान भी जा चुकी है।
4: मैं कहती हूँ मुझे भी उससे ज्यादा चिंता है, यू नो इट्स, मैं 8 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हूँ। आप ये नहीं कि हम इंसानों की चिंता नहीं करते, मैं आपको वजह बता रही हूँ कि इससे 10 साल या 15 साल पहले क्यों नहीं काटते थे। ये क्योंकि 15 साल पहले म्यूनिसिपैलिटीज़ ने फैसला किया कि हम, और RWAs ने फैसला किया कि हम कुत्ते उठाएंगे और गरीबों के यहाँ छोड़ेंगे। 99% ऑफ द बाइट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन इंडिया, 99% गरीबों के।
0: सरकार का दायित्व है कि वो लोगों के जीवन और सुरक्षा की रक्षा सुनिश्चित करे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त और 7 नवंबर को जारी किए गए निर्देशों के बावजूद रिकॉर्ड में रखी गई जानकारी से पता चलता है कि निर्देशों को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचाया गया है। तो चलिए कोर्ट के इस आदेश को भी समझेंगे, इसका असर कितना होगा, क्या वाकई डॉग बाइट्स के मामले से खत्म होंगे, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। परिचय करा देती हूं, सबसे पहले आशुतोष श्रीवास्तव जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ मौजूद है, संजय महापात्रा हमारे साथ एनिमल एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर हाउस ऑफ स्ट्रेस, और साथ ही साथ मीत अशर हमारे साथ हैं, ये लीगल अफेयर्स एंड क्रुएल्टी रिस्पॉन्स टीम पेटा से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आशुतोष जी, जरा एक बार कोर्ट के फैसले को समझा दीजिए, क्या हम अब ये माने कि सुप्रीम कोर्ट ने मैटर क्लोज कर दिया है आज के बाद, इस तरह कि जितने मामले आएंगे वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के पास ही जाएंगे? आशुतोष जी कुछ ऑडियो इशू है, फिर से अपनी बात रख दीजिए प्लीज।
5: हाँ, कि तो बैकऑपरेशंस रिपोर्ट सामने आए थे, इंस्पाइल था वो एंटल डम्प या वो एंटल प्रोडक्शन के राय के लिए तो फाइन उन्होंने जो किया।
0: आशुतोष जी सुन नहीं पा रहे हैं, मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और संजय जी से भी बात करें, लेकिन संजय महापात्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैसे देखते हैं आप कोर्ट के इस फैसले को?
6: देखिए बहुत मिला जुला ऑर्डर है, कोर्ट की जो वर्डिक्ट है मिला जुला ऑर्डर है, इसमें कहीं चीज ठीक भी है कहीं चीज ठीक भी नहीं है। हम सबसे पहले सर्वोपरि एनिमल ह्यूमन वेलफेयर देखते हैं,
0: जो ठीक है पहले उसकी बात कर लेते हैं।
6: देखिए ठीक ये है कि जो इन्होंने फटकारा लगाया है जो स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल गवर्निंग बॉडी को, जो फरवरी 7 को जो इन्होंने बॉडी दिए थे कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम बिल्कुल उसको हम चेंज नहीं करेंगे,
0: सात नवंबर
6: तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने उसी टाइम भी सारी स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट यूटी को बोल दिया गया था कि आप इस तरह का काम करिए, अपने एरिया में सारी डॉग वैक्सीनेशन होना चाहिए, आपकी मैक्सिमम डॉग स्टेलेशन होना चाहिए। और मैं हर स्टेट गवर्नमेंट को बोला था ऐसे भी जगह है जहां अभी एबीसी यूनिट नहीं है,
0: ठीक है
6: नहीं है, और पूरा नोएडा के अंदर, मैं नोएडा की अगर बात करूं, हमारे पास एक एबीसी यूनिट है जो पर्याप्त मात्रा में स्टेलेशन नहीं कर पा रहे और एनिमल बाथ कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो रहा है, एनिमल जो पॉपुलेशन बढ़ते हुए जा रहे। और दूसरी बात ये रहा क्रुएल्टी की जो बात होता है, अगर मैं वहीं पे बात करूं एक ह्यूमन के साथ जो क्रुएल्टी होता है, मैं दो मिनट में जाता हूं तो मेरे केस फाइल हो जाता है, एफआईआर हो जाता है। अगर मैं एनिमल की सबसे पहले मैं बताऊं, हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में अगर कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनोलॉजी में आते हैं तो सबसे पहले इसका क्राइम एनिमल से शुरू होता है, और एनिमल्स की कोई भी केस जाता है, हर हिंदुस्तान में टोटल 30,000 पुलिस स्टेशन है, 30,000 पुलिस स्टेशन में अभी हर पुलिस स्टेशन में 10 ऐसे एनिमल क्रुएल्टी केस है जो एफआईआर में तब्दील नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें मैं बताऊँ, ये कैसे होगा जब तक एक हमारा सोसाइटीज में अवेयरनेस नहीं है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट उसका सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे, अगर कोई भी एजेंसी
0: नहीं। सर दो चीजें जरा जल्दी से इसको समझा दीजिए, क्या एजेंसी स्टेट एजेंसी काम नहीं कर पा रही, या फिर हम कहें कि संसाधनों की कमी है?
6: मैम संसाधनों की कमी पूरा है, काम भी नहीं कर पा रहे, और मैं चैलेंज दे रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्निंग बॉडी को यूटी को बोला है, ये कभी ऐसे खाली ऐसे कर ही नहीं सकते कि सारी पुलिस सॉरी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से गवर्नमेंट ऑफिस से हॉस्पिटल से रेलवे स्टेशन से डॉग खाली करेंगे, बहुत बड़ा टैक्स के इनके लिए बहुत बड़ा टैक्स है, और ये टैक्स कब पूरा हो पाएगा जब कंबाइन फोर्स से काम किया जाएगा।
0: क्या सरकारें असमर्थ हैं या फिर यहां पर मंशा की कमी है?
6: नहीं, सरकार असमर्थ है, और कहीं ना कहीं मैं बताऊं इसमें एक ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक जो टेंडर प्रोसेस जो क्राइटेरिया है पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहे सरकार।
0: ठीक है चलिए मीत अशर जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, कैसे इस कोर्ट के आदेश को देखते हैं आप? आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए।
7: नमस्ते, अब आवाज आ रही है?
0: जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए।
7: जी मैं कह रहा था कि सबसे पहली तो ये बात है कि जो 7 नवंबर का आदेश है जिसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज थी कि कुत्तों को जो बंद करने का ये आदेश है ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप कहते हैं कि जो बाकी एरियाज हैं जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, आरडब्ल्यूए है, जो सड़क है, गली है, वहां पे एबीसी प्रोग्राम या एबीसी रूल्स लागू होगा, लेकिन जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे आप एबीसी प्रोग्राम को अप्लाई नहीं कर रहे, वहां पे आप एक अलग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि वहां के कुत्तों को, चाहे वो अग्रेसिव हो ना हो, वो कुछ भी नहीं चेक किया जाएगा, सारे कुत्तों को उठा के हम बंद कर देंगे, और इतने छोटे स्पेस में जो एक इंसानी जो चिता होती है उसके साइज का एक पिंजरा है, अगर आप एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का एसओपी देखेंगे तो उसमें जो मेजरमेंट दिया गया बिल्कुल वो एक इंसानी चिता के साइज का है। और मैं एग्जांपल या ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही उन कुत्तों के साथ होगा। ये कुत्तों को इतने छोटे जगहों में, पिंजरों में रहने की आदत नहीं है, ये वहां मर जाएंगे और इनका इसमें कोई वेलफेयर नहीं है, ये सबसे पहली चीज है। और सेकेंड, अगर आप ह्यूमन सेंट्रिक पॉइंट से अगर इसको देखें, जो सरकारें हमारे भारत देश में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि कुत्तों का जो नसबंदी है वो साल 2001 से एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल्स 2001 के अंदर। आज ये रूल्स को आके 25 साल हो गए, हम 2026 में हैं। अगर 25 साल में सरकारें, राज्य सरकार और जो लोकल म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह जो भी लोकल बॉडीज हैं, अगर 25 साल में वो एक बेसिक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए पैसा नहीं निकाल रहे अपने बजट से, तो क्या आपको लगता है कि ये शेल्टर बनाएंगे? और अगर बना भी देंगे तो पैसा पूरा डाइवर्ट हो जाएगा शेल्टर के तरफ, और जो एक्चुअली सड़क पे कुत्ते हैं जिनकी नसबंदी करने की आवश्यकता है,
0: ठीक है,
7: उसके लिए तो पैसा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी
0: नहीं। लेकिन लेकिन कोर्ट के इस आदेश में दोनों चीजों का जिक्र किया गया। चलिए आगे बढ़े उससे पहले संजय शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जरा समझा दीजिए, कोर्ट ने आज के इस आदेश में क्या कुछ कहा है? क्या ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में बंद है? अब आगे इस तरह के जितने मामले आएंगे हाई कोर्ट्स में ही जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं आएगा? आदेश किस किस के लिए क्या क्या है? संजय जी,
8: सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होता है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है और इसके बाद अब कहीं कोई अपील भी नहीं है। अब चाहें तो ये रिव्यू के लिए, थोड़ी राहत के लिए उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इन एनजीओज ने जो एप्लीकेशन लगाई थी, जो पेटिशन लगाई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि कोर्ट ने जो 22 अगस्त और पिछले साल 7 नवंबर का आदेश है उसमें सुधार किया जाए, उसमें सुधार की याचिका लगाई थी और ये कहा था कि जिस तरह से कुत्तों के लिए शेल्टर होम में भेजा जाना अनिवार्य कर दिया है उसमें राहत दी जाए और आम जगह जो पब्लिक प्लेसेज हैं उसमें से, वहाँ से कुत्तों को, वहाँ कुत्तों को ना रखने की, आने रहने ना देने का जो आदेश है उस पर भी अमल किया जाए, और शेल्टर होम की के जो अनिवार्यता है वो सही नहीं है क्योंकि बेजुबान जानवर हैं। अब ये इनको कौन बताए कि बेजुबान तो हैं लेकिन बेदांत तो नहीं हैं, काट रहे हैं लोगों को, और अदालत ने सिर्फ आंकड़ों के आधार पर यह कहा है कि एक तो राज्य सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं, राज्य सरकारों को भी जिम्मेदार माना है, और कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश पर पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे कन्विक्शन के साथ अमल नहीं कर रही हैं, और हमारे आदेश की अवमानना करना, हम इनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिस तरह आम आदमी को बुनियादी अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार और स्वतंत्रता है, कोर्ट ने कहा कि उसमें कुत्ते के प्रति भय और कुत्ता काटने के भय में जीने का अधिकार वो उसमें शामिल नहीं है, उसको उसके बगैर जीने का अधिकार हो वो बुनियादी अधिकार है। और यहाँ स्थिति ये है कि बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, उनको सड़क चलते हुए ये खतरा बना रहता है कि बगल से गुजर रहा कुत्ता उन्हें काट ना ले और रेबीज वाला ना हो, पंजा ना मार दे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर अब जो एनजीओ ये बता रहे हैं कि इतने सालों में सरकारें नहीं सीख पाई या नहीं कर पाई, उनको ये भी जानना चाहिए कि चीजें एक तरफा नहीं है, कुत्ते काट रहे हैं। और राजस्थान के रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कोट किया है और कोर्ट ने बताया कि राजस्थान के श्री गंगानगर में ही अब लगभग एक महीने में 40 लोगों को कुत्ता काट चुका है।
0: 3 महीने में सर 1483 मामले जिसका जिक्र कोर्ट ने,
8: हाँ, और कोर्ट ने ये कहा, श्री गंगानगर का हवाला दिया, कई राज्यों के कई शहरों का हवाला दिया, और कोर्ट ने कहा कि हवाई अड्डे में हवाई पट्टी तक पर आवारा कुत्ते पहुंच गए हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार तो वो सारे प्रशासन और हवाई अड्डा प्रशासन और ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी चीज ये है कि कब तक हम ये कहते रहेंगे कि कुत्ते बेजुबान हैं और सबसे वफादार प्राणी हैं, लेकिन यहीं तो ये है कि बच्चों को नोच कर भी तो कुत्ते ही खा रहे हैं, तब ये कहते वो तो जानवर है, वो इंसान थोड़ी है। हमें अपनी मानवता नहीं छोड़नी चाहिए? जब वो अपना जानवरपना वैश्यपना नहीं छोड़ रहा तो हम अपनी मानवता क्यों छोड़ें? तो इसके बीच में कोर्ट ने सामंजस्य बनाया है। कोर्ट ने कहा है कि नगर निगमों की, स्थानीय निकायों की, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग पॉइंट बनाए, अलग अलग जगह ईयरमार्क हो जहां उसके आसपास ही कुत्ते पड़े रहें, और ज्यादा जगह पार्कों में, सड़कों पर, बस स्टैंड पर, स्कूल पर, कॉलेज पर, इन सब जगह आवारा कुत्तों का प्रवेश निषेध हो और उन्हें वहां से खदेड़ने का इंतजाम हो। सुप्रीम कोर्ट प्रमाइसेज में कई लोगों को कुत्ते काट चुके हैं और अदालत को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि वकील हो या वकीलों के मुंशी हो या लिटिगेंट्स हो, कोई भी कुत्तों को जगह जगह खाना नहीं देगा। लेकिन आज भी खाने के अवशेष सुप्रीम कोर्ट के आसपास प्रमाइसेज में पड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो कुत्ते भी घूमते रहते हैं, एक दो स्टाफ उसी के लिए वो कुत्ते घेरते रहते हैं, कुत्तों को भगाते रहते हैं। तो ऐसे ही चीजें चल रही हैं, जैसे डीटीसी की बसों में लिखा रहता है कि जल्दी के लिए शोर ना मचा या तो न्यू ही चाल लेगी, तो यहाँ भी व्यवस्था ऐसे ही चल रही है, पूरा देश ऐसे ही चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकारें उतनी सख्त नहीं है जितना सुप्रीम कोर्ट सख्त है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्ती दिखाई है कि अगर आप ऐसे ही कैजुअल टेकन फॉर ग्रांट करते रहेंगे तो हम फिर आपके प्रति सख्त कार्रवाई करने को मजबूर हो जाएंगे।
0: संजय जी लौटती हूं, एक मिनट।
8: का ये कहना क्या राज्य सरकारों को अपना रवैया बदलने पर मजबूर करता है? क्या उन्हें कोर्ट के डंडे का डर लगता है, या फिर वो भी ऐसे सोचते हैं कि आप भी बोलते रहो और हम भी उसी हिसाब से चलते हैं?
0: ठीक है, यहीं से आशुतोष जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, इसी बात को थोड़ा और आगे बताइए। अब देखिए, 7 नवंबर को आदेश दिया था, उसी को एक तरीके से कंटिन्यू फाइनल किया है कोर्ट ने, तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तब भी तो कुछ नहीं हुआ राज्य सरकारों की तरफ से, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी तब कुछ नहीं हुआ तब से लेकर अभी तक। और दोनों खास मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं और दोनों की बात भी आपने सुनी। देखिए, दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, इसीलिए संजय जी की बात भी आपने सुनी है, आपने मीत अशर जी की भी बात सुनी है। अब देखिए, काम जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकारों की है, लोकल अथॉरिटीज की है, उन्होंने अभी तक बात सुनी नहीं। अब कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगा दी है कि अब अगर नहीं बात मानी जाएगी तो इसे अवमानना का मामला माना जाएगा, तो क्या इसमें आगे हो सकता है फिर?
5: जी जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत चिंता जताई है कि उनके जो ऑर्डर्स का भी ठीक से पालन अभी तक नहीं हो रहा है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट्स को भी इसमें इंक्लूड किया है कि जो डायरेक्शंस हैं वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स जो स्टेट्स के हैं वो इंश्योर करें कि ये जो कंप्लायंसेज है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, नहीं तो वो सुओ मोटो एक्शन भी हाईकोर्ट ले सकता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं तो। और ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुझे लगता है कि जो पहले जो ऑर्डर किया था नवंबर 2025 में, उसके बाद जो बैच ऑफ पिटिशंस फाइल किए गए थे एनजीओस द्वारा, उन सबको सुनने के बाद, सारे दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है उसको डिसमिस किया और बोला कि नहीं, वही ऑर्डर को हम फाइनल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये जो मामला है वो ह्यूमन राइट्स का मामला भी है, अभी आर्टिकल 21 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका पूरा वायलेशन माना है कोर्ट ने कि कोई अगर जो है ओल्ड एज पर्सन या बच्चे अगर नहीं चल सकते सड़कों पे फ्रीली कि उनको डर है कि कुत्ते काटेंगे, अटैक करेंगे, तो ये एक तरह से वायलेशन है आर्टिकल 21 का। और देखिए दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, दूसरे जो देश हैं, चाहे वो नीदरलैंड हो, भूटान हो, उन्होंने भी बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अडॉप्ट किया है। ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में आप जाएंगे तो सड़कों पे स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से कंसिडर किया है, और अगर हम यूनाइटेड नेशंस जो है यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ का जो आंकड़ा है वो कहता है कि सिर्फ इंडिया में जो है 3.4 मिलियन डॉग बाइट्स होते हैं एक साल में, लगभग 34 लाख के ऊपर, और जो डेथ्स जो है यूएनओ ने बताया है वो लगभग 18,000 से 20,000 लोग मरते हैं रेबीज के कारण इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड का 36% है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो इससे ज्यादा आंकड़ा और क्या चाहिए?
0: बिल्कुल।
5: जहां तक एनजीओस का सवाल है तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उसको शेल्टर्स में रखने में क्या प्रॉब्लम है? वहां अगर उनको फैसिलिटीज दी जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कितने सारे सड़कों पे कुत्ते भी मर रहे हैं, वो गाड़ियां चढ़ गई है।
0: आशुतोष जी, नहीं, आपकी बात सही। देखिए, कोर्ट ने ये लाइन बकायदा कोर्ट की कि कैंपस से बाहर निकालने तक सीमित नहीं, शेल्टर होम तक पहुंचाना होगा। लेकिन सर, एक छोटी सी बात, शेल्टर होम की जिम्मेदारी किसकी है? पहली बात, अब दोनों एनजीओ को आप सुन ही रहे थे पहले, संजय जी आप भी सुनिए क्योंकि चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एनजीओ की तरफ से ये कहा गया है कि शेल्टर होम उतने पर्याप्त है, ही नहीं, उतनी फैसिलिटीज ही नहीं है। अब ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराएगा? अगर एनजीओ अपनी तरफ से करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कितनी जिम्मेदारी, राज्य सरकार की कितनी जिम्मेदारी? आपने दोनों की बात सुनी थी, छोटा सा जवाब आशुतोष जी।
5: जी देखिए, इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऐसे मामले तो कोर्ट में जानी नहीं चाहिए, ये तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस पे ऑलरेडी काम करना चाहिए। जब इतने रिपोर्ट्स आ रहे हैं सामने, इतने लोग मर रहे हैं और इतने ज्यादा डॉग बाइट्स हो रहे हैं, बच्चे, कुछ बच्चों का सीधा डायरेक्ट डेथ हुआ है अटैक पे कुत्तों के, तो ऐसे मामले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एनजीओज जो बात कर रहे हैं और कुछ जो है स्ट्रे डॉग्स को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, और डॉग लवर्स जो आ रहे हैं सामने, वो क्यों नहीं इसमें जो है डोनेट करते हैं और हेल्प करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि उनको जो है ये स्ट्रे डॉग्स को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज दी जा सके। इतने सारे एनजीओज बनाए गए हैं जो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए हैं, तो क्या एनजीओज की जिम्मेदारी सिर्फ और
0: यहाँ पर एनजीओ की जिम्मेदारी क्या बनती है, और क्या वाकई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और राज्य सरकारों के स्तर पर भी कुछ लूपहोल्स देखे गए हैं? संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।

0: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
1: La Que Buena.
0: ESPN Radio.
2: We know LeBron has to be the best player on the planet to
0: get The Daily.
3: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
0: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn. Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: कौन से ग्रह का मंत्र मोती की माला से जपना शुभ होता है? किस ग्रह का मंत्र हल्दी की माला से जपने पर लाभ होता है? और कौन सी माला है जिससे हर ग्रह का मंत्र जपा जा सकता है? क्या हैं अलग अलग ग्रहों के मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: आवारा खौफ से आजादी का किसी को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अब क्लियरली कह दिया है कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द हटाया जाए और उन्हें सीधा शेल्टर होम में भेजा जाए, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और लोकल म्यूनिसिपैलिटीज की है। संजय जी, आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी ने ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठाया था कि कोर्ट ने कहा है कि सीधे तौर पर राज्य सरकारें और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है। एक बात और उन्होंने कही थी कि एनजीओ को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहां पर एनजीओ से भी हमारे साथ लोग मौजूद है, संजय महापात्रा जी मौजूद है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल नोएडा का जो दिया वो ये कि केवल एक शेल्टर होम है, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाए होगा? क्या हम यहां पर ये मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि 7 नवंबर से अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, क्या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी कमी रही है इसमें? संजय शर्मा जी, संजय जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? संजय महापात्रा जी, आशुतोष जी इसी का जिक्र कर रहे थे कि एनजीओस क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।
6: देखिए मैम, आज की डेट में कोई भी म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी बिना एनजीओ की, बिना कुछ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कोई काम नहीं कर पाते। अगर इनके पास कोई भी टेंडर आता है, या कोई एबीसी की टेंडर हो, या शेल्टर के टेंडर हो, एनिमल वैक्सीनेशन के टेंडर हो, वो सिर्फ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़कर आते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और मैं नोएडा की बात कर दूँ, नोएडा में मैं सिर्फ अकेला इस साल 21,000 कुत्तों को हमने वैक्सीनेशन कर चुके हैं। और ऐसे बाकी जैसे हमारा एबीसी रूल में है कि अगर हाइपर बाइटिंग डॉग होते उसके लिए ट्रेनिंग और उसको ऑब्जर्वेशन के लिए रखने के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में नोएडा अथॉरिटी को सेवा दे रहे। अब तक हमने 50 कुत्ते को ट्रेनिंग करके अपने सोसाइटी में छोड़ चुके हैं, उस कुत्ते से एक बाइटिंग भी नहीं है। हाँ। क्यों? एनजीओ और फीडर्स जो है दे आर ए बिगेस्ट रोल फॉर एनिमल वेलफेयर, बिगेस्ट रोल टू सेविंग देम। और जो आप एनिमल बाइट्स की आप दिखा रहे हो उसमें सच है झूठ कितना मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो
5: नहीं, कोर्ट ने अगर देखिए कोर्ट किया है बाकायदा इसको लेकर, तो जाहिर सी बात है कि आंकड़े गवाही देते हैं, हम अपने आसपास भी देखते हैं। चलिए मैं ज्यादा नहीं, एक सवाल आपसे पूछूंगी। कोर्ट ने जो ये पूरा आदेश दिया है कि अब इसके बाद पहली बात तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, दूसरा लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है, आप इससे पूरी तरह से सहमत हैं कि आवारा कुत्तों को सीधे शेल्टर होम में भेजना चाहिए? क्या इससे सहमत हैं आप?
6: नहीं मैम, उन कुत्तों को भेजना चाहिए जो कुत्ता बाकी में अग्रेसिव है, जो कुत्ता आपको लग रही है कि रिपीटेड बाइटिंग डॉग है, उनको भेजना चाहिए।
5: फिर ये कैसे पता चलेगा?
6: सारी कुत्ते काटने वाले
5: फिर ये कैसे पता चलेगा? फिर तो खौफ वैसा ही रहा।
6: मैं ये बता रहा हूँ ना, आपने मुझे गंगानगर की बात बताया मैम, ये तो सिर्फ पेपर में है, हमें इसका पता नहीं है कि उन्होंने डाटा कहाँ से कैसे लिए है। आप चैलेंज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे कोई एक कुत्ता काटता है, मैं 5 इंजेक्शन लगाता हूँ, तो वो 5 इंजेक्शन मतलब मुझे
5: नहीं, पर रेबीज के मामले भी तो बड़े हैं। आपको याद होगा जब कोर्ट ने इस पर पिछले साल स्वतः संज्ञान लिया था, तब उसमें रेबीज के केसेस बड़े थे, जिसके बाद कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला कोर्ट में गया।
6: मुझे मुझे एक डाटा दिखा दीजिए कि कितने कुत्तों का रेबिट हुआ है इसका कोई हमारा परीक्षण हमारे देश में
5: है।
6: नहीं है।
5: ठीक है संजय शर्मा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, देखिए कोर्ट ने कहा कि लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि एनजीओस को भी इसमें मदद करनी चाहिए। एनजीओस का अपना दुख है, एनजीओ सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं लेकिन उतने संसाधन सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं होते। दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये कहा गया है कि केवल जो खूंखार कुत्ते हैं या फिर जो जिनसे रेबीज हो सकता है उनको केवल शेल्टर होम में भेजना चाहिए और बाकियों को जरूरत नहीं है।
7: मेरा कहना है कि जो लोग खूंखार कुत्ते पालने के शौकीन हैं उनको उनकी सुरक्षा भी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है आपके पालतू हैं तो आपके लिए पूंछ हिलाते हैं लेकिन बाकी लोगों को देखकर वो गुर्राते हैं, उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। लिफ्ट में लेकर चलते हैं तो उनके मुंह पर जाबी लगानी चाहिए ताकि वो किसी को काट ना लें। ऐसे कुत्तों को आप कंट्रोल करके चलिए, लेकिन लोग पाल तो लेते हैं कुत्तों को लेकिन आम लोगों की सुरक्षा को लेकर उन्हें कोई चिंता नहीं होती। वो कहते हो लू लू लू हमारा बच्चा तो फिर आप उसको अपने हिसाब से रखिए और लोगों की सुरक्षा भी ध्यान में रखिए। आपके मौलिक अधिकार तभी तक आपके मौलिक अधिकार हैं जब तक कि उनका असर किसी दूसरे के मौलिक अधिकार पर ना पड़े। लिफ्टों में लोगों के पास वीडियो आते हैं जिसमें कुत्ते काट लेते हैं और मकान मालिक कुत्तों के मालिक उल्टे पीड़ित आदमी पर गुर्राते हैं और वो कहते हैं तुम अपनी सुरक्षा खुद क्यों नहीं की। तो ये सारी चीजें और कुत्तों को विदेशों से तुलना करते हैं लोग, विदेशों में कुत्ते जब पॉटी करते हैं तो लोग उठा कर ले जाते हैं अपने साथ। ऐसा नहीं कि कहीं सार्वजनिक जगह पर कुत्ते को फारिग कराया और घर चल दिए। अगर आप कुत्तों को बच्चे की तरह पालते हैं तो उसको बच्चे की तरह उसके सारे साफ सफाई का ध्यान रखिए, अपने टॉयलेट में उसको फारिग होने की ट्रेनिंग दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, क्यों फिर उसको बाहर घुमाकर बाहर गंदगी फैला रहे हैं आप?
5: संजय जी
7: सिर्फ गंदगी ही नहीं, गंदगी के साथ ये भी है कि लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।
5: हाँ।
7: तो इस पर एनजीओ को भी ध्यान देना चाहिए और कुत्तों के मालिकों को भी जो पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते पालते हैं और लोगों के जान पर आफत डालते हैं।
5: संजय जी इसी के साथ साथ आवारा कुत्तों का जिक्र भी करिए ना, क्योंकि एनजीओस यही कह रहे हैं कि सब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कह रहा है कि आवारा कुत्तों को स्टेरलाइज कीजिए और उसके बाद शेल्टर होम में भेजिए। अब दूसरी बात यह है कि क्या हमारी लोकल अथॉरिटीज के पास, दो सवाल, पहली बात उतने संसाधन है, क्या उतना काम किया गया, क्या उतनी मंशा है, क्या वाकई वो लोग करना चाहते हैं। इसीलिए तो कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे जिम्मेदारी होगी और नहीं बात मानी तो इसको अवमानना माना जाएगा।
7: बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा है कि हमने जो आदेश दिए थे हमारे आदेश में कोई खामी नहीं है। खामी है तो उसे अनुपालन करने वाली एजेंसी में, वो चाहे सरकार हो लोकल अथॉरिटी हो, उन सारे लोगों में खामी है। उन लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ हमारे आदेश पर अमल नहीं किया है। तभी कोर्ट ने कहा कि हम हमारे आदेश की अवमानना के आरोप में आप राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को। तो ऐसे में इनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है राज्य सरकारों लोकल अथॉरिटी के लिए। एक समय था जब पशुओं का चारा खाने का आरोप लगा और अब एक समय ऐसा आएगा जब कुत्तों के शेल्टर होम और बाकी उनके रखरखाव को लेकर जो पैसे आते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं, उसका इंतजाम क्यों नहीं होता है। इस पर भी हो सकता है कि ये घोटाला सामने आए, पता चला कि अफसर कुत्तों के मद में आए पैसे खा गए।
5: हाँ।
7: तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि हमारी सरकारें, हमारा स्थानीय प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो स्ट्रे डॉग्स को लेकर सही इंतजाम करें ताकि स्ट्रे डॉग्स का भी जीवन सुरक्षित रहे और आम जनता का भी जीवन सुरक्षित रहे। उसे लेकर वो गंभीर नहीं है। सबको अपनी अपनी चिंता है, कुत्तों की चिंता या कुत्तों से बचने वाले नागरिकों की उनसे बचाए जाने की चिंता इन लोगों को कतई नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस बात की तस्दीक करता है जो मैं कह रहा हूं, उसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट का खुद का निर्णय करता है।
5: बिल्कुल जी संजय महापात्रा, नहीं देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि सबका जीवन सही रहे ना।
6: संजय जी ने
5: अगर अथॉरिटी सही तरीके नहीं, से काम करेंगी तो सब सेफ रहेंगे।
6: संजय ने एक बात कहा कि घोटाला सब बाकी में जानवर बोल नहीं सकता है। मैं एक आश्रम इंसान के लिए खोल दूं, अगर उसको खाना नहीं खिलाऊं वो मुझे 10 बार कंप्लेन करेगा, लेकिन ऐसे एनिमल्स को मैं एक शेल्टर में डाल दूं और खाना नहीं खिलाऊं वो मुझे 1 बार भी नहीं बोल सकता है आपने खाना नहीं खिलाया। यही घोटाला है, यही आपको सरकार को सही एजेंसी नहीं है जो उन एनिमल्स के लिए काम करे। सर मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं सर, जो भी एजेंसी काम कर रहे सब घोटाले से काम हो रहे, चाहे एबीसी हो, चाहे एनिमल शेल्टर हो, चाहे एनिमल की चारा हो, सरकार को कोई भी एजेंसी एक सही तरीके से नहीं मिल पा रहे और सच्चा इंसान काम नहीं कर पा रहे और बाकी झूठा इंसान वहां काम करता है और वो एनिमल्स को घोटाला होता है। आज उनका परिणाम समाज में आ रहा है, हम देख रहे हैं।
5: ठीक है संजय शर्मा,
7: मुझे तो यहां तक भी खबरें मिलती हैं कि जो लोग पशुओं के नाम पर उनके कल्याण की बात करते हैं उनके भी पूरी निष्ठा पशुओं के कल्याण की नहीं है।
6: बिल्कुल नहीं है सर।
7: कई ऐसे एनजीओ हैं जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं उसके आड़ में।
6: बिल्कुल सर।
7: कहने से खराब लगता है उनको, उनको लगता है कि हमारे कपड़े उतार दिए इन्होंने सबके सामने, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि बहुत सारी संस्थाएं पशुओं के हित के कल्याण के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल भी कर रही है और अपनी रोटियां भी सेक रही है। इस हमाम में सारे नंगे, इस हमाम में बहुत सारे लोग नंगे, सारे तो नहीं लेकिन बहुत सारे नंगे।
6: संजय जी, मैं भी पशु अधिकार के लिए काम करता हूँ, मुझे भी पता है, तो मैं आज सच्चाई आपके सामने बताया कि हिंदुस्तान में एक सच्चा एजेंसी नहीं है जो एनिमल्स के लिए काम करता है।
5: ठीक है, अब एक बार आशुतोष जी आपके पास आते हो। देखिए, दोनों बातें आपने सुन ली एनजीओ, और अब मेरे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको याद होगा मामला तब शुरू हुआ था जब रेबीज के केसेस बहुत ज्यादा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अब यहां पर देखिए, कोर्ट इस बात को जान रहा है, समझ रहा है कि उसकी बातों को नहीं माना गया, इसीलिए इस लाइन को ऐड कर दिया गया कि अब अगर आगे इस पर अमल नहीं होगा तो पहली बात तो जो हाई कोर्ट्स हैं वो इस मामले को देखेंगे, और दूसरी बात कोर्ट इसमें इसको अवमानना का मामला मानेगा। अब दूसरी बात, आपने सुना यहां पर अथॉरिटीज क्या कह रही है, अगर एनजीओ काम करने के लिए भी तैयार होता है तो उनको मदद नहीं मिलती, उनको प्रॉपर ये फंड्स जाते कहां हैं, क्या इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात रखी है, अभी तक क्यों इस पर काम नहीं हुआ?
8: देखिए, मैं ये बात मानता हूँ जो संजय जी ने कहा, और
5: दोनों ही संजय जी, संजय महापात्रा एनजीओ की तरफ से और संजय शर्मा मेरे सहयोगी।
8: नहीं, मैंने दोनों संजय जी की बात सुनी, और दोनों जो ये बात कह रहे हैं करप्शन से रिलेटेड जो बात कह रहे हैं ये बात तो है, क्योंकि ऐसे मामले जो है दोनों तरफ से आते हैं और हम लोग सुनते हैं और हम लोग देखते हैं, इस तरीके के मामले आते हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है इसके अंदर। लेकिन देखिए, सिर्फ ये सोच करके कि हम शेल्टर बनाएंगे तो करप्शन होगा तो ये होगा वो होगा, इसके वजह से हम कोई स्टेप ही ना लें, हम कुछ करें ही नहीं, हम जो है स्ट्रे डॉग्स को सड़कों पे छोड़ दें। एक तरफ जो है वो कुत्ते भी मर रहे हैं, गाड़ियां चढ़ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, वो मर रहे हैं, और उनके वजह से दूसरे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, आप देखिए वहां पे भी कुत्ते पहुंच जाते हैं, और कितना मेजर एक्सीडेंट होता है और कितने लोग मरते हैं, कुत्ता भी मरता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो रोकना होगा, कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। जहां तक एनजीओ का सवाल है, एनजीओ जो है बिल्कुल कॉरपोरेशन के साथ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के काम करे और इंश्योर करे कि जो पैसा जो लोग डोनेट कर रहे हैं या एनजीओ लोगों से लेकर के डोनेट कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उसमें लगा रहा है तो वो पैसा सही डायरेक्शन में यूज हो रहा है, और वो जो है जो डॉग्स हैं उनके बेटरमेंट के लिए यूज हो रहा है, शेल्टर जो हाउसेस बनाए जा रहे हैं शेल्टर्स उसके लिए यूज हो रहा है, उनके खाने पीने या उनके फैसिलिटीज के लिए यूज हो रहा है। इसको अगर वो ध्यान से देखें और अगर लगे कि ये काम नहीं हो रहा है, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बोला है कि आप वो मोटो एक्शन लीजिए, इन्हीं एक्शंस में ये भी आएगा, तो एनजीओ इसको भी रेस कर सकता है। जैसे एनजीओ आज सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया कि आप अपने पुराने फैसले को बदलिए, उसी तरीके से जो है एनजीओ हाईकोर्ट में भी जा सकता है रिट पिटीशन में कि ये बोलते हुए कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो पैसा आया वो सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है या गलत डायरेक्शन में यूज हो रहा है। हाँ। उसके बारे में भी वो जा सकते हैं।
5: संजय महापात्रा जी, देखिए बात तो बिल्कुल सही है। अब आप कह रहे हो कि पूरे नोएडा में एक शेल्टर हो, मैं मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहती हूँ, क्योंकि पिछली चर्चा जब हम लोगों ने की थी इससे पहले डॉग्स के मामले को लेकर 7 नवंबर के बाद, तब हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि जमीन अलॉट हो जाती है लेकिन वहां पे कभी शेल्टर होम बना ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको हर जगह पर, हर स्टेट में नजर आ जाएंगे। और दूसरा, अथॉरिटीज का जिक्र तो संजय शर्मा मेरे सहयोगी कर ही रहे थे। अगर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं लूपोल्स हैं, घोटाला कहीं हो रहा है, तो इसका जिक्र क्यों नहीं?

0: उच्च न्यायालय इस बात को लेकर चर्चा करता है और एक बहुत लंबी सुनवाइयां होती हैं जिसमें राज्य सरकारों तक को, लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक को नोटिस दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इसके बाद जो हाईकोर्ट्स हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि लोगों की सुरक्षा भी ठीक से हो सके। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डॉग बाइट के, पहली बात, मामले कम होंगे, कोर्ट के इस आदेश का पालन होगा,
1: इंतजाम किए जाएंगे तो डॉग बाइट्स के मामले भी कम होंगे, और सबसे बड़ी चीज कि राज्य सरकारों को, हाई कोर्ट सब उसमें सीधी दखल देंगे तो हो सकता है कि राज्य सरकारें उस दबाव में आए, काम करें प्रेशर में ही सही, और स्थानीय प्रशासन को पूरी निष्ठा के साथ लगना पड़ेगा, कोर्ट के आदेश और जो गाइडलाइंस हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ उस पर अमल करना पड़ेगा। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि डॉग बाइट्स के केस कम ना हो। इसमें प्रॉपर स्टरलाइज करना, प्रॉपर उनको इंजेक्शन लगाना और उनको वैक्सीनेशन करना, और ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है उसके जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरह से पालन करना, तो इससे जरूर असर पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुत्तों से लोगों की दुश्मनी है, कुत्ते प्रकृति के साथ सबसे जो पुराना वफादार प्राणी इंसान का हुआ वो कुत्ते हैं, तो ऐसे में इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन उनका साथ भी नहीं छोड़ा जा सकता और उनको अबेंडेंट भी नहीं छोड़ा जा सकता। अबेंडेंट छोड़ने से मुश्किल ये है कि वो आवारा हो जाते हैं, वो इधर उधर काटने लगते हैं और वो उनका मिजाज बिगड़ने लगता है, और बिल्कुल उसको, इसमें जिम्मेदारी एनजीओज की भी है। एनजीओ जिस मोटो को लेकर चलते हैं, जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं, उस पर ईमानदारी से अमल करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो भटक जाते हैं स्वार्थ में, और उनका दिखाने के दांत तो होते हैं लेकिन खाने के दांत दूसरे अलग होते हैं जो दिखते नहीं हैं। इसमें बड़े बड़े एनजीओज के नाम शामिल हैं कि उन लोगों ने कैसे कैसे चीज़ों को अपने हिसाब से चलाया है। हालांकि वो ये नहीं है कि ऐसा नहीं कि वो पशुओं के कल्याण के लिए काम नहीं करते, लेकिन जितना कल्याण के लिए काम करते हैं उतना उससे ज़्यादा अपने कल्याण के लिए भी करते हैं। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और शेल्टर होम्स की संख्या बढ़ाई जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके बर्थ कंट्रोल पर ध्यान दिया जाए। बर्थ कंट्रोल पर अगर ध्यान दिया जाता है तो कोई कारण नजर नहीं आता कि हर महीने जो हर एक कुत्तों के 7-8-10 बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसमें फिर जब आबादी कम होगी तो डॉग बाइट्स के घटनाएं भी कम होंगी। और इसमें जरूरी है कि कुत्ते पालने वाले लोग, कुत्तों को संरक्षण देने वाले लोग और जिनका कुत्तों से लगाव है, उन सारे लोगों पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी कहीं भी किसी भी जगह रात के अंधेरे में भी वो चल देते हैं गाड़ियां लेके, और जहां मनाही है खाना खिलाने की वहां खाना खिलाते हैं जबरदस्ती, उनको भी ये सेंसिटिव होने की जरूरत है, यानी सबको सेंसिटाइज होने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, तो चलिए, साफ नियत से अगर नियमों का पालन किया जाए तो यकीनन ये सबके लिए सही होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी सही तरीके से पालन होगा। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।

0: एक सुरक्षित और रोमांचक विकल्प के रूप में बेहद पसंद किया जा रहा, खासकर ग्रामीण युवाओं और लड़कियों के लिए खेल सशक्तिकरण और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का एक नया माध्यम बना है।
1: नगर का प्रतिष्ठित पोलो ग्राउंड है जहां पर टच रग्बी नेशनल चैंपियनशिप चल रही है। यहां मौजूद युवाओं को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां के युवाओं में इसका जबरदस्त क्रेज है। युवाओं के बीच टच रग्बी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यहां टच रग्बी के खेल के इस मेगा इवेंट में 21 राज्यों की 75 टीमों ने हिस्सा लिया है।
2: टच फॉर्मेट एक बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी ले रहा है। हमने रिसेंटली, आपको पता है, कुछ महीने पहले हमने यहाँ पे एक नेशनल लेवल टूर्नामेंट किया था। आज भी हमने यहाँ पे एक कार्निवल फेस्टिवल टाइप टूर्नामेंट किया है जिसमें 25-26 टीमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर से, हर राज्य से आ रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स। ये बेसिकली सीनियर टूर्नामेंट है, ओपन वन है। इसमें हमने खिलाने का एक प्रण लिया है कि बच्चों को एक और प्लेटफॉर्म दे दे ताकि वो बहुत अच्छे से, और इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा जा रही है। हमें इतनी सारी क्वायरीज, दिन भर हमारा फ़ोन ही बंद नहीं होता है, क्वायरीज पे क्वायरीज आ रही है कि हम कैसे ज्वाइन करें, हम कैसे ज्वाइन करें। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स रहा है।
1: कश्मीर की युवा लड़कियों और ग्रामीण महिलाओं के लिए ये खेल आशा की एक नई किरण बनकर उभरा है। राज्य की जूनियर बालिका और सीनियर महिला टीमों ने राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में शानदार प्रदर्शन दिखाया है और कई मेडल्स जीते हैं।
3: भी अगर हम देखेंगे, जितना सोचा था हमने टच के बारे में, लाइक कितने टीम्स आएंगे, लाइक हमारी सोच से बहुत बाहर ये टीम्स, बहुत ज्यादा टीम्स आई है टच खेलने के लिए।
4: आज यहाँ पे टच रग्बी कार्निवल हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। हम तब खेलते थे सिर्फ जूनियर्स खेलते थे अंडर 14, अब ये इतनी पॉपुलर है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि अब हमने सीनियर्स कैटेगरी में, मिक्स कैटेगरी में, बोथ वुमेन मैन में इंट्रोड्यूस की है और बहुत फन गेम है। इसमें काफी ज्यादा स्किल्स चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए।
1: जम्मू कश्मीर रग्बी एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहे हैं। यही वजह है कि युवाओं की इसे खेलने में दिलचस्पी बढ़ रही है।
5: भी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, आई थिंक ये 2 महीने हो गए इंट्रोड्यूस किए हुए टच रग्बी को यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत ये हासिल कर रहा है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले डरते थे या जिनको लगता था कि हम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं कर पाएंगे, अब उनको लगता है कि जो ये टच है इसमें हम सेफर खेल सकते हैं और तेज खेल सकते हैं, तो उनको बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ा चैलेंजिंग गेम है तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है लोगों को।
1: घाटी में टच रग्बी टीम भावना के साथ फिटनेस को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही यहाँ इस खेल को युवाओं को नशे से दूर रखकर एक स्वस्थ, अनुशासित और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए बढ़ावा देने वाले एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चलिए उत्तराखंड के पांचवें धाम के रूप में प्रसिद्ध टिहरी के मुखेम नागराज मंदिर के दर्शन आपको करवाते हैं। 13वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ कालिया नाग ने प्रायश्चित तप किया था।

0: देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा की गूंज इन दिनों दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसे में आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसे एक और शांत और मनोरम स्थान पर, जिसे देवभूमि का पांचवा धाम कहा जाता है। ये है टिहरी के प्रतापगढ़ में सेम मुखेम नागराजा मंदिर। वैसे तो ये मंदिर नागों के राजा नागराज को समर्पित है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भी उपस्थिति है।
1: तो यहाँ पर 11 कते मंगसीर यानी 25-26 नवंबर को जब मेला का जो दिन होता है, उस दिन भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप जो है गंगो रमोला को दिखाया और कहा, हे गंगो रमोला, तुम अपने घमंड में चूर थे, अब तुम्हारा स्वागत है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो गंगो रमोला, भगवान मुझे अब इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मुझे आप जो है ऐसी आज्ञा दो कि जिस स्थान में आपने मुझे विराट रूप दिखाया उस स्थल की मैं अब आजीवन पूजा करता रहूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसे करना। फिर मरने के बाद उनका बगल में मंदिर बन गया है।
0: पौराणिक कथा है कि यमुना का पानी दूषित करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग का दमन किया था, तब कालियानाग ने उनसे क्षमा प्रार्थना की और उनसे भक्ति का वरदान मांगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा का एक अंश सेम मुखे में स्थित एक पवित्र पत्थर में स्थापित कर दिया। तब से इस पत्थर की पूजा नागराज के रूप में की जाती है।
1: एक पत्थर है, इसमें जो है भगवान के पांव के निशान है, घोड़े के पांव के निशान है। कहते हैं कि उसमें घोड़े से दौड़ लगाते थे और नारद जी वहां पर जो है शतरंज खेला करते थे। पहले उसका नाम चौपड़ हुआ करते थे, तो उसका पौराणिक नाम नारद चौपड़ है, लेकिन आजकल जो उसको शतरंज के रूप में बोलते हैं। जो शतरंज का खेल है वो वहां पे जो है नारद जी और भगवान कृष्ण एक बड़े सा चौड़ा पत्थर उसके ऊपर खेला करते थे।
0: 13वीं शताब्दी में स्थापित इस मंदिर की पूजा परंपरा गढ़वाल रियासत के राजा और उनके वंशजों के पास है। ऐसे में सेमवाल परिवार के तीन घराने बारी बारी से यहाँ पूजा अर्चना का दायित्व निभाते हैं। इसके अलावा हर साल नवंबर में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay, come on, go. Norah Jones, Daniel Caesar, and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। बात मौसम की करेंगे, जिसने इस वक्त आधे हिंदुस्तान के पसीने छुड़ा रखे हैं। वैसे अगले एक हफ्ते तक राहत की तो कोई गुंजाइश है नहीं, लेकिन गर्मी के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चढ़ते पारे से जंग का देसी जुगाड़ निकाल लिया, तो क्या है वो आगे आपको बताएंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, समूचे उत्तर भारत में गर्मी प्रचंड है, ऐसे में सभी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर राहत कब मिलेगी, बादल कब बरसेंगे। लेकिन हालांकि ये भी अशोक गुप्ता हमें थैंक्स बोलना चाहिए, इतने समय से वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने बहुत राहत दी है।
4: नहीं, वो तो दी है, कहां चला गया अब।
3: अब उसकी खोज है। तो देखिए, अब जो बात है वो ये कि अभी तक उस हिसाब से मानसून वक्त से पहले केरल पहुंच रहा है, लेकिन मानसून के बादल दिल्ली की ओर कब तक रुक करेंगे, इसकी भी खोज खबर आपको हम देंगे।
2: बिल्कुल। नमस्कार, मैं हर्ष गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात सलमान खान की होगी, जिनके कल तन्हाई वाले पोस्ट पर जमकर हंगामा घटा। सलमान के फैंस से लेकर उनके परिवार वाले परेशान हो गए, जिसके बाद अब सलमान खान ने अपनी पोस्ट पर रिएक्ट किया है। अपनी नई पोस्ट में सलमान ने और क्या कुछ कहा वो बताएंगे आपको।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। बिल्कुल, तो देखिए, सलमान खान के बारे में बात होगी, मौसम के बारे में बात होगी, और बात आज उस ट्रेंड की भी करेंगे जो एक बार फिर से लौट रहा है। देखिए, मार्केट से कुछ वक्त पहले तक वायर्ड ईयरफोन्स पूरी तरीके से गायब हो गए थे, कोई भी इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन अब अचानक ये ईयरफोन्स एक बार फिर से लौट आए हैं और लोग ईयरबड से दूरी बनाकर अब इनकी ओर लौट रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे की वजह, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं।
6: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली समेत कई शहरों में चल रही गर्म हवा, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। मैदानों पर बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ बने सैलानियों की पहली पसंद, कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे सैलानी, गुरेज घाटी पहुंच रहे पर्यटक। जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में ओपन डे का आयोजन, 4500 से ज्यादा पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी, सिंधु सभ्यता से बॉलीवुड तक भारतीय श्रृंगार कला की झलक। ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़ा मंगल पर भक्ति के रंग में रंगा संगम नगरी प्रयागराज, सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, देश भर के मंदिरों में खास रौनक। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान, चार नए चेहरों को मिला मौका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया कि गर्मी जो है वो प्रचंड है। अप्रैल और मई में ऐसे बहुत से दिन रहे जब मौसम मेहरबान रहा, लेकिन अब गर्मी ने अपना असली तेवर, कहते हैं ना, दिखाना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो पहुंच चुका है। यही हम बात भी कर रहे थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बार बार, मुझे लगता है कि मंडे हो या फिर फ्राइडे, हम ये कह के जाते थे कि ये जो वीकेंड आने वाला है ना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। लेकिन अब क्या हो गया,
4: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने हाथ खड़े कर दिए, भाई तुम्हारी मौज मस्ती बस हो गई, बहुत हो गया, अब असली गर्मी को सहन कर लो। जो ये बोलती थी ना, गर्मी नहीं आई, गर्मी नहीं आई, फाइनली मेरी सीजन हैज अराइव्ड।
5: एक्चुअली मुझे लगता है मेरी सुनिए, क्योंकि मैं कह रही थी ना कि मई मई जैसा ही नहीं लग रहा है, तो फाइनली ऐसा लग रहा है अब पसीने छूटने शुरू हो गए, बट चलो अच्छा ये मानसून भी आ जाए अब जल्दी से।
7: मानसून वैसे 6 दिन पहले दस्तक दे रहा है, लेकिन ये बड़ी बात ये है कि
2: मुझे लगता है कि हर सीजन को एंजॉय करना चाहिए, हालांकि बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कल रात को मैं नीचे वॉक के लिए गई तो इतनी गर्म लू और वो आंखों में चुभ रही थी। तो ऐसे में जरूरी है कि देखिए गर्मी तो है, अब नवतपे की शुरुआत भी होने वाली है, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा इस गर्मी में, ये बहुत सही
3: बात। बिल्कुल, लगातार जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं तापमान जो है वो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, ऐसे में सावधानी भी बरतने की बेहद जरूरत है। शगुफ्ता,
4: मतलब अपने अपने तरीकों से आप अपने आप को कूल रख सकते हैं। जैसे सुबह किसी ने कहा है कि उठते ही पानी में सिर्फ सत्तू मिला के पी लीजिए, वो भी आपकी बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो कई राज्यों में देखिए चिलचिलाती धूप है, हीट वेव चल रही है, पारा 40 से 45 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। और कहां क्या कुछ हाल है वो तस्वीरों में दिखाते हैं आपको।

0: समझ लीजिए इस वक्त बाबा की नगरी तपस्या में लीन है। मई के इन दिनों में काशी जिस तरह की अग्नि परीक्षा से गुजर रही है उसमें जीवन किसी साधना से कम नहीं है। वाराणसी का पारा भले ही 45 डिग्री की सीमा रेखा लांग चुका हो लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ना तो जीवन का आनंद भंग हुआ है और ना ही भक्ति भाव कम हुआ है।
1: आसमान से बरसती आग और तपती जमीन, जी हाँ, वाराणसी में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी का दिल कहे जाने वाले गदौलिया पर है। और ये रास्ता गदौलिया से लेकर दशाश्वमेध जाने वाला है, जो रास्ता हमेशा गुलजार रहा करता था वहाँ अब सन्नाटा और सियापा ही नजर आ रहा है। हालांकि नगर निगम और वाराणसी प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं उन लोगों के लिए जो इन रास्तों से गुजर रहे हैं, उनको गर्मी से निजात मिले, परेशानी से निजात मिले, क्योंकि बनारस में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 47 डिग्री के पार वाराणसी का तापमान जा सकता है अगले कुछ दिनों में। अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री तो न्यूनतम तापमान लगभग 1 डिग्री तक ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।
0: गर्मी को लेकर मौसम विभाग की भले ही अपनी गणनाएं हो लेकिन काशी के पास इस गर्मी को पढ़ने और समझने का एक अलग ही आध्यात्मिक ज्ञान है। काशी वालों को पता है कि जीवन का ऋतुओं से समन्वय कैसे बनाना है और इस तपती गर्मी में अपने शरीर को कैसे साधना है।
2: इस समय गुरु राजा हैं, आप समझिए कि सबसे पहले राजा गुरु मंत्री भौम सबसे शुक्र धान्येश बुध, धान्येश बुध होने के कारण धान में अन्न में कुछ कमी और बेसी डिप्रिशिएशन मोड़ यहाँ लगता है। मेघे सोम है और जब गर्मी बढ़ेगी तब ओला पानी और बर्फ ये बराबर गिरते रहेंगे, जैसे कि अभी कुछ दिन पूर्व भी यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया था। इसी तरह रात्रि में भी आप देखिए कि ठंडा हो जाता है और दिन में गर्म हो जाता है।
0: आसमान से बरसती आग की चपेट में प्रयागराज भी है। संगम की जो रेती अक्सर आस्था के सैलाब से सराबोर नजर आती है, उस रेती पर गर्मी का गुबार नजर आ रहा है। राहगीरों को पेड़ की छांव का सहारा है। लोग गर्मी से युद्ध के लिए पूरे शरीर को ढककर चल रहे हैं। फिलहाल तो गर्मी की वजह से पूरे प्रयागराज में मानो कर्फ्यू सा लग गया है।
1: और उत्तर प्रदेश का प्रयागराज भी काफी गर्म है, टेम्परेचर 43 से 44 पहुंचने को है। प्रयागराज की सड़कों पर सन्नाटा है क्योंकि गर्मी इसके पीछे वजह है। वैसे ही प्रयागराज का सबसे आस्था का केंद्र संगम तट होता है लेकिन इस संगम तट पर भी थोड़ा सा सन्नाटा है, वजह गर्मी है और टेम्परेचर 43 डिग्री पार है। लिहाजा संगम पे जो श्रद्धालुओं की भीड़ होनी चाहिए थी वो गर्मी की वजह से श्रद्धालुओं की कमी भी संगम तट पर देखी जा रही है।
0: पंजाब भी मौसम की अग्नि परीक्षा दे रहा है। राज्य के करीब करीब सभी शहरों में पारा 42 डिग्री क्रॉस कर चुका है। सोमवार की बात करें तो पंजाब का भटिंडा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जाहिर है बीते 24 घंटों में पंजाब में पारा 2 से 2.5 डिग्री बढ़ा है। ऐसे में मौसम के जानकार भी संभलने की सलाह दे रहे हैं।
3: 5 से 7 दिन जो है जनरली ड्राई वेदर है जिसमें लू की चलने की स्थिति आएगी। दिन के समय 12 से 3 के बीच में मैक्सिमम टेम्परेचर जाते हैं, मैक्सिमम आता है, तो उसमें थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। और साथ में पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें क्योंकि हमें विंटर्स में काफी डिहाइड्रेशन हो जाता है, दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि अगर हम बाहर इमरजेंसी से निकलना भी है तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखें, थोड़ा अपने आप को कवर रखें। यही है क्योंकि 5 से 7 दिन बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगा।
0: मौसम पर नजर रखने वालों का कहना है कि गर्मी से भीषण युद्ध की अभी तो फिलहाल शुरुआत है, नौतपा के दिन आने वाले हैं। ये वो 9 दिन होते हैं जब गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है। उत्तर भारत में 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहने वाला है। इन 9 दिनों में सूरज इतना तेज चमकता है कि दिन के समय सड़कें भट्टी की तरह तपती हैं, रात में भी उमस से नींद नहीं आती। फिलहाल तो आगे एक एक दिन जीवन की अग्नि परीक्षा है।
4: गर्मी तो है अभी एक सप्ताह के दौरान जो है वो जारी रह सकती है। अगर हम इसको तापमान के माध्यम समझें तो आप देखेंगे कल शाम को जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 यानी 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए गए थे दिल्ली में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच सकते हैं। तो आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद में 3 दिन के बाद में भी इसमें थोड़ा सा जरूर बदलाव आ सकता है, लेकिन 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अधिकतम तापमान पूरे सप्ताह भर देखने को मिल सकता है।
0: जाहिर है अगले कुछ दिन सूरज के ताप में जीवन के तप के होने वाले हैं। नौतपा भले ही 25 मई से शुरू हो रहा है, लेकिन आसमान से आग अभी से बरस रही है। ऐसे में गर्मी से बचना चुनौती से कम नहीं है। फिलहाल तो सलाह यही है कि जलते दिनों में छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, धूप में तैयारी के साथ ही बाहर जाएं, पानी लगातार पिएं, क्योंकि इस मौसम में हमारे आपके लिए पानी अमृत से कम नहीं है। चंडीगढ़ से कमलजीत, वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो वही अभी गर्मी की शुरुआत हुई है, नौतपा आना है, तो जरूरी है कि जैसे हम कह ही रहे कि मौसम तो अपने रफ्तार से चलेगा, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना होगा उस हिसाब से। तो गर्मी है तो उससे राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? वैसे सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत सारे जुगाड़ हैं, बहुत सारे वीडियोज भी नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान भी हैं, बहुत इंप्रेस भी हो रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे एक वीडियो जहां पर एक शख्स ने अपने स्कूटर को चलता फिरता देसी एसी बना दिया है, और वीडियो में स्कूटर पर ऐसा सेटअप लगाया गया जो चलते समय ठंडी हवा के साथ साथ पानी की हल्की फुहार भी देगा। ये एसी की जगह मेरे ख्याल से इसको कूलर कह देना चाहिए,
6: कूलर कह देना चाहिए।
7: मुझे लगता है कि वो जो स्प्रिंकलर्स नहीं लगे रहते हैं बाहर,
6: वही है
7: वो स्प्रिंकलर्स टाइप, वो कुछ इसने लगा रखा है कि उसमें हल्की हल्की पानी की बौछार आती है और जब आप चला रहे हैं तो हवा तो आएगी। ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है,
5: ये शायद हमारे जितने गिग वर्कर्स हैं उनको जरूर लगा लेना चाहिए।
7: देखिए गर्मी में ऐसा जुगाड़ भी शायद किसी असली किसान के बेटे का दिमाग ही निकाल सकता है। जहां पंप से खेत की सिंचाई भी हो रही है, वहीं उसी बहते पानी के नीचे खटिया डालकर कोई आराम से गर्मी को मात देता नजर आ रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पर एक तरफ सिंचाई हो रही है, पंप लगा हुआ है, और लेकिन इतनी गर्मी है और आप जो भी खेती करते हैं वो जानते हैं कि आप इस तरह से जब इस तरह का काम चल रहा होता है ना खेतों में सिंचाई वगैरह का या पानी पटाने का, तो आप छोड़ के नहीं जाते हैं, आपको वहां रहना होता है पूरे प्रोसेस के दौरान। लेकिन अब गर्मी से आप कैसे अपने आप को बचाए भी, तो वहां पर देखिए कैसे पंप के पास ही इसने खटिया भी डाल रखा है और आराम से काम भी चल रहा है और आराम भी हो रहा है।
6: चलिए देसी जुगाड़ों की बात हम कर रहे हैं, वहीं एक बुजुर्ग बाबा ने गर्मी को मात देने के लिए अजीबोगरीब सा जुगाड़ निकाला है। बाबा ने इस चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए हेलमेट में ही पंखा लगा दिया। पंखा सौर ऊर्जा से चलने वाला तो लगता है। अब बाबा को प्लास्टिक का हेलमेट पहने हुए देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पैनल के साथ जुड़ा हुआ है। ये अगेन अनदर देसी जुगाड़।
7: और यहाँ देखिए एक और देसी जुगाड़, देखिए ऊपर मटका रखा हुआ है और उसके नीचे क्योंकि, और ये देखिए शिवता जो आपने बताया,
6: बिल्कुल ये बाबा जी ने ऊपर पंखा लगा दिया, ऊपर पंखा चलता है, मुझे वो कविता याद आ गई।
5: मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ, बाबा जी ने पंखा लगाया, आपको पता है एक ऑनलाइन पंखा भी मिल रहा है, वो जैसे हम लोग नेक पीस नहीं डालते ऐसे, आपको याद होगा ऐश्वर्या का वो नाग वाला या फिर वो क्रोकोडाइल वाला नेक पीस याद है, उसमें ऐसे यहाँ तक और यहाँ पे पंखा आता है, ये मार्केट में।
6: तो ये स्टोरी हमने जीएनटी पे छोड़ी,
5: किचन में अगर आप कहीं काम कर रहे हो स्पेशली उन लेडीज के लिए कि आप ऐसे गले में पंखा लगा लीजिए तो आपको एटलीस्ट फेस पे हवा,
8: मतलब वियरेबल पंखा है, वियरेबल पंखा। अगर ऐसा कुछ
6: थोड़े दिन पहले वो स्टोरी जेएनटी पे देखी थी ना, हमने दो ट्रैफिक वाले दिखाए थे जिन्होंने जैकेट पहनी थी, कूल जैकेट है ना, जिनको अंदर से हवा मिल रही है,
7: अंदर वो फैन 7000 की वो जैकेट आती है।
8: तो देखिए जयपुर में कैसा है गर्मी में लोगों का हाल, मौसम का मिजाज क्या तस्वीर बयां कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले वक्त में गर्मी कब तक रहने वाली है, सब कुछ बता रहे हैं हमारी सहयोगी रिदम जैन, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
9: राजस्थान में मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां हर एक व्यक्ति परेशान होता नजर आ रहा है और ये परेशानी हो रही है बढ़ते टेम्परेचर से और हीट वेव से। ये ऐसी जगह है अभी जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स पे भी अभी बिल्कुल भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, ये एरिया बिल्कुल खाली हो चुका है। असर पड़ रहा है आसपास के वेंडर्स पे, हॉकर्स पर, जिन पे टूरिस्ट स्पॉट्स पे बैठने की वजह से अक्सर भीड़ हुआ करती थी, वो इस समय पे बिल्कुल खाली है। उनके बिजनेस भी नहीं चल रहे हैं, चाहे वो जूस शॉप हो जहाँ गर्मी में लोग राहत के लिए आते हो, वहाँ पर भी समय पर कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले दो दिन में जो पारा है वो 2 से 4 डिग्री तक बढ़ा है। और ये जो गर्मी है ये सिर्फ दिन के समय की नहीं रही है, ये ही गर्मी देखने को मिलती है रात में भी, जब जमीन से हीट आती रहती है और वो टेम्परेचर्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। क्योंकि इस समय पे पिछले 24 घंटों में जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में टेम्परेचर 43 डिग्री से ऊपर रहा है और ये सीज़न का चौथा ऐसा दिन है जब पारा 43 पा रहा है। वहीं आज यानी कि मंगलवार की मैं बात करूं तो मंगलवार को भी इस समय पे 42 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। जयपुर की कुछ तस्वीरें मैं आपको और दिखाती हूँ, जहां पे हम यहां पे हर किसी को कवर दिखा रहे हैं, जो भी बाहर निकल रहा है दिन के समय में वो पूरी तरीके से खुद को कवर करके चल रहा है। हर जगह जहां पे भी लोग हैं वहां कहीं ना कहीं वो छाव ढूंढ के, पेड़ की छाव हो या कोई भी शेड हो, वहां ही बैठ रहे हैं। और गार्डन एरिया में अभी लगातार स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं, क्योंकि इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों की भी अभी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। गर्मी की वजह से पौधे जलने लगे हैं तो लगातार स्प्रिंकलर्स लगाए जा रहे हैं जिससे उनको भी पानी मिले और साथ ही साथ वो जो एरिया हो उसमें थोड़ी सी ठंडक आ जाए, जिससे आसपास के लोगों को भी वो ठंडक महसूस हो। तो ऐसे समय में लगातार यही लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्योंकि हीट वेव ये चलने वाली है और ये टेम्परेचर्स और बढ़ने वाले हैं, तो कम से कम बाहर निकलें और निकले तो खुद को कवर करके निकले, खुद को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि ये जो समय है ये बीमारियों को न्योता देने वाला समय है। तो
5: हम गुड न्यूज टुडे पर आपको डराते नहीं, पहली बात हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर आप घर से बाहर निकले तो अपना ख्याल जरूर रखें। हम गुड न्यूज टुडे पर गुड न्यूज भी देते हैं और गुड न्यूज ये है कि इस बार मानसून थोड़ा जल्दी दस्तक दे सकता है, अंडमान में पहुंच चुका है, थोड़ा ऊपरी हिस्सों की तरफ जा रहा है और बहुत ही जल्द केरलम में, क्योंकि नॉर्मली 1 जून तक आता है वहां पर, लेकिन इस बार 26 मई से सुन रहे हैं कि वहाँ मॉनसून दस्तक दे
10: सकता है। नौतपा में तो ज्यादा आपको इंतजार रहेगा कि कब बारिश,
5: उत्तर भारत
10: आएगी, उत्तर भारत
11: बिल्कुल है ना। मॉनसून का मुझे लगता है अगले रविवार तक मॉनसून के बादल केरलम के आसमान में हमें दिखेंगे। लेकिन एक मुझे लगता है कि हम जो लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पूरा वेदर शिफ्ट हम देख रहे हैं, सीजन शिफ्ट, वेदर
5: अलनीनो की वजह से
11: नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी अपने आप में वजह है कि देखिए किस तरह से पूरी गर्मी बढ़ती जा रही है। इतना हम पहले नहीं इतना देखते थे, अक्टूबर में ठंड आ जाती थी, अब नहीं आती है ठंड,
5: अब आपको पूरा समय तक इंतजार करना पड़ता है।
11: एग्जैक्टली, आपको लंबा इंतजार,
5: आपको याद होगा नवंबर भी ठंडा नहीं था, दिसंबर मिड में स्टार्ट हुआ,
11: एग्जैक्टली एकदम से ठंड आई।
8: जो आप बोल रहे हो ना, पूरा ही शिफ्ट हो गया है और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टेम्परेचर है। जैसे आप देखिए अभी मई में तो अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और सडनली 40 के पार टेम्परेचर हो रहा है। उससे पहले आप देखोगे तो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही थी, बल्कि हमने देखा था कि जनवरी फरवरी के बाद यूजुअली देखने को
11: स्प्रिंग जो है वो खत्म हो गया,
8: स्प्रिंग खत्म हो गया
11: ही नहीं है ना,
8: तो बहुत अजीब सा शिफ्ट हुआ है ये मौसम।
11: तो अमूमन इस समय अच्छी खासी गर्मी, हम मुझे लगता है कि स्कूल के दिनों में भी हम इस समय छुट्टियां हो जाया करती थी हमारी और अच्छी खासी गर्मी रहती,
10: मुझे लगता है इतनी गर्मी में तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं, मुझे नहीं लगता कि टाइमिंग में कुछ चेंज हुआ है। नहीं, आप बता सकते हैं,
11: अभी स्कूल की छुट्टियां अब होने ही वाली है, कुछ बच्चों की कुछ की हो गई है, समर वेकेशन अब शुरू होने वाला है। लेकिन हाँ, एकदम से हम देख रहे हैं तापमान बहुत ज्यादा हो गया है, 2-4 अभी तापमान से होना होगा। लेकिन अच्छी खबर, जैसा कि हमने आपको बताया कि अर्ली मॉनसून जो है वो दस्तक देने वाला है और अगले रविवार तक मॉनसून के बादल केरलम के आसमान में मंडरा रहे हैं।
5: सूरज की तपिश से पंखे थक चुके हैं, घर से बाहर निकलने पर ऐसा लगता है जैसे सड़कें आग उगल रही हों। लू के थपेड़ों से दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लू के इन थपेड़ों के बीच गुड न्यूज ये है कि जल्द मॉनसून दस्तक देने वाला है। मॉनसून के आते ही गर्मी के तेवर ढीले पड़ जाएंगे, मॉनसून की बूंदों से पेड़ हरे हो जाएंगे, किसानों के चेहरों पर मुस्कान खिल जाएगी। मॉनसून का नाम सुनते ही शहरों में राहत की सांस भर जाती है। उसी मॉनसून के आने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
12: मौसम विभाग की माने तो मॉनसून समय से पहले आगे बढ़ रहा है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे से लेकर उत्तरी सिरे तक फैल चुका है, साथ ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य भागों में आगे बढ़ चुका है।
4: केरल में हमारा अनुमान है कि 26 मई के आसपास जो है मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसमें 4 दिनों की मॉडल त्रुटि होती है। तो अभी आप देखेंगे केरल में भी तो हमारा बहुत भारी वर्षा चेतावनी जो है जारी की गई है। तापमान इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो दक्षिण भारत क्षेत्र है यहाँ पर जो है अमूमन थोड़े से अभी सामान्य के करीब है और इतने ज्यादा बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं।
12: मौसम विभाग का अनुमान है कि परिस्थितियां अनुकूल बनती गईं तो मॉनसून 22 से 30 मई को केरल में दस्तक दे सकता है। इसके बाद मई के आखिर या फिर जून के पहले सप्ताह में मॉनसून के तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश पहुंचने का अनुमान है। फिर 5 से 15 जून तक ये महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ पहुँच सकता है। जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मॉनसून के बदरा बरस सकते हैं। अनुमान है कि 15 जुलाई तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेगा। वक्त से पहले मॉनसून की दस्तक का मतलब गर्मी और हीट वेव का अंत, साथ ही फसल की बुआई में मदद और पानी की किल्लत खत्म। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
13: अब देखिए, जहां देश के ज्यादातर मैदानी इलाके चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे हैं तो वहीं इन दिनों उत्तर कश्मीर की खूबसूरत गुरेज घाटी इस साल पर्यटन के क्षेत्र में जबरदस्त उछाल देख रही है। जम्मू कश्मीर का ये बॉर्डर एरिया पर्यटकों की पसंदीदा ऑफ बीट डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है।
8: बिल्कुल, देखिए ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, हरे भरे मैदान, निर्मल नदियां और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सजी ये जो घाटी है वो देश भर से आने वाले हजारों सैलानियों को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रही है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण गुरेज घाटी अब कश्मीर घूमने आने वाले पर्यटकों की नई पसंद बनती जा रही है।
14: उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी नियंत्रण रेखा से सटी हुई है। कुछ ही साल पहले गुरेज घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा से सटे होने के कारण पर्यटकों पर पूरी तरह से साल भर पाबंदी रही। लेकिन अब की बार कश्मीर में जिस अंदाज से पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है और गर्मी से बचने के लिए जिस अंदाज से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, गुरेज घाटी भी पर्यटकों से गुलजार है।
15: बहुत बेहतरीन बेहतरीन जगह है। आप हम सबको मेहमान नवाजी भी बहुत यहाँ कश्मीर में अच्छी है और हम सबको अपील करेंगे कि आप यहाँ आ जाइए और ये गुरेज वाली की खूबसूरती आप आने से और बढ़ जाएंगे और इसका मजा और इसका लुत्फ उठाने का आप भी कोशिश कीजिए।
16: गुरेज वाली इज अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे। यहाँ की वादियाँ बहुत सुंदर है, आज तक हमने ऐसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ। राजनाथ टॉप वॉज अमेजिंग, ऐसी बर्फ और ऐसी जगह हमने आज तक नहीं देखी थी, इट वॉज अमेजिंग, बहुत ही सुंदर लगा। बहुत सारे देश विदेश हम घूमे हैं बट यहाँ की बात ही कुछ और है।
17: देखते ही लगता है कि स्वर्ग से भी अच्छा है, ऐसा लग रहा है हमें। अभी सब लोग और अपना इंडियन आर्मी वो साथ में ऐसे रह रहे हैं और इतना इम्प्रूवमेंट, सब डेवलपमेंट हो रही है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।

0: गुरेज में कुदरती खूबसूरती के साथ साथ पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए कई सारे इलाके यहाँ पर मिलते हैं। यही कारण है कि कश्मीर आने वाले अधिकतर पर्यटक अब गुरेज घाटी जा रहे हैं। गुड न्यूज़ टुडे के लिए गुरेज से सज्जाद सोफी के साथ अशरफानी।
1: देखिए, कश्मीर तो कश्मीर है, कश्मीर को हम कंपेयर करते हैं स्विट्जरलैंड से, और अब क्योंकि अपील हो चुकी है कि विदेश नहीं जाना, तो मालदीव का विकल्प हमारे पास लक्षद्वीप है ही। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे थे तो कैसे उन्होंने अपील की थी कि आप यहां पर आइए, ये बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है।
2: तो बात आप हर बार करते हैं आप लोग भी कि इंडिया में पहले इंडिया को अच्छे से आप एक्सप्लोर कर लो, हर कोना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, फिर बाहर जाने की आप प्लानिंग।
1: हालांकि लक्षद्वीप जाने के लिए लंबी छुट्टियां बहुत चाहिए होती।
3: आप में से कोई गए भी लक्षद्वीप?
1: नहीं, गए नहीं, प्लानिंग की थी मैंने, लेकिन बहुत लंबी छुट्टी चाहिए होती क्योंकि ट्रैवल थोड़ा ज्यादा।
2: एटलीस्ट हाउ मेनी डेज?
1: आई थिंक मिनिमम आपको 7 डेज तो चाहिए।
4: और मुझे लगता है अभी वहाँ पे उतने फ्लाइट्स भी नहीं है, प्लस अभी वहाँ रुकने के लिए भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, अभी उसे डेवलप होना बाकी है। अभी धीरे धीरे हम जो जान रहे हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज हैं अलग अलग वहाँ पे वो काम कर रही हैं, बड़े बड़े होटल शायद अब वो आ रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ, वक्त लगेगा। लेकिन ये बात सही है, मुझे लगता है कि विदेश में आप कहीं भी किसी जगह जाते हैं आपको एक सा वेदर वहाँ देखने को मिलता है। हमारा देश इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ अलग अलग हिस्सों में जाएं, आपको हर तरह का मौसम और मिजाज देखने को मिलेगा।
3: बिल्कुल सही बात है। और मालदीव गए थे आपने से कोई अभी? मालदीव गए हैं, और मुझे लगता है लक्षद्वीप जो है वो एक परफेक्ट फैमिली डेस्टिनेशन हो सकता है, अगर आप भी अपने परिवार के साथ कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से अपील की है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स पर ना जाकर देश में ही बेहतर विकल्प चूज करें, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में एक खास रिपोर्ट देखते हैं।
5: साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जब सामने आईं, तो 32 द्वीपों के समूह लक्षद्वीप की मानो किस्मत ही पलट गई। महज 10 से 11 द्वीपों पर आबादी वाला ये खूबसूरत स्थल पर्यटन के नक्शे पर हिट साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की सीनिक ब्यूटी को देशवासियों के साथ साझा करते हुए कहा था कि जो लोग एडवेंचर पसंद हैं, तो उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। बस इसके बाद तो सोशल मीडिया पर #मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, यानी मालदीव्स की बजाय देशवासियों को लक्षद्वीप को अपना पर्यटन डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। वहीं देश की जनता प्रधानमंत्री के सुझावों, उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है। साल 2024 से लेकर आज तक लक्षद्वीप के पर्यटन में जबरदस्त उछाल की तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। बस ये मानकर चलिए कि आज पर्यटन के प्रमुख डेस्टिनेशन मालदीव की खूबसूरती लक्षद्वीप के आगे फीकी पड़ रही है। अब आजकल क्योंकि ईरान अमेरिका संकट के बीच इकोनॉमिक क्राइसिस का माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से गैर जरूरी विदेशी यात्राओं की बजाय घरेलू यात्रा करने, ईंधन बचाने और फिजूल खर्ची कम करने की अपील की। तो लक्षद्वीप में और बढ़ रहा पर्यटन इसकी एक हालिया मिसाल है। ये बढ़ता पर्यटन संकेत दे रहा है कि पीएम मोदी की सार्वजनिक अपीलों और संदेशों को देश काफी गंभीरता से लेता है। दरअसल इंडिया टुडे ने आरटीआई के तहत कुछ आंकड़े जुटाए हैं, जिससे पता चलता है कि लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2020 में महज 3,875 थी, जो 2024 में बढ़कर रिकॉर्ड 68,328 पर पहुंच गई। पर्यटकों की संख्या में ये सबसे बड़ा उछाल जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ही आया। जाहिर है लक्षद्वीप के रेतीले समंदर तट, नेचुरल सीन्स, वनस्पतियां और जीव की प्रजातियों को नजदीक से निहारने के लिए ही देश के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं। यही वजह है कि आज इस खूबसूरत द्वीपों के समूह पर पर्यटन काफी तेजी के साथ पंख फैला रहा है। लक्षद्वीप में पर्यटकों की संख्या साल 2023 के 46,551 से बढ़कर 2024 में 68,328 हो गई, जो एक साल के भीतर लगभग 47% का उछाल है। ठीक इसी समय मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मालदीव पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या साल 2023 के 2,09,193 से घटकर 2024 में 1,30,805 रह गई, जो कि 37.5% की गिरावट है। भारत, जो कभी मालदीव के टॉप टूरिज्म मार्केट में से एक था, विजिटर्स की हिस्सेदारी के मामले में खिसककर छठे स्थान पर आ गया। मालदीव से हटकर जब साल 2024 में पीएम मोदी ने देश के अंदर पर्यटन को बढ़ाने की अपील की तो उसके बाद से कई मशहूर हस्तियां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्रेवल प्लेटफॉर्म्स ने भी उनकी इस सोच का साथ दिया। सोशल मीडिया पर फॉरेन ट्रिप की जगह डोमेस्टिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने की मानो बाढ़ सी आ गई। कहना गलत नहीं कि मालदीव जैसी खूबसूरती के बावजूद लंबे समय तक अपेक्षाकृत अविकसित रहा लक्षद्वीप आज नेशनल टूरिज्म सिंबल बना हुआ है। लक्षद्वीप में बढ़ रहा पर्यटन आज इस बात की भी मिसाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी देश हित से जुड़ी कोई अपील करते हैं तो देशवासियों की सोच और आदतों में प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक रूप में असर भी नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: युद्ध की वजह से दुनिया संकट से गुजर रही है। ऐसे में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि लोग विदेश यात्रा से बचें और अपने देश घूमें। उसके बाद हमने अपने दर्शकों से अपील की कि वो अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें भेजें, अपना वीडियो बनाकर भेजें, जिसके बाद हमें लगातार आपके वीडियो मिल रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो हमारे दर्शक आशीष कपूर ने उत्तराखंड के कौसानी से भेजा है। उनका गाँव कितना खूबसूरत है और आप वहां कैसे जा सकते हैं, ये सब उन्हीं की जुबानी सुनिए।

0: गुड न्यूज टुडे के लिए मैं त्रिश कपूर आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज कौसानी और पूरा हिमालय जो है हमारे यहाँ बहुत सुंदर चमक रहा है। गुड न्यूज में आप सबका स्वागत है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि पर्यटक विदेशों में न जाएं और अपने देश में आएं, कौसानी आएं, उत्तराखंड आएं, बागेश्वर आएं। मैं आप सबको बागेश्वर में इनवाइट करता हूं। बागेश्वर अपने आप में एक बहुत सुंदर स्थान है, एक वैली है और जिसको गोल्डन वैली ऑफ कुमाऊं एटकिंसन ने कहा था। बागेश्वर दो नदियों का संगम है, गोमती और सरयू। वहां पर उस संगम पर बागनाथ जी के दर्शन होते हैं। कहा जाता है, मान्यता यह है, शिव भगवान वहां पर बाघ के रूप में प्रकट हुए थे और दूसरी कहानी ये भी है कि शिव भगवान वहां पर वाघ के रूप में, आवाज के रूप में प्रकट हुए थे। इसको बागेश्वर या बागेश्वर कहते हैं। ये सरयू नदी वही है जो यहां से निकलकर, बागेश्वर से निकलकर और ये जाती है अयोध्या और वहां से उस पर आजीपुरा जाके गंगा मिल जाती है। बागेश्वर अपने आप में एक सुंदरतम स्थल है। यहाँ पर ट्रैकिंग की बहुत फैसिलिटीज हैं। यहाँ पर माउंटेनिंग की, ट्रैकिंग की, वाइल्ड लाइफ की, बर्ड वॉचिंग की। मैं इस कौसानी की बात कर रहा हूँ। इस कौसानी में लगभग 200 प्रकार के पक्षी आपको मिलते हैं। अगर आप पिनाक के जंगल में चले जाएं तो आपको मालूम पड़ता है कि लेपर्ड भी आपसे मिलने चला आता है और एंटीलोप बहुत है हमारे यहाँ, हिरण बहुत है हमारे यहाँ, मस्क डियर बहुत है हमारे यहाँ, लेपर्ड बहुत है और बर्ड्स तो भरी पड़ी है हमारे पास। हमारे सुंदर मंदिर है बैजनाथ का और बागेश्वर का और सत्यनारायण का, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरसुमा ग्लेशियर, इन सब के रास्ते यहीं से जाते हैं। अगर आप बागेश्वर आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से हल्द्वानी तक आ सकते हैं ट्रेन से और हल्द्वानी से किसी भी हेली सर्विस से आप बैजनाथ उतर सकते हैं। हमारे हमारा हेलीपैड, हेलीपोर्ट यहाँ पर है, वहां पर उतर के अपनी आप जर्नी 20 मिनट पूरी कर सकते हैं। अन्यथा बस से भी, अपनी कार से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं, बहुत ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उपलब्ध है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में बागेश्वर आइए, कौसानी आइए और यहाँ की हर चीज को एंजॉय करिए। देखिए चिड़िया कितनी बोलती है हमारे यहाँ, आपको हर जगह बर्ड मिलती है। इन बर्ड्स की आवाज को सुनकर आप देखिए क्या हरियाली भरी पड़ी है यहाँ पर। यहाँ पर बुरांस के जंगल, यहाँ पर काफल पके हैं आज के जंगलों में, यहाँ पर नाशपाती और फलों की बड़ी है, बहुत बढ़ गए हैं। हमने यहाँ पर कौसानी में कई वापस सेब के बगीचे लगाए हैं, दूसरे फल के बगीचे हैं। कीवी हमारा बागेश्वर का एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और हमारे साथ जो लोग आते हैं उनको कीवी के बारे में बताते हैं, बुरांस के फूलों के बताते हैं, बॉटल ब्रश के बारे में बताते हैं। अब हमारे यहाँ फल पकने लग गए हैं। आप सोचिए कि आजकल हमारे यहाँ खुमानी पक गई है, आड़ू पक गया है। ये देखिए हमारे सेब के बगीचे में सेब लगने शुरू हो गए हैं। हमारे पास आड़ू का बगीचा भी है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर नेपटीन के आड़ू की वैरायटी है जिसका रंग लाल होता है बिल्कुल, और इसमें सेब से भी बाहर से सेब की तरह लगता है और अंदर जब इसके जाएंगे तो हमको बिल्कुल आड़ू खाने को मिलता है। जिस तरह से कैसा मिलता है आपको सेब से बगीचे भरे पड़े हमारे हर जगह सेब। ये देखिए ये सब चारों इधर देखिए। आइए आप मेरे इस आड़ू के बगीचे में देखिए आड़ू के फल किस तरह पक चुके हैं। साथ में सेब भी हैं, साथ में चेरी भी है, साथ में प्लम्स भी हैं, साथ में खुमानी भी है और सारे फल हमारे भरे पड़े हैं। सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कौसानी की बड़ी खासियत है, यहाँ से लगभग 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपको देखने को मिलता है और उसी तरह यहाँ पर कौसानी की खासियत यह है, यहाँ बैजनाथ की वैली 3000 फीट पर है और जो नंदा देवी है 26000 फीट पर है। तो 3000 से 26000 फीट ऊंचा हिमालय और 340 किलोमीटर लंबा हिमालय आपी रंपा से लेकर बंदरपुर तक सारे पहाड़ यहाँ से दिखते हैं और त्रिशूल की तो महिमा ही कुछ और है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा खुंटी और बैजनाथ की वैली, कतियों की वैली, बागेश्वर की वैली, ये आपका दिल बोल लेते हैं यहाँ पर। लेकिन जो सुंदरता हमारे कौसानी में है वो कहीं नहीं है। शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपने मित्रों की तरफ चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा था मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग स्विट्जरलैंड या यूरोप क्यों जाते हैं जबकि कौसानी यहाँ पर है। कौसानी और बागेश्वर की महिमा ही कुछ और है। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं।
1: चले फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे तन्हाई वाली पोस्ट के बाद क्यों देनी पड़ी सलमान खान को सफाई।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's. We help. You save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
6: नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार, नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट, जून में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा। दिल्ली में अब इधर उधर नहीं फेंकी जाएंगी खंडित मूर्तियां, राजधानी में बनेंगे कलेक्शन सेंटर, वैज्ञानिक तरीकों से किया जाएगा रिसाइकिल। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली समेत कई शहरों में चल रही गर्म हवा, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जयपुर के अम्रपाली म्यूजियम में ओपन डे का आयोजन, 4500 से ज्यादा पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी, सिंधु सभ्यता से बॉलीवुड तक भारतीय श्रृंगार कला की झलक। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर भक्ति के रंग में रंगा संगम नगरी प्रयागराज, सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, देश भर के मंदिरों में खास रौनक। कोई है क्या यहाँ पे सलमान खान का फैन?
7: पहले प्रेम पसंद आता था,
6: प्रेम तक ही सीमित था, उसके बाद हमारी चॉइसेस चेंज होती चली गई। लेकिन जिनको अभी भी सलमान खान पसंद है ना, अब सलमान खान कुछ भी कर दें, कोई भी जेस्चर हो जाए, कोई भी एक्शन का रिएक्शन हो जाए, तो सलमान खान की एक तस्वीर आई थिंक उन्होंने पोस्ट की है, उस पे रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं कि आपको कोई दुख तो नहीं सता रहा, तो फैंस के लिए उन्होंने रिएक्ट किया है फाइनली।
7: बिल्कुल, आपको बता दें कल ही आपको हमने एक खबर भी बताई थी जिसमें हमने काफी चर्चा की थी कि शर्टलेस जो उनकी शुरू से रही है, मतलब यू नो उसको यूएसपी कहेंगे उनकी, तो उन्हीं की ये यूएसपी रही है, तो उसमें एक पोस्ट किया था और बड़े ही वो अकेले से अलोन वाली बात उन्होंने कही थी, जिसको लेकर अब वही लाखों उनके फैंस है, तो उन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिया और उसके बाद पूछना शुरू किया कि आखिर क्या हुआ सलमान खान को। सलमान ने जो उनके लाखों फैंस है सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा है कि लोग सलमान के बयान का मतलब निकालने लगे हैं और पूछा जाने लगा है कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर सलमान को कोई गम सता रहा है, तो अपने फैंस को फिक्रमंद देख सलमान ने अपने बयान पर सफाई दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, देखते हैं।

0: एक दिन पहले सलमान खान की शर्टलेस तस्वीर के साथ किए गए इस पोस्ट ने सोशल मीडिया से लेकर उनके घर तक तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी। दूसरी तरफ सलमान के घर में तूफान आ गया। सलमान खान की मां को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका चहेता बेटा भरे पूरे घर में तन्हाई महसूस करने लगा। सलमान खान इतनी परेशान और चिंतित हो गई कि उन्होंने अपने बेटे से सवालों की झड़ी लगा दी। फिर क्या था, सलमान खान को एक और पोस्ट करनी पड़ी। सलमान ने वायरल हो रहे अपनी पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब समझा गया। सलमान ने कहा कि अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था। जब मेरे पास इतना बड़ा और प्यारा परिवार और दोस्त हैं, तो मैं अकेला कैसे रह सकता हूं? और जब मेरे पास आप लोग हैं, आपकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं, तो मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूं। सलमान ने आगे बताया कि उन्हें नहीं पता था कि हल्के फुल्के अंदाज में लिखा पोस्ट इतना वायरल हो जाएगा कि फैंस तो फैंस, उनकी माँ भी परेशान हो जाएंगी। सलमान ने लिखा, कभी कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा मी टाइम चाहिए। बस इस बार कोई फोटो नहीं आई, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा, चिल करो यार। दरअसल सलमान खान ने सोमवार को अपनी एक शर्टलेस तस्वीर पोस्ट की थी। साथ ही कैप्शन में लिखा था कि खुद के साथ रहने के दो तरीके हैं, अकेला और तन्हा। अकेला रहना आपकी पसंद होती है, लेकिन तन्हा तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता। फिर क्या था, पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और अब सलमान खान को खुद सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रेल की पटरियों पर विकास की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने की खबर आई है और इसकी एक तस्वीर रेल भवन से सामने भी आई है, जिसे लेकर दावा यह किया जा रहा था कि बुलेट ट्रेन की असली तस्वीर यही है। हालांकि रेलवे ने इस दावे को खारिज कर दिया।
2: बिल्कुल, देखिए, रेलवे बोर्ड ने साफ कर दिया है कि बुलेट ट्रेन की वो तस्वीर असली नहीं थी, वो रियल नहीं थी और सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर इसे लगाया गया था। वैसे आपको बता दें कि पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी और इस प्रोजेक्ट पर तेजी से जो काम है वो लगातार चल रहा है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये बुलेट ट्रेन अगले साल 15 अगस्त तक शुरू भी हो जाएगी।
3: बुलेट ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई, जब रेल भवन में हाई स्पीड ट्रेन की एक तस्वीर लगी दिखी। इस तस्वीर को ही भारत में रफ्तार पकड़ने वाली बुलेट ट्रेन की पहली झलक मान लिया गया। ट्रेन की तस्वीरें वायरल हो गई और इसे भारत में रेल सफर के भविष्य के तौर पर देखा जाने लगा। भारत में ये ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाने की तैयारी है। तस्वीरों के साथ ही सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा होने लगी कि अगले साल यानी कि अगस्त के महीने में भारत में बुलेट ट्रेन सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है। अहमदाबाद से लेकर मुंबई के रूट का एक बड़ा हिस्सा तैयार भी हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ट्रेन की तस्वीर असल में भारत में चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की नहीं है। ट्रेन की इस तस्वीर को वायरल होता देख रेल मंत्रालय ने सफाई जारी की। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि रेल भवन में लगी तस्वीर भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन की नहीं, बल्कि एक सांकेतिक तस्वीर है। इसे प्रतीकात्मक तौर पर रेल भवन में लगाया गया है। असल ट्रेन का डिजाइन इससे अलग हो सकता है। अगर तस्वीर को लेकर किसी तरह का विवाद होता है तो इसे हटाया भी जा सकता है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन भारतीय रेल की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस ट्रेन के लिए मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है। इस रूट पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का निर्माण बेंगलुरु की कंपनी BEML कंपनी में किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। रेल भवन में लगी तस्वीर भले ही सांकेतिक हो, लेकिन इसके वायरल होने से बुलेट ट्रेन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब भारत में बनी असल बुलेट ट्रेन पटरियों पर रफ्तार भरती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मैंने अभी हाल फिलहाल में शाहिद कपूर की एक फिल्म देखी, वो वायर वाले हेडफोन लेके चल रहे हैं, मुझे लग रहा है फिर से ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
4: काफी देर से आप किसी भी एक्टर को देखिए वो आपको व्हाइट कलर के वायर्ड उसमें ही नजर आएंगे। इनफैक्ट मेरे से मैंने भी कुछ नया खरीदा है फोन उसके साथ वायर्ड ही लिया, अभी तक एयरपॉड्स लिए नहीं है मैंने। तो डू यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्विच?
5: देखिए वायर्ड तो हमने बहुत यूज किया है, लेकिन ऑफकोर्स उसके कुछ माइनस पॉइंट्स भी
4: प्रोज एंड कॉन्स,
5: प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लेकिन ये है कि जैसे हम जैसे लोग जब रिपोर्टिंग में जाते हैं तो उसमें एयरपॉड्स आपके काफी कारगर होते हैं, वायर्ड नहीं होते तो आपको मूवमेंट ईजी हो जाता है। लेकिन हाँ, जो उसके प्रोज हैं ये जानते हुए वायर्ड के, मुझे लगता है कि वो खरीदना बेहतर विकल्प हो सकता है।
4: आई थिंक यू कैन कीप बोथ,
5: दोनों रख सकते
2: हैं। पोर्ट भी नहीं आता था ना शगुफ्ता, अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा था जो मोबाइल फोन के मॉडल्स आ रहे थे ना उसमें पोर्ट ही नहीं आ रहा था,
5: पोर्ट नहीं आ रहा था।
2: एग्जैक्टली स्विच इन द वायर्ड ईयर,
5: एग्जैक्टली एग्जैक्टली वायर्ड फोन के लिए आप मतलब नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, आपके पास है नहीं
1: आप क्या नहीं, वही है आई थिंक वायर वाला ज्यादा सेफ है, इसीलिए शायद तमाम लोग इस पे वापस से स्विच करते जा रहे हैं।
4: तो चलिए खबर यही है कि आजकल देखिए आप कई देसी विदेशी एक्टर्स को यही वायर्ड एयरफोन्स यूज करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि एक बेहतर विकल्प के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बीच में बहुत सारी खबरें आ रही थी कि ये ब्लास्ट हो गए, ये न्यूज भी आई थी, हमने देखी थी, लेकिन अब इसको यूज करने की दोबारा से खबरें आ रही हैं। क्या है वायर्ड ईयरफोन की वापसी की वजह, वो आपको दिखाते हैं।

आए दिन नई टेक्नोलॉजी से हम और आप रूबरू हो रहे हैं। लोग अपनी पुरानी चीजों को भूलकर नई चीजें भी अपना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बदलाव के इस दौर में हम घूम फिर कर उसी पुराने दौर में भी पहुंच रहे हैं। बात चाहे फैशन की हो, खान पान या रहन सहन की, लोग पुरानी चीजों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। शायद यही बात अब टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसे वायर्ड ईयरफोन के रूप में नजर आ रही है। जहां कुछ सालों से लोग वायरलेस चीजों पर फिदा हो रहे थे, वहां अब पुराने वायर्ड ईयरफोन्स की वापसी हो गई है। आम लोगों के साथ शाहिद कपूर, प्रियंका चोपड़ा, बेला हदीद, रॉबर्ट पैटिंसन और ड्रैक जैसे कई सारे सेलिब्स भी अब वायर्ड ईयरफोन्स लगाकर घूम रहे हैं। भारत में भी आम लोगों के बीच अब इसका क्रेज बढ़ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि वायर्ड ईयरफोन्स की कीमत वायरलेस ईयरपोड्स के मुकाबले कम होती है, इसलिए इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बाजार में एक से बढ़कर एक महंगे

0: दरअसल वायर्ड ईयरफोन के दोबारा ट्रेंड में आने की कई वजह हैं। लोगों को लंबे समय तक वायरलेस ईयरपोड्स इस्तेमाल करने से सिरदर्द और कानों में भिनभिनाहट यानी कि बजिंग साउंड जैसी दिक्कतें आ रही हैं, खासकर तेज आवाज में सुनने पर, इसलिए वो दोबारा से वायर्ड ईयरफोन लेना पसंद कर रहे हैं। दूसरा कारण वायरलेस ईयरपोड्स से होने वाले रेडिएशन का डर है, जिसकी वजह से ब्लूटूथ रेडिएशन सीधे कानों में जा रहा है, जो कि नुकसानदायक है। वहीं क्योंकि हैकर्स वायरलेस ईयरपोड्स को ब्लूटूथ के जरिए हैक कर सकते हैं, ऐसे में वायर्ड ईयरफोन में इस तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। वायर्ड ईयरफोन की वॉइस क्वालिटी भी वायरलेस ईयरपोड्स से ज्यादा अच्छी मानी गई है। वहीं वायर्ड ईयरफोन को यूज करने से पैसों की बचत है, यानी 1000 रुपए के वायर्ड ईयरफोन की साउंड क्वालिटी 20000 के वायरलेस ईयरपोड्स जितनी ही अच्छी या उससे भी बेहतर होती है। यही कारण है कि मार्केट में वायर्ड ईयरफोन की बिक्री में इस साल 20% का उछाल आया है। इसके अलावा वायरलेस ईयरपोड्स को बार बार चार्ज भी करना पड़ता है, और अगर बैटरी खत्म हो गई फिर आप उसे इस्तेमाल में नहीं ले सकते हैं, जबकि वायर्ड ईयरफोन इसके बिल्कुल उल्टा है। इन्हें ना चार्ज करना पड़ता है और ना ही बैटरी की कोई परेशानी होती है। एक और कारण ये कि वायरलेस ईयरपोड्स के खो जाने की भी ज्यादा आशंका रहती है, और कभी भी कान से निकलकर ये गिर सकते हैं। एक बार अगर गुम हो जाए तो फिर मिलना मुश्किल होता है। शायद इन्हीं सारे कारणों के चलते वायरलेस ईयरपोड्स के टेक्नोलॉजी एरा में भी वायर्ड ईयरफोन की वापसी खूब ट्रेंड में है। ऐसे में आम लोगों के बीच इन दिनों वायर्ड ईयरफोन को खास तौर से गले में लटकाकर घूमने वाले सेलेब्स भी किसी ट्रेंड सेटर से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे बस्तर, जहां नक्सल हिंसा से मुक्ति के बाद एक नई इबारत लिखी जा रही है।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: गुड न्यूज़ चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: छत्तीसगढ़ के बस्तर आपको लिए चलते हैं, जहां नक्सल मुक्त होने के बाद वहां विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। स्थानीय लोग खासकर सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं।
7: विकास की इसी भागीदारी के काम में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है। हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह बस्तर की एक ऐसी ही जगह पर पहुंचे, वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
8: बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूं। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहां पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहां पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हां, ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहां पर शामिल किया गया है, और इसका सीधा मकसद यह है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहें। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है, और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहां आप तस्वीरों में देख रहे हैं।

0: कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। तो इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं और खास तौर पर इन मशीनों की खासियत यह है कि जो पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ का जो बस्तर के इलाके में धान कूटने की जो व्यवस्था होती थी उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। जब से नक्सलवाद फ्री हुआ है उसके बाद से इन तमाम इलाकों में इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी लोकेलिटी बनी रहे, किसी भी तरीके से उसका नुकसान न हो, इसलिए इस तरीके के कदम यहां पर आदिवासी इलाकों में बढ़ाए जा रहे हैं। नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब कदम ऐसे बढ़ाया जा रहा है जिसका सीधा मकसद यह है कि लोगों को उनके जो खास प्रोडक्ट हैं उनको यहां से भेजा जा सके मशीनों के जरिए। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहां पर तस्वीरों में देख रहे हैं, उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहां पर मौजूद है और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहां पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं?
1: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारे काम कुछ आजीविका का साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको जो सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग एक काम कर पा रहे हैं सर। अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गांव में, दीदी लोग जैसे समूह में जुड़ के कमा पा रहे हैं सर, अपने घर को चला पा रहे हैं। आगे जाके बहुत पहले बहुत परेशानी था सर, घर चलाने बहुत दिक्कत, जंगल में आश्रित थे सर। ये काम मन को हम तो जानते ही नहीं सर गाँव वाले, अभी देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है काम करके। दो पैसा
0: इमली जो है इसके प्रोडक्ट यहाँ पर पैकिंग की जा रही है और ये तैयार हो रही है, लोकल फॉर वोकल, यहाँ की जो सामान है वो दूसरे मार्केट में भी भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार किए गए हैं। यहाँ धान कूटने की खास तरीके की जो लोकल मशीन है, यानी कि जो परंपरागत तरीके से यहाँ पर धान कूटे जाते थे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी पैकिंग भी हो रही है। यानी कि इस पूरे इलाके को अब विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस तरीके के सेवा केंद्र उन इलाकों में खोले गए हैं जो पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित थे, लेकिन नक्सल का प्रभाव खत्म होते ही सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप जो हैं वो अब सेवा कैंप में तब्दील हो गए हैं। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।
2: चाय पर चर्चा में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा क्योंकि खबरें अभी जारी हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: Order for Jennifer C.
5: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
4: Yeah. Can you handle that much caffeine?
5: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
4: Oh, really? That's great.
5: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
4: Yeah, you just said that.
5: Did you say I just said that?
4: Yeah, I'm cutting you off.
5: I can't have any more? Why not?
6: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: आज जहां नई पीढ़ी तेजी से वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ती नजर आ रही है, वहीं देश के कुछ लोग अब भी अपनी मिट्टी, अपनी परंपराओं और संस्कृति को दिल से संजोए हुए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक खूबसूरत वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो को उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है, जिसमें एक दादा और उनका पोता पूरे उत्साह के साथ गुजराती लोक नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं।
8: बिल्कुल, देखिए वीडियो में सिर्फ डांस नहीं बल्कि पीढ़ियों के बीच संस्कृति का जो खूबसूरत रिश्ता है वो साफ नजर आता है। दादा से पोते तक परंपरा की ये डोर लोगों को इमोशनल कर रही है, उनको भावुक कर रही है और भारतीय संस्कृति की जड़ों की याद भी लोगों को दिला रही है। आनंद महिंद्रा ने वीडियो शेयर करते हुए जो संदेश लिखा है उसने भी लोगों के दिलों को छू लिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को भारतीय संस्कृति की खूबसूरती और परिवार के मजबूत रिश्तों की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं और इसकी सराहना करते नहीं थक रहे।
9: देखिए मौसम जल्दी दस्तक दे रहा है, इस अच्छी खबर के साथ साथ आपको अपना ख्याल रखना है क्योंकि फिलहाल नौतपों की शुरुआत भी होने वाली पूरे उत्तर भारत में। तो रखिए अपना ख्याल, कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 5 बजे 4 बजे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
10: जाए। A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests, did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
13: जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
15: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: Good news today.
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
19: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मौसम को देखते हुए केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत, ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत। नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार, नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट, झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा। दिल्ली में अब इधर उधर नहीं फेंकी जाएंगी खंडित मूर्तियां, राजधानी में बनेंगे कलेक्शन सेंटर, वैज्ञानिक तरीकों से किया जाएगा रिसाइकिल। उत्तर भारत में बढ़ा हीटवेव का असर, दिल्ली समेत कई शहरों में चल रही गर्म हवा, मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सावधान रहने की अपील की गई।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना,
19: साहिल गुप्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज मंगलवार है और जीएनटी स्पेशल में बात होगी मंगलवार की। देखिए मंगलवार हर हफ्ते आता है लेकिन आज का मंगलवार खास है क्योंकि आज है बड़ा मंगल। आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा और अधिक माह का पहला बड़ा मंगल है। ऐसे में आज सुबह से शहर शहर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। प्रयाग से अयोध्या और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के साथ साथ उनके प्रिय बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए भी आ रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में बड़ा मंगल के मौके पर लोग संगम तट पर लेटे हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचते हैं।

0: अयोध्या में हनुमानगढ़ी हो या फिर प्रयागराज में लेटे हनुमान का मंदिर या फिर दिल्ली में कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर। देश भर में शहर शहर मंदिरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो कहीं सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर मंगलवार बजरंगबली को समर्पित है, लेकिन ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार की अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि इस महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना बेहद कल्याणकारी मानी गई है। ज्येष्ठ का तीसरा और अधिक मास का पहला बड़ा मंगलवार होने के चलते देश के तमाम मंदिरों में हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। संगम नगरी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह बड़ा मंगल के मौके पर देखते ही बन रहा है। दूर दूर से हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए पहुंचे हैं और यहां आराधना अर्चना कर रहे हैं।
1: अधिक मास का पहला बड़ा मंगलवार है, उस लिए हम सभी यहां पर आज महाबली सरकार के शरण में आए हुए हैं। हम सभी यह कामना करते हैं कि समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण हो। जैसा कि विश्व वैश्विक संकट अभी चल रहा है, पूरे विश्व पे संकट मंडराया हुआ है, हम महाबली सरकार से यही आशा और कामना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि समस्त विश्व पर अपनी कल्याण अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। क्योंकि आज कलयुग में अगर हम बात करें तो कलयुग में कोई अगर एक देवता इस समय है तो वो सिर्फ महाबली सरकार ही है।
0: लेटे हुए हनुमान जी का धाम पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता मंदिर है, जहां बजरंगबली की लगभग 20 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी ने थकान मिटाने और अपने घावों से राहत पाने के लिए ये मुद्रा धारण की थी। यहां संगम स्नान के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन की परंपरा रही है, लिहाजा आज के दिन यानी बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं।
2: हनुमान जी का ये जो है भव्य मंदिर है, हम लोग के मन में बहुत प्रसन्न उल्लास रहता है, क्योंकि हनुमान जी का दर्शन सबके सौभाग्य में नहीं होता है, ये जिसके सौभाग्य में होता है वही यहाँ आता है और दर्शन करता है।
0: इसी तरह रामलला की अयोध्या में भी आज बजरंगबली के नाम की ही गूंज है। राम जी की नगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी धाम में तीसरे बड़े मंगल के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाबली वीर हनुमान के दर्शन को पहुंचे। बड़े मंगल का अयोध्या में विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी सोने की लंका से एक स्तंभ लेकर आए थे, वो आज भी हनुमान गढ़ी में स्थापित है। अयोध्या में पहले हनुमान जी के दर्शन और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
1: बड़ा मंगलवार होने की वजह से जो है हनुमान जी तो अयोध्या के राजा ही है, और भगवान श्री राम हनुमान जी से जो प्रथम मिलन हुआ था ये बड़ा मंगलवार ही था। माँ जानकी ने हनुमान जी को जो अक्षय का आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुब निज सुत हों करें बहुत रघुनायक छू, वो माता जानकी ने ही आज ही के दिन आशीर्वाद दिया था, इसलिए उसका विशेष महत्व है। और जो भी श्रद्धालु आज के दिन दर्शन करेंगे उनका हनुमान जी महाराज कल्याण करेंगे।
0: बड़े मंगल के अवसर पर पूरे अयोध्या शहर में जगह जगह भंडारे, शरबत वितरण और प्रसाद सेवा का आयोजन भी किया गया है।
3: लगातार हनुमानगढ़ी के पास की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी है अयोध्या की, और जो पूरी श्रद्धालुओं से आज भरी नजर आ रही है, 2 किलोमीटर से लंबी लाइनें नजर आ रही है। यहाँ पे जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पे लगातार दर्शन करते नजर आ रहे हैं, और जो आस्था आज है वो काफी ज्यादा भारी लग रही है, गर्मी पे आस्था ज्यादा भारी लग रही है, और लगातार यहाँ पे जो है भीड़ जो नजर आ रही है।
0: बड़ा मंगल के मौके पर राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद मरगट हनुमान मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने यहां बड़ा मंगल पर केसरी नंदन हनुमान जी के दर्शन पूजन कर संकट मोचन का शुभ आशीष पाया।
4: ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से हनुमान जी के रंग में रंग चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में आपको भीड़ नजर आने वाली है। इस वक्त हम मौजूद है मरगट वाले हनुमान मंदिर में और यहाँ पर नजारा एकदम अलग है। किस तरीके से भक्ति का जो रंग है वो इस पूरे मंदिर में आपको नजर आने वाला है। आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है अपने अपने तरीके से हनुमान जी को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए भोग लेकर आया है। यहाँ पे कोई बूंदी का प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई लड्डू चढ़ा रहा है उनको। सर, दर्शन हुए आपके अंदर अच्छे से?
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया दर्शन हुए हमारे।
4: ज्येष्ठ महीने के मंगलवार चल रहे हैं, कहते हैं कि बहुत खास होते हैं, तो हर मंगलवार आते हैं या ज्येष्ठ महीने के मंगलवार?
5: नहीं नहीं, हम तो हर मंगलवार को आते हैं, यहाँ पर काफी अच्छे दर्शन होते हैं।
4: क्या हनुमान जी को आज प्रसन्न कैसे कर रहे हैं आप?
6: बहुत सालों से प्रसन्न कर रहे हैं। 30 साल हो गए मुझे,
4: 30 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने जरूर सुनी होगी इनकी, तभी वो है यहाँ पर जो है वो भक्त लगातार आ रहे, दर्शन अच्छे से कर रहे।
6: बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है यहाँ आने से।
0: पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने बजरंग बली को अजर अमर होने का वरदान दिया था, इसलिए माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं। वे आज भी संकट में रहने वाले अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसी कृपा की मंगल कामना के साथ बड़े मंगल पर श्रद्धालु शहर शहर भक्त शिरोमणि बजरंग बली के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला, प्रयागराज से आनंद राज और दिल्ली से मनीषा लड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: मान्यता है कि समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसी कोई विपत्ति नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं जिसे रामदूत वीर हनुमान हर नहीं सकते, और कौन नहीं चाहता कि जीवन निष्कंटक निर्बाध चलता रहे। यही वजह है कि आम हो या खास, बजरंग बली के इस खास दिन पर सभी केसरी नंदन के दरबार में हाजिरी लगाते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जिनमें देश के 3 बड़े नेता बड़ा मंगल के मौके पर हनुमत भक्ति के पथ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ सुंदरकांड पाठ में शामिल होने पहुंचे थे। दरअसल यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा मंगल की पूर्व संध्या पर अपने घर सुंदरकांड का पाठ रखवाया था, जिसमें सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्य और कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तस्वीर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की है। बड़ा मंगल के इस खास मौके पर अखिलेश यादव लखनऊ के हजरतगंज में बजरंग बली की आरती में शामिल हुए। इसके बाद वो भंडारे में पूरी हलवा बांटते हुए नजर आए। बड़ा मंगल के भंडारे में अखिलेश यादव ने खुद भी प्रसाद चखा। और तीसरी तस्वीर है राहुल गांधी की हनुमान भक्ति की। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर हैं। इसी बीच वो रास्ते में चरुआ के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए रुके और उन्होंने बजरंग बली की यहां पर पूजा अर्चना भी की। तो बड़ा मंगल सभी के लिए खास है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से पुण्य लाभ होता है। दरअसल सनातन धर्म में बड़ा मंगल का महत्व होने के कई कारण हैं। बड़ा मंगल से जुड़ी कई ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं जो इस दिन को विशेष बनाती हैं। तो चलिए आपको यही बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था बड़ा मंगल पर कि ये दिन हमेशा के लिए खास हो गया।

0: त्रेता युग में ये प्रसंग है उस समय का जब माँ सीता का हरण हो चुका था। माँ जानकी की खोज में कई दिनों तक जंगल जंगल भटकने के बाद श्री राम और लखन किष्किंधा में ऋष्यमूक पर्वत की तलहटी पर पहुंचे थे। माना जाता है कि रामायण में जिस ऋष्यमूक पर्वत का उल्लेख मिलता है वो आज के कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में मौजूद है। त्रेता युग में यहीं पर वानरराज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। उस रोज मुनिवेश में आते धनुर्धारी कुमारों को देख सुग्रीव ने सखा हनुमान से कहा कि तनिक वेश बदल कर पता तो करो कि आखिर ये युवक हैं कौन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि ऋषि के वेश में पहुंचे हनुमंत ने श्री राम लखन से पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु वन स्वामी। यानी हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? श्री राम ने बताया कि वे कौशलराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता का वचन निभाने वन में आए हैं। वन में जानकी का हरण राक्षस ने कर लिया है और उसे ही खोज रहे हैं। कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, बजरंग बली की प्रसन्नता का पारावार न रहा। प्रभु पहचानी परेऊ गहि चरना, सो सुखुमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश है रचना। यानी प्रभु को पहचान कर बजरंग बली उनके चरण पकड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पौराणिक मान्यता में त्रेता युग के इसी प्रसंग को ज्येष्ठ महीने के मंगलवार यानी बड़े मंगल से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि त्रेता युग में जिस दिन बजरंग बली पहली बार अपने आराध्य श्री राम से मिले, उस दिन बड़ा मंगलवार था। इसके कारण ही ज्येष्ठ के मंगलवार को पर्व के रूप में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा है।
1: ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए थे वन में भटकते हुए, और उनका परीक्षा भी यही ली थी ब्राह्मण रूप बन के। और जब पता लगा कि ये तो मेरे आराध्य राम है, उनको पहचानते ही उनके मन में ग्लानि हुई और उनके मन से रुदन आने लगा कि मैं अपने आराध्य अपने ईश्वर को पहचान नहीं पाया, जिनके कारण जिनकी लीला के कारण मेरा जन्म हुआ है, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के चरण उन्होंने अपने अश्रुओं से ही धोए थे, तब भगवान राम ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया था कि जो व्यक्ति आज के दिन आपके दर्शन करेगा, सभी ग्रह गोचर सभी नक्षत्रों किसी भी प्रकार से शत्रुओं से होने वाले भय को समाप्त कर लेगा, आशीर्वाद आपका प्राप्त कर लेगा।
0: आमतौर पर पूरा ज्येष्ठ महीना पवित्र और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ के मंगलवार की अपनी विशिष्टता है, खास महिमा है। कारण यही है कि इसका संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की पूजा से है।
1: इस दिन हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान जी का पूजन करना और हनुमान जी के समक्ष श्री राम के चरित्र का गुणगान करना विशेष पुण्यदायी और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सुगम अवसर कहलाता है। अगर आप आज हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर उनको चोला आदि चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं उनका, और उनके गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके उनके समक्ष बैठ के भगवान राम के चरित्र का पाठ करते हैं और साथ में हनुमान जी का जो वो है सुंदर कांड उसका पाठ करते हैं, तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, मन की आपकी इच्छित कामनाएं पूर्ण होती है।
0: मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने में हर मंगलवार को बजरंग बली की पूजा करने से कल्याण का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि बड़े मंगल के पावन अवसर पर जो श्रद्धालु हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न जल दान करते हैं, उनके कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और उन्हें बजरंग बली की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हर साल ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगलवार का हर हनुमान भक्त को बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बता दें कि बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है।
1: बड़ा नाम या बुढ़वा नाम भी कई जगह बड़े के लिए बुढ़वा भी कहते हैं ना, जैसे हमारे पहाड़ में बुढ़वा बूढ़ा जी कहते हैं और बुढ़वा कहते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब बुढ़वा से मतलब बड़ा। बड़े का अर्थ है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगल सारे बड़े मंगल कहलाते हैं।
0: बड़ा या बुढ़वा मंगलवार की एक कथा इसे द्वापर युग से भी जोड़ती है। ये कथा है उस दौर की जब महाभारत का महासंग्राम आरंभ हो चुका था। इसी दौरान एक दिन द्रौपदी के कहने पर भीम कमल पुष्प लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर मौजूद कमल सरोवर के पास गए। वहीं मार्ग में हनुमान जी लेटे हुए थे और उनकी पूंछ रास्ते को घेरे थी। भीम उसे लांग कर जाना नहीं चाहते थे। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वे अपनी पूंछ को रास्ते से हटा लें ताकि वे आगे जा सकें। लेकिन हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए भीम की बातों को अनसुना कर दिया। बजरंगबली ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, खुद ही मेरी पूंछ हटा दो और आगे चले जाओ। भीम इस बात से चिढ़ गए और हनुमान जी की पूंछ हटाने लगे। भीम ने पूरी ताकत लगाकर पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन वे पूंछ को हिला भी न सके। हनुमान जी ने भीम के बलशाली होने के घमंड को क्षण भर में तोड़ दिया।
2: जैसा कि नाम से आता है, बड़ा मंगल जो ज्येष्ठ मास में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसको बड़ा मंगल कहते हैं। इसकी कथा द्वापर युग से प्रारंभ होती है। एक समय की बात है कि भीम का अहंकार तोड़ने के लिए हनुमान जी वृद्ध बानर का रूप धारण करते हैं और अपने पूंछ फैलाकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी के पूंछ को भीम हटाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उस पूंछ को हटा भी नहीं पाते हैं। तब हनुमान अपना असली रूप प्रदान करते हैं और भीम को आशीर्वाद देते हैं कि हे भीम, आप जहाँ भी जाओगे, युद्ध करोगे, आप विजय श्री प्राप्त करोगे। उसी समय से यह बड़ा मंगल का कथा हमारे समाज में प्रचलित।
0: इसके बाद बताया जाता है कि उस दिन बड़ा मंगलवार था। इसके बाद महाबली भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। इन पौराणिक कथाओं ने जनमानस में बड़ा मंगलवार को बेहद खास बना दिया। माना जाता है कि बड़े मंगल के दिन बजरंग बली का पूजन करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बड़ा मंगल के साथ बात अब आस्था के उस मंगल उत्सव की जो देवभूमि उत्तराखंड में जारी है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। अब के साल हर रोज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन रहा है। 19 अप्रैल को आज एक महीना पूरा हो चुका है। पिछले एक महीने में चारधाम यात्रा में अब तक 16.5 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। यह अभूतपूर्व रिकॉर्ड है। आज यानी 19 मई सुबह 10 बजे तक कुल 16,43,182 लोग चारधाम में दर्शन कर चुके हैं। इसमें से केदारनाथ धाम में अब तक 6,65,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए, जबकि बद्री विशाल के धाम बद्रीनाथ में अब तक 4,28,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में माँ यमुना के धाम यमुनोत्री पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2,78,000 को पार कर चुकी है, जबकि माँ गंगा के धाम गंगोत्री में 19 मई की सुबह 10 बजे तक 2,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु हाजिरी लगा चुके हैं। शिव भक्तों के लिए चारधाम यात्रा में केदारनाथ का बहुत महत्व माना गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम देवभूमि में मौजूद पंच केदार में शामिल है। मान्यता यह है कि 5 जगहों पर पांडवों को भगवान शिव के अलग अलग अंगों के दर्शन हुए थे। केदारनाथ में पीठ के दर्शन हुए, मध्महेश्वर में भगवान के मध्य भाग यानी नाभि के। 21 मई को मध्महेश्वर धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए आज धूमधाम से भगवान की डोली अपने शीतकालीन आवास उखीमठ से रवाना हुई।

0: यात्रा का श्री गणेश हो गया।
1: भगवान मध्य महेश्वर
0: ऊखीमठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गए। आस्था भरे हृदय और होठों पर महादेव के जयकारों के साथ सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में द्वितीय केदार मध्य महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली रवाना हुई। ऊखीमठ का ओमकारेश्वर मंदिर भगवान मध्य महेश का शीतकालीन गद्दी स्थल है। साल के 6 महीने मध्य महेश्वर मंदिर बर्फ से ढका रहता है। मान्यता है कि उस काल में भगवान मध्य महेश यहाँ निवास करते हैं।
2: आज भगवान मध्य महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली प्रथम रात्रि प्रवास के लिए राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंचेगी। कल भगवान मध्य महेश्वर की चल विग्रह डोली रांची से विदा होकर के अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोनार गांव पहुंचेगी और परसों यानी 21 मई को भगवान मध्य महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ब्रह्म भेला पर गोनार गांव से प्रस्थान करके बनातोली खटारा नानो कोंचटी महकमा विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए मध्यमेश्वर धाम पहुँचेगी और भगवान मध्यमेश्वर की चल विग्रह डोली के धाम पहुँचने पर भगवान मध्यमेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं के साथ विधि विधान से ग्रीष्म काल के लिए खोल दिए जाएंगे।
0: आपको बता दें भगवान मध्यमेश्वर का धाम पंच केदार की श्रृंखला में द्वितीय केदार माना जाता है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य अध्यात्म और रहस्य का अनोखा संगम है। ऊखीमठ से करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद जब आप इस भव्य और दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है।
2: मध्यमेश्वर धाम में भगवान शंकर के मध्य भाग की पूजा होती है और मध्यमेश्वर धाम की धार्मिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता विभिन्न पुराणों में वर्णित है। शिव पुराण के केदारखंड में भगवान मध्यमेश्वर के तीर्थ की विस्तृत महात्म्य अंकित किया गया है।
0: आपको बता दें कि शिव भक्तों के लिए मध्य महेश समेत पंच केदार में पूजा और दर्शन का विशेष महत्व है। पंच केदारों में प्रथम है केदारनाथ जहां भगवान शिव की पीठ के हिस्से की पूजा होती है। दूसरा है मध्य महेश्वर जहां शिवजी के मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। तीसरा केदार है तुंगनाथ जहां शिवजी की भुजा की पूजा होती है और चौथे केदार रुद्रनाथ में उनके मुख की पूजा की जाती है। जबकि पांचवा केदार है कल्पेश्वर जहां शिवजी की जटाओं की पूजा की जाती है। इन 5 कड़ियों से जुड़कर बनती है शिव की वो माला जिसे पहनकर हिमालय धन्य हो जाता है। मान्यता है कि इनके दर्शन से अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। पंच केदार का शास्त्रों में बेहद विशेष महत्व बताया गया है क्योंकि यहाँ दर्शन करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है।
3: पंच शिव के 5 पवित्र मंदिर हैं केदारनाथ तुंगनाथ रुद्रनाथ मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर। इनका मुख्य महत्व महाभारत के पांडवों से जुड़ा है जहां पे शिवजी से आशीर्वाद प्राप्त करके वो अपने पापों से मुक्त हुए थे। ये यात्रा आध्यात्मिक मुक्ति आत्मा अनुशासन और कर्म के फल को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है।
0: पंच केदार अर्थात केदारनाथ से कल्पेश्वर तक की यात्रा, इससे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी है जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों को अपने ही भाइयों की हत्या करने के चलते गोत्र हत्या का पाप लग गया था। इससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवजी के दर्शन करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव इस युद्ध के कारण पांडवों से नाराज थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे। ऐसे में शिव जी अंतर्धान हो गए और बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और उस बैल की पीठ पकड़ ली। तब भगवान शिव के शरीर के 5 हिस्से 5 अलग अलग दिशाओं में प्रकट हुए। केदारनाथ में शिव की पीठ का भाग उभरा तो मध्य महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में महादेव की जटाएं प्रकट हुई।
2: शिव पुराण के अनुसार जब पांडव गुरु हत्या और गौ हत्या के निवारण के लिए हिमालय आगमन हुआ और केदारनाथ धाम में भगवान शंकर ने भैंसे के रूप में पांडवों को दर्शन दिए, उसके बाद 5 पांडवों ने मध्यमेश्वर धाम में लंबा समय व्यतीत किया तथा जो पांडवों के द्वारा जो अपने पितरों को मध्यमेश्वर धाम में तर्पण दिए गए हैं, एक शिला पर उनके निशान आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं।
0: भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली के प्रस्थान के साथ ही मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मध्य महेश्वर की डोली 21 मई को धाम पहुंचेगी और उसी दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे।
4: और धाम पहुंचने पर लगभग 11 बजे द्वितीय केदार भगवान मध्यश्वर के कपाट आगामी 6 माह के लिए खुलेंगे। आपको बता दें कि भगवान मध्यश्वर की मध्यश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्यश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
0: चौखंबा शिखर की तलहटी में मौजूद भगवान मध्य महेश्वर का ये मंदिर बेहद अनोखा है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भक्तों को भीतर तक सुकून देती है। जितना अद्भुत ये मंदिर है उतना ही मुश्किल यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि इसके लिए कठिन पहाड़ी रास्तों और कई किलोमीटर के ट्रैक से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहते हैं जिसे भोलेनाथ बुलाते हैं वो इस धाम तक पहुँच ही जाता है और जल्द ही भगवान मध्य महेश का ये धाम भक्तों से गुलजार होने वाला है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और चलिए इसी के साथ जीएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
6: लड़की को कहां दिन दहाड़े किडनैप किया गया, शादी से इनकार करने पर बीच सड़क से उठाया। बंगाल में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
7: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
8: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: Good news today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.
10: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in.
11: देवभूमि में धूमधाम से जारी चार धाम यात्रा. अब तक करीब 16.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन. खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई. नॉर्वे दौरे पर पीएम मोदी, ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत. ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत. नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार. नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट. झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा. दिल्ली में अब इधर उधर नहीं फेंकी जाएगी खंडित मूर्तियां. राजधानी में बनेंगे कलेक्शन सेंटर. वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा रिसाइकिल. उत्तर भारत में बड़ा हीटवेव का असर. दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान. मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील. जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम में ओपन डे का आयोजन. 4500 से ज्यादा पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी. सिंधु सभ्यता से बॉलीवुड तक भारतीय श्रृंगार कला की झलक.
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम
11: भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज. पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू. भगवान मध्य महेश्वर की दिव्य डोली कैलाश के लिए हुई रवाना, 21 मई को खुलेंगे मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट। ओमकारेश्वर मंदिर रुखीमठ से रवाना हुई डोली, डोली के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, हर हर महादेव के लगे जयकारे। आज डोली अपना पहला रात्रि प्रवास रांची में करेगी, कल द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए अंतिम गांव गोंडार गांव पहुंचेगी बाबा की डोली। 21 मई को भगवान की डोली गोंडार गांव से धाम के लिए करेगी प्रस्थान, डोली के धाम पहुंचने पर मध्य महेश्वर मंदिर के खोले जाएंगे कपाट। चार धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज के 30वें दिन अब तक 16 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं तीर्थ यात्रा। केदारनाथ में कल 30,000 से अधिक भक्तों ने किए थे दर्शन, अब तक 6,65,000 से अधिक भक्तों ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ में भी 21,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ, अब तक 4,500 से ज्यादा भक्तों ने बद्रीनाथ बाबा के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में भी लगा भक्तों का मेला, अब तक करीब 2,75,000 से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में भी लगा भक्तों का तांता, 2,70,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कोथिक लठमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न, गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है पर्व। खेती के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल मंदिर पहुंचा, दोनों दलों के बीच लाठी डंडों से हुआ युद्ध। युद्ध के बाद ढोल दमाव की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य किया प्रस्तुत, दोनों दलों के लगे मिलकर दिया एकता का संदेश। भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ का चढ़ाया जाता है, अन्न की बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्ति का सैलाब, दर्शन के लिए उमड़ी हजारों भक्तों की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित किए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। अयोध्या में बड़ा मंगल पर भक्तों ने बंदरों को खिलाया खाना, बंदरों के खिलाने के लिए सुबह से मंदिर पहुंच रहे लोग। भक्तों ने बंदरों को परोसा केला फल चना और गुड़, बंदरों को तरबूज भी खिलाए। दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, तीसरे बड़े मंगल पर भक्तों ने किए दर्शन। सुबह से हनुमान जी के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, भक्तों ने लगाए हनुमान जी के जयकारे। पुरी के भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे दिन बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब, दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को फूलों से सजाया गया, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में की गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। उज्जैन में तीसरे बड़े मंगल पर बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष आरती, भक्तों ने जमकर लगाए हर हर महादेव के जयकारे। भगवान महाकाल का अभिषेक के बाद किया गया भव्य दिव्य श्रृंगार, बड़ी संख्या भक्त बने साक्षी। इससे पहले बाबा भोलेनाथ का किया गया जलाभिषेक, दूध दही घी शक्कर शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से की गई पूजा। धार के भोजशाला में विशेष पूजा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भोजशाला में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, ओम नमः शिवाय के लगे जयकारे। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन, श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ORS की गई व्यवस्था। फीवर स्ट्रोक से बचाव के लिए डॉक्टरों को दिए गए विशेष निर्देश, भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए जा रहे हैं शेडो मिस्ट सिस्टम। अयोध्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में सभी वाटर मशीनों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया, श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ताजा पानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे शहर में हीटवेव से बचाव के इंतजाम किए गए, अधिकारियों को लगातार फील्ड में मौजूद रहने के निर्देश। अयोध्या में इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी की खास व्यवस्था की गई, गौशालाओं में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ा दी गई। भीषण गर्मी की जद में दिल्ली इंडिया गेट पर घटी पर्यटकों की संख्या। गर्मी से बचाव के लिए पर्यटक ले रहे हैं मफलर और गमछे का सहारा, पर्यटन स्थलों पर घटी आमद। एमपी में जारी भीषण गर्मी का दौर, 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा खजुराहो में तापमान। भोपाल में सूना पड़ा, पर्यटकों से भरा रहने वाला बोट क्लब, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट, बच्चों और बुजुर्गों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। शिमला की ठंडी वादियों में भी अब दिखने लगा है गर्मी का असर, सुबह और शाम ही घूमने निकल रहे पर्यटक। हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री तक ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया। सिरमौर के पोंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, जबकि बिलासपुर में पारा 39 डिग्री तक दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई, 21 और 22 मई को जिलों में गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। गुरुग्राम में गर्मी से परिंदे भी बेहाल, चैरिटी पक्षी अस्पताल में लंबी कतारें, हीट स्ट्रोक और लकवे के शिकार हो रहे पक्षी। उत्तराखंड में हीटवेव का अलर्ट, 22 मई तक लगातार बढ़ सकता है तापमान। हीटवेव को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित, अस्पतालों में ORS, IV फ्लूड दवाइयों और विशेष बेड की व्यवस्था करने के निर्देश। सभी जिलों में एम्बुलेंस सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील। कर्नाटक के चिक्का बल्लापुर में भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव से यातायात प्रभावित, कई जगहों पर लगी वाहनों की लंबी कतार। बिहार के 3 जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीटवेव का रेड अलर्ट, बक्सर में स्कूल बंद। वाराणसी में तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार, 25 मई तक स्कूल बंद। वाराणसी में बढ़ते तापमान के इसके चलते गंगा घाटों पर पसरा सन्नाटा, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। प्रयागराज में भी लगातार बढ़ रहा पारा, 44 डिग्री पहुंचा तापमान। तापमान बढ़ने से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे पेड़ का सहारा। जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर लोगों के लिए फ्री ओपन डे रखा, जहां लोगों ने भारत की पुरानी ज्वेलरी और कला को करीब से देखा। म्यूजियम में शहर के कई कलाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचे, सभी ने खास गाइडेड टूर के जरिए दुर्लभ चीजों के बारे में जाना। आम्रपाली म्यूजियम में 4500 से ज्यादा पुरानी और खास कलाकृतियां मौजूद है, संग्रहालय भारत की संस्कृति और परंपराओं को दिखाता है। म्यूजियम की नई तीसरी मंजिल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी, यहां भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ शानदार लाइट और साउंड शो को दिखाया गया। म्यूजियम में फिल्मों में इस्तेमाल हुई ज्वेलरी प्रदर्शित की गई, लाइट, आवाज और कहानियों के जरिए लोगों को खास अनुभव कराया गया। सैलानियों को लुभा रहा जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम, गुरेज घाटी में सैलानियों की संख्या में बरसात। भारतीय सेना का चाइना कल्चरल सेंटर बना आकर्षण का केंद्र, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। पुंछ में सेना ने चिकित्सा सह पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन, लोगों को पशु रोग के बारे में किया गया जागरूक। पीएम मोदी के आह्वान पर सीएम नायब सिंह सैनी ने की साइकिल की सवारी, लोगों से की ईंधन बचाने की अपील। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग को चलाया स्वच्छता अभियान, 25 टन कचरा किया गया एकत्र। अमरेली के किसान का अनोखा प्रयोग, एक ही पेड़ पर उगाई आम की 14 किस्में। पेड़ पर उगने वाली किस्मों में केसर, आम्रपल्ली, लंगड़ा, बादामी, गुलाबी, रसबारी, जमादार, काला जमादार, हापुस और तोतापुरी भी शामिल है। ग्राफ्टिंग तकनीक और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके उगाई 14 आमों की किस्में, आम के पेड़ को देखने के लिए लग रही भीड़। जम्मू कश्मीर के टंगीधार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लंदन राज्य में युद्ध संग्रहालय और पहाड़ी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन। राजौरी में बह रही विकास की बयार, नए पुल से ब्लॉक सेरी और ब्लॉक लंबेरी के बीच बेहतर संपर्क। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का आनंद ले रहे हैं सैलानी, भीड़ को देखने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। आसनसोल के स्कूलों में गुंजा वंदे मातरम, छात्रों और शिक्षकों में उत्साह। वियतनाम के हनोई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत, जवानों को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत, समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी 30 दिन की छूट। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज की, सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टेशनों को रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर और जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर गंभीर चिंता जताई, कोर्ट ने कहा यह सिर्फ आंकड़ों नहीं बल्कि मानव गंभीर जोड़ा गंभीर होता। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें और उन्हें वापस ना छोड़ें, सड़कों पर कुत्तों का खाना खिलाने पर भी बैन। 14 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे संजय दत्त और सलमान खान, फिल्म 7 Dogs में आएंगे नजर। 7 Dogs में असली स्टंट्स और लाइव धमाकों का इस्तेमाल, रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के एक सीन ने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
5: मुताबिक 7 Dogs के खास सीन ने
11: 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देशों में रिलीज होगी, जबकि भारत में ये फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ईशा अंबानी के कपड़ों में दिखी मुगल काल की सदियों पुरानी कला, विदेश में स्कर्ट को मॉडल ट्विस्ट के साथ किया पेश। 5 फिल्म में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म में सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन, तुम्बा 2, द ग्रेट एस्केप में फरार में अहम रोल।

0: झीलों में शामिल है अल अबशाजिया झील, करीब 50 वर्ग किलोमीटर में फैली है झील, गर्मी में सूख जाती है। रेगिस्तान के बीच पानी का यह विशाल दृश्य लोगों के लिए बना हुआ है आकर्षण, लोगों का लग रहा है जमावड़ा। अल अबशाजिया झील लंबे समय से नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र रहा है, आज भी पारंपरिक तरीकों से यहां निकाला जाता है नमक। झील के आसपास करीब 98 तरह की झाड़ियां और पौधे पाए गए, इनमें 12 दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं, जो रेगिस्तान में हरियाली की खास पहचान बनी हुई है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: लड़की को कहां दिन दहाड़े किडनैप किया गया, शादी से इनकार करने पर बीच सड़क से उठाया। बंगाल में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast, wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
4: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: में देखने को मिल रहा है। इस साल भारत की एक अलग ही तस्वीर कान फिल्म फेस्टिवल में दिख रही है। बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर छोटे बड़े कलाकार भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं और भारतीय संस्कृति को इस महामंच से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं।
1: ये कान का रंग है जिसकी रंगत से बॉलीवुड सितारों के चेहरे निखर उठे हैं। 12 मई से शुरू हुए इस वर्ल्ड क्लास फिल्म फेस्टिवल में अब तक कई बॉलीवुड सितारों ने अपनी चमक बिखेरी है। इस लिस्ट में नया नाम है मौनी रॉय, आलिया भट्ट, हुमा कुरैशी, अदिति राव हैदरी और डायना पेंटी के बाद अब मौनी रॉय ने कान फिल्म फेस्टिवल में जलवा बिखेरा है। मौनी रॉय ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। इस ड्रेस की खास बात इसका व्हाइट कॉलर डिटेल है जिसने उनके लुक को और शार्प और हाई फैशन टच दिया। अपने इस लुक के साथ मौनी ने ब्लैक ओवरकोट कैरी किया जिसने उनके स्टाइल को और ज्यादा ग्लैमरस बना दिया। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत की मिसेस यूनिवर्स शेरी सिंह ने भी जलवा बिखेरा। रेड कार्पेट पर लहंगे में शेरी ने एंट्री ली तो उनका स्टाइल काफी इम्प्रेसिव लगा। शेरी के देसी लुक में मॉडर्न वाइब्स का परफेक्ट मिक्स नजर आ रहा था जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। 2025 में शेरी सिंह ने भारत को पहला मिसेस यूनिवर्स का ताज दिलाया था और अब उन्होंने कांस में अपना डेब्यू किया जो ट्रेडिशन और मॉडर्न एलिगेंस का परफेक्ट मिक्स है। शेरी ने क्लासी लहंगे के साथ ज्वेलरी को रॉयल टच लुक दिया जिसने उनकी वाइब्स को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। कांस के मंच पर भारत से कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिस्सा लिया। मराठी एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता माली ने रेड कार्पेट पर महाराष्ट्रीय संस्कृति का रंग बिखेरा। इस खास मौके पर प्राजक्ता ने इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस को चुना। प्राजक्ता ने अपनी परंपरा का रंग दिखाते हुए पारंपरिक नीली नववारी साड़ी पहनी जिसके साथ उन्होंने एक क्लासिक नथ भी कैरी की जिसने उनके पूरे अंदाज को और भी आकर्षक और शाही बना दिया। प्राजक्ता के ट्रेडिशनल अंदाज ने फैशन प्रेमियों का दिल जीत लिया। प्राजक्ता का ये अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: कौन से ग्रह का मंत्र मोती की माला से जपना शुभ होता है? किस ग्रह का मंत्र हल्दी की माला से जपने पर लाभ होता है? और कौन सी माला है जिससे हर ग्रह का मंत्र जपा जा सकता है? क्या हैं अलग अलग ग्रहों के मंत्र जप के नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: लड़की को कहां दिन दहाड़े किडनैप किया गया, शादी से इनकार करने पर बीच सड़क से उठाया। बंगाल में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: गंगा दशहरा के पावन दिन नोत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। देवभूमि धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत, ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत। नौसेना को मिलेगा नया दृश्य हथियार, नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट, जंग में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा। उत्तर भारत में बड़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
7: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की पहली गुड न्यूज की, और वो ये कि भगवान मद्मदेश्वर के कपाट खुलने को तैयार है। आपको हम बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में शिव भक्ति अपने चरम पर है, पंच केदारों में द्वितीय है केदार के रूप में पूजे जाने वाले भगवान मद्मदेश्वर धाम, और इसी को लेकर तैयारियां जो है अब पूरी हो गई है, क्योंकि कपाट खुलने वाले हैं 21 मई को वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के साथ बाबा मद्मदेश्वर के कपाट 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके लिए उत्सव डोली धाम के लिए रवाना हो गई है।
10: देवभूमि उत्तराखंड में आस्था भक्ति और परंपरा का संगम, महादेव के धाम में भव्य दिव्य यात्रा महोत्सव, केदार रुद्रनाथ के बाद अब खुलने जा रहे मध्य महेश्वर के कपाट। केदारनाथ और रुद्रनाथ धाम के बाद अब पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों हर तरफ शिव भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने के लिए मिल रहा है। 21 मई को भगवान मध्य महेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे। अगले 6 महीने के लिए मध्य महेश्वर भक्तों को दर्शन देंगे। कपाट खोलने की प्रक्रिया के तहत भगवान की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गति स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से धाम के लिए रवाना हो गई है। 21 मई को डोली मध्य महेश्वर धाम पहुंच जाएगी और मंदिर के कपाट खोले जाएंगे।
11: ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से भगवान मध्य महेश्वर की जल विग्रह उत्सव डोली अपने धाम मध्येश्वर के लिए रवाना हो चुकी है। भगवान मध्येश्वर की मध्येश्वर धाम में मध्य भाग की पूजा होती है और इसके अलावा केदार घाटी में भगवान मध्येश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है।
10: भगवान मध्य महेश्वर पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में पूजे जाते हैं। बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन के लिए कठिन चढ़ाई पूरी करके पहुँचते हैं और उनकी डोली उत्सव में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। डोली अपने पहले रात्रि प्रवास के लिए रांसी गांव पहुंचेगी, जबकि कल डोली द्वितीय रात्रि प्रवास हेतु अंतिम पड़ाव गोंडार गांव पहुंचेगी। 21 मई को डोली गोंडार से मध्य महेश्वर धाम के लिए रवाना होगी और धाम पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजा अर्चना के साथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे।
12: 21 मई को भगवान मध्यमेश्वर की चल विग्रह ब्रह्म बेलावर गोनार गांव से प्रस्थान करके बनातोली खटारा नानो कोंचटी महकमा विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीष बात देते हुए मध्यमेश्वर धाम पहुंचेगी और भगवान मध्यमेश्वर की चल विग्रह डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मध्यमेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं के साथ विधि विधान से ग्रीष्म काल के लिए खोले जाएंगे।
10: पंच केदारों में मध्य महेश्वर धाम का विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि स्वरूप की पूजा की जाती है। केदार घाटी में बाबा मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में आने वाले 6 महीनों तक बाबा के धाम में आस्था का महाकुंभ देखने के लिए मिलता है। वैसे आस्था की ऐसी ही भव्य तस्वीर पंच केदार में शामिल पहले केदारनाथ धाम में भी देखने को मिल रही है, जहां अब तक करीब 7 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की संख्या में भक्त कठिन यात्रा तय कर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर से लेकर यात्रा मार्ग तक हर हर महादेव के जयकारों से पूरी केदार घाटी गूंज रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे।
13: बजरंगबली के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास और पुण्यदायी है। आज ज्येष्ठ महीना का तीसरा बड़ा मंगल है। मान्यता है कि बड़े मंगल के दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों पर महाबली हनुमान की विशेष कृपा बरसती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है बड़ा मंगल पर मंदिरों में जय बजरंगबली की गूंज। आपको बता दें कि इस महीने के तीसरे बड़ा मंगल पर शहर शहर हनुमान मंदिर फूलों और रोशनी से सजे हुए हैं और बजरंग बली का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में भक्त हनुमान मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बड़े मंगल के शुभ दिन सुबह से मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें हैं। भक्त सिंदूर, चमेली का तेल, लाल चोला और लड्डुओं का भोग चढ़ाकर बजरंग बली की आराधना कर रहे हैं। कई जगहों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का अखंड पाठ भी आयोजित किया गया है। बड़े मंगल की एक खास परंपरा भंडारों की भी है। जगह जगह श्रद्धालु शरबत, पूरी सब्जी, हलवा और प्रसाद का वितरण कर सेवा भाव का संदेश दे रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंदों की सेवा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अयोध्या, प्रयागराज और दिल्ली में श्रद्धालु बड़ी संख्या में हनुमान मंदिरों में पहुंचकर पूजा आराधना कर रहे हैं।
14: देश की राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से हनुमान जी के रंग में रंग चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में आपको भीड़ नजर आने वाली है। इस वक्त हम मौजूद है मरगट वाले हनुमान मंदिर में और यहाँ पर नजारा एकदम अलग है। किस तरीके से भक्ति का जो रंग है वो इस पूरे मंदिर में आपको नजर आने वाला है। मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है, जो हुजूम है, आपको वो नजर आने वाला है। लंबी लंबी कतारें जो है आपको वो नजर आ जाएगी। यूं तो हर मंगलवार इसी तरीके की रौनक जो है वो मंदिर में देखी जाती है, लेकिन जब बात ईस्ट महीने के मंगलवार की हो तो वो अपने आप में बेहद खास होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी भीड़ है और इतनी मान्यता है कि हर कोई जो है दर्शन करना चाहता है, लेकिन अंदर सिर्फ 3 सेकंड का समय मिलता है लोगों को दर्शन करने का, क्योंकि वहां पे ज्यादा देर तक आप रुक नहीं सकते, ना ही आप किसी तरीके से भगवान को जो है भोग लगा सकते। तो इसीलिए जो लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वो बाहर आके मंदिर के बाहर देख सकते हैं कि किस तरीके से श्री राम जो है दीवारों पर जो है लिख रहे हैं केसरी रंग के टीके से, और साथ ही साथ यहीं पर दीपक जलाते हुए नजर आएंगे आपको, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आएंगे, और यही आस्था है जो लोगों की यहाँ पर दिखती हुई जो है वो नजर आ रही है।
13: देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेस के दिल्ली के सराय काले खान डीएनडी से शुरू होकर जयपुर में मिलने वाला खंड अब बनकर लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का डीएनडी जयपुर खंड तैयार। आपको बता दें कि डीएनडी महारानी बाग से जयपुर पुश्ता रोड तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 9 किलोमीटर हिस्से का काम पूरा हो गया है। डीएनडी की ओर से आगे 7.50 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा एलिवेटेड है, जबकि आगरा कैनाल के आगे जयपुर पुश्ता रोड तक 1.50 किलोमीटर का हिस्सा सरफेस पर है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली के सराय काले खां से जयपुर तक का हिस्सा अब लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जल्द ही इस सड़क का उद्घाटन हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण NHAI कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जयपुर पुश्ता रोड से आगे फरीदाबाद सेक्टर 65 तक का 24 किलोमीटर का हिस्सा और सेक्टर 65 से आगे सोना तक 26 किलोमीटर का हिस्सा पहले ही चालू है। डीएनडी महारानी बाग से जयपुर पुश्ता रोड तक का हिस्सा शुरू होने के बाद दिल्ली समेत नोएडा गाजियाबाद के लोगों को भी आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद दिल्ली से मुंबई की दूरी महज 12 घंटे में
15: है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सराय काले खां जयपुर के बीच का खंड अब बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसका निरीक्षण केंद्रीय मिनिस्टर नितिन गडकरी कर रहे हैं। बता दें यह सड़क जो है वो सराय काले खां डीएनडी के पास से शुरू हो रहा है, जो यमुना किनारे एलिवेटेड जयपुर तक करीब 9 किलोमीटर का बनाया गया है। बता दें देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। यह काफ़ी बड़ी परियोजना है, करीब 1,00,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं और इसके अलग अलग खंड बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इसका जो दिल्ली से कनेक्टिंग है वो दिल्ली के सराय काले खां में दिया गया है और इसी का एक खंड जो है वो बनकर लगभग अब तैयार हो गया है और अपने अंतिम मुकाम पर ये सड़क अब पहुँचने वाला है। इसका निर्माण कर दिया गया है और इसको अगले कुछ समय में देश को समर्पित कर दिया जाएगा और इसका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचेंगे और इसका निरीक्षण करेंगे।
13: महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली 34 साल की तन्वी चौहान देवरे ने अपने हौसले, मेहनत और जुनून से देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। तन्वी ने 1 मई को आयोजित जिब्राल्टर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप जीतकर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है तैराकी में तन्वी ने रचा इतिहास। आपको बता दें तन्वी की सबसे बड़ी उपलब्धि दुनिया के सबसे कठिन समुद्री रास्तों में गिने जाने वाले इंग्लिश चैनल क्रॉस करने की भी है, जिसे पार करके वो इतिहास रच चुकी हैं। और अब तन्वी का अगला लक्ष्य नॉर्थ चैनल है, जो कि सबसे कठिन माना जाता है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में कान फिल्म फेस्टिवल का महामंच सजा हुआ है। दुनिया भर की सिनेमा हस्तियों की चमक और कला का उत्सव अपने चरम पर है। रेड कार्पेट पर सितारों की जगमगाहट के बीच सिनेमा, फैशन और संस्कृति का अनोखा संगम कान

0: समंदर की ऊंची लहरें, हड्डियां जमा देने वाला ठंडा पानी और तेज हवाओं के बीच और खामोश सन्नाटा। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान की बेटी तन्वी चव्हाण ने अपने इरादों की ताकत से इतिहास लिखा।
1: मेरा ये बचपन का सपना था, जब मैं 9-10 साल की थी, मेरे पापा ने मुझे जब पढ़ के दिखाया था, न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल इंग्लिश चैनल के बारे में, और तब से मेरा सपना था कि मैं कभी तो भी जिंदगी में इंग्लिश चैनल मुझे पार करना है। पर पढ़ाई और फिर उसके बाद एजुकेशन, बिजनेस, शादी और बच्चे, इन सब में 18 साल गुजर गए और ये सपना तभी सपना ही रह गया। मगर एक दिन मुझे ऐसी दिमाग में आया कि मुझे अभी ये करना ही है।
0: इसके अलावा उन्होंने 1 मई को आयोजित जिब्राल्टर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप जीतकर भी देश का नाम रोशन किया। उन्होंने 17.5 किलोमीटर लंबी तैराकी महज 4.5 घंटे में पूरी कर शानदार जीत हासिल की। आपको बता दें कि इंग्लिश चैनल को दुनिया के सबसे खतरनाक जल मार्गों में गिना जाता है। तन्वी ने करीब 17 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तैर कर तय की। साल 2024 में उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित इस कठिन चैनल को पार किया था। इंग्लिश चैनल जैसी चुनौती के लिए तन्वी ने नैनीताल को अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाया था। उन्होंने यहां करीब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान में तैराकी का अभ्यास कर खुद को तैयार किया था और फिर इंग्लिश चैनल पार कर खुद को साबित किया था। तन्वी के तैराकी के सफर में इनका परिवार भी पूरा साथ दे रहा है। तन्वी का अगला लक्ष्य चुनौतीपूर्ण नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करना है। ये चैनल अपने बेहद ठंडे पानी, खतरनाक हालात और अप्रत्याशित मौसम के लिए जाना जाता है। तन्वी के मुताबिक नॉर्थ चैनल में तेज धाराएं भी होती हैं और समुद्री जीवों का खतरा भी बना रहता है। जुलाई महीने में होने वाले नॉर्थ चैनल स्विमिंग में तन्वी भाग लेने वाली है। ये तैराकी 34 किलोमीटर की होगी, जो नॉर्थ आयरलैंड से स्कॉटलैंड के बीच होनी है।
1: जब मैं स्विमिंग कर रही थी और मेरा बहुत स्टैमिना कम हो गया था, ठंडी बज रही थी, बहुत पेन था मेरा राइट शोल्डर में, मैं हाथ नहीं कर पा रही थी, तैर नहीं पा रही थी मैं ठीक से, तो तब मेरे हस्बैंड ने मुझे उनका वीडियो कॉल दिखाया और शायद उनके मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी वो बड़े हो गए तो उनको बहुत प्राउड फील होगा मेरे ऊपर, इसलिए मैं तैर कर पाई।
0: समंदर की खतरनाक लहरों को चीर कर इतिहास रचने वाली नासिक की बेटी तन्वी चव्हाण देवरे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साहस और जुनून की मिसाल बन चुकी है। उनके अदम्य साहस और संघर्ष की सराहना देश की कई बड़ी हस्तियों ने भी की है। महाराष्ट्र सरकार ने भी तन्वी को छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज तन्वी देवरे लाखों युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। उनका संघर्ष ये संदेश देता है कि सपने बड़े हों और इरादे मजबूत हों तो दुनिया की सबसे मुश्किल राह भी मंजिल तक पहुँचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गर्मियों का मौसम आते ही आम की मिठास हर किसी की पहली पसंद बन जाती है, लेकिन गुजरात के अमरेली में एक किसान ने एक ही पेड़ पर 14 अलग अलग किस्मों के आम उगाकर यह अनोखा करिश्मा कर दिखाया है। यहां एक ही पेड़ पर दशहरी, केसर, नीलम और आम्रपाली समेत 14 किस्मों के आम लग रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है अमरेली में एक पेड़ पर लगे 14 किस्म के आम। देखिए, आम के पेड़ पर अलग अलग किस्मों के आम ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किए गए। ये खास पेड़ इलाके में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इतना ही नहीं, ये आम की पारंपरिक किस्मों को बचाने की भी एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
3: मौसम कोई हो, सबके अपने रंग हैं। जहां ठंड में चाय की चुस्की सुकून देती है, वहीं गर्मी को आम खास बना देता है। हर कोई इसका स्वाद लेना चाहता है। इतना ही नहीं, हर किस्म के आम के स्वाद का अपना ही मजा होता है। पर क्या हो जब आपको एक ही पेड़ पर 14 किस्मों के आम मिल जाए, या यूं कहें ये पेड़ नहीं, आम के किस्मों की पाठशाला है। एक ही पेड़ पर 14 किस्मों के आमों का ये करिश्मा उमरेली के उका भाई भट्टी ने कर दिखाया है। उका भाई पूरे अमरेली जिले में एक सफल किसान के रूप में मशहूर है। देसी आम के पेड़ पर ग्राफ्टिंग से उन्होंने ये कमाल किया है। इनके आंगन पर उगे इस पेड़ पर आम्रपाली, नीलम, दशहरी, केसर समेत 14 किस्म के आम हैं। आम का ये खास पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पहल है आम की खत्म होती किस्मों से लोगों को जोड़े रखने का। पुराने वक्त में 200 किस्म के आम हुआ करते थे, जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में उक्का भाई ने एक पेड़ पर 14 किस्में उगाकर लोगों को आम की खेती से जोड़ने की कोशिश की है। अब आसपास के किसान उका भाई से ग्राफ्टिंग की कला सीख रहे हैं। उम्मीद है आम की ये खेती यूं ही फलती फूलती रहेगी और लोगों को अलग अलग किस्मों के रसीले आम का स्वाद मिल सकेगा। अमरेली से फारूक भाई दादा मियां सैयद कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सहारनपुर में किसान पारंपरिक खेती को छोड़ एक नई फसल की खेती में जुटे हुए हैं। यहाँ के किसान अब ऐसी खेती की ओर बढ़ रहे हैं जो कि कम लागत में लंबे समय तक बड़ा मुनाफा दे सके। इसके लिए किसानों ने सिंदूर की प्राकृतिक खेती शुरू की है, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है लाल सिंदूर की खेती से किसान हो रहे मालामाल। आपको बता दें सहारनपुर के गाँव खुशहालीपुर निवासी किसान सुधीर कुमार सैनी ने सिंदूर की प्राकृतिक खेती शुरू कर जिले में नई पहचान बनाई है। करीब 4 साल पहले ट्रायल के तौर पर लगाए गए पौधे अब सैकड़ों पेड़ों में बदल चुके हैं। खास बात यह है कि एक बार लगाए गए सिंदूर के पेड़ों से 10 से 20 साल तक लगातार उत्पादन हो सकता है, जिससे किसानों को हर साल अच्छी आमदनी होती है। दरअसल सहारनपुर का मौसम सिंदूर की खेती के लिए अनुकूल है और इस खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक और ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें पेड़ों को केवल सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है और किसान उसी खेत में दूसरी फसलें भी उगा सकते हैं। प्राकृतिक सिंदूर की बाजार में भी भारी मांग है, क्योंकि वर्तमान में ज्यादातर सिंदूर सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है, जिसमें मर्करी और अन्य रसायनों का इस्तेमाल होता है। इससे त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती है। वहीं प्राकृतिक सिंदूर औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और धार्मिक उपयोग के साथ महिलाओं के श्रृंगार में भी सुरक्षित माना जाता है। बाजार में प्राकृतिक सिंदूर की कीमत 3,000 से 5,000 रुपए प्रति किलो तक मिल सकती है। ऐसे में एक किसान बिना ज्यादा लागत लगाए लाखों रुपए की कमाई कर सकता है।
4: सिंदूर की खेती अगर मैं बात करूं, हमने 3.5-4 साल पहले कुछ पेड़ लगाए थे। सबसे पहले देखना यह था कि हमारा क्लाइमेट क्या सिंदूर के लिए पर्याप्त है, और उसमें जब हमने पाया कि यहाँ उपयुक्त वातावरण इसको मिल रहा है, तो हमने अभी अपनी सिंदूर की खेती शुरू की है और हमने सैकड़ों पेड़ अपने संस्थान में लगा दिए हैं। सिंदूर अभी ये 2-3 साल का पौधा आराम से इसके ऊपर सिंदूर आना शुरू हो जाता है, और आज हमारे पास कुछ पेड़ हैं जिन पे सिंदूर आ रहा है और बाकी सैकड़ों पेड़ ऐसे हैं जिन पे अभी अगले साल फसल देना शुरू करेंगे। अगर हम उपज की बात करें तो जैसे ही ये पेड़ अपना पूरा विस्तार करेगा, मान लीजिए 5-6 साल का पेड़ होगा, तो उस समय मुझे उम्मीद है कि 1 किलो के आसपास इसके ऊपर से सारा हम इकट्ठा करने के बाद जो तैयार सिंदूर हमें प्राप्त हो जाएगा।
2: कभी नक्सल हिंसा की पहचान रहे बस्तर से अब बदलाव और विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ पर सुरक्षा कैंप के भीतर बने जन सुविधा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जहाँ ग्रामीणों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे मिल रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज, बस्तर से नक्सली खत्म, बदलाव और विकास शुरू। आपको बता दें बस्तर के जिन इलाकों में कभी गोलियों और आईडी धमाकों की गूंज थी, अब वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकारी सुविधाओं की रोशनी पहुंच रही है।

0: आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है।
1: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। इस बदलते दौर के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बस्तर के बदलाव का प्रतीक है। जहां पहले बंदूक और बारूद की गूंज सुनाई देती थी, वहां सुरक्षा बलों के सुरक्षा कैंपों में सरकार की योजनाएं और सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। बस्तर के रेतादार में सुरक्षा बलों के कैंप में बने एक अनोखे जनसेवा केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इन केंद्रों के जरिए स्थानीय लोगों को एक ही जगह पर तमाम सरकारी योजनाएं, शिक्षा, कौशल विकास और अन्य जरूरी सेवाएं मिल सकेंगी। अब तक जिन जगहों को लोग केवल सुरक्षा के नजरिए से देखते थे, वे अब विकास और जनसेवा का बड़ा केंद्र बनेंगी।
2: पहले यहाँ पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूँ और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहाँ पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहाँ पर इनको तैयार किया जा रहा है।
1: करीब 200 में से 70 सुरक्षा कैंपों को इस बदलाव के पहले चरण में शामिल किया गया है। दरअसल नक्सलवाद ने इस पूरे क्षेत्र को विकास की दौड़ में काफी पीछे धकेल दिया था, लेकिन अब इस इलाके में सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा करके हालात को तेजी से बदला जा रहा है।
2: ये सेंटर जो है ये 2011 में इसको नक्सलियों के द्वारा पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। ये कहा जाता है कि इसको जला करके पूरी तरीके से खाक कर दिया गया था। 6 हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है ऐसे सेंटर्स जो हैं अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के आसपास हैं।
1: बदलते बस्तर के लिए ये एक नया मॉडल है, जहां सरकार का मकसद केवल नक्सलवाद खत्म करना नहीं बल्कि बस्तर के लोगों के जीवन में बदलाव लाना भी है। आज जनसेवा केंद्रों में लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं और सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
2: इसमें क्या क्या काम हो सकता है ये यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जाति एवं आय निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उनका बन सकता है, पेंशन आवेदन भी हो सकता है, राशन कार्ड बन सकता है और अन्य सरकारी जो सेवाएं हैं वो ऑनलाइन सुविधा यहां पर उनको दी जाती है।
1: नेतानार के स्किल सेंटर्स में महिला सशक्तिकरण को भी मजबूत किया गया है। यहां महिलाएं सुई धागों से अपनी जिंदगी को बुनने में जुटी हुई हैं। इन केंद्रों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं कि यहाँ न केवल स्थायी शांति हो बल्कि विकास भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। जितेंद्र बहादुर सिंह, नेतानार, बस्तर, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
5: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला, आवारा खौफ से आजादी, बड़ा मंगल पर आस्था का उत्सव, लक्ष्य बड़ा तो समंदर भी छोटा पड़ा। देखिए अच्छी खबर, सच्ची खबर, रात 8 बजे।
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
3: तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
8: गुड न्यूज टुडे
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: गंगा दशहरे के पावन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत, ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावों के साथ परोसी जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम तथ्यों की रोशनी में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कुछ लोग दिन दिहाड़े उसका अपहरण करने पहुंच गए, उसका अपहरण कर लिया। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इसकी भी करेंगे पड़ताल। लेकिन शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: बंगाल में बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने ऐसे ही कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी भाषा लग रही थी, ये बांग्ला नहीं थी। और इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे थे और इस पर भी जो शब्द लिखे हुए थे वो बांग्ला भाषा में नहीं थे। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं ये खबर जरूर सुर्खियां बनती किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी टीवी चैनल पर, ये सुर्खियों में रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को जबरन कार में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: एक लड़की को पकड़कर कार में लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को धार्मिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद कथित तौर पर हिंदुत्व भीड़ और पुलिस द्वारा दिन दहाड़े उसका अपहरण कर अमानवीय तरीके से घसीटा गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, महिलाओं की आज़ादी और कानून के शासन पर हमला है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ डराना, उठाना या प्रताड़ित करना घोर अपराध है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को पकड़कर जबरन कार में बिठाया जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई इस हरकत को रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है और युवती जाना नहीं चाह रही है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं और वीडियो के दावे पर यही शक हुआ हमें कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबरन लड़की को उठाकर क्यों ले जाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में एक गाड़ी भी नजर आ रही है, जब हमारा ध्यान उसके नंबर प्लेट पर गया तो फिर ये गाड़ी राजस्थान के नंबर की निकली। मतलब वायरल वीडियो राजस्थान का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 2 महीने पहले प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो मैनपुरी में हुई घटना का है। लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान से आई थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वापस लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में वीडियो भी मौजूद है। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 9 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर का था। पाए गांव के रहने वाले 25 साल के ऋतिक यादव राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की से हुई थी। दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने ऋतिक के खिलाफ भीलवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ऋतिक को थाने बुलाया और घंटों बिठाए रखने के बाद लड़की से दूर रहने की हिदायत दी। इस घटना के बाद ऋतिक डर गया और वह वापस अपने गांव लौट गया। इस बीच प्रेमिका ने उससे फोन पर बात की तो ऋतिक ने पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की घर पर बिना बताए ऋतिक के गांव आ गई और वहां रहने लगी। लड़की के घर वाले भी कुछ दिन बाद पुलिस लेकर मैनपुरी पहुंचे। एक आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 10 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। यहाँ भी घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि लड़की को वापस ले जाने वाले उसके अपने घर वाले ही थे। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट मैनपुरी पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली। पोस्ट को 9 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की के माता पिता ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसके घर वाले पुलिस के साथ उसे वापस लाने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि लड़की को जबरन ले जाने के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है।
3: देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को अगवा करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और उस ये भी आपको समझ सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर मिसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस मौके पर यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसे नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए लेके गई।
2: असल में वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लड़की को लेकर जाने वाले उसी के घर वाले हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद आते हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.

0: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
4: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है। इसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है।
5: 42 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री।
4: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार और बेहद रिलेटेबल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है। वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा। उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है, वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
5: जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
4: सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करता नजर आता है। उसी दौरान कार का मालिक वहां आता है और जो करता है उसने सभी का दिल जीत लिया। कार मालिक बच्चे को न सिर्फ फरारी के पास बैठने देता है, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर भी बैठा देता है, जिससे बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह अनोखा और भावुक पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को इंसानियत की असली मिसाल बता रहे हैं। चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया

0: पर इन दिनों यूके से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच जमकर चर्चा में है, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और हैरान भी। वीडियो में सड़क, माहौल और आसपास का नजारा पूरी तरह भारतीय, खासकर पंजाब जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग इसे देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन है या भारत। हर तरफ देसी झलक, पंजाबी टच और वही माहौल देखकर कई यूजर्स इसे मिनी पंजाब तक कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लुधियाना जैसा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूके का है, जहां भारतीय समुदाय की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देसी रंग दे दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो ने जमकर बवाल मचा रखा है, जिसमें लोग मजाक में धोनी, कोहली और रोहित को एक साथ ऑटो में घूमते हुए दिखा रहे हैं। वीडियो में तीन लोग अलग अलग टीमों की जर्सी पहनकर ऑटो में बैठे नजर आते हैं, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सच में तीन बड़े क्रिकेट स्टार्स साथ में घूम रहे हों। लेकिन बाद में साफ होता है कि ये फैंस का मजेदार कॉपी और क्रिएटिव वीडियो है। आईपीएल के सीजन में फैंस का क्रेज भी चरम पर है और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह कपड़े पहनकर, स्टाइल अपनाकर और एक्टिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरुबा के रहने वाले एगमंड मोलिना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपने डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वह खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ और उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए हैं। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कॉमेंट्री करता सुनाई देता है।
1: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं।
0: देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
1: चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल ले।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
3: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर
8: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए, ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत संधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला, आवारा खौफ से राह चलते मिलेगी आजादी। तीसरे बड़े मंगल पर हनुमान मंदिर में जय जयकार, और लक्ष्य बड़ा तो समंदर भी छोटा पड़ा। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पार करने वाली महिला चैंपियन से मिलिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
8: गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत, ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत। नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार, नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट। झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स का होगा खात्मा। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।

सच्ची और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि साल 2025 में दिया गया आदेश ही लागू रहेगा, यानी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करें।

0: देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इनका शिकार बन रहा है। गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या बाजार, पार्क हो या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, आए दिन लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये मामला देश में इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को फिर से सख्ती दिखानी पड़ी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर दिए गए निर्देश ही लागू होंगे और जो सरकार और अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उन पर अवमानना का केस चलेगा।
1: कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़े नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़ें। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखें। इसके अलावा अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने निर्देशों को रद्द कराने के लिए याचिकाएं दाखिल की, जिन पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
1: सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
0: इतना ही नहीं, 3 जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें और हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही आवारा कुत्तों की आबादी के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए, अदालत के आदेश को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों के लिए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
2: मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, एक तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा।
0: कोर्ट के फैसले के बाद जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का कहना है कि निर्देशों को अमल में लाना संभव नहीं है।
3: जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य क्या, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपए सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ, अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ, झाड़ू लेकर के हटाऊँ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1,00,000 बस स्टॉप्स हैं, 1,00,000 बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो कैसे हटाओ और किधर डालो?
4: ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैनपावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सके।
5: हटाने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं तो टकराव ना हो तो उनको संरक्षण भी कोर्ट ने यहाँ पर दिया है,
4: क्योंकि बहुत झगड़े इस प्रकार के केसेस में हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें FIRs ना दर्ज हो, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है।
0: आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इसको लेकर अदालत में लंबी लड़ाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने लड़ी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आगे बढ़ते हैं, आज ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगल है। यह दिन हनुमान भक्तों के लिए बेहद खास और कल्याणकारी माना जाता है और इसीलिए सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक और लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हनुमान मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिला। आज कई शहरों में जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए गए, जहां लोगों ने प्रसाद वितरण और सेवा कार्य करके पुण्य अर्जित किया।

0: आज है तीसरा बड़ा मंगलवार, इसलिए मंदिरों में लगी है भक्तों की कतार। हर तरफ हो रही बजरंग बली की जय जयकार। सुबह से ही तमाम प्राचीन हनुमान मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की ये भीड़ उमड़ी है। कोई परिवार संग दर्शन करने पहुंचा है और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के साथ दर्शन करने आया है। ये तस्वीर दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर की है, जहां दर्शनों की आस और हाथ में प्रसाद लिए भक्तों की ये भीड़ दिन भर देखने को मिली। घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद इनके जोश और उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली।
1: ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से हनुमान जी के रंग में रंग चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर में आपको भीड़ नजर आने वाली है। इस वक्त हम मौजूद है मरघट वाले हनुमान मंदिर में और यहाँ पर नजारा एकदम अलग है। किस तरीके से भक्ति का जो रंग है वो इस पूरे मंदिर में आपको नजर आने वाला है। मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की जो भीड़ है, जो हुजूम है, आपको वो नजर आने वाला है। लंबी लंबी कतारें जो है आपको वो नजर आ जाएगी। यूं तो हर मंगलवार इसी तरीके की रौनक जो है वो मंदिर में देखी जाती है, लेकिन जब बात ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की हो तो वो अपने आप में बेहद खास होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी भीड़ है और इतनी मान्यता है कि हर कोई जो है दर्शन करना चाहता है, लेकिन अंदर सिर्फ 3 सेकंड का समय मिलता है लोगों को दर्शन करने का। हर मंगलवार आते हैं या ज्येष्ठ महीने के मंगलवार?
2: नहीं, हम तो हर मंगलवार को आते हैं, यहाँ पर काफी अच्छे दर्शन होते हैं।
3: 30 साल हो गए मुझे,
1: 30 साल से यहाँ पर आ रहे हो आप।
4: ये लड्डू लेके लाए, बाबा ने मेरी मन्नत पूरी की, मुझे बेटा दिया है।
0: सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने के मंगलवार का विशेष महत्व माना गया है। ये दिन संकट मोचन हनुमान जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, इसलिए इस तीसरे बड़े मंगल के मौके पर अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में भी आस्थावान श्रद्धालुओं की ये भीड़ उमड़ी है। मंदिर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। हाथों में फूल माला और लड्डुओं का प्रसाद लिए ये लोग 40 डिग्री वाली गर्मी में भी दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस मौके पर मंदिर के बाहर भक्तों के लिए भंडारे का इंतजाम किया गया, जहां लोगों ने प्रसाद बांटकर और सेवा कार्य करके पुण्य अर्जित किया।
5: काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही, पूरा सिंगार हाट बैरियर की अगर हम बात करें पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, हर जगह सिर्फ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और इधर दशरथ महल लेकर पूरे हनुमानगढ़ी प्रांगण में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है श्रद्धालु ही नजर आएंगे। और सुबह से ही आस्था भारी नजर आ रही है, क्योंकि गर्मी भी काफी है और उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की गई हैं। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, शरबत की व्यवस्था की गई।
6: माँ जानकी ने हनुमान जी को जो अक्षय का आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुतमोहन करहि बहुत रघुनायक छू, वो माता जानकी ने ही आज ही के दिन आशीर्वाद दिया था, इसलिए उसका विशेष महत्व है। और जो भी श्रद्धालु आज के दिन दर्शन करेंगे उनका हनुमान जी महाराज कल्याण करेंगे।
0: बुढ़वा मंगल या फिर बड़े मंगल को लेकर भक्तों में ऐसा ही उत्साह और जोश प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद लेटे हनुमान मंदिर में भी देखने को मिला, जहां कतारों में लगे लोग दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पूरे दिन मंदिर परिसर घंटे घड़ियाल और जयकारों से गूंजता रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। दर्शन के बाद कई श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते भी दिखाई दिए।
7: हम सभी यह कामना करते हैं कि समस्त क्षेत्रवासियों का कल्याण हो। जैसा कि विश्व वैश्विक संकट अभी चल रहा है, पूरे विश्व पे संकट मंडराया हुआ है, हम महाबली सरकार से यही आशा और कामना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि समस्त विश्व पर अपनी कल्याण अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे।
8: हम चाह रहे हैं हमारे माँ बाप के सपने पूर्ण हो और हमारे परिवार के सपने पूर्ण हो, जिस आस में हम लोग लगाए हुए हैं बजरंग बली से ही कामना करना चाहते हैं।
9: अधिक मास का ये मंगलवार है, हम लोग तो बहुत सब लोग बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, लेकिन हम लोग यही पास में रहकर, लेकिन हम लोग का ये मन है कि अपने यहाँ नजदीकी रहते हुए हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और ये बहुत अपना मन और श्रद्धा से ही करते हैं, क्योंकि सबसे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ मंगलवार के पावन अवसर पर हनुमान जी का दर्शन करते हैं और बहुत खुशी होती है।
0: बड़ा मंगल हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे पावन दिन है। मान्यता है कि इस खास दिन पर सच्चे मन से पूजा और उपवास करने से बजरंग बली अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अयोध्या से मयंक शुक्ला और प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे।
10: बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सुने गए हैं कि लक्ष्य बड़ा
3: तो समंदर भी छोटा पड़ जाता है। महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली तन्वी चौहान देवरे के मामले में ये अफसाना हकीकत में बदल गया। दरअसल 34 साल की तन्वी ने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यानी कि स्पेन से मोरक्को तक लगभग 17.5 किलोमीटर की समुद्री दूरी करीब 4 घंटे 33 मिनट में पूरी की है। इससे पहले जुलाई 2024 में 33 वर्ष की आयु में उन्होंने 34 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को 17 घंटे 41 मिनट में पार कर इतिहास रच दिया था। तब वो ऐसा करने वाली भारत की पहली मां बनी थी।

0: कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, अगर लक्ष्य तक पहुंचने का जुनून हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 19 साल के हैं या 34 साल के। इच्छा शक्ति की बदौलत मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भेदा जा सकता है, एक के बाद एक नए कीर्तिमान बनाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली तन्वी चव्हाण देवरे त्याग, संघर्ष और हौसलों की जीती जागती मिसाल है, जिनके फ्लैट का एक कोना उनकी हर उपलब्धि की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें और ट्रॉफी लक्ष्य की ओर उनके संघर्ष, धैर्य और शक्ति के प्रमाण है। यही वो कमाई है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समंदर की गहराइयों में तन्वी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को बिना किसी बाधा के पार कर लिया है। तन्वी ने स्पेन से मोरक्को तक लगभग से 17.5 किलोमीटर की दूरी लगभग 4 घंटे 33 मिनट में पूरी की है।
1: 7 चैनल्स रहते हैं और मुझे उस 7 ही चैनल्स फुल करने हैं, तो मैंने अभी 1 मई को महाराष्ट्र दिन के दिन मैंने जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर स्विम किया है, जो यूरोप से लेके अफ्रीका तक रहता है। 17 किलोमीटर्स का पूरा स्विम है। सेम चैलेंजेस है, ठंडा पानी बहुत है, फनल इफेक्ट की वजह से पानी का जो तैराव रहता है वो बहुत तेजी से रहता है, उसको क्रॉस करना रहता है। ये मैंने 4.5 घंटे में क्रॉस किया है।
0: स्पेन के तारिफा से मोरक्को के तट तक कुल 17.5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ समंदर के पानी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रहता है। तैराक को बेहद तेज समुद्री धाराओं का भी सामना करना पड़ता है। इससे पहले भी तन्वी ने समंदर में तैरने से जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से जोड़ती है। मात्र 34 किलोमीटर चौड़ाई वाले इस मुश्किल हिस्से को तैराक अक्सर तैर कर पार करने का चैलेंज लेते हैं, जिसे मात्र 17 घंटे 41 मिनट में पार कर दो जुड़वा बच्चों की माँ तन्वी ने इतिहास रच दिया।
1: मेरा ये बचपन का सपना था, जब मैं 9-10 साल की थी, मेरे पापा ने मुझे जब पढ़ के दिखाया था, न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल इंग्लिश चैनल के बारे में, और तब से मेरा सपना था कि मैं कभी तो भी जिंदगी में इंग्लिश चैनल मुझे पार करना है। पर पढ़ाई और फिर उसके बाद एजुकेशन, बिजनेस, शादी और बच्चे, इन सब में 18 साल गुजर गए और ये सपना तभी सपना ही रह गया। मगर एक दिन मुझे ऐसी दिमाग में आया कि मुझे अभी ये करना ही है, क्योंकि हमेशा ये दिमाग में रहता था कि मेरा ये एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है इंग्लिश चैनल पार करने का और मेरे देश का नाम मुझे रोशन करना है। तो मैंने डिसाइड किया, मैं मेरी एज जब 34 थी और मेरे बच्चे जब 5 साल के थे, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे इंग्लिश चैनल पार करना है। उन्होंने सपोर्ट किया बहुत अच्छे से।
0: दुनिया भर के अनुभवी और प्रोफेशनल स्विमर इस चैनल को पार करने से कतराते हैं। बेहद ठंडा पानी, जेलीफिश के डंक से होने वाला बेहद तेज दर्द और तेज धारा इस रास्ते को मुश्किल बनाती है, जिसको देखते हुए तन्वी ने इस कठिन चुनौती की तैयारी नैनीताल झील के 11 से 13 डिग्री सेल्सियस ठंडे पानी में की थी। नैनी झील में पहले दिन 1 घंटे की तैराकी से शुरुआत करने वाली तन्वी ने धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 4 घंटे तक कर दिया।
1: इंग्लिश चैनल ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट और डेंजरस ओपन वाटर स्विम माना जाता है। हर एक स्विमर का बचपन से सपना रहता है कि कभी तो भी वो इंग्लिश चैनल पार करे। इंडिया में बहुत कम लोगों ने इंग्लिश चैनल किया है, क्योंकि उसमें खतरा बहुत है। एक तो है कि बहुत ही ठंडा पानी रहता है, ठंडा पानी और जेलीफिश जो है, मरीन लाइफ जो जेलीफिश मच्छी रहती है उधर बहुत रहता है, जिसका अगर हमको स्पर्श हुआ तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। तीसरा जो है, हाई करंट्स बहुत रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो चैनल है, जैसे इंग्लिश चैनल ये 34 किलोमीटर का स्विम है जो इंग्लैंड से लेके फ्रांस तक इसका तैरते हैं लोग, और हाई करंट की वजह से हम लोग अड़क जाते हैं। कभी कभी हाई करंट रहता है, हमको ड्रिफ्ट कर सकते हैं हम उसको। और सबसे बड़ी रिस्क है हाइपोथर्मिया का, बहुत सारे लोगों की जान गई है इसके पहले, इसलिए वो बहुत डिफिकल्ट माना जाता है।
0: खराब मौसम की वजह से 32 किलोमीटर लंबी इंग्लिश चैनल की दूरी 42 किलोमीटर की हो गई। फिर भी तन्वी ने अपने दृढ़ संकल्प की वजह से इस चुनौती को पार कर लिया।
1: मैंने जब ऑलमोस्ट मैं 14 घंटा मेरा हो गया था स्विम करके, और तभी मैं एक हाई टाइड में अड़क गई थी, जैसे मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अगर मैं एक हाथ मारती थी तो मैं दो हाथ पीछे चली जाती थी, क्योंकि समुद्र का जो प्रभाव रहता है वो इतना गहरा रहता है, तो वो हम लोग तैर नहीं कर पाते वो इसमें। तो मैं एक ही जगह पे 3 घंटा अड़क गई थी। वो जो क्षण था वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, मेरे पापा के लिए। उस दिन 7 लोग निकले थे तैर करने के लिए, इन मैं ही एक भारतीय थी, बाकी ऑस्ट्रेलियन थे, न्यूजीलैंड से कुछ थे, इंग्लैंड से थे और यूरोप से थे। उसमें से 4 लोगों ने विड्रॉ कर दिया कि उनसे नहीं हो पाया क्योंकि हाई टाइड बहुत बढ़ गया था। पर मैंने ठान लिया था कि मुझे कुछ भी करना है पर इंग्लिश चैनल पार ही करना है। और 17 घंटे 42 मिनट के बाद मैं फ्रेंच कोस्ट पे पहुंची।
0: तन्वी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय माँ बन गई है, जहाँ देशवासियों के अलावा उनके परिवार के लिए काफी गर्व की बात है।
2: 10 घंटे पहले बिफोर जंपिंग इन द सी उसने मुझे हक किया था और उसने बताया था कि पापा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप मुझे समुंदर के पानी से बाहर नहीं निकालेंगे। तो मेरा तो ये हो गया, आई वॉज इन डायलेमा कि मैं उसको निकालू या ना निकालू। अब जरूर बोल रहा था कि निकालना पड़ेगा, लेकिन मुझे उसके वर्ड याद थे कि नहीं निकलना है मुझे एट एनी कॉस्ट।
3: बचपन में वो स्विमिंग करती थी, मुझे अच्छा लगता था, प्राउड फील होता था, वो सब मतलब कॉम्पिटिशन उसने किया है। लेकिन ये शादी के बाद जब उसने बोला तो मुझे तो अलग ही लगा, ये क्या कर रही है ये लड़की। वो टेंशन भी आया था लेकिन उसका सब जिगर देख के हमने उसको सपोर्ट किया।
0: तैराकी में कई रिकॉर्ड कायम करने वाली तन्वी की कहानी साबित करती है कि सही जज्बे और नियमित अभ्यास से किसी भी उम्र में किसी भी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया जा सकता है।

0: मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
5: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe. Live from London on TuneIn.
1: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
10: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों की, उनके मंत्रों की और मंत्र जपने के नियम की और तरीके की। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रातः 11:06 तक, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 6:12 तक, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:38 तक, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए आज हम 9 ग्रहों के चमत्कारी मंत्र की बात कर रहे हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, कब पढ़ें, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का मतलब ये व्यक्ति की आत्मा है। अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो जीवन में अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की बीमारी हो जाती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए सुबह के समय में या दोपहर के समय में सूर्य देव के मंत्र का एक माला जप करिएगा। खास तौर से अगर आप हड्डियों की या हृदय की समस्या से परेशान हैं। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से तो इसके प्रभाव शुभ रहेंगे। देखिए चंद्रमा की अगर बात करें तो ये ग्रहों का दूसरा राजा है और कहीं कहीं पर चंद्रमा को रानी भी कहा गया है। तो चंद्रमा दूसरा राजा है या रानी है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है, कमजोर है, तो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, अस्थमा की शिकायत, रक्त की समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल दिक्कतें ये जीवन में काफी ज्यादा होती हैं। तो चंद्रमा को अगर बेहतर करना चाहते हैं, चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो रात के समय में चंद्रमा निकल जाने के बाद मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः और मंत्र जप मोती की माला से या शंख की माला से अगर आप करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। मेष राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए अगर मंगल की बात करें, मंगल के मंत्र की बात करें, तो मंगल जो है ये ग्रहों का सेनापति है और किसी व्यक्ति का साहस है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना साहस है ये मंगल बताता है। मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना, जेल जाना और रिश्तों की समस्या होती है। मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, भाई भाई में विवाद, ऑपरेशन, सर्जरी जैसी नौबत जीवन में आएगी अगर मंगल गड़बड़ होगा। मंगल को बेहतर करने के लिए दोपहर के समय में या सुबह के समय में मंगल के मंत्र का जप करिएगा। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र का जप मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से करेंगे तो शुभ रहेगा। अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध ग्रहों का राजकुमार है। किसी भी व्यक्ति की जो वाणी है और किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है, उसके पीछे जो ग्रह है वो है बुध। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि काम नहीं करती, आदमी का दिमाग तेज नहीं होता, कान नाक गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। बुध को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सुबह के समय बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करना काफी बेहतर होगा और मंत्र जप किया जाएगा हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है और शुक्र को भी ग्रहों में मंत्री कहा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना चैन है, उसके पीछे शुक्र ही होता है। अगर शुक्र गड़बड़ हो तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता। सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से, आनंद से, सुख से नहीं रह पाएंगे। शुक्र को बेहतर करने के लिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र देव के मंत्र का जप करना चाहिए और शुक्र देव का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप कर सकते हैं सफेद स्फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से अगर मंत्र का जप करें तो लाभ होगा। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात करते हैं राहु की। जैसा कहा इन्होंने कि राहु एक शैडो प्लेनेट है, एक छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंध रखता है। पूर्व जन्म में क्या थे, कौन सा क्या रिश्ता था, क्या साधना है, क्या पूजा है, क्या प्रारब्ध है, ये जो रहस्य हैं जीवन के, ये राहु से जुड़े होते हैं। अगर राहु का प्रभाव जीवन में बुरा हो तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता, सब कुछ जीवन में रहस्य बना रहता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु के मंत्र का जप करना चाहिए रात के समय में, और राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। और राहु के मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो इसके परिणाम शुभ होंगे। केतु की बात करें, देखिए केतु भी छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है, किसी व्यक्ति की गोपनीय समस्याओं से संबंध रखता है और किसी

0: महा, इस मंत्र का रोज रात में जप करें और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो परिणाम बेहतर होंगे। अगर संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या आपकी जीवन में चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा हर मंगलवार को करने लगें और प्रार्थना करें तो संपत्ति संबंधी समस्या हल हो जाएगी। कि अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव बना रहता हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रां राहवे नमः। हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करें। अगर ऐसा निरंतर करते रहें तो जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
3: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
4: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य
8: कहीं दूर

0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

कौन से ग्रह का मंत्र दोपहर में जपने पे ज्यादा फायदा होता है? किस ग्रह का मंत्र भोर में जपने पे लाभ होता है? और कौन सी माला से हर तरह का मंत्र जपा जा सकता है? कौन से हैं नौ ग्रह, कैसे हैं उनके मंत्र और क्या है मंत्र जपने का विधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आ रही है।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
2: गंगा दशहरा के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या। धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ। 26 मई को विशेष अनुष्ठान। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत। ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत। नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार। नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का किया कॉन्ट्रैक्ट। झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा। उत्तर भारत में बड़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी।
4: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर हनुमान भक्तों से भर गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह पहुंचे श्रद्धालु की यहां पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लग गईं, और फिर बारी बारी से सबने बजरंग बली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तीसरे बड़ा मंगल पर संगम नगरी प्रयागराज भी हनुमान भक्ति में डूबी नजर आई। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार यानी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के अलावा शहर के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए रवाना हो गई। पूरे विधि विधान के साथ रवाना हुई चल विग्रह डोली के साथ भक्त जयकारे लगाते हुए रांसी गांव की ओर बढ़ चली, जहां डोली रात्रि प्रवास करेगी। इस दौरान डोली का जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर स्वागत करते भी दिखे। भगवान मध्य महेश्वर की ये डोली 20 मई को गोंडार गांव में रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को धाम पहुंचेगी। जिसके बाद उसी दिन मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। केदार घाटी में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के आदि बद्री धाम में आयोजित नौठा गौथिक लठमार मेले की है, जो गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोक गीत, पारंपरिक नृत्य और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ आयोजित इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें मेले की सबसे खास बात रही लठमार परंपरा, जिसमें नौठा नृत्य दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में लठमार योद्धाओं ने गले मिलकर एकता का संदेश देने के साथ ही भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ चढ़ाया। इस दौरान शिवखली क्षेत्र में महिलाओं ने चोमफुला, चाचरी और झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से नौनाज यानी नए फसल के आगमन पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का धूमधाम के साथ समापन हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं, इससे राहत दिलाने के लिए जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक को ठंडा रखने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए। इंसान से लेकर बेजुबानों तक को भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क 100 प्रजातियों के करीब 1500 पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी से लेकर स्प्रिंकल लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेजुबानों के लिए खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। फलों से लेकर उनके जूस भी फ्रीज करके और आइस क्यूब्स बनाकर दिए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में दातार पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर शेरों के झुंड की मौजूदगी देखी गई। यहां समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई तक शेरों के झुंड के पहुंचने की जानकारी है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल पर शेरों की मौजूदगी को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेरों की गतिविधियों को देख जाने के बाद उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
2: और अब बात करते हैं बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर जब से नक्सल मुक्त हुआ है उसके बाद से यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर अब नक्सलवाद की काली परछाई से मुक्त होकर विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से योजनाएं अब स्थानीय लोगों तक पहुंच रही हैं और स्थानीय लोग भी सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। विकास की इस भागीदारी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है।

0: एक समय देश में नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं आकार ले रही हैं।
1: पहले यहां पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहां पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूं और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बना रखे हैं, यहां पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर कदम बढ़ाए जाएंगे।
0: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार अब बस्तर को नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।
1: अब किस तरीके का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं।
2: इसमें विकास कार्य में पहले से और ऐसे बेहतर तरीके से हो रहा है। मतलब अभी जो पहले जैसे ही आंदोलन क्षेत्र गिना जाता था, अभी वो ना जा, अभी बल्कि अच्छा विकास की और गति प्रगति पर बढ़ रहा है।
1: आप बताइए कि ये सेंटर किस तरीके से खास है, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है, यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके काम हो रहे हैं।
3: जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन है वो पसंद नहीं थे, उनको लगता था कि सुरक्षा बल जो है वहां पे पना लेते हैं। इस वजह से उनका आसपास का क्षेत्र प्रभुत्व वाला क्षेत्र होने के कारण पक्के भवनों को ध्वस्त करते थे, लेकिन अब नक्सली मुक्त करने की दिशा में शासन प्रशासन जो है आगे बढ़ा है।
1: नक्सलियों का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म है, काम अब किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है?
4: माननीय गृह मंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नक्सली क्षेत्र को पूरा खत्म करके अब जितने भी हमारे कैंप में स्कूल, हॉस्पिटल खुलने का पूरा प्रयास करके हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री पूरे बस्तर को विकसित बनाना चाह रहे हैं।
0: सुरक्षा से विकास की ओर बढ़ता बस्तर करीब 4 दशक तक नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रहा। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोडागांव जैसे जिले लगातार नक्सली घटनाओं से प्रभावित रहे। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तक हर सरकारी परियोजना नक्सलियों के निशाने पर रहती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति, स्थानीय पुलिस की बेहतर भागीदारी और केंद्र राज्य के तालमेल ने हालात बदल दिए हैं।
1: बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहाँ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नया बस्तर और बदलता बस्तर, इसके लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो काम केंद्र सरकार के द्वारा वहां से किया जाता है उसको राज्य सरकार यहां पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और आप इसी की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं कि सेवा सेतु बनाया गया है, जनता के द्वार डिजिटल सरकार, यानी कि जो भी काम लोगों के हैं डिजिटली उनको करना होता है उसको करने के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था एक केंद्र अलग से बनाया गया है। तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर कभी आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते थे, यहां पर आधार केंद्र बाकायदे खोला गया है और यहाँ पर जो लोग हैं अपने आधार कार्ड बना सकेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों का आधार कार्ड वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था एक ही जगह यानी कि एक छत के नीचे इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। ये देखिए कि आधार कार्ड तैयार करने वाले लोग जो हैं उनके पास यहाँ की आम जनता जो है वो मौजूद है और वो लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग सेवा की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजें जो है वो एक ही छत के नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं इस पूरे इलाके में?
4: हम लोग जैसे कि अभी जाति निवास और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं और वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसको भी आवेदन देना है वो यहाँ हम सुविधा देते हैं।
1: बैकवर्ड आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा मिल रही है, सारा काम हो रहा है?
5: जी सर।
1: क्या क्या काम हुआ है आपका?
5: जिसका मेरा आय प्रमाण पत्र का सुविधा मिला है सर, जो बनाने आई थी वह तो बन गया।
1: आप लोगों ने जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाना था, अब पहले से और अब में किस तरीके से अंतर दिखाई पड़ेगा सर?
4: पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी बड़े सुविधा हो गया, नजदीक हो गया तो अभी ठीक है, पहले काफी अच्छा।
0: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ चावल के कद्रदानों की भी कमी नहीं। ऐसे में रेड राइस लगाकर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं इस धान की पारंपरिक तरीके से कुटाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा बस्तर की इमली भी काफी मशहूर है। सहायता समूह के सदस्य स्किल डेवलपमेंट के जरिए इसकी पैकिंग करके बाहर भेजते हैं, जिससे उनकी भी अच्छी आमदनी हो रही है।
1: बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इसका सीधा मकसद ये है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहे। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, जी कैसे आप इसको देख?
6: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारे काम कुछ आजीविका साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग ये काम कर पा रहे हैं सर, अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गाँव में।
0: बस्तर के नीतातार में सुरक्षा बलों के कैंप में बने एक अनोखे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह ने किया और इसे बदलते बस्तर के लिए एक नया मॉडल बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर की गुरेज घाटी देश भर के पर्यटकों से गुलजार आई। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
7: मुंबई में पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। ये अभियान नागरिक प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा एजेंसियां मिलकर चला रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक करीब 500 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये अभियान अगले 4 दिनों तक चलेगा। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ पैदल रास्तों में भी श्रद्धालुओं के जाम की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास शुरू होने से बद्रीनाथ धाम की यात्रा में अचानक यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में पैदल मार्गों पर इतनी भीड़ हो गई है कि जाम जैसी स्थिति बन रही है। पुरुषोत्तम मास का भगवान विष्णु से विशेष महत्व होता है। पश्चिम बंगाल की चांपदानी से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह बदहाल पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। जंगल से घिरे स्वास्थ्य केंद्र की खराब हालत देखकर वह खुद हसिया हाथ में लेकर झाड़ियां साफ करने में जुट गए। बाद में उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की। विधायक का आरोप है कि एक तरफ पुरानी इमारत जंगल से ढकी हुई है, वहीं डॉक्टरों के रहने के लिए बनाया गया नया क्वार्टर भी अब तक उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों की मांग थी कि यहां अधिक समय तक अतिरिक्त डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, लेकिन वह मांग भी पूरी नहीं हुई। अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विधायक ने नाराजगी जताई। नॉर्थ कश्मीर में गुरेज घाटी इस बार बैठकों से गुलजार है। जम्मू और कश्मीर का एक टूरिस्ट स्पॉट सैलानियों को काफी आकर्षित कर रहा है। खूबसूरत वादियों और हरे भरे मैदान, नदियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाने वाली गुरेज घाटी में देश भर के पर्यटक घूमने पहुंच रहे हैं। घाटी में कई ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटकों को सुकून देने वाले बेहद दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से इन जगहों पर पहुंचना पहले से काफी आसान हो गया है।
8: और अब जयपुर और गुवाहाटी म्यूजियम की। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम को ओपन डे के रूप में खोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय श्रृंगार कला की अनूठी यात्रा आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली। ये म्यूजियम केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया। वहीं गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया।

0: ये भव्य और दिव्य तस्वीरें जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम की है। यहाँ प्रवेश करते ही इसकी दिव्यता और भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। देखने में ये म्यूजियम कम शोरूम ज्यादा लगता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के म्यूजियम देखे नहीं जाते। इस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक गहने हैं जो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी 18 मई को जयपुर का आम्रपाली म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया। इस मौके पर दर्शकों को एक ऐसा म्यूजियम देखने को मिला जो पूरी तरह से आभूषणों और अलंकृत वस्तुओं को समर्पित है।
1: वर्ल्ड म्यूजियम डे है और जहां जयपुर को और राजस्थान को जाना जाता है उसके कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए, वहीं यहां के जो म्यूजियम्स है वो बिल्कुल यही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हमारे साथ में राजीव अरोड़ा जी मौजूद हैं जो कि जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम जो है उसको पूरा उन्होंने क्यूरेट किया है, अपनी पूरी मेहनत उस पर लगाई है। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस आम्रपाली म्यूजियम में। सर, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, क्या कुछ आज आप जयपुर को इस वॉक थ्रू में दिखा रहे हैं?
2: देखिए, पहले तो इस विश्व म्यूजियम डे की शुभकामनाएं। अपने इतिहास को, हमारी धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमारे पास इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है और नायाब पीसेस हमारे कारीगरों ने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आम्रपाली म्यूजियम जो है ये मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इकलौता म्यूजियम है जो हम हिंदुस्तान की, हमारी जो सिल्वर स्मिथिंग है, गोल्ड स्मिथिंग है, सोने चांदी का जो काम होता है उसको गेगी म्यूजियम बनाओ। तो इसमें नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के हमारे गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, रॉयल फैमिलियों में किस तरीके की ज्वेलरी पहनी जाती थी उसको इकट्ठा करा गया है।
0: आम्रपाली म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा ने इस म्यूजियम को साल 2018 में बनाया था। अब ये म्यूजियम भारत के अलंकरण इतिहास का एक जीवंत अभिलेख बन चुका है, जिसमें 4,500 से अधिक कलाकृतियां संरक्षित हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कब किस तरह के आभूषण पहने जाते थे।
2: इसमें काफी सारे डिजाइनर्स, दूसरे म्यूजियम के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रेरित होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जयपुर का खुद का एक दुनिया में नाम है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये जो आज के दिन हम लोगों ने फ्री एंट्री करी है, यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं।
0: ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
1: क्या ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो मूवीज में आर्टिस्ट ने पहना है, या फिर ये वही ज्वेलरी? क्या इसकी स्टोरी?
2: मैंने बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के लिए काम करा है और जैसे ये बाहुबली के आप देख रहे हैं ज्वेलरी, तो हमको जब कोई स्टोरी बताई जाती है उसमें किस करेक्टर के लिए क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसेस है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो हल्के ज्वेलरी पहनेगी, वो फ्लावर की ज्वेलरी पहनेगी। वो अगर कोई प्रेम प्रसंग है, जंगल में है या कहीं खेत खलिहान में है, तो क्या पहन के जाएगी। फिर वो 20 साल बाद वो महारानी बन जाती है तो उसकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो उसको महारानी का पठार पहनेगी, बड़ी ज्वेलरी पहनेगी। इसको सोच के ज्वेलरी डिजाइन करी जाती है, बहुत कला का काम है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, म्यूजियम्स में जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। ये आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ये मणिकर्णिका का रानी लक्ष्मीबाई के करेक्टर बनी थी, कंगना रनौत ने ये रोल करा था। तो वो ग्वालियर की थी, उनकी माता किस घराने जाती थी, वो कैसी नथ पहनती थी, उस ज़माने में पायजेब कैसी पहनी जाती थी, वो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और अभी भी कई मूवीज़ के लिए मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ।
0: फिलहाल वो रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है।
1: ये कौन सी मूवी है सर? क्योंकि बाहुबली 2 आप दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे भी कोई ऐसा ही
2: रामलीला की ज्वेलरी करी है। और रामायण जो नई मूवी बन रही है उसकी ज्वेलरी मैं कर रहा हूँ। वो शीघ्र ही मूवी का प्रोमो भी बाहर आएगा, ज्वेलरी भी आप देखेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी भव्य मूवी नहीं बनी होगी और उससे शानदार ज्वेलरी बनी हुई है।
0: वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्वेलरी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई जाती है बल्कि पशुओं को भी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ आप अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए सेल्फी खिंचा सकते हैं।
1: किस तरीके से आपने क्यूरेट किया, सोच भी मैं इसके पीछे की जानना चाहूंगा।
2: कि जेन जी जो है आजकल हमारी जो नई जनरेशन है उसको ऑडियो विजुअल पसंद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमर्सिव वीडियो चलाया है। जैसे मैंने हनुमान हमारा क्रिएट करा हुआ है वो बताया, उसका वीडियो चल रहा है। ये गोल्ड के बने हुए हनुमान है, इनके आप पाँव को दबाएंगे, पाँव को छुएंगे तो ये खुलते हैं, उसमें से छाती में से राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो ये हनुमान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार ये अपने आप में अद्भुत है, इसको ज्वेलरी के ने बनाना। उनके लिए हमेशा दिखाते हैं, गौपालक थे वो, तो गायों के साथ दिखाया गया है। ये भी बहुत एक अनूठी नेकलेस है जो पुराने पीसेस को कलेक्ट करके बनाई गई है। इसके अंदर सैकड़ों पुराने पीस है जिनको जोड़ के नेकलेस को बनाया गया है। ऐसे ही ये डिब्बी है, ये पेन बनाया है, डायमंड एमरल्ड के संग बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ पीसेस हैं जो आप न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो ये हाथी और घोड़े की श्रृंगार के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो चांदी की बनी हुई घोड़े की ज्वेलरी है। ये आप बड़े पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये भी घोड़े की ज्वेलरी के पीसेस हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बढ़िया, हम लोगों ने एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है इसके अंदर, जिसमें आप यहाँ पे इसको सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये एक पालकी है जिसके अंदर जैन समुदाय के लोग प्रतिमा को संग में लेके जाते थे, और यहाँ पे गले में पहने पेंडिंग होते हैं, इनको राजस्थान में पाथड़ी बोलते हैं, वो बनाई है जिसमें यहाँ पे लेके इसको आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट इसलिए तैयार करा गया है।
0: जयपुर ही नहीं बल्कि गुवाहाटी में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को उद्घाटन के बाद इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पत्र आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 114 अंकों की गिरावट के साथ 75,200 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 31 अंक गिरकर 23,618 पर बंद हुआ। मंगलवार को गोल्ड की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 800 रुपए बढ़कर 1,63,600 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए घटकर 2,71,000 रुपए पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक संकट के कारण अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत मंगलवार को और भी नीचे चली गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 32 पैसे की गिरावट के साथ 96.52 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर बंद हुआ।
4: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
4: गंगा दशहरा के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत, ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत। न्यूज वक्त पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
6: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
7: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अब देखो इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल रहे।
4: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्ट्रे डॉग्स यानी कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर पिछले साल दिए अपने पहले के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स के मामलों से जुड़ी दाखिल कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2025 के अपने आदेश में कहा था कि अस्पतालों, बस अड्डों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों जैसी सार्वजनिक जगहों से पकड़े गए स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेशन या नसबंदी के बाद उसी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को अब शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में बच्चों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं से जुड़ी रिपोर्ट्स का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों को नोचा गया, बुजुर्गों पर हमले हुए और यहां तक कि विदेशी यात्रियों को भी कुत्तों के हमलों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कई मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि कुत्तों के काटने का खतरा अब हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों समेत महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों तक फैल चुका है। अदालत ने कहा है कि ये समस्या बेहद व्यापक रूप ले चुकी है और ऐसी घटनाओं का लगातार दोहराया जाना निर्देशकों के पालन में कमी को दिखाता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अधिकारी इन आदेशों को लागू करने में नाकाम रहेंगे उनके खिलाफ अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में ये अधिकार भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। कोर्ट के मुताबिक संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चों और बुजुर्गों का जीवन केवल शारीरिक ताकत या फिर किस्मत के भरोसे हो। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा था कि वो आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेसवे से हटा दें। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस आदेश का सख्ती से पालन करना जरूरी है वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रे डॉग्स को लेकर आए फैसले पर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
8: मेरे ख्याल से ये अगर गवर्नमेंट जो भी शेल्टर्स या फिर इनके लिए जो भी चीज़ें बनाएंगी अगर वो प्रॉपरली मेंटेन कर पाए तो सही है, अगर उनको सब कुछ दिया जाए। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए थे कि जब इनको बंद किया जा रहा था उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, वो ठीक नहीं है। अगर आप प्रॉपरली केयरिंग कर पाओगे उनकी और अच्छे से कर पाओगे तो आप उनको ले जाके और अच्छे से उनका ध्यान रखो, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर उनको अच्छे से जो भी उनके इंजेक्शन्स वगैरह लगने हैं उन सब चीज़ों को करो। क्योंकि पब्लिक इतनी इमोशनल है या फिर इतना है उनके लिए कि हम लोग ध्यान रख सकते हैं सब चीज़ का।
9: मेरा मानना ये है कि कुत्तों की घटना बहुत ही आ रही है, क्योंकि जैसे स्कूल के बच्चे बाहर निकलते हैं या लिफ्ट के दौरान बहुत सी चीज़ होती है जो पिटबुल जैसे बहुत से डॉग्स हैं जो बच्चों पे हमला कर देते हैं और उनको बहुत नुकसान हो जाता है बच्चों को। बस इस अगर बात को ली जाए तो ये सेफ्टी बहुत अच्छी सरकार कर रही है कि अगर कुत्तों को हटा रही है अपनी जगह से, मगर कुत्तों के लिए भी कुछ जो जगह है उनके लिए भी जो जगह है बेसिकली वो चीज़ें अच्छी रखे उनके साथ, या जो भी उनको जहाँ भी शिफ्ट कर रही है तो वो जगह परफेक्ट होनी चाहिए ताकि जो लोग है, लोगों का इमोशन डॉग से बहुत जुड़ा हुआ होता है बेसिकली, तो अगर वो डॉग से जुड़ा हुआ इमोशन है तो लोगों को भी दुख ना पहुँचे और सरकार का भी अपना काम हो जाए।
10: ऑनेस्टली इस पर यही चीज़ है कि डॉग्स आर नॉट लाइक मेंट टू, किसी और डायरेक्टली तो ऐसे काटने नहीं जाएंगे इंटेंशनली अनलेस समवन प्रोवोक देम बाय लाइक, अगर उन्हें लात मार देते हैं दे जस्ट थ्रो वाटर ऑन देम या फिर उन्हें बेफालतू का छेड़ना एंड ऑल, दे विल डू दिस काइंड ऑफ अगर इंटेंशनल थिंग्स तब तो डॉग उन्हें किसी को भी काटेंगे, दे आर अफ्रेड ऑफ देम एंड वो खुद अनसेफ फील करेंगे ह्यूमंस के अराउंड। सो दैट्स नॉट द थिंग, हम लोग को नहीं इस तरीके से पब्लिक प्लेसेस पे तो डॉग्स को रहना इज मस्ट, दैट्स वाई वो थोड़ा सा एक चोर वगैरह थेफ्ट प्रूफ हो जाता है थोड़ा सा।
11: उससे सहमति नहीं है क्योंकि एक तो सबसे ऑब्वियस बात कि जब तक आप डॉग्स को प्रोवोक नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, एंड सेकेंड इट इज़ अ डॉग, लाइक उसका जो आईक्यू लेवल है इट इज़ नोवेयर नियर एनी अदर एनिमल, एंड इट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि सारे शेल्टर्स पे भी देख इट देयर इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर देम कि सबको एक शेल्टर मिल जाए, एंड ऑल्सो इनका बिहेवियर जो है इन्वायरमेंट या वेदर के कंडीशंस पे भी बहुत डिपेंड करता है, लाइक इतनी गर्मी में लाइक सबका मतलब दिमाग खराब हो जाता है। सो लाइक या इट शुड लाइक दे शुड बी लाइक सिस्टमाइज सिस्टम लाइक कि डॉग्स को मतलब थोड़ा सपोर्ट मिले, बट अगर देर आर डॉग्स जो आपको मतलब बिना प्रोवोक करे भी कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए।
12: अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज एज अ डॉग लाइक जब तक आप डॉग को प्रोवोक नहीं करोगे वो सामने से कुछ करने नहीं आएगा, दे आर लविंग पीपल, बिकॉज हमने रील्स में भी वीडियोज में भी देखा है इफ़ देयर इज़ अ बेबी अराउंड अ डॉग सो डॉग बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं और वो कभी भी ऐसे नहीं आते कि बिल्कुल झपट्टा मारेंगे या फिर उसे काट लेंगे, एंड बींग इट एनी एनिमल या फिर डॉग कैट्स एनी, जब तक आप सामने से जाके उन्हें प्रोवोक नहीं करोगे वो आप पे हमला या कुछ नहीं करेंगे। एनिमल्स आर लविंग एंड एज एन डॉग लवर मैं इस जो बयान है सुप्रीम कोर्ट का उससे बिल्कुल अग्री नहीं करती।
4: इम्तियाज अली निर्देशित फिल्म मैं वापस आऊंगा का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड पर।
13: पंजाब दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया।
14: इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म मैं वापस आऊंगा का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें प्यार तड़प और एक अधूरी कहानी की झलक मिलती है।
15: ये उनकी तकलीफ है और उनके साथ चिता में जाएगी।
14: ट्रेलर की शुरुआत दिलजीत और नसीरुद्दीन शाह के किरदार से होती है, जिसमें आखिरी सांसें गिन रहे नसीरुद्दीन शाह का किरदार कुछ कहना चाहता है लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पाता। आखिर में दिलजीत का किरदार उसे समझने का जिम्मा उठाता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां वेदांग रेना और शर्वरी के किरदार की प्रेम कहानी दिखती है, जिसका अंत दर्द से भरा नजर आता है।
16: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
14: फिल्म मैं वापस आऊंगा 12 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का संगीत यार रहमान ने दिया है, उनकी संगीत का जादू ट्रेलर में भी महसूस होता है। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण की पैन इंडिया फिल्म पेड्डी का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया जा चुका है, जिसने फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। ट्रेलर में फिल्म की कहानी पेड्डी यानी रामचरण के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेलर की शुरुआत बमन ईरानी के डायलॉग से होती है, जिसमें वो कहते हैं यहाँ किसी से भी पूछे फेवरेट खेल बदल रहा है लेकिन फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा।
17: किसी से भी पूछो फेवरेट खेल बदल रहा है फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा।
14: भूचरी बाबू सना लिखित और निर्देशित इस फिल्म में शिवा राजकुमार, जानवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म पेड्डी 4 जून को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। दिग्गज फिल्म डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन फिल्म तेरा यार हूँ में से एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। उन्हें इस फिल्म में बतौर लीड एक्टर लॉन्च किया गया है। फिल्म तेरा यार हूँ मैं की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया गया है। यह फिल्म 31 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मिलाप मिलन ज्वेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आकांक्षा शर्मा के साथ दिग्गज एक्टर परेश रावल भी अहम रोल में नजर आएंगे। कई नामी भारतीय चेहरों के बाद मौनी रॉय भी कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी छाप छोड़ती नजर आई। वो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आई। उनके ड्रेस के व्हाइट कॉलर डिटेल ने उनके लुक को शार्प और हाई फैशन टच दिया। इस लुक के साथ मौनी रॉय ने ब्लैक ओवरकोट कैरी किया, जिसमें वो और ज्यादा ग्लैमरस दिखी। मिसेज यूनिवर्स शेरी सिंह ने भी कांस फिल्म फेस्टिवल में जलवा बिखेरा। रेड कारपेट पर लहंगे में शेरी ने एंट्री ली तो उनकी देसी लुक में मॉडर्न वाइब का परफेक्ट मिक्स दिखा, जिसने सबका ध्यान खींचा। फ्रांस के मंच पर भारत से कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी हिस्सा लिया, जिसमें मराठी एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता माली ने रेड कारपेट पर महाराष्ट्रीयन संस्कृति का रंग बिखेरा। इस खास मौके के लिए उन्होंने भारतीय पारंपरिक परिधान को चुना।
4: और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात एक ऐसी परंपरा की जो जल और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बेहद अहम है। खास बात यह है कि लोग अपने स्तर पर इस परंपरा को उत्सव के रूप में निभाते आ रहे हैं। कश्मीर के काजीगुंड इलाके के इस उत्सव के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट।

0: कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियाँ यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। यहाँ का अनंतनाग जिला भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ की दिव्य छटाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ फूलों की मखमली वादियों से लेकर प्राचीन मीठे पानी के झरनों का एक मनमोहक संगम है। ये तस्वीरें अनंतनाग जिले के अजीकुंड इलाके के पंचत नाग की है, जहाँ लोग बड़ी संख्या में पानी के अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये सभी पानी में कुछ तलाश रहे हों। इस दौरान हाथ में मछली के आने की खुशी लोगों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। दरअसल पारंपरिक टोकरियों के साथ मौजूद ये सभी लोग सिर्फ मछली पकड़ने के रोमांच को लेकर पानी के अंदर नहीं है, बल्कि ये उस सालाना परंपरा का हिस्सा है जिसे पंचत नाग उत्सव के रूप में जाना जाता है।
1: साल वहाँ पंचत नाग यानी कि स्प्रिंग है उस इलाके का, ऐसा पानी का स्रोत जिसमें कई सारे स्प्रिंग आके मर्ज होते हैं और उस पूरे इलाके बल्कि कई सारे गांव हैं जिनके पीने के पानी की ज़रूरत से लेके जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए और बाकी ज़रूरतें भी जो हैं इसी स्प्रिंग से पूरी होती हैं। और हर साल ये गांव जो है सभी बूढ़े बच्चे जवान मिलके एक छुट्टी का दिन सिलेक्ट करते हैं और उस नाग की सफाई करते हैं। हालांकि इसको एक फिशिंग फेस्टिवल की तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो इसके पीछे मकसद है, वो है स्प्रिंग को साफ रखना, उस वाटर बॉडी को साफ रखना।
0: जल स्रोतों और पर्यावरण संरक्षण के मकसद से कई पीढ़ियों से यहाँ मई के महीने में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पंचत गांव के निवासी मीठे पानी के झरनों के एक समूह के आसपास जुटते हैं और सदियों पुरानी सामुदायिक परंपरा के तहत पानी से खरपतवार और कचरा साफ करते हैं। पंचत नाग झरनों की सफाई करने के साथ ही इस दिन मछली पकड़ने की भी इजाजत दी जाती है। इस आयोजन में पंचत के अलावा कई दूसरे गांव के लोग भी पूरे उत्साह के साथ शामिल होते हैं, जिनमें से कई गांव पीने के पानी और सिंचाई के लिए इन झरनों पर निर्भर हैं।
2: ये फेस्टिवल खाली फिशिंग के लिए नहीं है, ये फेस्टिवल इसलिए है कि जो यहाँ पे ये तीन चेक डैम्स हमारे हैं, जैसे पांजर, वामपुरा और दयन, इन तीनों चेक डैमों को ड्रेजिंग के लिए ये फिशिंग फेस्टिवल बनाया जाता है हर साल मई के महीने में। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर पानी की हम सतह देखें तो अच्छी खासी है, अगर देखा जाए वाटर सप्लाई यहाँ से अगर सप्लाई होती है तो तकरीबन 60 से 65 गांवों को ये वाटर सप्लाई फराम होती है। अगर देखा जाए तो हजारों कनाल जो हमारे इरिगेशन और हॉर्टिकल्चर लैंड है जिनको यहाँ से वाटर सप्लाई फराम होती है।
0: ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब जल स्तर घट जाता है तो जलीय खरपतवार तेजी से झरने में फैल जाते हैं, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। सामूहिक सफाई का ये प्रयास हाथ से झरने के बहाव को बहाल करता है, जो आसपास के 45 गांवों को पीने और सिंचाई का पानी मुहैया कराता है। साफ है कि ये वो उत्सव है जिसमें मछली पकड़ना नहीं बल्कि झरने को साफ करना अहम मकसद है, ताकि लोगों को पीने और सिंचाई के लिए पानी मिलता रहे।
3: आज मुझे लगता है कि इट इज मच मोर देन ए फेस्टिवल। एक तो वो मछली भी पकड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसकी वाटर बॉडी की सफाई भी हो रही है। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, मतलब इसके लिए आपको लाखों रुपए चाहे गवर्नमेंट को इसको साफ करने के लिए। अगर मिनिमम ही सही कुछ पैसा गवर्नमेंट इस पर इन्वेस्ट करेगी, आप देखिए थोड़ा इसको यहाँ आने के लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी है। और ये भी आप नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट इस एरिया से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इट इज नॉट दैट इट्स अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट।
0: अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी जिम्मेदारी लेकर पंचत में लोग जिस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी सराहना कर चुके हैं।
1: तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी 2023 में एक मन की बात प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लोग चाहें तो खुद ऐसा एफर्ट कर सकते हैं जिससे प्रकृति को बचाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से जो स्वच्छता है उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ताकि जो आसपास की जगहें हैं साफ रहे, जो प्रकृति है, माहौल है, साफ रहे। तो पंचत नाग जो है आज एक मिसाल है कि कैसे खुद लोग जो हैं अगर चाहें, अगर एकजुट हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, और खासकर जो पोल्यूशन है उसके खिलाफ एक डिसाइसिव लड़ाई हो सकती है।
0: लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में जरूर कोई न कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे एक दिन कश्मीर के पर्यटन मानचित्र पर पंचत का नाम शामिल होगा। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मजाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
6: There's just something about classic soul music that gets you moving, and TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
9: How they looked after game one.

0: TuneIn has the music.
1: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
2: TuneIn Poolside has the music I love.
1: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
9: अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारतीय टीम घोषित। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
10: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली वनडे टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली भी शामिल हैं। ईशान किशन की 3 साल बाद टीम में वापसी हुई है। वहीं टेस्ट के लिए भी गिल की कप्तानी में टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। अफगानिस्तान की टीम जून में भारत दौरे पर आएगी। 6 से 10 जून तक एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लापुर में होगा, जबकि 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 14 जून को धर्मशाला में होगा, दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में और तीसरा मैच 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ घोषित की गई भारतीय टीम में 4 नए चेहरों को मौका मिला है, जिसमें मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे और प्रिंस यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हर्ष और गुरनूर टेस्ट और वनडे दोनों टीम में शामिल हैं, जबकि मानव सुधार को सिर्फ टेस्ट टीम में और प्रिंस यादव को वनडे टीम में जगह मिली है। आईपीएल 2026 का 64वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के लिए प्लेऑफ के लिहाज से बेहद अहम है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है।
9: इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही।

0: देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
2: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
3: Visit your nearby Lowe's on East 17th Avenue in Hutchinson.
4: TuneIn has the music.
5: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
6: TuneIn Poolside has the music I love.
5: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii,
4: Let's go.
5: Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen. Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
2: It's college football time. College basketball feels
1: Pardon
2: like
1: my
2: it's
1: take.
3: The Rams catching the Commanders.
1: And
3: Hank
1: much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
4: Khabri, kuch jape par asar dalti hai, to kuch dil ko chho jati hai. Aisi har ek khabar जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
13: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी GM-V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक।
14: द
13: देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन। 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ। 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
9: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं बस्तर की। एक वक्त था जब इस नाम के साथ गोलियों की गूंज, नक्सली हिंसा और खौफ की कहानियां जुड़ी थी, लेकिन अब बस्तर बदल रहा है और बदलाव की ये तस्वीर सिर्फ दिखाई नहीं दे रही, महसूस भी की जा रही है। इस लिहाज से 19 मई की तारीख ऐतिहासिक है, क्योंकि इस तारीख से सुरक्षा कैंपों में सेवा केंद्रों की शुरुआत हो चुकी है, जहां से लोगों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके अलावा महिलाओं को सिलाई और प्रोसेसिंग यूनिट्स के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत हो चुकी है। आज आपको बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और बदलते बस्तर की तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां बच्चों के हाथों में किताबें हैं, महिलाओं के पास रोजगार है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। जिस बस्तर की पहचान कभी बारूद, बंदूक और भय से होती थी, वहां अब विकास, विश्वास और बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बस्तर अब विकास और भरोसे की नई मिसाल बनने में जा रहा है। असल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बने सुरक्षा कैंपों को सेवा केंद्रों में बदला जा रहा है, जहां आधार, जाति, आय प्रमाण पत्र और बैंकिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह बस्तर अब खौफ से निकलकर तेज विकास और मुख्यधारा की ओर बढ़ रहा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।

0: आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त।
1: दिल में उमंग, चेहरों पर मुस्कान, ना तो गोलियों का खौफ, ना नक्सलियों की धमकियों की दहशत। जिस इलाके की पहचान हिंसा की तस्वीरों से जुड़ी थी, आज वहां खुशियों की बयार है। यकीनन बस्तर बदलाव की राह पर है। नक्सल मुक्त बस्तर नए सपने, नई उम्मीदों के साथ नई राह पर चल पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से बस्तर में विकास और भरोसे की जो कहानी लिखी जा रही है, वो बेमिसाल है। जिन इलाकों में कभी लोग जाने से डरते थे, अब वहाँ सरकार की योजनाएं और सुविधाएं पहुँच रही हैं। ऐसे में जन सेवा केंद्र अब बस्तर की नई पहचान है।
2: जो कि पहले यहाँ पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहाँ पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूँ और यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेस ने बना रखे हैं, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर कदम बढ़ाए जाएंगे। और आप तस्वीरों में देखिए कि जो जनता है यहाँ की, वो सब लोग पहुंचे हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसका फायदा जो है आम पब्लिक के लिए होगा। इनके पास अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम व्यवस्थाएं हैं वो भी इनको यहाँ पर मिलती रहेंगी।
1: देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख गृह मंत्री ने तय की थी। इस मकसद में कामयाबी मिली, लेकिन अब इसके आगे बड़ा काम विकास का है। गृह मंत्री जब बस्तर के इलाके में पहुंचे, तो विकास के नए मॉडल की भी शुरुआत कर दी गई। नक्सलियों के खात्मे के लिए बने सुरक्षा कैंपों को जन सेवा केंद्रों में तब्दील कर दिया गया, जहां एक साथ सरकारी योजनाओं की भी सुविधा मिलेगी।
2: स्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहां जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नया बस्तर और बदलता बस्तर, इसके लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो काम केंद्र सरकार के द्वारा वहां से किया जाता है, उसको राज्य सरकार यहां पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और आप इसी की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं कि सेवा सेतु बनाया गया है, जनता के द्वार डिजिटल सरकार, यानी कि जो भी काम लोगों के हैं डिजिटली उनको करना होता है, उसको करने के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था एक केंद्र अलग से बनाया गया है। कभी ये नक्सलियों का बड़ा प्रभावित केंद्र होता था, लेकिन अब जब से नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हुआ है, तो अब यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार मौजूद हैं और अब इस इलाके में पूरी तरीके से लोगों के काम किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर कभी आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते थे, यहां पर आधार केंद्र बाकायदे खोला गया है और यहां पर जो लोग हैं अपने आधार कार्ड बना सकेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों का आधार कार्ड वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यहां पर व्यवस्था एक ही जगह यानी कि एक छत के नीचे इस तरीके की व्यवस्था दी गई है।
1: आदिवासी इलाकों में सरकारी दस्तावेज के साथ जाति और आय प्रमाण पत्र बनाना भी अभी तक नामुमकिन था। बैंकिंग सेवा से भी लोग अनजान थे, लेकिन अब बहुत आसानी से ये सब काम हो रहे हैं।
3: हम लोग जैसे कि अभी जाति निवास और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं, और वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसको भी आवेदन देना है वो यहाँ हम सुविधा देते हैं।
1: बस्तर में मौजूद करीब 200 में से 70 कैंपों को सेवा केंद्रों में बदल दिया गया है, इसमें जिनके जरिए शिक्षा और विकास की मयार बहेगी। इसके साथ ही फोकस सड़क, स्कूल, रोजगार और अस्पताल पर भी है।
2: जगदलपुर के उस स्वास्थ्य विभाग में मैं मौजूद हूं जो कि बस्तर इलाके का वह जगह है जो कि फॉरेस्ट इलाका कहलाता था और यहां पर फॉरेस्ट सेंटर बना हुआ था। नक्सलियों ने 2011 में इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके जला दिया था, लेकिन अब इस सेंटर को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, आप देखिए कि यहां पर पूरे मेडिकल टीमें जो हैं वो बैठाई गई हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि आम जनता को जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है उसके बाद से उनके पास जन सुविधाएं पहुंचे, यानी कि उनको स्वास्थ्य की सेवा या फिर स्कूल, कॉलेज या तमाम चीजें जो उनकी जरूरत होती हैं उसको यहां पर पहुंचाया जाए, और इसके लिए जनता तक सरकार पहुंच रही है। इन तमाम चीजों के लिए बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये सेंटर जो है ये 2011 में इसको नक्सलियों के द्वारा पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। ये कहा जाता है कि इसको जला करके पूरी तरीके से खाक कर दिया गया था। 6 हमारे पुलिस के जवान भी शहीद हुए थे, लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है ऐसे सेंटर्स जो हैं अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप के आसपास हैं, जहां पर सुरक्षा भी उनको दी जाए और आम जो पब्लिक है उनको ओपीडी की व्यवस्था हो, इसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर की अगर जांच करानी है तो वो उसको करा सकते हैं, अगर उनको लैब टेस्ट के लिए जाना है तो उस तरीके की भी व्यवस्था उनके पास उनके घर तक मौजूद हो, इस तरीके की सुविधाएं इस वक्त दी जा रही है।
1: नक्सलवाद की वजह से बस्तर के इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की हमेशा कमी रही है। लोग बीमारियों से जूझते रहे हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स की टीम तमाम सुविधाओं के साथ उनके पास है।
4: हर बुधवार को स्वास्थ्य केंद्र यहां पर उपस्थित है, तो स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा हर बुधवार को शिविर लगाया जाता है। वहां पर लोग उपस्थित होते हैं, जो भी उनकी परेशानियां होती है ना, वो हम लोग सुनते हैं और उसके अनुसार उन लोग का ट्रीटमेंट किया जाता है। वो सारी जांच उपलब्ध है, जिसके वजह से बीपी, शुगर के जितने भी मरीज हैं उन लोग की संख्या कम हो रही है, और जैसे मलेरिया, ये सारी जांच जो है वो की जाती है।
1: खौफ और दहशत से बस्तर उभरने लगा है, लेकिन देश की मुख्य धारा में इसे शामिल करने के लिए तेज रफ्तार विकास की दरकार है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है।
2: जब से बस्तर इलाका यानी कि साउथ बस्तर की अगर बात करें तो इन तमाम इलाकों से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हुआ है, उसके बाद से इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस हैं वहां आसपास सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही उन जगहों पर जो जन सुविधाओं के केंद्र हैं, खासतौर पर पढ़ाई के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, इसके साथ साथ जो आधार कार्ड किसी को बनवाना है या फिर किसी भी तरीके की जी कार्रवाई करनी है तो उनके घर तक इस तरीके की सुविधा हो, इस तरीके के बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका सीधा मकसद यह है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद सरकार उनके घर तक पहुंचे और एक तरीके का छत्तीसगढ़ जो कि विकास से अछूता था यहां पर विकास बड़े स्तर पर हो सके। छत्तीसगढ़ से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।
5: नक्सल मुक्त भारत बनाने का प्रण पूरा हो चुका है। बस्तर की पहचान भी अब बंदूक और बारूद नहीं होगी। मुख्य धारा में इसे शामिल करने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। धान कुटाई, इमली प्रोसेसिंग और सिलाई प्रशिक्षण जैसे प्रयासों से महिलाओं और ग्रामीणों को रोजगार देने की कोशिश है। कभी सुरक्षा कैंप रहे स्थान अब जनसुविधा केंद्र और हुनर केंद्रों बदल रहे हैं। बस्तर अब डर से नहीं, विकास, शांति और नए भविष्य की उम्मीद से आगे बढ़ रहा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
6: एक लय है ठक ठक की इस आवाज में, और देखिए तो इसमें नए भविष्य की आहट है। धान बोया गया, फसल कटकर आ गई, अब कुटाई के बाद चावल के दाने निकाले जाएंगे पेट भी भरेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, कमाई होगी तो हालात बदलेंगे, बस्तर एक बार फिर मुस्कुरा उठेगा। यही सोच है, यही तैयारी, बस्तर में बदलाव की जो बयार है उसके तहत इलाके की महिलाओं को अब ये परंपरागत मशीन मिल गई है।
2: मौजूद हूँ बस्तर में। जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है, और इसका सीधा मकसद यह है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहें। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है, और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। तो इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं, और खास तौर पर इन मशीनों की खासियत यह है कि जो पुराने जमाने में छत्तीसगढ़ का जो बस्तर के इलाके में धान कूटने की जो व्यवस्था होती थी उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। जब से नक्सलवाद फ्री हुआ है उसके बाद से इन तमाम इलाकों में इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनकी लोकेलिटी बनी रहे, किसी भी तरीके से उसका नुकसान न हो, इसलिए इस तरीके के कदम यहां पर आदिवासी इलाकों में बढ़ाए जा रहे हैं।
6: बस्तर का लाल चावल देश ही नहीं दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ स्थानीय खेतों से आए धान की पारंपरिक तरीके से प्रोसेसिंग की जाएगी और पैकिंग के बाद बाजार तक पहुँचाया जाएगा। इसी तरह इमली को भी तैयार कर बिक्री के लिए भेजा जा रहा है, यानी अब जंगल की उपज सीधे लोगों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगी।
2: नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब कदम ऐसे बढ़ाया जा रहा है जिसका सीधा मकसद यह है कि लोगों को उनके जो खास प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ से भेजा जा सके मशीनों के जरिए। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है, और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, कैसे आप इसको देख रहे हैं?
7: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारा काम कुछ आजीविका का साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग एक काम कर पा रहे हैं सर। अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गांव में, दीदी लोग जैसे समूह में जुड़ के कमा पा रहे हैं सर, अपने घर को चला पा रहे हैं। आगे जाके बहुत पहले बहुत परेशानी था सर, घर चलाने में बहुत दिक्कत, जंगल में आश्रित थे सर। ये काम मन को हम तो जानते ही नहीं सर गाँव वाले, अभी देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है काम करके। दो पैसा
2: इमली जो है इसके प्रोडक्ट यहाँ पर पैकिंग की जा रही है और ये तैयार हो रही है। लोकल फॉर वोकल, यहाँ की जो सामान है वो दूसरे मार्केट में भी भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो है वो तैयार किए गए हैं।
6: बस्तर में अब गोलियों की आवाज नहीं, जंगलों में छिपे खौफ की तस्वीरें नहीं, अब शांति और सुरक्षा का भरोसा है। इसके साथ ही शिक्षा, रोजगार और इलाज के साथ लोगों को हुनरमंद बनाने की कोशिश है, खासकर महिलाओं को जो नए काम को तेजी से अपना रही हैं। ये वही कैंप है जहां कभी हथियार रखे जाते थे, लेकिन अब यहां सिलाई मशीनें चल रही हैं। जहां रणनीति बनती थी वहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
2: एक समय वो था जब यहाँ पर नक्सलियों का प्रभुत्व होता था और उस दौरान यहाँ की महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज जब पूरी तरीके से नक्सलवाद यहाँ से समाप्त हो चुका है तो इन महिलाओं के हाथों में काम है। स्किल सेवा केंद्र के तौर पर पूरी तरीके से यहाँ पर सिलाई का काम जो है वो शुरू किया गया है। अलग अलग गाँव के जो इलाके हैं ये वैसे गाँव के इलाके हैं जिनका की मैपिंग भी नहीं किया गया था, लेकिन अब मैपिंग करने के बाद इन गांवों की महिलाओं को पूरी तरीके से यहां पर हुनर सिखाया जा रहा है। ये लोग सिलाई का काम यहां पर कर रही हैं, इसके साथ ही इनको दूसरे तरीके के जो लोकल यहां के प्रोडक्ट हैं उन तमाम कामों में इनको यहां पर शामिल किया गया है। सिलाई के साथ साथ यहां के जो लोकल प्रोडक्ट हैं, यानी कि चाहे इमली की पैकिंग करना हो या फिर दूसरे तरीके के यहाँ के जो उत्पाद हैं उनके लिए काम करने की व्यवस्था इनको दी गई है। इन महिलाओं के हाथों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिलाई का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, इस तरीके से स्किल सेंटर जो है वो अलग अलग जगहों पर बस्तर के इलाके में खोले जा रहे हैं। खास बात कि जो बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर या दूसरे इलाके हैं जो कि पूरी तरीके से नक्सल प्रभावित माने जाते रहे हैं, यहां पर जब से पूरी तरीके से नक्सली कमांडरों ने सरेंडर किया है, पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो गया है, ऐसे में इस इलाके से नक्सलियों के खात्मे के बाद इस तरीके से महिलाओं को हुनर सिखाया जा रहा है। आप ये बताइए कि जो यहाँ पर काम आप लोग कर रही हैं, क्या नाम है और किस गांव के आसपास से यहाँ से आप आई हैं?
8: मेरा नाम दसमती नाग है, मैं ग्राम गेहूँपदर की हूँ और मैं पैदल आई हूँ अभी, और अभी सिलाई सीखने के लिए आई हूँ। सिलाई सीखूंगी और सीखने के बाद घर में सिलाई करूंगी और घर का मेरा ही भी सिलूंगी और मेरे भाई बहन का भी सिलूंगी और गांव वालों के भी सिलाई करूंगी।
6: सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित टीम स्थानीय महिलाओं को पेशेवर तरीके से कपड़े सिलना सिखा रही है ताकि वे अपने हुनर से कमाई कर सकें। इस परियोजना से जुड़ी टीम का दावा है कि महिलाएं हर महीने 5 से 6 हजार रुपए तक की आय कमा सकती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद अपने पहले बस्तर दौरे में नेतानार पहुंचकर इस बदलाव की सबसे बड़ी तस्वीर देश के सामने रखी। नेतानार वही इलाका है जहां साल 2011 में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया था। पहले सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया और जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन पिछले कुछ साल में नई रणनीति और मजबूत इरादे के साथ नक्सलवाद पर शिकंजा कसा गया और नतीजा सामने है।

0: कहने में बड़ा आनंद है कि आज बाय एंड लार्ज देश तीनों समस्याओं से मुक्त होकर विकास के रास्ते पर आगे चल पड़ा है।
1: सुरक्षा कैंप के एक हिस्से को सुविधा केंद्र में बदला गया है, बाकी हिस्से में सुरक्षा बल पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।
2: इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, इच्छा शक्ति जागृत हुई वही फोर्स था, लेकिन अब शासन की इच्छा शक्ति जब हुआ तो ही सफल हो पाया है। हमको सारे जो भी जरूरत के सामान थे, हथियार थे, वो अवेलेबल हुए और हमने जो लोकल लड़के थे उनको अच्छी तरीके से एरिया का भौगोलिक भाषा का ज्ञान था उसको सबको एक साथ समराइज हुआ और ये सफलता जल्द हमको सही समय में एक निश्चित समय में हासिल हुई।
1: बस्तर अब उस अंधेरे के दौर से बाहर निकल रहा है जहां डर ने जिंदगी को कैद कर रखा था। अब यहां बच्चों के हाथों में किताबें हैं, महिलाओं के सामने रोजगार के अवसर हैं, किसानों के उत्पाद बाजार तक पहुंच रहे हैं और गांव पहली बार विकास को अपने करीब महसूस कर रहे हैं। कभी नक्सल हिंसा की पहचान रहा यह इलाका अब नए भारत की बदलती तस्वीर बन रहा है। बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: बदलते बस्तर पर हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
11: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
12: BIID ने रचा एकॉर्ड कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया ULPGM V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों के लिए किए बजरंग बली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग बिरंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। इस बीच एक शानदार खबर सामने आ रही है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई शानदार खबर आपको बताने, भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम, ये शानदार खबर आपको हम बता दें। DRDO ने अपनी एडवांस मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कर लिया है, और यानी अब हमारे ड्रोन सिर्फ जासूसी नहीं करेंगे, बल्कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में DRDO ने कमाल किया है, आसमान से ही दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकेंगे, अब हम हवा से जमीन, हवा से हवा में ये अटैक करेंगी, इसका सफल परीक्षण हुआ है, अब ड्रोन से निगरानी और अटैक दोनों संभव है, ये बड़ा सफल परीक्षण किया है DRDO ने, ये शानदार खबर आपको बता रहे हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। बता दें आपको, अब ड्रोन से सिर्फ निगरानी ही नहीं बल्कि दुश्मन के परखच्चे भी उड़ा देंगे। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में यह सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये 2-in-1 है, यानी हवा से जमीन पर तो सटीक निशाना लगाता ही है, इसके साथ साथ हवा में आ रहे दुश्मन के ड्रोन या एयरक्राफ्ट को भी मार गिराने में सक्षम है, ये शानदार खबर सामने आ रही है। और अब फटाफट अंदाज में देखिए GNT एक्सप्रेस।
9: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
12: भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए गुड न्यूज, पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। भगवान मध्य महेश्वर की देवी डोली कैलाश के लिए हुई रवाना, 21 मई को खुलेंगे मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से रवाना हुई डोली, डोली के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, हर हर महादेव के लगे जयकारे। आज डोली अपना पहला रात्रि प्रवास रांसी गांव में करेगी, कल द्वितीय रात्रि प्रवास के लिए अंतिम गांव डुगोंडार गांव पहुंचेगी बाबा की डोली। 21 मई को भगवान की डोली गोंडार गांव से धाम के लिए होगी रवाना, डोली के धाम पहुंचने पर मध्य महेश्वर मंदिर में खोले जाएंगे कपाट। चमोली के आदि बद्री धाम में नौठा कोथिक लठमार मेला हुआ धूमधाम से संपन्न, गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है यह पर्व। नीति के मालगुजार के नेतृत्व में गाजे बाजे देव डोली और लाठी डंडों के साथ नौठा नृत्य दल मंदिर पहुंचा, दोनों दलों के बीच लाठी डंडों से हुआ युद्ध। युद्ध के बाद ढोल दमाव की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य किया प्रस्तुत, दोनों दलों ने लगे मिलकर लगाए एकता का दिया संदेश। भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ का चढ़ाया गया, अन्य बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रायबरेली के चुरुवा हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। टिहरी के घनसाली में ऐतिहासिक हनुमान मेले में श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ा, ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को हजारों लोगों ने बजरंग बली के दर्शन किए। भंसाली का हनुमान मेला आज भी लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। 14 पट्टियों के 500 से अधिक गांवों से श्रद्धालु मेले में पहुंचे। प्राचीन हनुमान मंदिर परिसर सुबह से भक्तों की भीड़ से गुजार रहा। लोगों ने पूजा अर्चना के साथ मेले और सांस्कृतिक माहौल का आनंद लिया। हर साल दूर दराज गांवों से हजारों लोग इस मेले में होते हैं शामिल। सामाजिक एकता और धार्मिक परंपरा का प्रतीक बना मेला। 35 साल बाद भी मेले का उत्साह बरकरार। तकनीक के दौर में भी घनसाली का हनुमान मेला लोगों को जोड़ने का कर रहा है काम। प्रयागराज के बंधवा हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर मंगड़ा भक्ति का सैलाब। दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर लगाए जयकारे। बड़ा मंगल को लेकर हनुमान मंदिर को भव्य फूलों से सजाया गया। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में की गई विशेष आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। भक्तों ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन के लिए उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह से ही मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन कर चमेली का तेल, सिंदूर और बेसन के लड्डू किए अर्पित। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मंगलवार को हुआ था हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने रामलला के किए दर्शन। सुबह से राम मंदिर परिसर में लगी भक्तों की लंबी कतार। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। चारधाम यात्रा का कुल आंकड़ा 16 लाख के पार। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब। एक दिन में 79,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यात्रियों की संख्या के मामले में केदारनाथ धाम सबसे आगे। एक दिन में 30,000 से अधिक भक्त बाबा के दर पर पहुंचे। बद्रीनाथ में भी भारी भीड़। एक दिन में 21,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यात्रा मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ा। अब तक 1.5 लाख से अधिक गाड़ियां पहुंची। ओडिशा के मयूरभंज में आंधी के साथ तेज बारिश हुई। भीषण गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। तेज हवाओं और बारिश ने मयूरभंज का मौसम बदला। कई दिनों की उमस और गर्मी से लोगों ने ली राहत की सांस। मयूरभंज में बारिश और आंधी से तापमान गिरा। झुलसाती गर्मी के बीच मौसम हो गया सुहाना। आगरा में पड़ रही है भीषण गर्मी। गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने दिए निर्देश। मौसम विभाग के अनुसार अगर आने वाले 24 घंटों में और बढ़ेगी गर्मी, लोगों को हल्के ढीले सूती कपड़े पहनने की सलाह, साथ ही समय समय पर पानी पीने की भी हिदायत। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट मोड प्रशासन। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी और ओआरएस की व्यवस्था की गई। स्ट्रोक से बचाव के लिए डॉक्टरों को दिए गए विशेष निर्देश। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगाए जा रहे हैं शेड और मिस्ट सिस्टम। अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में सभी वाटर मशीनों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया। श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराया जा रहा है ताजा पानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे शहर में हीट वेव से बचाव के इंतजाम कर दिए गए हैं तेज। अधिकारियों को लगातार फील्ड में रहने के निर्देश। अयोध्या में इंसानों के साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई। गौशालाओं में पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाई गई। भीषण गर्मी के जद में दिल्ली इंडिया गेट पर घटी पर्यटकों की संख्या। गर्मी से बचाव के लिए पर्यटक ले रहे हैं मफलर और गमछे का सहारा। पर्यटन स्थलों पर घटी आमद। अभी में जारी भीषण गर्मी का दौर। 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा खजुराहो में तापमान। भोपाल में सूना पड़ा पर्यटकों से भरा रहने वाला बोट क्लब। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट। बच्चों और बुजुर्गों से दोपहर में बाहर ना निकलने की अपील। शिमला की ठंडी वादियों में भी अब दिखने लगा है गर्मी का असर। सुबह और शाम ही घूमने निकल रहे हैं पर्यटक। हिमाचल में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। कई जिलों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर तक पहुंचा। मौसम विभाग ने कांगड़ा, किन्नौर और सोलन में 3 दिन के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया। सिरमौर के पोंटा साहिब में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, जबकि बिलासपुर में पारा 39 डिग्री दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई गई। 21 और 22 मई को कई जिलों में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। गुरुग्राम में भी गर्मी से परिंदे बेहाल। चैरिटी पक्षी अस्पताल में लंबी कतारें। हीट स्ट्रोक और लकवे के शिकार हो रहे पक्षी। बिहार के 3 जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा तापमान। कैमूर, बक्सर, रोहतास में हीटवेव का रेड अलर्ट। बक्सर में स्कूल बंद। वाराणसी में तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। 25 मई तक स्कूल बंद। वाराणसी में बढ़ते तापमान के चलते गंगा घाटों पर पसरा सन्नाटा। प्रशासन ने की लोगों से सावधान रहने की अपील। प्रयागराज में भी लगातार बढ़ रहा पारा। 44 डिग्री पहुंचा तापमान। तापमान बढ़ने से सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे पेड़ का सहारा। जयपुर के अम्रपाली म्यूजियम ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर लोगों के लिए फ्री ओपन डे रखा। यहां लोगों ने भारत की पुरानी ज्वेलरी और कला को करीब से देखा। म्यूजियम में शहर के कई कलाकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचे। सभी ने खास गाइडेड टूर के जरिए दुर्लभ चीजों के बारे में जाना। अम्रपाली म्यूजियम में 4500 से ज्यादा पुरानी और खास कलाकृतियां मौजूद। ये संग्रहालय भारत की संस्कृति और परंपराओं को है दिखाता। म्यूजियम की नई तीसरी मंजिल लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। यहां भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ शानदार लाइट और साउंड शो दिखाया गया। म्यूजियम में फिल्मों में इस्तेमाल हुई ज्वेलरी प्रदर्शित की गई। लाइट, आवाज और कहानियों के जरिए लोगों को खास अनुभव कराया गया। मैदानों में बढ़ती गर्मी के बीच सैलानियों से गुजार हुआ श्रीनगर। बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी। श्रीनगर में शिकारा का ले रहे आनंद। भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। आसनसोल के स्कूलों में गुंजा वंदे मातरम। छात्रों और शिक्षकों में उत्साह। वियतनाम के हनोई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत। जवानों को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक तेल बाजार को राहत। समुद्र से रूसी तेल परिवहन पर प्रतिबंधों में दी गई 30 दिन की छूट। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या। धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ। 26 मई को विशेष अनुष्ठान। दिल्ली में अब इधर उधर नहीं फेंकी जाएगी खंडित मूर्तियां। राजधानी में बनेंगे कलेक्शन सेंटर। वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा रिसाइकिल। नॉर्वे दौरे पर पीएम मोदी। ओस्लो में तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में की शिरकत। ग्रीन एनर्जी और स्पेस सेक्टर पर बातचीत। नौसेना को मिलेगा नया अदृश्य हथियार। नेवी ने स्वदेशी हाई पावर माइक्रोवेव हथियार डेवलप करने का दिया कॉन्ट्रैक्ट। झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का होगा खात्मा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल के हाथों में टीम की कमान। 4 नए चेहरों को मिला मौका। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर याचिकाएं खारिज की। सार्वजनिक जगहों से हटाने का आदेश बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बच्चे बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते डॉग बाइट मामलों पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि मानव जीवन से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखें और उन्हें वापस न छोड़ें। सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी लगा बैन। 14 साल बाद एक बार फिर स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे संजय दत्त और सलमान खान। फिल्म 7 डॉग्स में आएंगे नजर। 7 डॉग्स में असली स्टंट्स और लाइव धमाकों का इस्तेमाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के एक सीन ने जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का तोड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 27 मई को सऊदी अरब, मिस्र और मिडिल ईस्ट के कई देशों में होगी रिलीज जबकि भारत में ये फिल्म 28 मई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। ऋषि अंबानी के कपड़ों में देखिए मुगल काल की सदियों पुरानी कला। विदेश में स्कर्ट को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ किया पेश। 5 फिल्मों में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म में सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन तुम्बा 2, द ग्रेट एस्केप में फरार में अहम रोल। महंगे पेट्रोल से बचने के लिए बच्चों वाली बारहवीं गाड़ी को एक युवक ने असली छोटी कार में तब्दील किया। सिर्फ $3 में भर जाता है गाड़ी का पेट्रोल टैंक। एलन वुड में रहने वाले इस युवक ने खिलौने वाली छोटी वैन में पुराना इंजन लगाकर सड़क पर चलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। बढ़ती पेट्रोल कीमतों से परेशान युवक ने खिलौने की गाड़ी को अपने काम की सवारी बनाया। बड़ी गाड़ियों में आता है ज्यादा खर्च। लोगों का ध्यान खींच रही है छोटी गाड़ी। बेहद कम खर्च में हो रही है कार की सवारी। अपने जैसी जुगाड़ के कारण चर्चा में युवक माली हाईटॉवर नाम के इस युवक का कहना बच्चों वाली गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। इस्माइल सैटेलाइट अब पहली बार धरती के चुंबकीय ढाल की तस्वीरें लेगा, इससे स्पेस वेदर की भविष्यवाणी पहले से ज्यादा हो सकेगी सटीक। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च, सैटेलाइट को फ्रेंच गयाना से वेगा सी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष भेजा गया। इस्माइल मिशन सोलर विंड और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच के रहस्यों को समझेगा, वैज्ञानिक पहली बार पूरे स्पेस इंटरेक्शन की ग्लोबल इमेजिंग कर पाएंगे। सैटेलाइट में दुनिया का पहला स्पेस बॉर्न सॉफ्ट एक्सरे मेजर लगाया गया है, ये अब तक अदृश्य मानी जाने वाली मैग्नेटिक बाउंड्री की तस्वीरें दिखाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मिशन संचार, नेविगेशन और स्पेस सुरक्षा में मदद करेगा। चीन और यूरोप मिशन का डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साझा करेंगे। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने मंगलवार को नॉर्दर्न आयरलैंड का किया दौरा, बेलफास्ट में पारंपरिक संगीत और नृत्य का आनंद लिया। शाही जोड़े ने फ्लेड फेस्टिवल से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, ड्रम बजाकर आयरिश संस्कृति को करीब से महसूस किया। बेलफास्ट में पारंपरिक डांस परफॉर्मेंस देखकर शाही जोड़ा दिखा उत्साहित, स्थानीय कलाकारों के साथ उन्होंने सांस्कृतिक जुलाब बढ़ाया। किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला का यह दौरा नॉर्दर्न आयरलैंड की संस्कृति को उजागर करने वाला रहा, स्थानीय लोगों ने शाही जोड़े का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस यात्रा में पारंपरिक संगीत, नृत्य और स्थानीय उद्योगों पर खास फोकस रहा, शाही दौरे से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई। सऊदी अरब के रेगिस्तान में देर से हुई बारिश के बाद यहां की मौसमी झील पानी से भरी, अब यह इलाका हरियाली, रेत के टीलों और पानी के नजारों से पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। अरब प्रायद्वीप की सबसे बड़ी प्राकृतिक नौ झीलों में शामिल है अल अफशाजिया झील, करीब 50 वर्ग किलोमीटर में फैली झील गर्मियों में सूख जाती है।

0: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: क्या आपने कभी एक ही पेड़ पर 14 तरह के आम देखे हैं? गुजरात के अमरेली में किसान ने एक अनोखा करिश्मा कर दिखाया है, जहां एक ही पेड़ पर दशहरी, केसर, नीलम और आम्रपाली समेत 14 किस्मों के आम लग रहे हैं। ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किया गया यह खास पेड़ अब इलाके में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
4: मौसम कोई हो, सबके अपने रंग हैं। जहां ठंड में चाय की चुस्की सुकून देती है, वहीं गर्मी को आम खास बना देता है। हर कोई इसका स्वाद लेना चाहता है। इतना ही नहीं, हर किस्म के आम के स्वाद का अपना ही मजा होता है। पर क्या हो जब आपको एक ही पेड़ पर 14 किस्मों के आम मिल जाए, या यूं कहें ये पेड़ नहीं आम के किस्मों की पाठशाला है। एक ही पेड़ पर 14 किस्मों के आमों का ये करिश्मा उमरेली के उकाभाई भट्टी ने कर दिखाया है। उकाभाई पूरे अमरेली जिले में एक सफल किसान के रूप में मशहूर है। देसी आम के पेड़ पर ग्राफ्टिंग से उन्होंने ये कमाल किया है। इनके आंगन पर उगे इस पेड़ पर आम्रपाली, नीलम, दशहरी, केसर समेत 14 किस्म के आम हैं। आम का ये खास पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये पहल है आम की खत्म होती किस्मों से लोगों को जोड़े रखने का। पुराने वक्त में 200 किस्म के आम हुआ करते थे, जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में उक्का भाई ने एक पेड़ पर 14 किस्में उगाकर लोगों को आम की खेती से जोड़ने की कोशिश की है। अब आसपास के किसान उक्का भाई से ग्राफ्टिंग की कला सीख रहे हैं। उम्मीद है आम की ये खेती यूं ही फलती फूलती रहेगी और लोगों को अलग अलग किस्मों के रसीले आम का स्वाद मिल सकेगा। अमरेली से फारूक भाई दादा मियां सैयद कादरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
6: Thank God I get to wake
5: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
8: It's my music and it's my station.
7: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
9: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
10: Sage University, transforming your passion into profession.
3: डीआरडीओ ने चाहे एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूर में किया यूएलपीजीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल। अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंग बली के दर्शन। 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनकी अपनी महत्ता होती है, काफी महत्वपूर्ण इन्हें माना जाता है और हमारे जीवन पर भी खास तौर पर इनका प्रभाव पड़ता है। तो आज के कार्यक्रम में हम पंडित जी से जानेंगे 9 ग्रहों के 9 चमत्कारी मंत्रों के बारे में। वो कौन से मंत्र है जिनका उच्चारण करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर संपत्ति संबंधी कोई भी समस्या आपकी जीवन में चल रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ इतना करिए कि हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। अगर आप ऐसा हर मंगलवार को करने लगें और प्रार्थना करें तो संपत्ति संबंधी समस्या हल हो जाएगी।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 20 मई 2026 यानी कि दिन बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 11:06 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, प्रातः 6:12 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:38 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:00 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं तमाम ग्रहों के कौन से मंत्रों का उच्चारण करें। शुरुआत करते हैं सूर्य के साथ। अगर हम सूर्य की बात करें तो कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को।
1: जी देखिए, आज हम 9 ग्रहों के चमत्कारी मंत्र की बात कर रहे हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा मंत्र पढ़ें, कब पढ़ें, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य जो हैं ये ग्रहों के राजा हैं और सूर्य का मतलब ये व्यक्ति की आत्मा है। अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हो, कमजोर हो, तो जीवन में अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की बीमारी हो जाती है। सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए और सूर्य की कृपा पाने के लिए सुबह के समय में या दोपहर के समय में सूर्य देव के मंत्र का एक माला जप करिएगा। खास तौर से अगर आप हड्डियों की या हृदय की समस्या से परेशान हैं, मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, तो इसके प्रभाव शुभ रहेंगे।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में, जो कि मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए ताकि आपका भाग्य बदले, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, चंद्रमा की अगर बात करें तो ये ग्रहों का दूसरा राजा है और कहीं कहीं पर चंद्रमा को रानी भी कहा गया है। तो चंद्रमा दूसरा राजा है या रानी है। चंद्रमा अगर गड़बड़ है, कमजोर है, तो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक रोग होते हैं, अस्थमा की शिकायत, रक्त की समस्या, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल दिक्कतें, ये जीवन में काफी ज्यादा होती हैं। तो चंद्रमा को अगर बेहतर करना चाहते हैं, चंद्रमा को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो रात के समय में चंद्रमा निकल जाने के बाद मोती या शंख की माला से चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः, और मंत्र जप मोती की माला से या शंख की माला से अगर आप करें तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे।
0: बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, जीवन में खुशहाली आएगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मार्स मंगल ग्रह, इसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है, कुंडली में बलवान किया जा सकता है, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित होगा, आइए जानते हैं।
1: देखिए, अगर मंगल की बात करें, मंगल के मंत्र की बात करें, तो मंगल जो है ये ग्रहों का सेनापति है और किसी व्यक्ति का साहस है, किसी व्यक्ति के अंदर कितना साहस है ये मंगल बताता है। मंगल के कमजोर होने पर भय की समस्या, संपत्ति की समस्या, दुर्घटना, जेल जाना और रिश्तों की समस्या होती है। मुकदमेबाजी, जेल यात्रा, भाई भाई में विवाद, ऑपरेशन, सर्जरी जैसी नौबत जीवन में आएगी अगर मंगल गड़बड़ होगा। मंगल को बेहतर करने के लिए दोपहर के समय में या सुबह के समय में मंगल के मंत्र का जप करिएगा। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र का जप मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से करेंगे तो शुभ रहेगा।
0: तो चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं बुध ग्रह के लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित होगा।
1: अब बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध ग्रहों का राजकुमार है। किसी भी व्यक्ति की जो वाणी है और किसी भी व्यक्ति की जो बुद्धि है उसके पीछे जो ग्रह है वो है बुध। बुध के कमजोर होने पर बुद्धि काम नहीं करती, आदमी का दिमाग तेज नहीं होता, कान नाक गले की समस्या, त्वचा की समस्या और वाणी की समस्या हो जाती है। बुध को बेहतर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए सुबह के समय बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र होगा ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का सुबह के समय जप करना काफी बेहतर होगा। और मंत्र जप किया जाएगा हरे हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से।
0: तो बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, परिवार में शांति रखें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। तो पंडित जी से बिना देर किए पूछ लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी आज का पहला प्रश्न अस्मिता शर्मा ने हमें लिखा है, जयपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। 11 मार्च 1994 का जन्म है। सुबह के 8:45 जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अस्मिता आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह साल 2027 में होने की संभावना बनती है। साल 2027 के मध्य में एक अच्छा समय है, उस समय ऐसा लग रहा है कि आपका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपने जिद और क्रोध की आदत पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमेशा की तरह याद दिला दूं कि अगर आप हमारे ये कार्यक्रम रोज देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं तो ये बिल्कुल संभव है। टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आपको हमें अपने प्रश्न लिख करके भेजना है, आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो फिलहाल बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का दूसरा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 दिसंबर 2000। जन्म का समय सुबह के 9:45 जन्म स्थान है पटना बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अभिषेक देखिए, आपको थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी एकाग्रता और मेहनत में थोड़ी कमी है। मेहनत बढ़ाएं, एकाग्रता बढ़ाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। साल 2027-28 अच्छा समय है और अगर आप ठीक से प्रयत्न करें तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। एक मूंगा बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी फिलहाल पंडित जी से जान लेते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह, इसके लिए कौन से मंत्रों का उच्चारण करना आपके जीवन के लिए फलदायी साबित होगा।
1: अब बात करते हैं बृहस्पति देव के मंत्र के बारे में। बृहस्पति को ग्रहों का गुरु मानते हैं, ग्रहों में मंत्री पद भी है इनके पास। किसी व्यक्ति के अंदर धर्म कितना है, सात्विकता, पवित्रता और पॉजिटिविटी कितनी है ये बृहस्पति से पता चलता है। बृहस्पति अगर गड़बड़ है तो मोटापे की समस्या, अहंकार की समस्या, पेट के रोग और गलत रास्ते पर चलना, अधर्म के मार्ग पर चलना ऐसा हो जाता है। बृहस्पति को अनुकूल करने के लिए या बृहस्पति को फेवरेबल बनाने के लिए सुबह के समय बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। बृहस्पति देव का मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, और बृहस्पति देव का मंत्र पढ़िएगा हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से। अगर इनके मंत्र का जप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा।
0: शुक्र खूबसूरती का कारक है, वीनस की यहाँ पर बात हो रही है, कौन से वो मंत्र हैं जो कि आपके भाग्य को बदल सकता है, आइए जानते हैं।
1: देखिए अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र को भी गुरु का दर्जा प्राप्त है और शुक्र को भी ग्रहों में मंत्री कहा जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना चैन है, उसके पीछे शुक्र ही होता है। अगर शुक्र गड़बड़ हो तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता। सब कुछ होने के बावजूद आप चैन से, आनंद से, सुख से नहीं रह पाएंगे। शुक्र को बेहतर करने के लिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र देव के मंत्र का जप करना चाहिए, और शुक्र देव का मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का जप करें। मंत्र का जप कर सकते हैं सफेद स्फटिक की माला से या सफेद चंदन की माला से। अगर मंत्र का जप करें तो लाभ होगा।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव समाप्त होगा, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शनि ग्रह के बारे में। कर्म प्रदान ग्रह है, कौन से वो मंत्र है जिनका उच्चारण करना आपके लिए फलदायी साबित होगा, आइए जानते हैं।
1: अब अगर शनि के मंत्रों की बात करें तो देखिए, शनि को ग्रहों का सेवक माना जाता है और ये किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करता है। अगर शनि कुंडली में गड़बड़ हो, स्थिति अच्छी ना हो, तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या परेशान करती है और छोटी छोटी चीजों को पाने में हर कदम पर जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। शनि की समस्याओं से निपटना चाहते हैं, शनि की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो शाम के समय शनि देव के मंत्र का रोज जप करिए। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से, संध्या काल में रोज करेंगे तो जीवन का संघर्ष कम होगा।
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं राहु के बारे में। ये शैडो प्लैनेट है, राहु ग्रह को कुंडली में किस तरीके से मजबूत किया जाए, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: अब बात करते हैं राहु की। जैसा कहा इन्होंने कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, एक छाया ग्रह है। व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंध रखता है। पूर्व जन्म में क्या थे, कौन सा क्या रिश्ता था, क्या साधना है, क्या पूजा है, क्या प्रारब्ध है, ये जो रहस्य हैं जीवन के, ये राहु से जुड़े होते हैं। अगर राहु का प्रभाव जीवन में बुरा हो तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता, सब कुछ जीवन में रहस्य बना रहता है। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए राहु के मंत्र का जप करना चाहिए रात के समय में, और राहु का मंत्र होगा ओम रांग राहवे नमः। और राहु के मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो इसके परिणाम शुभ होंगे।
0: तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे शैडो प्लैनेट यानी कि केतु के बारे में। केतु ग्रह अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन से वो मंत्र हैं जिनका उच्चारण आपको कर लेना चाहिए, आइए जानते हैं।
1: केतु की बात करें, देखिए केतु भी छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है, किसी व्यक्ति की गोपनीय समस्याओं से संबंध रखता है और किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक क्षमता कितनी है उससे संबंध रखता है। अगर केतु खराब हो तो व्यक्ति को गोपनीय समस्याएं या गोपनीय बीमारियां परेशान करती हैं, और जब केतु गड़बड़ होता है तो व्यक्ति तंत्र मंत्र के गलत मार्ग पर चलता है। केतु को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जप रात के समय में करना चाहिए। और केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का रोज रात में जप करें और मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से तो परिणाम बेहतर होंगे।
0: फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मकर राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल भी ले लेते हैं। पंडित जी, हमारे दर्शकों को बताएं कि अगला सवाल आप किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न हमें रचना जी ने लिखा है और रचना जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 5 सितंबर 1980। जन्म का समय रात में 9:42। जन्म स्थान है गांधीधाम, भुज, कच्छ, गुजरात। रचना जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और थोड़ी थोड़ी बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं मुझे, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर रहे। रचना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ज्यादातर ध्यान अपने हड्डियों का देना है। विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी वगैरह हो सकती है जिसकी वजह से आपको हड्डियों में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा बाकी कोई बहुत कठिन बात आपकी कुंडली में नहीं है। आपका स्वास्थ्य मुझे लगता है अक्टूबर 2026 के बाद से धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल यानी कि चौथा सवाल ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं, याद दिला दूं कि अगर आप पंडित जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इसी ईमेल आईडी पर आपको हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज देना है। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का अंतिम यानी कि चौथा सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी अगला प्रश्न मुकेश जी ने हमें लिखा है और मुकेश जी हमें मुजफ्फरनगर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 फरवरी 1988, जन्म का समय शाम के 6:41, जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है और अब मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है। मुकेश जी आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 के अंत तक आते आते आपकी सेकंड मैरिज हो जाएगी। लेकिन दूसरा विवाह करने में भी अगर आप कुंडली मिला करके निर्णय लें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन, जिनका बर्थडे 20 मई को है, आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का जो आने वाला साल है वो कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 20 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कर्ज चुकाने का प्रयास आपको करना चाहिए। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान आखिर क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि वो कौन सी माला है जिससे किसी भी देवी देवता के, किसी भी ग्रह के कोई भी मंत्र का जप किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो हर तरह के मंत्र के लिए अलग अलग मालाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब माला ना मिले, उपयुक्त माला ना मिल पाए, तब रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से हर तरह के मंत्र का जप किया जा सकता है।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं 20 मई 2026 यानी कि दिन बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 20 मई 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 20 मई बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 के बीच में।
0: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानते हैं कि आज की भाग्यशाली राशि यानी आज की गुड लक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का इस समय स्वास्थ्य कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इस समय अपनी मानसिक स्थिति और अपने तनाव का ध्यान रखें। नियमित रूप से गरीबों को दान करते रहें, ईश्वर का ध्यान करते रहें, अच्छा रहेगा।
0: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर अब हम पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
1: जी, देखिए आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपके जीवन में बार बार उतार चढ़ाव बना रहता हो तो क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें, सुबह और शाम 108 बार राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करें। अगर ऐसा निरंतर करते रहें तो जीवन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो
2: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
3: Jack, you're killing me.
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी जीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंग बली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
10: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी।
11: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर हनुमान भक्तों से भर गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह पहुंचे श्रद्धालु की यहां पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लग गईं और फिर बारी बारी से सबने बजरंग बली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तीसरे बड़ा मंगल पर संगम नगरी प्रयागराज भी हनुमान भक्ति में डूबी नजर आई। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार यानी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के अलावा शहर के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए रवाना हो गई। पूरे विधि विधान के साथ रवाना हुई चल विग्रह डोली के साथ भक्त जयकारे लगाते हुए रांसी गांव की ओर बढ़ चली, जहां डोली रात्रि प्रवास करेगी। इस दौरान डोली का जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर स्वागत करते भी दिखे। भगवान मध्य महेश्वर की ये डोली 20 मई को गोंडार गांव में रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को धाम पहुंचेगी, जिसके बाद उसी दिन मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। केदार घाटी में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के आदि बद्री धाम में आयोजित नौठा गौथिक लठमार मेले की है, जो गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोक गीत, पारंपरिक नृत्य और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ आयोजित इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, जिसमे मेले की सबसे खास बात रही लठमार परम्परा, जिसमे नौठा नृत्य दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में लठमार योद्धाओं ने गले मिलकर एकता का संदेश देने के साथ ही भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ चढ़ाया। इस दौरान शिवखली क्षेत्र में महिलाओं ने चोंगफुला, चाचरी और झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से नौनाज यानी नए फसल के आगमन पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का धूमधाम के साथ समापन हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं, इससे राहत दिलाने के लिए जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक को ठंडा रखने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए। इंसान से लेकर बेजुबानों तक को भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क 100 प्रजातियों के करीब 1500 पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी से लेकर स्प्रिंकल लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेजुबानों के लिए खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। फलों से लेकर उनके जूस भी फ्रीज करके और आइस क्यूब्स बनाकर दिए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में दातार पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर शेरों के झुंड की मौजूदगी देखी गई। यहां समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई तक शेरों के झुंड के पहुंचने की जानकारी है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल पर शेरों की मौजूदगी को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ यहां रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेरों की गतिविधियों को देख जाने के बाद उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
10: और अब बात करते हैं बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर जब से नक्सल मुक्त हुआ है उसके बाद से यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर अब नक्सलवाद की काली परछाई से मुक्त होकर विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से योजनाएं अब स्थानीय लोगों तक पहुंच रही हैं और स्थानीय लोग भी सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। विकास की इस भागीदारी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है।

0: एक समय देश में नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं आकार ले रही हैं।
1: पहले यहां पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहां पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूं और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बना रखे हैं, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर कदम बढ़ाए जाएंगे।
0: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार अब बस्तर को नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।
1: अब किस तरीके का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं।
2: इसमें विकास कार्य में पहले से और बेहतर तरीके से हो रहा है। मतलब अभी जो पहले जैसे ही आंदोलन क्षेत्र गिना जाता था, अभी वो ना जा, अभी बल्कि अच्छा विकास की और गति प्रगति पर बढ़ रहा है।
1: आप बताइए कि ये सेंटर किस तरीके से खास है, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके के काम हो रहे हैं।
3: जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन है वो पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि सुरक्षा बल जो है वहाँ पे पनाह लेते हैं, इस वजह से उनका आसपास का क्षेत्र प्रभुत्व वाला क्षेत्र होने के कारण पक्के भवनों को ध्वस्त करते थे। लेकिन अब नक्सली मुक्त करने की दिशा में शासन प्रशासन जो है आगे बढ़ा है।
1: नक्सलियों का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म है, काम अब किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है?
4: माननीय गृह मंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नक्सली क्षेत्र को पूरा खत्म करके अब जितने भी हमारे कैंप में स्कूल, हॉस्पिटल खुलने का पूरा प्रयास करके हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री पूरे बस्तर को विकसित बनाना चाह रहे हैं।
0: सुरक्षा से विकास की ओर बढ़ता बस्तर करीब चार दशक तक नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रहा। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोडागांव जैसे जिले लगातार नक्सली घटनाओं से प्रभावित रहे। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तक हर सरकारी परियोजना नक्सलियों के निशाने पर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति, स्थानीय पुलिस की बेहतर भागीदारी और केंद्र राज्य के तालमेल ने हालात बदल दिए हैं।
1: बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहाँ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नया बस्तर और बदलता बस्तर, इसके लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो काम केंद्र सरकार के द्वारा वहां से किया जाता है उसको राज्य सरकार यहां पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और आप इसी की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं कि सेवा सेतु बनाया गया है, जनता के द्वार डिजिटल सरकार, यानी कि जो भी काम लोगों के हैं डिजिटली उनको करना होता है उसको करने के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था एक केंद्र अलग से बनाया गया है। तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर कभी आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते थे, यहाँ पर आधार केंद्र बाकायदे खोला गया है और यहाँ पर जो लोग हैं अपने आधार कार्ड बना सकेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों का आधार कार्ड वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था एक ही जगह यानी कि एक छत के नीचे इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। ये देखिए कि आधार कार्ड तैयार करने वाले लोग जो हैं उनके पास यहाँ की आम जनता जो है वो मौजूद है और वो लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग सेवा की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजें जो है वो एक ही छत के नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं इस पूरे इलाके में?
4: हम लोग जैसे कि अभी जाति निवास और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं और वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसको भी आवेदन देना है वो यहाँ हम सुविधा देते हैं।
1: बैकवर्ड आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा मिल रही है, सारा काम हो रहा है?
5: जी सर।
1: क्या क्या काम हुआ है आपका?
5: जिसका मेरा आय प्रमाण पत्र का सुविधा मिला है सर, जो बनाने आई थी वह तो बन गया।
1: आप लोगों ने जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाना था, अब पहले से और अब में किस तरीके से अंतर दिखाई पड़ेगा सर?
6: पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी बड़े सुविधा हो गया, नजदीक हो गया तो अभी ठीक है, पहले काफी अच्छा।
0: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ चावल के कदरदानों की भी कमी नहीं। ऐसे में रेड राइस लगाकर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं इस धान की पारंपरिक तरीके से कुटाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा बस्तर की इमली भी काफी मशहूर है। सहायता समूह के सदस्य स्किल डेवलपमेंट के जरिए इसकी पैकिंग करके बाहर भेजते हैं, जिससे उनकी भी अच्छी आमदनी हो रही है।
1: बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इसका सीधा मकसद यह है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहे। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, जी कैसे आप इसको देख?
7: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारा काम कुछ आजीविका का साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग एक काम कर पा रहे हैं सर, अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गांव में।
0: बस्तर के नीतातार में सुरक्षा बलों के कैंप में बने एक अनोखे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसे बदलते बस्तर के लिए एक नया मॉडल बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जयपुर और गुवाहाटी म्यूजियम की। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम को ओपन डे के रूप में खोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय श्रृंगार कला की अनूठी यात्रा आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली। ये म्यूजियम केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया। वहीं गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया है।

0: ये भव्य और दिव्य तस्वीरें जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम की है। यहाँ प्रवेश करते ही इसकी दिव्यता और भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। देखने में ये म्यूजियम कम शोरूम ज्यादा लगता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के म्यूजियम देखे नहीं जाते। इस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक गहने हैं जो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी 18 मई को जयपुर का आम्रपाली म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया। इस मौके पर दर्शकों को एक ऐसा म्यूजियम देखने को मिला जो पूरी तरह से आभूषणों और अलंकृत वस्तुओं को समर्पित है।
1: वर्ल्ड म्यूजियम डे है और जहां जयपुर को और राजस्थान को जाना जाता है उसके कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए, वहीं यहां के जो म्यूजियम्स है वो बिल्कुल यही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन्स है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हमारे साथ में राजीव अरोड़ा जी मौजूद हैं जो कि जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम जो है उसको पूरा उन्होंने क्यूरेट किया है, अपनी पूरी मेहनत उस पर लगाई है। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस आम्रपाली म्यूजियम में। सर, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, क्या कुछ आज आप जयपुर को इस वॉक थ्रू में दिखा रहे हैं?
2: देखिए, पहले तो इस विश्व म्यूजियम डे की शुभकामनाएं। अपने इतिहास को, हमारी धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमारे पास इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है और नया पीसेस हमारे कारीगरों ने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आम्रपाली म्यूजियम जो है ये मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इकलौता म्यूजियम है जो अब हिंदुस्तान की हमारी जो सिल्वर स्मिथिंग है, गोल्ड स्मिथिंग है, सोने चांदी का जो काम होता है उसको गेगी म्यूजियम बनाओ। तो इसमें नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के हमारे गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, रॉयल फैमिलियों में किस तरीके की ज्वेलरी पहनी जाती थी उसको इकट्ठा करा गया है।
0: आम्रपाली म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा ने इस म्यूजियम को साल 2018 में बनाया था। अब ये म्यूजियम भारत के अलंकरण इतिहास का एक जीवंत अभिलेख बन चुका है, जिसमें 4,500 से अधिक कलाकृतियां संरक्षित हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कब किस तरह के आभूषण पहने जाते थे।
2: इसमें काफी सारे डिजाइनर्स, दूसरे म्यूजियम के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रेरित होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयपुर का खुद का एक दुनिया में नाम है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये जो आज के दिन हम लोगों ने फ्री एंट्री करी है, यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं।
0: ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
1: क्या ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो मूवीज में आर्टिस्ट ने पहना है, या फिर ये वही ज्वेलरी, क्या इसकी स्टोरी?
2: मैंने बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के लिए काम करा है और जैसे ये बाहुबली के आप देख रहे हैं ज्वेलरी, तो हमको जब कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसमें किस करेक्टर के लिए क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसेस है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो हल्के ज्वेलरी पहनेगी, वो फ्लावर की ज्वेलरी पहनेगी। वो अगर कोई प्रेम प्रसंग है, जंगल में है या कहीं खेत खलिहान में है, तो क्या पहन के जाएगी। फिर वो 20 साल बाद वो महारानी बन जाती है तो उसकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो उसको महारानी का पठार पहनेगी, बड़ी ज्वेलरी पहनेगी। इसको सोच के ज्वेलरी डिजाइन करी जाती है, बहुत कला का काम है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, म्यूजियम्स में जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। ये आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ये मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के करेक्टर बनी थी, कंगना रनौत ने ये रोल करा था। तो वो ग्वालियर की थी, उनकी माता किस घराने जाती थी, वो कैसी नथ पहनती थी, उस ज़माने में पायजेब कैसी पहनी जाती थी, वो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और अभी भी कई मूवीज़ के लिए मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ।
0: फिलहाल वो रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है।
1: ये कौन सी मूवी है सर? क्योंकि बाहुबली 2 आप दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे भी कोई ऐसा ही है?
2: रामलीला की ज्वेलरी करी है और रामायण जो नई मूवी बन रही है उसकी ज्वेलरी मैं कर रहा हूँ। वो शीघ्र ही मूवी का प्रोमो भी बाहर आएगा, ज्वेलरी भी आप देखेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी भव्य मूवी नहीं बनी होगी और उससे शानदार ज्वेलरी बनी हुई है।
0: वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्वेलरी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई जाती है बल्कि पशुओं को भी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ आप अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए सेल्फी खिंचा सकते हैं।
1: किस तरीके से आपने क्यूरेट किया, सोच भी मैं इसके पीछे की जाना चाहूंगा।
2: कि जेन जी जो है आजकल हमारी जो नई जनरेशन है उसको ऑडियो विजुअल पसंद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमर्सिव वीडियो चलाया है, जिससे मैंने हनुमान हमारा क्रिएट करा हुआ है वो बताया, इसका वीडियो चल रहा है। ये गोल्ड के बने हुए हनुमान है, इनके आप पाँव को दबाएंगे, पाँव को छुएंगे तो ये खुलते हैं, उसमें से छाती में से राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो ये हनुमान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार ये अपने आप में अद्भुत है, इसको ज्वेलरी के ने बनाना उनके लिए हमेशा दिखाते हैं। गोपालक थे वो, तो गायों के साथ दिखाया गया है। ये भी बहुत एक अनूठी नेकलेस है जो पुराने पीसेस को कलेक्ट करके बनाई गई है, इसके अंदर सैकड़ों पुराने पीस है जिनको जोड़ के नेकलेस को बनाया गया है। ऐसे ही ये डिब्बी है, ये पेन बनाया है, डायमंड एमरल्ड के संग बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ पीसेस हैं जो आप न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ज्वेलरी बनती थी। तो ये हाथी और घोड़े की श्रृंगार के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो चांदी की बनी हुई घोड़े की ज्वेलरी है। ये आप बड़े पीसेज आपको देखने को मिलेंगे, ये भी घोड़े की ज्वेलरी के पीसेज हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बढ़िया हम लोगों ने एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है, इसके अंदर जिसमें आप यहाँ पे इसको सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये एक पालकी है जिसके अंदर जैन समुदाय के लोग प्रतिमा को संग में लेके जाते थे, और यहाँ पे गले में पेंडिंग होते हैं, इनको राजस्थान में पादड़ी बोलते हैं, वो बनाइए जिसमें यहाँ पे लेके इसको आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट इसलिए तैयार करा गया है।
0: जयपुर ही नहीं बल्कि गुवाहाटी में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को उद्घाटन के बाद इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
4: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं, लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
5: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अगर देखो भैंस की स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहला।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
7: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
8: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
9: Smartless. Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
7: Marketplace.
10: The big three on the program today, or, you know, the big three of the...
7: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी जीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावों के साथ परोसी जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम तथ्यों की रोशनी में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कुछ लोग दिन दिहाड़े उसका अपहरण करने पहुंच गए, उसका अपहरण कर लिया। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इसकी भी करेंगे पड़ताल, लेकिन शुरुआत करते हैं।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
11: बंगाल में बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्टर।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया। अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने ऐसे ही कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी भाषा लग रही थी, ये बांग्ला नहीं थी। और इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे थे और इस पर भी जो शब्द लिखे हुए थे वो बांग्ला भाषा में नहीं थे। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं ये खबर जरूर सुर्खियां बनती, किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी टीवी चैनल पर ये सुर्खियों में रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को जबरन कार में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: एक लड़की को पकड़कर कार में लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को धार्मिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद कथित तौर पर हिंदुत्व भीड़ और पुलिस द्वारा दिन दहाड़े उसका अपहरण कर अमानवीय तरीके से घसीटा गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, महिलाओं की आज़ादी और कानून के शासन पर हमला है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ डराना, उठाना या प्रताड़ित करना घोर अपराध है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को पकड़कर जबरन कार में बिठाया जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई इस हरकत को रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है और युवती जाना नहीं चाह रही है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं और वीडियो के दावे पर यही शक हुआ हमें कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबरन लड़की को उठाकर क्यों ले जाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में एक गाड़ी भी नजर आ रही है, जब हमारा ध्यान उसके नंबर प्लेट पर गया तो फिर ये गाड़ी राजस्थान के नंबर की निकली। मतलब वायरल वीडियो राजस्थान का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 2 महीने पहले प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो मैनपुरी में हुई घटना का है। लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान से आई थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वापस लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में वीडियो भी मौजूद है। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 9 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर का था। पाए गांव के रहने वाले 25 साल के ऋतिक यादव राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की से हुई थी। दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने ऋतिक के खिलाफ भीलवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ऋतिक को थाने बुलाया और घंटों बिठाए रखने के बाद लड़की से दूर रहने की हिदायत दी। इस घटना के बाद ऋतिक डर गया और वह वापस अपने गांव लौट गया। इस बीच प्रेमिका ने उससे फोन पर बात की तो ऋतिक ने पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की घर पर बिना बताए ऋतिक के गांव आ गई और वहां रहने लगी। लड़की के घर वाले भी कुछ दिन बाद पुलिस लेकर मैनपुरी पहुंचे। एक आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 10 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। यहाँ भी घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि लड़की को वापस ले जाने वाले उसके अपने घर वाले ही थे। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट मैनपुरी पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली। पोस्ट को 9 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की के माता पिता ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसके घर वाले पुलिस के साथ उसे वापस लाने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि लड़की को जबरन ले जाने के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है।
3: देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को अवगाह करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और उस ये भी आपको समझ सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर मिसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस मौके पर यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए।
2: असल में वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लड़की को लेकर जाने वाले उसी के घर वाले हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है।
6: 42 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी। जब मैं प्रधानमंत्री।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार और बेहद रिलेटेबल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है। वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा। उसकी ये बेदाग बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
6: जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
2: सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करता नजर आता है। उसी दौरान कार का मालिक वहां आता है और जो करता है उसने सभी का दिल जीत लिया। कार मालिक बच्चे को न सिर्फ फरारी के पास बैठने देता है, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर भी बिठा देता है, जिससे बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह अनोखा और भावुक पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को इंसानियत की असली मिसाल बता रहे हैं। चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूके से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच जमकर चर्चा में है, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और हैरान भी। वीडियो में सड़क, माहौल और आसपास का नजारा पूरी तरह भारतीय, खासकर पंजाब जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग इसे देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन है या भारत। हर तरफ देसी झलक, पंजाबी टच और वही माहौल देखकर कई यूजर्स इसे मिनी पंजाब तक कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लुधियाना जैसा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूके का है, जहां भारतीय समुदाय की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देसी रंग दे दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो ने जमकर बवाल मचा रखा है, जिसमें लोग मजाक में धोनी, कोहली और रोहित को एक साथ ऑटो में घूमते हुए दिखा रहे हैं। वीडियो में तीन लोग अलग अलग टीमों की जर्सी पहनकर ऑटो में बैठे नजर आते हैं, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सच में तीन बड़े क्रिकेट स्टार्स साथ में घूम रहे हों। लेकिन बाद में साफ होता है कि ये फैंस का मजेदार कॉपी और क्रिएटिव वीडियो है। आईपीएल के सीजन में फैंस का क्रेज भी चरम पर है और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह कपड़े पहनकर स्टाइल अपनाकर और एक्टिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंटरनेट पर इन दोनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरुबा के रहने वाले एगमंड मौलाना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपने डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वह खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ और उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए हैं। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कॉमेंट्री करता सुनाई देता है।
7: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं,
2: देखो अंकल स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
7: चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल ले।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on

पदों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करें।

0: देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इनका शिकार बन रहा है। गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या बाजार, पार्क हो या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, आए दिन लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये मामला देश में इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को फिर से सख्ती दिखानी पड़ी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर दिए गए निर्देश ही लागू होंगे और जो सरकार और अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उन पर अवमानना का केस चलेगा।
1: कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़े नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़ें। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखें। इसके अलावा अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने निर्देशों को रद्द कराने के लिए याचिकाएं दाखिल की, जिन पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
1: सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
0: इतना ही नहीं, 3 जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें और हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही आवारा कुत्तों की आबादी के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत के आदेश को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों के लिए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
2: मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, एक तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी और जो आज का ऑर्डर है

0: उसका उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए जो जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए या जो भी और मीजर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा।
1: कोर्ट के फैसले के बाद जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का कहना है कि निर्देशों को अमल में लाना संभव नहीं है।
2: जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य क्या, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपए सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ, अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ, झाड़ू लेकर के हटाओ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1,00,000 बस स्टॉप्स हैं, 1,00,000 बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, तो कैसे हटा और किधर डालू?
3: ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सकेगा।
4: हटाने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं तो टकराव ना हो तो उनको संरक्षण भी कोर्ट ने यहाँ पर दिया है,
3: क्योंकि बहुत झगड़े इस प्रकार के केसेस में हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें FIRs ना दर्ज हों, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवर को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए कोई छूट नहीं है।
1: आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इसको लेकर अदालत में लंबी लड़ाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने लड़ी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: DRDO ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया ULP GM V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16,50,000 भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी।
8: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर हनुमान भक्तों से भर गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह पहुंचे श्रद्धालु की यहां पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लग गईं और फिर बारी बारी से सबने बजरंग बली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तीसरे बड़ा मंगल पर संगम नगरी प्रयागराज भी हनुमान भक्ति में डूबी नजर आई। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार यानी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के अलावा शहर के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए रवाना हो गई। पूरे विधि विधान के साथ रवाना हुई चल विग्रह डोली के साथ भक्त जयकारे लगाते हुए रांसी गांव की ओर बढ़ चली, जहां डोली रात्रि प्रवास करेगी। इस दौरान डोली का जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर स्वागत करते भी दिखे। भगवान मध्य महेश्वर की ये डोली 20 मई को गोंडार गांव में रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को धाम पहुंचेगी, जिसके बाद उसी दिन मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। केदार घाटी में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के आदि बद्री धाम में आयोजित नौठा गौथिक लठमार मेले की है, जो गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोक गीत, पारंपरिक नृत्य और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ आयोजित इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें मेले की सबसे खास बात रही लठमार परंपरा, जिसमें नौठा नृत्य दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में लठमार योद्धाओं ने गले मिलकर एकता का संदेश देने के साथ ही भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ चढ़ाया। इस दौरान शिवखली क्षेत्र में महिलाओं ने चोंगफुला, चाचरी और झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से नौनाज यानी नए फसल के आगमन पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का धूमधाम के साथ समापन हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं। इससे राहत दिलाने के लिए जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक को ठंडा रखने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए। इंसान से लेकर बेजुबानों तक को भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क 100 प्रजातियों के करीब 1500 पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी से लेकर स्प्रिंकल लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेजुबानों के लिए खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। फलों से लेकर उनके जूस भी फ्रीज करके और आइस क्यूब्स बनाकर दिए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में दातार पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर शेरों के झुंड की मौजूदगी देखी गई। यहां समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई तक शेरों के झुंड के पहुंचने की जानकारी है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल पर शेरों की मौजूदगी को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेरों की गतिविधियों को देख जाने के बाद उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
7: और अब बात करते हैं बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी थी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर जब से नक्सल मुक्त हुआ है उसके बाद से यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर अब नक्सलवाद की काली परछाई से मुक्त होकर विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से योजनाएं अब स्थानीय लोगों तक पहुंच रही हैं और स्थानीय लोग भी सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। विकास की इस भागीदारी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है।

0: एक समय देश में नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं आकार ले रही हैं।
1: पहले यहां पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहां पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूं और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बना रखे हैं, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहां पर कदम बढ़ाए जाएंगे।
0: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार अब बस्तर को नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।
1: अब किस तरीके का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं। टिकट का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं।
2: इसमें विकास कार्य में पहले से और बेहतर तरीके से हो रहा है। मतलब अभी जो पहले जैसे ही आंदोलन क्षेत्र गिना जाता था, अभी वो ना जा, अभी बल्कि अच्छा विकास की और गति प्रगति पर बढ़ रहा है।
1: आप बताइए कि ये सेंटर किस तरीके से खास है, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके काम हो रहे
3: हैं। जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन है वो पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि सुरक्षा बल जो है वहाँ पे पना लेते हैं, इस वजह से उनका आसपास का क्षेत्र प्रभुत्व वाला क्षेत्र होने के कारण पक्के भवनों को ध्वस्त करते थे। लेकिन अब नक्सली मुक्त करने की दिशा में शासन प्रशासन जो है आगे बढ़ा है।
1: नक्सलियों का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म है, काम अब किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है?
4: माननीय गृह मंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नक्सली क्षेत्र को पूरा खत्म करके अब जितने भी हमारे कैंप में स्कूल, हॉस्पिटल खुलने का पूरा प्रयास करके हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री पूरे बस्तर को विकसित बनाना चाह रहे हैं।
0: सुरक्षा से विकास की ओर बढ़ता बस्तर करीब 4 दशक तक नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रहा। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोडागांव जैसे जिले लगातार नक्सली घटनाओं से प्रभावित रहे। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तक हर सरकारी परियोजना नक्सलियों के निशाने पर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति, स्थानीय पुलिस की बेहतर भागीदारी और केंद्र राज्य के तालमेल ने हालात बदल दिए हैं।
1: बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहाँ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नया बस्तर और बदलता बस्तर, इसके लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो काम केंद्र सरकार के द्वारा वहां से किया जाता है उसको राज्य सरकार यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और आप इसी की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं कि सेवा सेतु बनाया गया है, जनता के द्वार डिजिटल सरकार, यानी कि जो भी काम लोगों के हैं डिजिटली उनको करना होता है उसको करने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था एक केंद्र अलग से बनाया गया है। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर कभी आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते थे यहाँ पर आधार केंद्र बाकायदे खोला गया है और यहाँ पर जो लोग हैं अपने आधार कार्ड बना सकेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों का आधार कार्ड वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था एक ही जगह यानी कि एक छत के नीचे इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। ये देखिए कि आधार कार्ड तैयार करने वाले लोग जो हैं उनके पास यहाँ की आम जनता जो है वो मौजूद है और वो लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग सेवा की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजें जो है वो एक ही छत के नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं इस पूरे इलाके में?
4: हम लोग जैसे कि अभी जाति निवास और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं और वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसको भी आवेदन देना है वो यहाँ हम सुविधा देते हैं।
1: बैकवर्ड आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा मिल रही है, सारा काम हो रहा है?
5: जी सर।
1: क्या क्या काम हुआ है आपका?
5: जिसका मेरा आय प्रमाण पत्र का सुविधा मिला है सर, जो बनाने आई थी वह तो बन गया।
1: आप लोगों ने जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाना था अब पहले से और अब में किस तरीके से अंतर दिखाई पड़ेगा सर?
4: पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी बड़े सुविधा हो गया, नजदीक हो गया तो अभी ठीक है, पहले काफी सर।
0: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ चावल के कदरदानों की भी कमी नहीं। ऐसे में रेड राइस लगाकर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं इस धान की पारंपरिक तरीके से कुटाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा बस्तर की इमली भी काफी मशहूर है। सहायता समूह के सदस्य स्किल डेवलपमेंट के जरिए इसकी पैकिंग करके बाहर भेजते हैं, जिससे उनकी भी अच्छी आमदनी हो रही है।
1: बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इसका सीधा मकसद ये है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहे। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, जी कैसे आप इसको देख?
6: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारे काम कुछ आजीविका का साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको जो सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग ये काम कर पा रहे हैं सर, अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गाँव में।
0: बस्तर के नीतातार में सुरक्षा बलों के कैंप में बने एक अनोखे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह ने किया और इसे बदलते बस्तर के लिए एक नया मॉडल बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जयपुर और गुवाहाटी म्यूजियम की। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम को ओपन डे के रूप में खोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय श्रृंगार कला की अनूठी यात्रा आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली। ये म्यूजियम केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया। वहीं गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया।

0: ये भव्य और दिव्य तस्वीरें जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम की है। यहाँ प्रवेश करते ही इसकी दिव्यता और भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। देखने में ये म्यूजियम कम शोरूम ज्यादा लगता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के म्यूजियम देखे नहीं जाते। इस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक गहने हैं जो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी 18 मई को जयपुर का आम्रपाली म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया। इस मौके पर दर्शकों को एक ऐसा म्यूजियम देखने को मिला जो पूरी तरह से आभूषणों और अलंकृत वस्तुओं को समर्पित है।
1: वर्ल्ड म्यूजियम डे है और जहां जयपुर को और राजस्थान को जाना जाता है उसके कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए, वहीं यहां के जो म्यूजियम्स है वो बिल्कुल यही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हमारे साथ में राजीव अरोड़ा जी मौजूद हैं जो कि जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम जो है उसको पूरा उन्होंने क्यूरेट किया है, अपनी पूरी मेहनत उस पर लगाई है, तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस आम्रपाली म्यूजियम में। सर, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, क्या कुछ आज आप जयपुर को इस वॉक थ्रू में दिखा रहे हैं?
2: देखिए, पहले तो इस विश्व म्यूजियम डे की शुभकामनाएं। अपने इतिहास को, हमारी धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमारे पास इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है और नायाब पीसेस हमारे कारीगरों ने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आम्रपाली म्यूजियम जो है ये मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इकलौता म्यूजियम है जो अब हिंदुस्तान की हमारी जो सिल्वर स्मिथिंग है, गोल्ड स्मिथिंग है, सोने चांदी का जो काम होता है उसको गेगी म्यूजियम बनाओ। तो इसमें नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के हमारे गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, रॉयल फैमिलियों में किस तरह की ज्वेलरी पहनी जाती थी उसको इकट्ठा करा गया है।
0: आम्रपाली म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा ने इस म्यूजियम को साल 2018 में बनाया था। अब ये म्यूजियम भारत के अलंकरण इतिहास का एक जीवंत अभिलेख बन चुका है, जिसमें 4,500 से अधिक कलाकृतियां संरक्षित हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कब किस तरह के आभूषण पहने जाते थे।
2: इसमें काफी सारे डिजाइनर्स, दूसरे म्यूजियम के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रेरित होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयपुर का खुद का एक दुनिया में नाम है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये जो आज के दिन हम लोगों ने फ्री एंट्री करी है, यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं।
0: ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
1: क्या ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो मूवीज में आर्टिस्ट ने पहना है, या फिर ये वही ज्वेलरी, क्या इसकी स्टोरी?
2: मैंने बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के लिए काम करा है और जैसे ये बाहुबली के आप देख रहे हैं ज्वेलरी, तो हमको जब कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसमें किस करेक्टर के लिए क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसेस है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो हल्के ज्वेलरी पहनेगी, वो फ्लावर की ज्वेलरी पहनेगी। वो अगर कोई प्रेम प्रसंग है, जंगल में है या कहीं खेत खलिहान में है, तो क्या पहन के जाएगी। फिर वो 20 साल बाद वो महारानी बन जाती है तो उसकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो उसको महारानी का पठार पहनेगी, बड़ी ज्वेलरी पहनेगी। इसको सोच के ज्वेलरी डिजाइन करी जाती है, बहुत कला का काम है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, म्यूजियम्स में जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। या आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं, ये मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई के करेक्टर बनी थी, कंगना रनौत ने ये रोल करा था, तो वो ग्वालियर की थी, उनकी माता किस घराने जाती थी, वो कैसी नथ पहनती थी, उस ज़माने में पायजेब कैसी पहनी जाती थी, वो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और अभी भी कई मूवीज़ के लिए मैं जूली बना रहा हूँ।
0: फिलहाल वो रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है।
1: ये कौन सी मूवी है सर? क्योंकि बाहुबली 2 आप दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे भी कोई ऐसा ही
2: रामलीला की ज्वेलरी करी है। और रामायण जो नई मूवी बन रही है उसकी ज्वेलरी मैं कर रहा हूँ। वो शीघ्र ही मूवी का प्रोमो भी बाहर आएगा, ज्वेलरी भी आप देखेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी भव्य मूवी नहीं बनी होगी और उससे शानदार ज्वेलरी बनी हुई होगी।
0: वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्वेलरी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई जाती है बल्कि पशुओं को भी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ आप अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए सेल्फी खिंचा सकते हैं।
1: किस तरीके से आपने क्यूरेट किया, सोच भी मैं इसके पीछे की जानना चाहूंगा।
2: कि जेन जी जो है आजकल हमारी जो नई जनरेशन है उसको ऑडियो विजुअल पसंद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमर्सिव वीडियो चलाया है। जैसे मैंने हनुमान हमारा क्रिएट करा हुआ है वो बताया, उसका वीडियो चल रहा है। ये गोल्ड के बने हुए हनुमान है, इनके आप पाँव को दबाएंगे, पाँव को छुएंगे तो ये खुलते हैं, उसमें से छाती में से राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो ये हनुमान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार ये अपने आप में अद्भुत है, इसको ज्वेलरी के ने बनाना। उनके लिए हमेशा दिखाते हैं, गौपालक थे वो, तो गायों के साथ दिखाया गया है। ये भी बहुत एक अनूठी नेकलेस है जो पुराने पीसेस को कलेक्ट करके बनाई गई है। इसके अंदर सैकड़ों पुराने पीस है जिनको जोड़ के नेकलेस को बनाया गया है। ऐसे ही ये डिब्बी है, ये पेन बनाया है, डायमंड एमरल्ड के संग बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ पीसेस हैं जो आप न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ज्वेलरी बनती थी। तो ये हाथी और घोड़े की श्रृंगार के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो चांदी की बनी हुई घोड़े की ज्वेलरी है। ये आप बड़े पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये भी घोड़े की ज्वेलरी के पीसेस हैं तो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बढ़िया, हम लोगों ने एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है इसके अंदर, जिसमें आप यहाँ पे इसको सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये एक पालकी है जिसके अंदर जैन समुदाय के लोग प्रतिमा को संग में लेके जाते थे, और यहाँ पे गले में पेंडिंग होते हैं, इनको राजस्थान में पाथड़ी बोलते हैं, वो बनाइए जिसमें यहाँ पे लेके इसको आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट इसलिए तैयार करा गया है।
0: जयपुर ही नहीं बल्कि गुवाहाटी में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को उद्घाटन के बाद इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
4: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं, लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
5: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अगर देख लो, मैं इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं। चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी जीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन। 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ। 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावों के साथ परोसी जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकेंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम तथ्यों की रोशनी में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कुछ लोग दिन दिहाड़े उसका अपहरण करने पहुंच गए, उसका अपहरण कर लिया। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इसकी भी करेंगे पड़ताल। लेकिन शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
10: बंगाल में बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्टर।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया। अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने ऐसे ही कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी भाषा लग रही थी, ये बांग्ला नहीं थी। और इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे थे और इस पर भी जो शब्द लिखे हुए थे वो बांग्ला भाषा में नहीं थे। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं ये खबर जरूर सुर्खियां बनती किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी टीवी चैनल पर, ये सुर्खियों में रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को जबरन कार में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: एक लड़की को पकड़कर कार में लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को धार्मिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद कथित तौर पर हिंदुत्व भीड़ और पुलिस द्वारा दिन दहाड़े उसका अपहरण कर अमानवीय तरीके से घसीटा गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, महिलाओं की आज़ादी और कानून के शासन पर हमला है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ डराना, उठाना या प्रताड़ित करना घोर अपराध है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को पकड़कर जबरन कार में बिठाया जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई इस हरकत को रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है और युवती जाना नहीं चाह रही है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं और वीडियो के दावे पर यही शक हुआ हमें कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबरन लड़की को उठाकर क्यों ले जाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में एक गाड़ी भी नजर आ रही है, जब हमारा ध्यान उसके नंबर प्लेट पर गया तो फिर ये गाड़ी राजस्थान के नंबर की निकली। मतलब वायरल वीडियो राजस्थान का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 2 महीने पहले प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो मैनपुरी में हुई घटना का है। लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान से आई थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वापस लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में वीडियो भी मौजूद है। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 9 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर का था। पाए गांव के रहने वाले 25 साल के ऋतिक यादव राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की से हुई थी। दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने ऋतिक के खिलाफ भीलवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ऋतिक को थाने बुलाया और घंटों बिठाए रखने के बाद लड़की से दूर रहने की हिदायत दी। इस घटना के बाद ऋतिक डर गया और वह वापस अपने गांव लौट गया। इस बीच प्रेमिका ने उससे फोन पर बात की तो ऋतिक ने पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की घर पर बिना बताए ऋतिक के गांव आ गई और वहां रहने लगी। लड़की के घर वाले भी कुछ दिन बाद पुलिस लेकर मैनपुरी पहुंचे। एक आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 10 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। यहाँ भी घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि लड़की को वापस ले जाने वाले उसके अपने घर वाले ही थे। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट मैनपुरी पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली। पोस्ट को 9 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की के माता पिता ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसके घर वाले पुलिस के साथ उसे वापस लाने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि लड़की को जबरन ले जाने के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है।
3: देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को अगवा करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और उस ये भी आपको समझ सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर मिसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस मौके पर यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसे नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए लेके गई।
2: असल में वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लड़की को लेकर जाने वाले उसी के घर वाले हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
6: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है।
7: 42 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी।
6: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार और बेहद रिलेटेबल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है। वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा। उसकी ये बेदाग बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है, वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
7: जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। You are better understand?
6: सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करता नजर आता है। उसी दौरान कार का मालिक वहां आता है और जो करता है उसने सभी का दिल जीत लिया। कार मालिक बच्चे को न सिर्फ फरारी के पास बैठने देता है, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर भी बिठा देता है, जिससे बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह अनोखा और भावुक पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को इंसानियत की असली मिसाल बता रहे हैं। चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूके से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच जमकर चर्चा में है, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और हैरान भी। वीडियो में सड़क, माहौल और आसपास का नजारा पूरी तरह भारतीय, खासकर पंजाब जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग इसे देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन है या भारत। हर तरफ देसी झलक, पंजाबी टच और वही माहौल देखकर कई यूजर्स इसे मिनी पंजाब तक कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लुधियाना जैसा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूके का है, जहां भारतीय समुदाय की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देसी रंग दे दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो ने जमकर बवाल मचा रखा है, जिसमें लोग मजाक में धोनी, कोहली और रोहित को एक साथ ऑटो में घूमते हुए दिखा रहे हैं। वीडियो में तीन लोग अलग अलग टीमों की जर्सी पहनकर ऑटो में बैठे नजर आते हैं, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सच में तीन बड़े क्रिकेट स्टार्स साथ में घूम रहे हों। लेकिन बाद में साफ होता है कि ये फैंस का मजेदार कॉपी और क्रिएटिव वीडियो है। आईपीएल के सीजन में फैंस का क्रेज भी चरम पर है और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह कपड़े पहनकर स्टाइल अपनाकर और एक्टिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंटरनेट पर इन दोनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरुबा के रहने वाले एगमंड मौलाना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपने डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वह खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ और उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए हैं। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कॉमेंट्री करता सुनाई देता है।
8: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं,
6: देखो अंकल स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
8: चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल ले।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.

बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि साल 2025 में दिया गया आदेश ही लागू रहेगा, यानी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करें।

0: देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इनका शिकार बन रहा है। गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या बाजार, पार्क हो या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, आए दिन लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये मामला देश में इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को फिर से सख्ती दिखानी पड़ी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर दिए गए निर्देश ही लागू होंगे और जो सरकार और अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उन पर अवमानना का केस चलेगा।
1: कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़े नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़े, ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखें। इसके अलावा अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने निर्देशों को रद्द कराने के लिए याचिकाएं दाखिल की, जिन पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
1: सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
0: इतना ही नहीं, 3 जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें और हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही आवारा कुत्तों की आबादी के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत के आदेश को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों के लिए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
2: मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट, जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, एक तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही

0: आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए कोई भी
1: जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का कहना है कि निर्देशों को अमल में लाना संभव नहीं है।
2: जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य क्या, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपए सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे हटा सकते हैं हम लोग। लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ, अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ, झाड़ू लेकर के हटाऊँ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1,00,000 बस स्टॉप्स हैं, 1,00,000 बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो कैसे हटा और किधर डालू?
3: ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सके।
4: हटाने के लिए जो कर्मचारी जाते हैं तो टकराव ना हो तो उनको संरक्षण भी कोर्ट ने यहाँ पर दिया है,
3: क्योंकि बहुत झगड़े इस प्रकार के केसेस में हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें FIRs ना दर्ज हो, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है।
1: आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इसको लेकर अदालत में लंबी लड़ाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने लड़ी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: DRDO ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया ULP GM V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16,50,000 भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी।
8: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर हनुमान भक्तों से भर गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह पहुंचे श्रद्धालु की यहां पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लग गईं और फिर बारी बारी से सबने बजरंग बली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तीसरे बड़ा मंगल पर संगम नगरी प्रयागराज भी हनुमान भक्ति में डूबी नजर आई। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार यानी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के अलावा शहर के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए रवाना हो गई। पूरे विधि विधान के साथ रवाना हुई चल विग्रह डोली के साथ भक्त जयकारे लगाते हुए रांसी गांव की ओर बढ़ चली, जहां डोली रात्रि प्रवास करेगी। इस दौरान डोली का जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर स्वागत करते भी दिखे। भगवान मध्य महेश्वर की ये डोली 20 मई को गोंडार गांव में रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को धाम पहुंचेगी, जिसके बाद उसी दिन मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। केदार घाटी में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के आदि बद्री धाम में आयोजित नौठा गौथिक लठमार मेले की है, जो गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोक गीत, पारंपरिक नृत्य और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ आयोजित इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसमें मेले की सबसे खास बात रही लठमार परंपरा, जिसमें नौठा नृत्य दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में लठमार योद्धाओं ने गले मिलकर एकता का संदेश देने के साथ ही भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ चढ़ाया। इस दौरान शिवखली क्षेत्र में महिलाओं ने चोंगफुला, चाचरी और झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से नौनाज यानी नए फसल के आगमन पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का धूमधाम के साथ समापन हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं। इससे राहत दिलाने के लिए जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक को ठंडा रखने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए। इंसान से लेकर बेजुबानों तक को भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क 100 प्रजातियों के करीब 1500 पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी से लेकर स्प्रिंकल लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेजुबानों के लिए खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। फलों से लेकर उनके जूस भी फ्रीज करके और आइस क्यूब्स बनाकर दिए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में दातार पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर शेरों के झुंड की मौजूदगी देखी गई। यहां समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई तक शेरों के झुंड के पहुंचने की जानकारी है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल पर शेरों की मौजूदगी को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेरों की गतिविधियों को देख जाने के बाद उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
7: और अब बात करते हैं बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर जब से नक्सल मुक्त हुआ है उसके बाद से यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर अब नक्सलवाद की काली परछाई से मुक्त होकर विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से योजनाएं अब स्थानीय लोगों तक पहुंच रही हैं और स्थानीय लोग भी सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। विकास की इस भागीदारी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है।

0: एक समय देश में नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं आकार ले रही हैं।
1: पहले यहां पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहां पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूं और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बना रखे हैं, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहां पर कदम बढ़ाए जाएंगे।
0: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार अब बस्तर को नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।
1: अब किस तरीके का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं।
2: इसमें विकास कार्य में पहले से और बेहतर तरीके से हो रहा है। मतलब अभी जो पहले जैसे ही आंदोलन क्षेत्र गिना जाता था, अभी वो ना जा, अभी बल्कि अच्छा विकास की और गति प्रगति पर बढ़ रहा है।
1: आप बताइए कि ये सेंटर किस तरीके से खास है, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके काम हो रहे
3: हैं। जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन,
1: नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके काम हो रहे
3: हैं। जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन है वो पसंद नहीं थे। उनको लगता था कि सुरक्षा बल जो है वहां पे पना लेते हैं, इस वजह से उनका आसपास का क्षेत्र प्रभुत्व वाला क्षेत्र होने के कारण पक्के भवनों को ध्वस्त कर देते। लेकिन अब नक्सली मुक्त करने की दिशा में शासन प्रशासन जो है आगे बढ़ा है।
1: नक्सलियों का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म है, काम अब किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है?
4: माननीय गृह मंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नक्सली क्षेत्र को पूरा खत्म करके अब जितने भी हमारे कैंप में स्कूल, हॉस्पिटल खुलने का पूरा प्रयास करके हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री पूरे बस्तर को विकसित बनाना चाह रहे।
0: सुरक्षा से विकास की ओर बढ़ता बस्तर करीब 4 दशक तक नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रहा। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोडागांव जैसे जिले लगातार नक्सली घटनाओं से प्रभावित रहे। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तक हर सरकारी परियोजना नक्सलियों के निशाने पर रहती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति, स्थानीय पुलिस की बेहतर भागीदारी और केंद्र राज्य के तालमेल ने हालात बदल दिए हैं।
1: बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहाँ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नया बस्तर और बदलता बस्तर, इसके लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो काम केंद्र सरकार के द्वारा वहां से किया जाता है उसको राज्य सरकार यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और आप इसी की तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं कि सेवा सेतु बनाया गया है, जनता के द्वार डिजिटल सरकार, यानी कि जो भी काम लोगों के हैं डिजिटली उनको करना होता है, उसको करने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था एक केंद्र अलग से बनाया गया है। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर कभी आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते थे, यहाँ पर आधार केंद्र बाकायदे खोला गया है और यहाँ पर जो लोग हैं अपने आधार कार्ड बना सकेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों का आधार कार्ड वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था एक ही जगह यानी कि एक छत के नीचे इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। ये देखिए कि आधार कार्ड तैयार करने वाले लोग जो हैं उनके पास यहाँ की आम जनता जो है वो मौजूद है और वो लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग सेवा की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजें जो है वो एक ही छत के नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं इस पूरे इलाके में?
4: हम लोग जैसे कि अभी जाति निवास और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं और वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसको भी आवेदन देना है वो यहाँ हम सुविधा देते हैं।
1: बैकवर्ड आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा मिल रही है, सारा काम हो रहा है?
5: जी सर।
1: क्या क्या काम हुआ है आपका?
5: जिसका मेरा आय प्रमाण पत्र का सुविधा मिला है सर, जो बनाने आई थी वह तो बन गया।
1: आप लोगों ने जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाना था, अब पहले से और अब में किस तरीके से अंतर दिखाई पड़ेगा सर?
4: पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी बड़े सुविधा हो गया, नजदीक हो गया तो अभी ठीक है, पहले काफी था।
0: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ चावल के कदरदानों की भी कमी नहीं। ऐसे में रेड राइस लगाकर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं इस धान की पारंपरिक तरीके से कुटाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा बस्तर की इमली भी काफी मशहूर है। सहायता समूह के सदस्य स्किल डेवलपमेंट के जरिए इसकी पैकिंग करके बाहर भेजते हैं, जिससे उनकी भी अच्छी आमदनी हो रही है।
1: बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इसका सीधा मकसद ये है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहे। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, जी कैसे आप इसको देख?
6: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारे काम कुछ आजीविका का साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको जो सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग ये काम कर पा रहे हैं सर, अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गांव में।
0: बस्तर के नीतातार में सुरक्षा बलों के कैंप में बने एक अनोखे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसे बदलते बस्तर के लिए एक नया मॉडल बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज जयपुर और गुवाहाटी म्यूजियम की इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम को ओपन डे के रूप में खोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय श्रृंगार कला की अनूठी यात्रा आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली। ये म्यूजियम केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया। वहीं गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया।

0: ये भव्य और दिव्य तस्वीरें जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम की है। यहाँ प्रवेश करते ही इसकी दिव्यता और भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। देखने में ये म्यूजियम कम शोरूम ज्यादा लगता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के म्यूजियम देखे नहीं जाते। इस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक गहने हैं जो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी 18 मई को जयपुर का आम्रपाली म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया। इस मौके पर दर्शकों को एक ऐसा म्यूजियम देखने को मिला जो पूरी तरह से आभूषणों और अलंकृत वस्तुओं को समर्पित है।
1: वर्ल्ड म्यूजियम डे है और जहां जयपुर को और राजस्थान को जाना जाता है उसके कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए, वहीं यहां के जो म्यूजियम्स है वो बिल्कुल यही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन्स है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हमारे साथ में राजीव अरोड़ा जी मौजूद हैं जो कि जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम जो है उसको पूरा उन्होंने क्यूरेट किया है, अपनी पूरी मेहनत उस पर लगाई है। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस आम्रपाली म्यूजियम में। सर, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, क्या कुछ आज आप जयपुर को इस वॉक थ्रू में दिखा रहे हैं?
2: देखिए, पहले तो इस विश्व म्यूजियम डे की शुभकामनाएं। अपने इतिहास को, हमारी धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमारे पास इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है और नया पीसेस हमारे कारीगरों ने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आम्रपाली म्यूजियम जो है ये मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इकलौता म्यूजियम है जो अब हिंदुस्तान की हमारी जो सिल्वर स्मिथिंग है, गोल्ड स्मिथिंग है, सोने चांदी का जो काम होता है उसको गेगी म्यूजियम बनाओ। तो इसमें नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के हमारे गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, रॉयल फैमिलियों में किस तरीके की ज्वेलरी पहनी जाती थी उसको इकट्ठा करा गया है।
0: आम्रपाली म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा ने इस म्यूजियम को साल 2018 में बनाया था। अब ये म्यूजियम भारत के अलंकरण इतिहास का एक जीवंत अभिलेख बन चुका है, जिसमें 4,500 से अधिक कलाकृतियां संरक्षित हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कब किस तरह के आभूषण पहने जाते थे।
2: इसमें काफी सारे डिजाइनर्स, दूसरे म्यूजियम के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रेरित होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयपुर का खुद का एक दुनिया में नाम है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये जो आज के दिन हम लोगों ने फ्री एंट्री करी है, यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं।
0: ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
1: क्या ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो मूवीज में आर्टिस्ट ने पहना है, या फिर ये वही ज्वेलरी, क्या इसकी स्टोरी?
2: मैंने बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के लिए काम करा है और जैसे ये बाहुबली के आप देख रहे हैं ज्वेलरी, तो हमको जब कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसमें किस करेक्टर के लिए क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसेस है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो हल्के ज्वेलरी पहनेगी, वो फ्लावर की ज्वेलरी पहनेगी। वो अगर कोई प्रेम प्रसंग है, जंगल में है या कहीं खेत खलिहान में है, तो क्या पहन के जाएगी। फिर वो 20 साल बाद वो महारानी बन जाती है तो उसकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो उसको महारानी का पठार पहनेगी, बड़ी ज्वेलरी पहनेगी। इसको सोच के ज्वेलरी डिजाइन करी जाती है, बहुत कला का काम है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, म्यूजियम्स में जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। ये आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ये मणिकर्णिका का रानी लक्ष्मीबाई के करेक्टर बनी थी, कंगना रनौत ने ये रोल करा था। तो वो ग्वालियर की थी, उनकी माता किस घराने जाती थी, वो कैसी नथ पहनती थी, उस ज़माने में पायजेब कैसी पहनी जाती थी, वो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और अभी भी कई मूवीज़ के लिए मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ।
0: फिलहाल वो रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है।
1: कौन सी मूवी है सर? क्योंकि बाहुबली 2 आप दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे भी कोई ऐसा ही है?
2: रामलीला की ज्वेलरी करी है और रामायण जो नई मूवी बन रही है उसकी ज्वेलरी मैं कर रहा हूँ। वो शीघ्र ही मूवी का प्रोमो भी बाहर आएगा, ज्वेलरी भी आप देखेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी भव्य मूवी नहीं बनी होगी और उससे शानदार ज्वेलरी बनी हुई है।
0: वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्वेलरी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई जाती है बल्कि पशुओं को भी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ आप अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए सेल्फी खिंचा सकते हैं।
1: किस तरीके से आपने क्यूरेट किया, सोच भी मैं इसके पीछे की जाना चाहूँगा
2: कि जेन जी जो है आजकल हमारी जो नई जनरेशन है उसको ऑडियो विजुअल पसंद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमर्सिव वीडियो चलाया है जिससे मैंने एक हनुमान हमारा क्रिएट करा हुआ है वो बताया, उसका वीडियो चल रहा है। ये गोल्ड के बने हुए हनुमान हैं, इनके आप पाँव को दबाएंगे, पाँव को छुएंगे तो ये खुलते हैं, उसमें से छाती में से राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो ये हनुमान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार, ये अपने आप अलग था वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार, ये अपने आप में अद्भुत है, इसको ज्वेलरी के ने बनाना। उनके लिए हमेशा दिखाते हैं, गोपालक थे वो, तो गायों के साथ दिखाया गया है। ये भी बहुत एक अनूठी नेकलेस है जो पुराने पीसेस को कलेक्ट करके बनाई गई है, इसके अंदर सैकड़ों पुराने पीस है जिनको जोड़ के नेकलेस को बनाया गया है। ऐसे ही ये डिब्बी है, ये पेन बनाया है, डायमंड गैमरेल के संग बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ पीसेस हैं जो आप न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ज्वेलरी बनती थी। तो ये हाथी और घोड़े की श्रृंगार के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो चांदी की बनी हुई घोड़े की ज्वेलरी है, ये आप बड़े पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये भी घोड़े की ज्वेलरी के पीसेस हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बढ़िया हम लोगों ने एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है इसके अंदर, जिसमें आप यहाँ पे इसको सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये एक पालकी है जिसके अंदर जैन समुदाय के लोग प्रतिमा को संग में लेके जाते थे, और यहाँ पे गले में पेंडिंग होते हैं, इनको राजस्थान में पादड़ी बोलते हैं, वो बनाइए इसमें यहाँ पे लेके इसको आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट इसलिए तैयार करा गया है।
0: जयपुर ही नहीं बल्कि गुवाहाटी में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को उद्घाटन के बाद इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
3: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है, देखो अंकल स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
4: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अब देखो इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds with artists like James Bay,
7: Come on, go.
6: Nora Jones,
8: the heart is
6: Daniel Caesar,
8: more
6: as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
14: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी जीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंग बली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
7: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावों के साथ परोसी जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम तथ्यों की रोशनी में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके बारे में दावा ये किया जा रहा है कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें दावा ये किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कुछ लोग दिन दिहाड़े उसका अपहरण करने पहुंच गए, उसका अपहरण कर लिया। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इसकी भी करेंगे पड़ताल। लेकिन शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने ऐसे ही कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को बस में बैठा कर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रही वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी भाषा लग रही थी, ये बांग्ला नहीं थी। और इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे थे और इस पर भी जो शब्द लिखे हुए थे वो बांग्ला भाषा में नहीं थे। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं ये खबर जरूर सुर्खियां बनती किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी टीवी चैनल पर, ये सुर्खियों में रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को जबरन कार में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: एक लड़की को पकड़कर कार में लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को धार्मिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया।
3: बात हो गई, मुझे बता।
2: एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद कथित तौर पर हिंदुत्व भीड़ और पुलिस द्वारा दिन दहाड़े उसका अपहरण कर अमानवीय तरीके से घसीटा गया। अगर ये सच है तो यह सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, महिलाओं की आज़ादी और कानून के शासन पर हमला है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ डराना, उठाना या प्रताड़ित करना घोर अपराध है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को पकड़कर जबरन कार में बिठाया जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई इस हरकत को रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है और युवती जाना नहीं चाह रही है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं और वीडियो के दावे पर यही शक हुआ है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबरन लड़की को उठाकर क्यों ले जाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में एक गाड़ी भी नजर आ रही है। जब हमारा ध्यान उसके नंबर प्लेट पर गया तो फिर ये गाड़ी राजस्थान के नंबर की निकली, मतलब वायरल वीडियो राजस्थान का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 2 महीने पहले प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो मैनपुरी में हुई घटना का है। लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान से आई थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वापस लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में वीडियो भी मौजूद है। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 9 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर का था। पाए गांव के रहने वाले 25 साल के ऋतिक यादव राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की से हुई थी। दोनों का 2 साल से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने ऋतिक के खिलाफ भीलवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ऋतिक को थाने बुलाया और घंटों बिठाए रखने के बाद लड़की से दूर रहने की हिदायत दी। इस घटना के बाद ऋतिक डर गया और वह वापस अपने गांव लौट गया। इस बीच प्रेमिका ने उससे फोन पर बात की तो ऋतिक ने पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की घर पर बिना बताए ऋतिक के गांव आ गई और वहां रहने लगी। लड़की के घर वाले भी कुछ दिन बाद पुलिस लेकर मैनपुरी पहुंचे। एक आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 10 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। यहां भी घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि लड़की को वापस ले जाने वाले उसके अपने घर वाले ही थे। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट मैनपुरी पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली। पोस्ट को 9 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की के माता पिता ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसके घर वाले पुलिस के साथ उसे वापस लाने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि लड़की को जबरन ले जाने के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है।
3: देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को अवगाह करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और उस ये भी आपको सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर मिसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस मौके पर यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए।
2: असल में वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लड़की को लेकर जाने वाले उसी के घर वाले हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक की आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
5: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है।
6: गर्मी में कड़कती धूप में पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी।
5: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार और बेहद रिलेटेबल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है। वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा। उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है, वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
6: जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
5: सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करता नजर आता है। उसी दौरान कार का मालिक वहां आता है और जो करता है उसने सभी का दिल जीत लिया। कार मालिक बच्चे को न सिर्फ फरारी के पास बैठने देता है, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर भी बिठा देता है, जिससे बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह अनोखा और भावुक पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को इंसानियत की असली मिसाल बता रहे हैं। चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूके से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच जमकर चर्चा में है, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और हैरान भी। वीडियो में सड़क, माहौल और आसपास का नजारा पूरी तरह भारतीय, खासकर पंजाब जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग इसे देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन है या भारत। हर तरफ देसी झलक, पंजाबी टच और वही माहौल देखकर कई यूजर्स इसे मिनी पंजाब तक कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लुधियाना जैसा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूके का है, जहां भारतीय समुदाय की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देसी रंग दे दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो ने जमकर बवाल मचा रखा है, जिसमें लोग मजाक में धोनी, कोहली और रोहित को एक साथ ऑटो में घूमते हुए दिखा रहे हैं। वीडियो में तीन लोग अलग अलग टीमों की जर्सी पहनकर ऑटो में बैठे नजर आते हैं, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सच में तीन बड़े क्रिकेट स्टार्स साथ में घूम रहे हों। लेकिन बाद में साफ होता है कि ये फैंस का मजेदार कॉपी और क्रिएटिव वीडियो है। आईपीएल के सीजन में फैंस का क्रेज भी चरम पर है और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह कपड़े पहनकर, स्टाइल अपनाकर और एक्टिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरुबा के रहने वाले एगमंड पेलुना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के रूप में दर्ज है।

0: चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि साल 2025 में दिया गया आदेश ही लागू रहेगा, यानी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करें।

0: देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इनका शिकार बन रहा है। गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या बाजार, पार्क हो या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, आए दिन लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये मामला देश में इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को फिर से सख्ती दिखानी पड़ी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर दिए गए निर्देश ही लागू होंगे और जो सरकार और अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उन पर अवमानना का केस चलेगा।
1: कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़े नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़े, ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखें। इसके अलावा अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने निर्देशों को रद्द कराने के लिए याचिकाएं दाखिल की, जिन पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
1: सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
0: इतना ही नहीं, 3 जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें और हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही आवारा कुत्तों की आबादी के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए, अदालत के आदेश को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, इसके अलावा रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों के लिए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
2: मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो Article 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब

0: को एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा।
1: कोर्ट के फैसले के बाद जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का कहना है कि निर्देशों को अमल में लाना संभव नहीं है।
2: जो ऑर्डर्स उन्होंने दिए हैं, कोई राज्य क्या, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इसको अमल नहीं कर सकता है। एक तो एक रुपए सरकार ने नहीं डाला है, दूसरा कोई भी शेल्टर्स इन 7 महीनों में बनाने हैं, तीसरा जो आप कह रहे हो कि रेलवे स्टेशन से कुत्ते हटाओ, आप जाकर के देखिए कैसे वो हटा सकते हैं। हम लोग आते खाने के साथ, दरवाजे हर वक्त खुले हैं, तो फिर आप मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ, अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ, झाड़ू लेकर के हटाऊँ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1,00,000 बस स्टॉप्स हैं, 1,00,000 बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो कैसे हटा और किधर डालो?
3: ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सके।
4: जो कर्मचारी जाते हैं तो टकराव ना हो तो उनको संरक्षण भी कोर्ट ने यहाँ पर दिया है,
3: क्योंकि बहुत झगड़े इस प्रकार के केसेस में हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें FIRs ना दर्ज हों, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है।
1: आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इसको लेकर अदालत में लंबी लड़ाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने लड़ी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: DRDO ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया ULP GM V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16,50,000 भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी।
8: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर हनुमान भक्तों से भर गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह पहुंचे श्रद्धालु की यहां पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लग गईं और फिर बारी बारी से सबने बजरंग बली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तीसरे बड़ा मंगल पर संगम नगरी प्रयागराज भी हनुमान भक्ति में डूबी नजर आई। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार यानी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के अलावा शहर के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए रवाना हो गई। पूरे विधि विधान के साथ रवाना हुई चल विग्रह डोली के साथ भक्त जयकारे लगाते हुए रांसी गांव की ओर बढ़ चली, जहां डोली रात्रि प्रवास करेगी। इस दौरान डोली का जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर स्वागत करते भी दिखे। भगवान मध्य महेश्वर की ये डोली 20 मई को गोंडार गांव में रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को धाम पहुंचेगी, जिसके बाद उसी दिन मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। केदार घाटी में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के आदि बद्री धाम में आयोजित नौठा गौथिक लठमार मेले की है, जो गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोक गीत, पारंपरिक नृत्य और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ आयोजित इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, जिसमें मेले की सबसे खास बात रही लठमार परंपरा, जिसमें नौठा नृत्य दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में लठमार योद्धाओं ने गले मिलकर एकता का संदेश देने के साथ ही भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ चढ़ाया। इस दौरान शिवखली क्षेत्र में महिलाओं ने चोमफुला, चाचरी और झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से नौनाज यानी नए फसल के आगमन पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का धूमधाम के साथ समापन हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं, इससे राहत दिलाने के लिए जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक को ठंडा रखने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए। इंसान से लेकर बेजुबानों तक को भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क 100 प्रजातियों के करीब 1500 पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी से लेकर स्प्रिंकल लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेजुबानों के लिए खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है।
7: और अब बात करते हैं बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर जब से नक्सल मुक्त हुआ है उसके बाद से यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर अब नक्सलवाद की काली परछाई से मुक्त होकर विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से योजनाएं अब स्थानीय लोगों तक पहुंच रही हैं और स्थानीय लोग भी सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। विकास की इस भागीदारी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है।

0: एक समय देश में नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं आकार ले रही हैं।
1: पहले यहां पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहां पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूं और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है, यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बना रखे हैं, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहाँ पर कदम बढ़ाए जाएंगे।
0: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार अब बस्तर को नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।
1: अब किस तरीके का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं।
2: इसमें विकास कार्य पहले से और बेहतर तरीके से हो रहा है। मतलब अभी जो पहले जैसे ही आंदोलन क्षेत्र गिना जाता था, अभी वो ना जा, अभी बल्कि अच्छा विकास की और गति प्रगति पर बढ़ रहा है।
1: आप बताइए कि ये सेंटर किस तरीके से खास है, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके काम हो रहे
3: हैं। जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन है वो पसंद नहीं थे, उनको लग।
4: और अब जयपुर और गुवाहाटी म्यूजियम की इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम को ओपन डे के रूप में खोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय श्रृंगार कला की अनूठी यात्रा आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली। ये म्यूजियम केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया। वहीं गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया।

0: ये भव्य और दिव्य तस्वीरें जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम की है। यहाँ प्रवेश करते ही इसकी दिव्यता और भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। देखने में ये म्यूजियम कम शोरूम ज्यादा लगता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के म्यूजियम देखे नहीं जाते। इस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक गहने हैं जो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी 18 मई को जयपुर का आम्रपाली म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया। इस मौके पर दर्शकों को एक ऐसा म्यूजियम देखने को मिला जो पूरी तरह से आभूषणों और अलंकृत वस्तुओं को समर्पित है।
1: वर्ल्ड म्यूजियम डे है और जहां जयपुर को और राजस्थान को जाना जाता है उसके कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए, वहीं यहां के जो म्यूजियम्स है वो बिल्कुल यही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हमारे साथ में राजीव अरोड़ा जी मौजूद हैं जो कि जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम जो है उसको पूरा उन्होंने क्यूरेट किया है, अपनी पूरी मेहनत तो उस पर लगाई है, तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस आम्रपाली म्यूजियम में। सर, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, क्या कुछ आज आप जयपुर को इस वॉक थ्रू में दिखा रहे हैं?
2: देखिए, पहले तो इस विश्व म्यूजियम डे की शुभकामनाएं। अपने इतिहास को, हमारी धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमारे पास इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है और नायाब पीसेस हमारे कारीगरों ने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आम्रपाली म्यूजियम जो है ये मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इकलौता म्यूजियम है जो अब हिंदुस्तान की हमारी जो सिल्वर स्मिथिंग है, गोल्ड स्मिथिंग है, सोने चांदी का जो काम होता है उसको डेडिकेटेड म्यूजियम बनाओ। तो इसमें नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के हमारे गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, रॉयल फैमिलियों में किस तरीके की ज्वेलरी पहनी जाती थी उसको इकट्ठा करा गया है।
0: आम्रपाली म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा ने इस म्यूजियम को साल 2018 में बनाया था। अब ये म्यूजियम भारत के अलंकरण इतिहास का एक जीवंत अभिलेख बन चुका है, जिसमें 4,500 से अधिक कलाकृतियां संरक्षित हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कब किस तरह के आभूषण पहने जाते थे।
2: इसमें काफी सारे डिजाइनर्स, दूसरे म्यूजियम के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रेरित होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जयपुर का खुद का एक दुनिया में नाम है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये जो आज के दिन हम लोगों ने फ्री एंट्री करी है, यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं।
0: ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
1: क्या ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो मूवीज में आर्टिस्ट ने पहना है, या फिर ये वही ज्वेलरी? क्या इसकी स्टोरी?
2: मैंने बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के लिए काम करा है और जैसे ये बाहुबली के आप देख रहे हैं ज्वेलरी, तो हमको जब कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसमें किस करेक्टर के लिए क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसेस है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो हल्के ज्वेलरी पहनेगी, वो फ्लावर की ज्वेलरी पहनेगी। वो अगर कोई प्रेम प्रसंग है, जंगल में है या कहीं खेत खलिहान में है, तो क्या पहन के जाएगी। फिर वो 20 साल बाद वो महारानी बन जाती है तो उसकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो उसको महारानी का पठार पहनेगी, बड़ी ज्वेलरी पहनेगी। इसको सोच के ज्वेलरी डिजाइन करी जाती है, बहुत कला का काम है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, म्यूजियम्स में जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। ये आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ये मणिकर्णिका का रानी लक्ष्मीबाई के करेक्टर बनी थी, कंगना रनौत ने ये रोल करा था। तो वो ग्वालियर की थी, उनकी माता किस घराने जाती थी, वो कैसी नथ पहनती थी, उस ज़माने में पायजेब कैसी पहनी जाती थी, वो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और अभी भी कई मूवीज़ के लिए मैं जूली बना रहा हूँ।
0: फिलहाल वो रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है।
1: ये कौन सी मूवी है सर? क्योंकि बाहुबली 2 आप दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे भी कोई ऐसा ही?
2: रामलीला की ज्वेलरी करी है और रामायण जो नई मूवी बन रही है उसकी ज्वेलरी मैं कर रहा हूँ। वो शीघ्र ही मूवी का प्रोमो भी बाहर आएगा, ज्वेलरी भी आप देखेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी भव्य मूवी नहीं बनी होगी और उससे शानदार ज्वेलरी बनी हुई है।
0: वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्वेलरी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई जाती है बल्कि पशुओं को भी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ आप अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए सेल्फी खिंचा सकते हैं।
1: किस तरीके से आपने क्यूरेट किया, सोच भी मैं इसके पीछे की जानना चाहूंगा।
2: कि जेन जी जो है आजकल हमारी जो नई जनरेशन है उसको ऑडियो विजुअल पसंद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमर्सिव वीडियो चलाया है। जैसे मैंने हनुमान हमारा क्रिएट करा हुआ है वो बताया, उसका वीडियो चल रहा है। ये गोल्ड के बने हुए हनुमान है, इनके आप पाँव को दबाएंगे, पाँव को छुएंगे तो ये खुलते हैं, उसमें से छाती में से राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो ये हनुमान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार ये अपने आप में अद्भुत है, इसको ज्वेलरी के ने बनाना। उनके लिए हमेशा दिखाते हैं, गौपालक थे वो, तो गायों के साथ दिखाया गया है। ये भी बहुत एक अनूठी नेकलेस है जो पुराने पीसेस को कलेक्ट करके बनाई गई है। इसके अंदर सैकड़ों पुराने पीस है जिनको जोड़ के नेकलेस को बनाया गया है। ऐसे ही ये गिब्बी है, ये पेन बनाया है, डायमंड एमरल्ड के संग बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ पीसेस हैं जो आप न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो ये हाथी और घोड़े की श्रृंगार के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो चांदी की बनी हुई घोड़े की ज्वेलरी है। ये आप बड़े पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, ये भी घोड़े की ज्वेलरी के पीसेस हैं तो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बढ़िया, हम लोगों ने एक यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया है इसके अंदर, जिसमें आप यहाँ पे इसको सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये एक पालकी है जिसके अंदर जैन समुदाय के लोग प्रतिमा को संग में लेके जाते थे, और यहाँ पे गले में पेंडिंग होते हैं, इनको राजस्थान में पातड़ी बोलते हैं, वो बनाइए जिसमें यहाँ पे लेके इसको आप फोटो खींच सकते हैं। तो ये सेल्फी पॉइंट इसलिए तैयार करा गया है।
0: जयपुर ही नहीं बल्कि गुवाहाटी में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को उद्घाटन के बाद इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
4: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है, देखो अंकल स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
5: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अब देख लो उसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहला।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी जीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावों के साथ परोसी जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम तथ्यों की रोशनी में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। एक और वीडियो जो लगातार वायरल हो रहा है और उसमें दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कुछ लोग दिन दिहाड़े उसका अपहरण करने पहुंच गए, उसका अपहरण कर लिया। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इसकी भी करेंगे पड़ताल। लेकिन शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
10: बंगाल में बीजेपी की सरकार है, शुभेंदु अधिकारी बतौर मुख्यमंत्री राज्य के बेहतरी के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी रिपोर्टर।

0: रोते हुए कुछ लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल का है। वहाँ अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि कितना दुखद है, विपक्ष के वोटर को भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर पर बंगाल असम से भेजना शुरू हो गया, अब ये कभी भी कैसे जीतेंगे, फीलिंग सैड फॉर ममता दीदी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियोस और तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई है। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने ऐसे ही कई वीडियोस, पोस्ट और तस्वीरों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में कई वायरल दावे गलत साबित हुए। अब इसी कड़ी में एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन रो रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का ये वीडियो है और वहां अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को बीजेपी सरकार ने वापस भेजना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना भी। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही कुछ आवाजों पर गया। जब हमने इसे ध्यान से सुना तो ये असमिया जैसी भाषा लग रही थी, ये बांग्ला नहीं थी। और इसके अलावा वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ बोर्ड भी नजर आ रहे थे और इस पर भी जो शब्द लिखे हुए थे वो बांग्ला भाषा में नहीं थे। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर ये सच होता तो कहीं ना कहीं ये खबर जरूर सुर्खियां बनती किसी मीडिया आउटलेट्स या फिर किसी टीवी चैनल पर, ये सुर्खियों में रहती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि अगर दावा सच्चा है तो फिर हाल फिलहाल में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो को नया एंगल देकर लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा। देखिए सच और झूठ क्या है।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की तहकीकात में जुटी। सबसे पहले हमने वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। सर्च के दौरान हमें वायरल वीडियो एक आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर मिला। वीडियो को 3 सितंबर 2024 को अपलोड किया गया था। यहां दी गई जानकारी के अनुसार असम के बरपेटा स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने विदेशी घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा के नजरबंदी शिविर में भेजने का आदेश दिया था। इसमें 9 महिलाएं और 19 पुरुष शामिल थे। इस समूह को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नजरबंदी शिविर में ले जाया गया था। एक वेबसाइट पर 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस का कहना था कि बरपेटा जिले में विदेशी न्यायाधिकरणों की ओर से गैर नागरिक घोषित किए गए 28 लोगों को गोलपाड़ा जिले के मटिया स्थित एक ट्रांजिट कैंप में भेजा गया था। ये सभी लोग बंगाली मुस्लिम समुदाय से थे। साफ है लोगों को बस में लेकर जाने के नाम पर वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो बंगाल का नहीं बल्कि असम का है। दरअसल साल 2024 में असम के बरपेटा में विदेशी न्यायाधिकरण ने 28 लोगों को गैर नागरिक घोषित किया था। इसके बाद उन्हें ट्रांजिट कैंप भेजा गया था। ये वीडियो उसी घटना का है। पुराने और असंबंधित वीडियो को बंगाल का बताकर वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग एक लड़की को जबरन कार में बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा ये कर रहे हैं कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के एक लड़के से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उसका अपहरण कर लिया गया। क्या है इसकी सच्चाई, पड़ताल करती हमारी रिपोर्ट।
2: एक लड़की को पकड़कर कार में लेकर जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को धार्मिक एंगल के साथ शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था, इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि एक भारतीय मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू युवक के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद कथित तौर पर हिंदुत्व भीड़ और पुलिस द्वारा दिन दहाड़े उसका अपहरण कर अमानवीय तरीके से घसीटा गया। अगर यह सच है तो यह सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं बल्कि इंसानियत, महिलाओं की आज़ादी और कानून के शासन पर हमला है। किसी भी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ डराना, उठाना या प्रताड़ित करना घोर अपराध है। दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़की को पकड़कर जबरन कार में बिठाया जा रहा है और इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों को भी देखा जा सकता है, लेकिन कोई इस हरकत को रोकते हुए नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम लड़की ने दूसरे समुदाय के लड़के के साथ विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और इसी वजह से दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। वायरल वीडियो कब का है, कहां का है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवती को जबरन कहीं ले जाया जा रहा है और युवती जाना नहीं चाह रही है। वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी भी नजर आते हैं और वीडियो के दावे पर यही शक हुआ है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में कोई इस तरह की हरकत क्यों करेगा, जबरन लड़की को उठाकर क्यों ले जाया जाएगा। इसके अलावा वीडियो में एक गाड़ी भी नजर आ रही है। जब हमारा ध्यान उसके नंबर प्लेट पर गया तो फिर ये गाड़ी राजस्थान के नंबर की निकली, मतलब वायरल वीडियो राजस्थान का हो सकता है, लेकिन सर्च के दौरान हाल फिलहाल में वायरल दावे की पुष्टि करती कोई प्रमाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली, लिहाजा हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल ये कि अगर दावा सच्चा है तो फिर वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं जानबूझकर वीडियो को धार्मिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। अब देखिए सच और झूठ क्या है।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वायरल हो रही वीडियो की जांच शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे इंटरनेट पर खंगाला। इस दौरान हमें वायरल वीडियो से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। इस रिपोर्ट को 2 महीने पहले प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार वायरल वीडियो मैनपुरी में हुई घटना का है। लड़की अपने प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान से आई थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार वाले उसे वापस लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में वीडियो भी मौजूद है। हमें दावे से जुड़ी एक रिपोर्ट एक वेबसाइट पर मिली। रिपोर्ट को 9 मार्च 2026 को प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार मामला मैनपुरी के कुर्रा थाना परिसर का था। पाए गांव के रहने वाले 25 साल के ऋतिक यादव राजस्थान के भीलवाड़ा में नौकरी करता था। वहीं उसकी मुलाकात 22 साल की एक लड़की से हुई थी। दोनों का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के घर वालों को पता चला तो उन्होंने ऋतिक के खिलाफ भीलवाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने ऋतिक को थाने बुलाया और घंटों बिठाए रखने के बाद लड़की से दूर रहने की हिदायत दी। इस घटना के बाद ऋतिक डर गया और वह वापस अपने गांव लौट गया। इस बीच प्रेमिका ने उससे फोन पर बात की तो ऋतिक ने पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की घर पर बिना बताए ऋतिक के गांव आ गई और वहां रहने लगी। लड़की के घर वाले भी कुछ दिन बाद पुलिस लेकर मैनपुरी पहुंचे। एक आधिकारिक YouTube चैनल पर भी हमें दावे से जुड़ी रिपोर्ट मिली। इस वीडियो रिपोर्ट को 10 मार्च 2026 को अपलोड किया गया था। यहां भी घटना को प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि लड़की को वापस ले जाने वाले उसके अपने घर वाले ही थे। पड़ताल के दौरान हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट मैनपुरी पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर भी मिली। पोस्ट को 9 मार्च 2026 को शेयर किया गया था। मौजूद जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की के माता पिता ने लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद उसके घर वाले पुलिस के साथ उसे वापस लाने के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि लड़की को जबरन ले जाने के वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा गलत है।
3: देखिए, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की को अगवा करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और उस ये भी हमको समझ सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर मिसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस मौके पर यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसे नियम अनुसार कार्रवाई करते हुए लेके गई।
2: असल में वायरल वीडियो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है और प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला है। इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लड़की को लेकर जाने वाले उसी के घर वाले हैं। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद है।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
5: नीड अ गुड लाफ, वी नो अ प्लेस जस्ट फॉर लाफ्स। रेडियो ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्टैंड अप बिट्स बाय द बेस्ट कॉमिक्स इन द गेम, फ्रॉम ऑल टाइमर्स टू राइजिंग स्टार्स, एंड द पंचलाइन, इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन ट्यून इन। हेड ऑन ओवर टू जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त हो चला है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां हम पेश करने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
2: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है। इसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है, वो एक स्टैचू की तरह खड़ा रहता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है।
6: 42 डिग्री गर्मी में, कड़कती धूप में, पसीने से लथपथ हम बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। अरे यार, हम बच्चों में दया करो, हम बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी।
2: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटे बच्चे का मजेदार और बेहद रिलेटेबल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और उसकी बात से सहमत भी हो रहे हैं। वीडियो में बच्चा भीषण गर्मी में स्कूल जाने को लेकर अपनी नाराजगी मजाकिया अंदाज में जाहिर करता नजर आता है। वो मासूमियत से कहता है कि अगर वो कभी प्रधानमंत्री बना तो पूरी गर्मी के दौरान स्कूल बंद कर देगा और बच्चों पर थोड़ी दया करेगा। उसकी ये बेबाक बात और कॉन्फिडेंस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बच्चा जिस ईमानदारी और सादगी से अपनी बात रखता है, वो इंटरनेट यूजर्स को काफी क्यूट लग रही है।
6: जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ना, गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा। यू आर बेटर अंडरस्टैंड।
2: सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भी भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर खड़ा होकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और कार मालिक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वीडियो में एक छोटा बच्चा फरारी के पास खड़ा होकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करता नजर आता है। उसी दौरान कार का मालिक वहां आता है और जो करता है उसने सभी का दिल जीत लिया। कार मालिक बच्चे को न सिर्फ फरारी के पास बैठने देता है, बल्कि उसे ड्राइविंग सीट पर भी बिठा देता है, जिससे बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। यह अनोखा और भावुक पल कैमरे में कैद हो जाता है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को इंसानियत की असली मिसाल बता रहे हैं। चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए हैं और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूके से सामने आया एक वीडियो लोगों के बीच जमकर चर्चा में है, जिसे देखकर हर कोई थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है और हैरान भी। वीडियो में सड़क, माहौल और आसपास का नजारा पूरी तरह भारतीय, खासकर पंजाब जैसा दिखाई देता है, जिससे लोग इसे देखकर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रिटेन है या भारत। हर तरफ देसी झलक, पंजाबी टच और वही माहौल देखकर कई यूजर्स इसे मिनी पंजाब तक कह रहे हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लुधियाना जैसा लग रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूके का है, जहां भारतीय समुदाय की मौजूदगी ने पूरे माहौल को देसी रंग दे दिया है। इंटरनेट पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो ने जमकर बवाल मचा रखा है, जिसमें लोग मजाक में धोनी, कोहली और रोहित को एक साथ ऑटो में घूमते हुए दिखा रहे हैं। वीडियो में तीन लोग अलग अलग टीमों की जर्सी पहनकर ऑटो में बैठे नजर आते हैं, जिससे पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे सच में तीन बड़े क्रिकेट स्टार्स साथ में घूम रहे हों। लेकिन बाद में साफ होता है कि ये फैंस का मजेदार कॉपी और क्रिएटिव वीडियो है। आईपीएल के सीजन में फैंस का क्रेज भी चरम पर है और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की तरह कपड़े पहनकर, स्टाइल अपनाकर और एक्टिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इंटरनेट पर इन दोनों एक ऐसा वीडियो छाया हुआ है जिसने देखने वालों के होश उड़ा दिए हैं और लोग इसे बार बार देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में एक शख्स अपनी गर्दन से करीब 9000 किलो वजन की बस को खींचता नजर आता है, जिसे देखकर लोग उसे ह्यूमन क्रेन कह रहे हैं। ये कारनामा अरुबा के रहने वाले एगमंड मौलाना ने किया है, जिन्होंने करीब 20 मीटर तक इस भारी बस को अपनी गर्दन के सहारे खींचकर एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके इस हैरान कर देने वाले स्टंट ने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है और अब उनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में गिना जा रहा है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दोनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपने डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वह खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वहीं डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ और उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कॉमेंट्री करता सुनाई देता है।
7: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं।
2: देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
7: चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहल ले।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
8: La Que Buena.
5: ESPN Radio.
9: We know LeBron has to be the best player on the planet to
5: get The Daily.
10: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
5: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जिसने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर की गई सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि साल 2025 में दिया गया आदेश ही लागू रहेगा, यानी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं बदला जाएगा। तीन जजों की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिया कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को मजबूत करके और उन्हें राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करें।

0: देश भर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई इनका शिकार बन रहा है। गली हो या मोहल्ला, सड़क हो या बाजार, पार्क हो या फिर दूसरी सार्वजनिक जगह, आए दिन लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये मामला देश में इतना गंभीर हो चुका है कि इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत को फिर से सख्ती दिखानी पड़ी है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स को बड़ा झटका दिया और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में दायर सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर दिए गए निर्देश ही लागू होंगे और जो सरकार और अधिकारी इनका पालन नहीं करेंगे उन पर अवमानना का केस चलेगा।
1: कुत्ते के काटने की उसके शिकार लोगों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में कोर्ट ने साफ किया है कि जो राज्य सरकारें कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही हैं, उन राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 22 अगस्त और 7 नवंबर 2025 को दिए गए फैसले लागू रहेंगे।
0: आपको बता दें कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे जैसे पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश जारी किए थे। साथ में कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को जहां से पकड़े नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं ना छोड़ें। ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में रखें। इसके अलावा अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगाया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने निर्देशों को रद्द कराने के लिए याचिकाएं दाखिल की, जिन पर सुनवाई करते हुए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि लोगों की जान की रक्षा और सुरक्षा ज्यादा जरूरी है।
1: सार्वजनिक जगहों पर, पार्क, स्कूल, सड़कें, इन पर आवारा कुत्तों को रहने नहीं दिया जाएगा और इसको वहां से उठाया जाए। कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने पीने की चीजें ना दी जाएं और ये साफ किया है कि उनके लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए और साथ ही उनको पब्लिक प्लेस पर आने की इजाजत ना दी जाए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राज्य सरकारों ने दावे तो किए हैं लेकिन इसके बावजूद राजस्थान देखें, बिहार देखें और बाकी लगभग सभी राज्यों में कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ी हैं।
0: इतना ही नहीं, 3 जजों की बेंच ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकारें AWBI यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों को मजबूत करें और सही तरीके से लागू करें और हर जिले में पूरी तरह काम करने वाला एक ABC यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। साथ ही आवारा कुत्तों की आबादी के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, NHAI नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए, अदालत के आदेश को लागू करने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा रेबीज से संक्रमित या बेहद खतरनाक कुत्तों के लिए कानून के तहत जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
2: मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के उनको भी और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे एंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेज को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा।
0: कोर्ट के फैसले के बाद जानी मानी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का कहना है कि निर्देशों को अमल में लाना संभव नहीं है।

0: मुझे बताइए कि कुत्ते नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बंदर आएंगे, कुत्ते आएंगे, जहाँ खाना मिलता है वहीं जानवर आता है। उसके बाद आपने कहा है कि बस स्टॉप से हटाओ। अब बस स्टॉप से कैसे हटाओ? झाड़ू लेकर के हटाऊँ, क्या करूँ मैं? इस देश में 1,00,000 बस स्टॉप्स हैं। 1,00,000 बस स्टॉप्स में कभी 4 लोग खड़े हैं, कभी 1 लोग खड़ा है, कभी कुत्ता मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो कैसे हटाओ और किधर डालो?
1: ये उम्मीद की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब स्टेट्स इसको सीरियसली लेंगे, बजट का प्रावधान करेंगे, मैन पावर का प्रावधान करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को सकुशल किया जा सके।
2: हटाने के जो कर्मचारी जाते हैं तो टकराव ना हो तो उनको संरक्षण भी कोर्ट ने यहाँ पर दिया है।
1: हाँ, क्योंकि बहुत झगड़े इस प्रकार के केसेस में हो जाते थे, कभी कभी आपसी टकराव भी हो जाते थे, तो उसके संबंध में भी कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि यदि कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसमें FIRs ना दर्ज हो, लेकिन अगर कोई वेक्सेशियस या कोई खराब काम कोई करता है, कोई इस तरह गलत इरादे से जानवर को नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए कोई छूट नहीं है।
3: आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसके बाद इसको लेकर अदालत में लंबी लड़ाई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने लड़ी, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: DRDO ने रचा एक और कीर्तिमान। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया ULP GM V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16,50,000 भक्तों ने किए दर्शन। खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
6: आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बड़ा मंगल पर श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की भी।
7: ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल पर हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी अयोध्या के हनुमान गढ़ी में सुबह मंगला आरती के साथ ही मंदिर परिसर हनुमान भक्तों से भर गया। देश भर के अलग अलग हिस्सों से सुबह पहुंचे श्रद्धालु की यहां पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लग गईं, और फिर बारी बारी से सबने बजरंग बली के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस विशेष अवसर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। तीसरे बड़ा मंगल पर संगम नगरी प्रयागराज भी हनुमान भक्ति में डूबी नजर आई। संगम तट पर स्थित लेटे हनुमान मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार यानी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसके चलते प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के अलावा शहर के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। पंच केदारों में से द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

0: उत्तराखंड में भगवान की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ से धाम के लिए रवाना हो गई। पूरे विधि विधान के साथ रवाना हुई चल विग्रह डोली के साथ भक्त जयकारे लगाते हुए रांसी गांव की ओर बढ़ चली, जहां डोली रात्रि प्रवास करेगी। इस दौरान डोली का जगह जगह श्रद्धालु फूल बरसाकर स्वागत करते भी दिखे। भगवान मध्य महेश्वर की ये डोली 20 मई को गोंडार गांव में रात्रि प्रवास के बाद 21 मई को धाम पहुंचेगी, जिसके बाद उसी दिन मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। केदार घाटी में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, जबकि धाम में भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा अर्चना होती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के आदि बद्री धाम में आयोजित नौठा कौथिग लठमार मेले की है, जो गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। लाठी डंडों के प्रतीकात्मक युद्ध, लोक गीत, पारंपरिक नृत्य और नए अन्न के भोग अर्पण के साथ आयोजित इस मेले में दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे, जिसमें मेले की सबसे खास बात रही लठमार परंपरा, जिसमें नौठा नृत्य दलों के बीच लाठी डंडों का प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ढोल दमाऊ की थाप पर दोनों दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया और अंत में लठमार योद्धाओं ने गले मिलकर एकता का संदेश देने के साथ ही भगवान आदि बद्रीनाथ जी को नए गेहूं जौ चढ़ाया। इस दौरान शिवखली क्षेत्र में महिलाओं ने चोंगफुला, चाचरी और झुमैलो नृत्य प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से नौनाज यानी नए फसल के आगमन पर आयोजित इस 3 दिवसीय मेले का धूमधाम के साथ समापन हुआ। देश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी से तप रहे हैं, इससे राहत दिलाने के लिए जगह जगह तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं स्प्रिंकल से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो कहीं बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मर तक को ठंडा रखने के लिए कूलर के इंतजाम किए गए। इंसान से लेकर बेजुबानों तक को भीषण गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क 100 प्रजातियों के करीब 1500 पशु पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। उन्हें गर्मी से सुरक्षित रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी से लेकर स्प्रिंकल लगाए गए हैं, जिनसे लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा इन बेजुबानों के लिए खास डाइट प्लान के तहत खाने का इंतजाम भी किया जा रहा है। फलों से लेकर उनके जूस भी फ्रीज करके और आइस क्यूब्स बनाकर दिए जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में दातार पर्वत की ऊंची पहाड़ियों पर शेरों के झुंड की मौजूदगी देखी गई। यहां समुद्र तल से करीब 3200 फीट की ऊंचाई तक शेरों के झुंड के पहुंचने की जानकारी है। इस धार्मिक और पर्यटन स्थल पर शेरों की मौजूदगी को लेकर श्रद्धालुओं के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शेरों की गतिविधियों को देख जाने के बाद उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
1: और अब बात करते हैं बंदूकों की गूंज खत्म, अब विकास की बारी की। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का बस्तर जब से नक्सल मुक्त हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। बस्तर अब नक्सलवाद की काली परछाई से मुक्त होकर विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से योजनाएं अब स्थानीय लोगों तक पहुंच रही हैं और स्थानीय लोग भी सिस्टम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास में अपनी अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। विकास की इस भागीदारी में महिलाओं की भूमिका बेहद खास है।

0: एक समय देश में नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों और सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब तेजी से बदलती तस्वीर पेश कर रहा है। जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं आकार ले रही हैं।
1: पहले यहां पर बंदूक और गोलियां चलती थी, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप हैं, वो जनता की सुविधा के लिए यहां पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त नेतानार में मौजूद हूं और यहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये जन सुविधा केंद्र के तौर पर इसको बनाया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप है। जितने भी बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, उसमें इसी तरीके का काम चल रहा है। ये पहला गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर पूरी तैयारी की गई है। और सबसे खास बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप जो है यहां पर आम जनता के लिए एक बेहतरी के लिए यहां पर इनको तैयार किया जा रहा है। और इसकी खासियत ये रहेगी कि यहां पर अस्पताल, स्कूल, इसके साथ साथ यहां पर आधार कार्ड जो बनते हैं उनकी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। ग्राउंड जीरो से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो धुर नक्सल प्रभावित इलाका था, जो कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद पूरी तरीके से विकास की जो है बयार यहाँ पर बह रही है। और इसी तरीके का कदम आने वाले दिनों में जो दूसरे इलाके हैं जहाँ पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस सिक्योरिटी फोर्सेज ने बना रखे हैं, यहाँ पूरी तरीके से सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों की यानी कि आम जो जनता है उसकी सुविधा के लिए यहां पर कदम बढ़ाए जाएंगे।
0: कभी नक्सलवाद की धुरी रहे बस्तर में आज विकास और भरोसे की नई कहानी लिखी जा रही है। केंद्र सरकार अब बस्तर को नक्सल मुक्त और विकास युक्त मॉडल क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है।
1: अब किस तरीके का यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है, फिर आम जनता जो है उसके लिए किस तरीके कदम बढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग ये बताइए कि ये जो सेंटर है इसके बारे में क्या खास है और किस तरीके से अब आगे विकास कार्य हो रहे हैं।
2: इसमें विकास कार्य में पहले से और बेहतर तरीके से हो रहा है। मतलब अभी जो पहले जैसे ही आंदोलन क्षेत्र गिना जाता था, अभी वो ना जा, अभी बल्कि अच्छा विकास की और गति प्रगति पर बढ़ रहा है।
1: आप बताइए कि ये सेंटर किस तरीके से खास है, अब हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है, यहाँ के बारे में ये बताया जाता है कि नक्सली अटैक करते थे, अब लेकिन जब से नक्सलवाद खत्म हुआ है तो यहाँ पर अलग तरीके काम हो रहे
3: हैं। जी देखिए, 2010-11 में नक्सली हिंसा के मामले में ये जो क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील माना जाता था और नक्सलियों को जो पक्के भवन है वो पसंद नहीं थे, उनको लगता था कि सुरक्षा बल जो है वहां पे पना लेते हैं। इस वजह से उनका आसपास का क्षेत्र प्रभुत्व वाला क्षेत्र होने के कारण पक्के भवनों को ध्वस्त करते थे, लेकिन अब नक्सली मुक्त करने की दिशा में शासन प्रशासन जो है आगे बढ़ा है।
1: नक्सलियों का प्रभुत्व पूरी तरीके से खत्म है, काम अब किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है?
4: माननीय गृह मंत्री जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि नक्सली क्षेत्र को पूरा खत्म करके अब जितने भी हमारे कैंप में स्कूल, हॉस्पिटल खुलने का पूरा प्रयास करके हमारे विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री पूरे बस्तर को विकसित बनाना चाह रहे हैं।
0: सुरक्षा से विकास की ओर बढ़ता बस्तर करीब 4 दशक तक नक्सली हिंसा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बना रहा। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर और कोडागांव जैसे जिले लगातार नक्सली घटनाओं से प्रभावित रहे। सड़क निर्माण से लेकर स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र तक हर सरकारी परियोजना नक्सलियों के निशाने पर रहती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों की आक्रामक रणनीति, स्थानीय पुलिस की बेहतर भागीदारी और केंद्र राज्य के तालमेल ने हालात बदल दिए हैं।
1: बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के यहाँ जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नया बस्तर और बदलता बस्तर, इसके लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जो काम केंद्र सरकार के द्वारा वहां से किया जाता है उसको राज्य सरकार यहां पर इम्प्लीमेंटेशन करेगी। और आप इसी की तस्वीर यहां पर देख रहे हैं कि सेवा सेतु बनाया गया है, जनता के द्वार डिजिटल सरकार, यानी कि जो भी काम लोगों के हैं डिजिटली उनको करना होता है उसको करने के लिए यहां पर पूरी व्यवस्था एक केंद्र अलग से बनाया गया है। तस्वीरों में आप यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर कभी आधार कार्ड लोगों के नहीं बन पाते थे, यहाँ पर आधार केंद्र बाकायदे खोला गया है और यहाँ पर जो लोग हैं अपने आधार कार्ड बना सकेंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपने बच्चों का आधार कार्ड वो तैयार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था एक ही जगह यानी कि एक छत के नीचे इस तरीके की व्यवस्था दी गई है। ये देखिए कि आधार कार्ड तैयार करने वाले लोग जो हैं उनके पास यहाँ की आम जनता जो है वो मौजूद है और वो लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ देख सकते हैं कि बैंकिंग सेवा की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम चीजें जो है वो एक ही छत के नीचे जो है यहाँ पर दिया गया है। किस तरीके से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं इस पूरे इलाके में?
4: हम लोग जैसे कि अभी जाति निवास और आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए और राशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं और वोटर आईडी, पैन कार्ड, जिसको भी आवेदन देना है वो यहाँ हम सुविधा देते हैं।
1: बैकवर्ड आप लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से सुविधा मिल रही है, सारा काम हो रहा है?
5: जी सर।
1: क्या क्या काम हुआ है आपका?
5: जिसका मेरा आय प्रमाण पत्र का सुविधा मिला है सर, जो बनाने आई थी वह तो बन गया।
1: आप लोगों ने जिस तरीके से प्रमाण पत्र बनाना था, अब पहले से और अब में किस तरीके से अंतर दिखाई पड़ेगा सर?
4: पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, अभी बड़े सुविधा हो गया, नजदीक हो गया तो अभी ठीक है, पहले काफी अच्छा।
0: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ चावल के कद्रदानों की भी कमी नहीं। ऐसे में रेड राइस लगाकर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं इस धान की पारंपरिक तरीके से कुटाई कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके अलावा बस्तर की इमली भी काफी मशहूर है। सहायता समूह के सदस्य स्किल डेवलपमेंट के जरिए इसकी पैकिंग करके बाहर भेजते हैं, जिससे उनकी भी अच्छी आमदनी हो रही है।
1: बस्तर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। बस्तर में जिस तरीके से पुराने जमाने में धान कूटने की मशीन होती थी, यानी परंपरागत तरीके से जो यहाँ पर महिलाएं धान कूटती थी, उसको लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए गए हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से परंपरागत चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है और इसका सीधा मकसद ये है कि ऑर्गेनिक चीजें जो जैसे थी वैसे ही बनी रहे। ये लाल धान है और छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध धान माना जाता है और इसके बारे में ये कहते हैं कि इसको खाने से शुगर भी लोगों को नहीं होता है। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से परंपरागत मशीनें लगा करके ये व्यवस्था की गई है कि इससे लोगों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो और यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको देश विदेश में भेजा जा सके। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में इमली बहुत ज्यादा होती है, आप यहाँ पर तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी पैकिंग करने की भी सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है और स्किल डेवलपमेंट के जरिए जो इस तरीके से यहाँ पर विकास किया जा रहा है। आप लोग किस तरीके से अब इस पूरे इलाके में ऐसी व्यवस्था दी जा रही है, जी कैसे आप इसको देख?
6: सर जैसे सर हमारे तरफ पहले नक्सली क्षेत्र था सर, इधर हमारे काम कुछ आजीविका का साधन नहीं था सर। अभी समूह में जुड़ के सर हमको सरकारी माध्यम से सर सुविधा मिल रहा है सर, तो हम लोग ये काम कर पा रहे हैं सर। अभी आय का स्रोत बन रहा है सर गांव में।
0: बस्तर के नीतातार में सुरक्षा बलों के कैंप में बने एक अनोखे जन सेवा केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसे बदलते बस्तर के लिए एक नया मॉडल बताया। छत्तीसगढ़ के बस्तर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जयपुर और गुवाहाटी म्यूजियम की। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम को ओपन डे के रूप में खोला गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्राचीन आभूषण परंपरा से लेकर बॉलीवुड की भव्य फिल्मों तक भारतीय श्रृंगार कला की अनूठी यात्रा आम्रपाली म्यूजियम में देखने को मिली। ये म्यूजियम केवल दुर्लभ ज्वेलरी का प्रदर्शन स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प कला और इतिहास का जीवंत दस्तावेज बनकर सामने आया। वहीं गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को भी दर्शकों के लिए खोल दिया गया।

0: ये भव्य और दिव्य तस्वीरें जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम की है। यहाँ प्रवेश करते ही इसकी दिव्यता और भव्यता का अनुभव किया जा सकता है। देखने में ये म्यूजियम कम शोरूम ज्यादा लगता है, क्योंकि अमूमन इस तरह के म्यूजियम देखे नहीं जाते। इस म्यूजियम में एक से बढ़कर एक गहने हैं जो दर्शकों का मन मोह लेते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी 18 मई को जयपुर का आम्रपाली म्यूजियम दर्शकों के लिए खोला गया। इस मौके पर दर्शकों को एक ऐसा म्यूजियम देखने को मिला जो पूरी तरह से आभूषणों और अलंकृत वस्तुओं को समर्पित है।
1: वर्ल्ड म्यूजियम डे है और जहां जयपुर को और राजस्थान को जाना जाता है उसके कल्चर के लिए, उसके हेरिटेज के लिए, वहीं यहां के जो म्यूजियम्स है वो बिल्कुल यही दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां की जो हेरिटेज है वो आगे बढ़ाई जा रही है, हर एक चीज़ को कैसे प्रिजर्व किया जा रहा है, रखा जा रहा है, जिससे आगे की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन्स है, वो उन चीज़ों के बारे में जान सके। हमारे साथ में राजीव अरोड़ा जी मौजूद हैं जो कि जयपुर के आम्रपाली म्यूजियम जो है उसको पूरा उन्होंने क्यूरेट किया है, अपनी पूरी मेहनत उस पर लगाई है। तो इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ खास है इस आम्रपाली म्यूजियम में। सर, वर्ल्ड म्यूजियम डे है, क्या कुछ आज आप जयपुर को इस वॉक थ्रू में दिखा रहे हैं?
2: देखिए, पहले तो इस विश्व म्यूजियम डे की शुभकामनाएं। अपने इतिहास को, हमारी धरोहर को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। हमारे पास इतनी पुरानी सभ्यता संस्कृति है और नया पीसेस हमारे कारीगरों ने बनाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आम्रपाली म्यूजियम जो है ये मेरे ख्याल से संभवतः दुनिया में इकलौता म्यूजियम है जो अब हिंदुस्तान की हमारी जो सिल्वर स्मिथिंग है, गोल्ड स्मिथिंग है, सोने चांदी का जो काम होता है उसको गेगी म्यूजियम बनाओ। तो इसमें नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक के हमारे गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, रॉयल फैमिलियों में किस तरीके की ज्वेलरी पहनी जाती थी उसको इकट्ठा करा गया है।
0: आम्रपाली म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा और राजेश अजमेरा ने इस म्यूजियम को साल 2018 में बनाया था। अब ये म्यूजियम भारत के अलंकरण इतिहास का एक जीवंत अभिलेख बन चुका है, जिसमें 4,500 से अधिक कलाकृतियां संरक्षित हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कब किस तरह के आभूषण पहने जाते थे।
2: इसमें काफी सारे डिजाइनर्स, दूसरे म्यूजियम के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रेरित होकर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जयपुर का खुद का एक दुनिया में नाम है अपनी संस्कृति के लिए। तो ये जो आज के दिन हम लोगों ने फ्री एंट्री करी है, यहाँ पे आके लोग देख सकते हैं कि हमारे गुजरात में, राजस्थान में, कश्मीर में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और दक्षिण भारत में किस तरह के आभूषण पहने जाते हैं।
0: ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस म्यूजियम के सह संस्थापक राजीव अरोड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी ज्वेलरी डिजाइन की है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।
1: क्या ये रेप्लिकास बनाए गए हैं जो मूवीज में आर्टिस्ट ने पहना है, या फिर ये वही ज्वेलरी, क्या इसकी स्टोरी?
2: मैंने बहुत सारी बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवीज के लिए काम करा है और जैसे ये बाहुबली के आप देख रहे हैं ज्वेलरी, तो हमको जब कोई स्टोरी बताई जाती है तो उसमें किस करेक्टर के लिए क्या ज्वेलरी अच्छी लगेगी उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जैसे अगर एक प्रिंसेस है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो हल्के ज्वेलरी पहनेगी, वो फ्लावर की ज्वेलरी पहनेगी। वो अगर कोई प्रेम प्रसंग है, जंगल में है या कहीं खेत खलिहान में है, तो क्या पहन के जाएगी। फिर वो 20 साल बाद वो महारानी बन जाती है तो उसकी ज्वेलरी चेंज हो जाती है, तो उसको महारानी का पठार पहनेगी, बड़ी ज्वेलरी पहनेगी। इसको सोच के ज्वेलरी डिजाइन करी जाती है, बहुत कला का काम है। मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, म्यूजियम्स में जाता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से हम ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। या आप जो ज्वेलरी देख रहे हैं ये मणिकर्णिका का रानी लक्ष्मीबाई के करेक्टर बनी थी, कंगना रनौत ने ये रोल करा था, तो वो ग्वालियर की थी, उनकी माता किस घराने जाती थी, वो कैसी नथ पहनती थी, उस ज़माने में पायजेब कैसी पहनी जाती थी, वो हमने रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। और अभी भी कई मूवीज़ के लिए मैं जूली बना रहा हूँ।
0: फिलहाल वो रामायण जैसे कुछ ऐतिहासिक सीरियल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही है।
1: कौन सी मूवी है सर? क्योंकि बाहुबली 2 आप दिखा रहे हैं, मणिकर्णिका दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें हैं, आगे भी कोई ऐसा ही है?
2: रामलीला की ज्वेलरी करी है और रामायण जो नई मूवी बन रही है उसकी ज्वेलरी मैं कर रहा हूँ। वो शीघ्र ही मूवी का प्रोमो भी बाहर आएगा, ज्वेलरी भी आप देखेंगे। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में कोई इतनी भव्य मूवी नहीं बनी होगी, उससे शानदार ज्वेलरी बनी हुई है।
0: वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ज्वेलरी न सिर्फ मनुष्यों के लिए बनाई जाती है बल्कि पशुओं को भी ज्वेलरी पहनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ आप अपने विजिट को यादगार बनाने के लिए सेल्फी खिंचा सकते हैं।
1: किस तरीके से आपने क्यूरेट किया, सोच भी मैं इसके पीछे की जाना चाहूँगा।
2: कि जेन जी जो है आजकल हमारी जो नई जनरेशन है उसको ऑडियो विजुअल पसंद आता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इमर्सिव वीडियो चलाया है, जिससे मैंने एक हनुमान हमारा क्रिएट करा हुआ है वो बताया, उसका वीडियो चल रहा है। ये गोल्ड के बने हुए हनुमान हैं, इनके आप पाँव को दबाएंगे, पाँव को छुएंगे तो ये खुलते हैं, उसमें से छाती में से राम और सीता आपको नजर आएंगे। तो ये हनुमान की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, उसका वीडियो यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से श्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार ये अपने आप में अद्भुत है, इसको ज्वेलरी के ने बनाना। उनके लिए हमेशा दिखाते हैं, गौपालक थे वो, तो गायों के साथ दिखाया गया है। ये भी बहुत एक अनूठी नेकलेस है जो पुराने पीसेस को कलेक्ट करके बनाई गई है, इसके अंदर सैकड़ों पुराने पीस है जिनको जोड़ के नेकलेस को बनाया गया है। ऐसे ही ये गिब्बी है, ये पेन बनाया है, डायमंड एमरल के संग बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ पीसेस हैं जो आप न केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो ये हाथी और घोड़े की श्रृंगार के लिए भी ज्वेलरी बनती थी, तो चांदी की बनी हुई घोड़े की ज्वेलरी है। ये आप बड़े पीसेज आपको देखने को मिलेंगे, ये भी घोड़े की ज्वेलरी के पीसेज हैं जो यहाँ पे नज़र आते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत बढ़िया हम लोगों ने एक यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया है, इसके अंदर जिसमें आप यहाँ पे इसको सेल्फी पॉइंट देख सकते हैं। ये एक पालकी है जिसके अंदर जैन समुदाय के लोग प्रतिमा को संग में लेके जाते थे, और यहाँ पे गले में पहने पेंडिंग होते हैं, इनको राजस्थान में पाथड़ी बोलते हैं, वो बनाइए जिसमें यहाँ पे लेके इसको आप फोटो खींच सकते हैं, तो ये सेल्फी पॉइंट इसलिए तैयार करा गया है।
0: जयपुर ही नहीं बल्कि गुवाहाटी में भी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया गया और इस मौके को खास बनाने के लिए सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन भी किया गया। गुवाहाटी के नेशनल साइंस सेंटर में ऑर्किड और कैक्टस गार्डन को उद्घाटन के बाद इसे दर्शकों के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसाएंगे भी।
4: चलती ट्रेन के अंदर एक महिला के वट सावित्री व्रत की पूजा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपे देखा जा सकता है कि महिला ट्रेन कोच के फर्श पर एक बोतल में बरगद का पौधा रखकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ उसकी पूजा कर रही है। वो जल, दूध, रोली, अक्षत, फूल और दीप अर्पित करते हुए परिक्रमा भी करती दिखाई देती है। इस दौरान उसके परिवार के सदस्य भी उसकी मदद करते नजर आते हैं। ये दृश्य देखकर यात्रियों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए और महिला की आस्था और समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वीडियो सच्ची भक्ति और परंपरा के प्रति गहरे विश्वास को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर लंदन का एक दिलचस्प वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें एक विदेशी शख्स देसी स्टाइल में झालमुड़ी बेचता नजर आ रहा है। ये शख्स भारतीय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी को उसी पारंपरिक अंदाज में तैयार कर लोगों को परोस रहा है, जिससे विदेश में भारतीय स्वाद की झलक देखने को मिल रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी भी झारग्राम में एक दुकान पर झालमुड़ी का स्वाद लेते नजर आए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था और लोगों ने उसे खूब पसंद भी किया था। अब लंदन के इस वीडियो को उसी ट्रेंड से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां भारतीय फूड कल्चर की लोकप्रियता दुनिया भर में फैलती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इंसानियत और मासूमियत दोनों की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक बच्चा सड़क किनारे महात्मा गांधी की तरह शांत और स्थिर खड़ा नजर आता है, जिसका पूरा शरीर सिल्वर पेंट से ढका हुआ है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा दिखाई देता है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक छोटी बच्ची वहां आती है और बच्चे को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो भूखा है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपने हाथ में रखा खाना उसके साथ साझा कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर सादगी और प्यार के साथ खाना खाते नजर आते हैं, जो देखने वालों का दिल छू लेता है। लखनऊ से सामने आया एक मजेदार वीडियो इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोग ठहाके लगाने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वीडियो में एक शख्स अपनी डॉगी को टहलाने निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वो खुद पैदल नहीं बल्कि स्कूटी पर बैठा हुआ नजर आता है। वही डॉगी सड़क पर दौड़ता हुआ उसके साथ साथ वॉक कर रहा है और मालिक स्कूटी चलाते हुए उसकी रस्सी पकड़े हुए है। ये अनोखा नजारा देखकर लोग हैरान भी हैं और खूब एंटरटेन भी हो रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी मजेदार कमेंट्री करता सुनाई देता है। देखो अंकल, स्कूटी से डॉगी घुमा रहे हैं, खुद नहीं चल रहे हैं, लेकिन डॉगी को जरूर टहला रहे हैं।
5: स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, तभी ऐसी हालत है। अगर देखो इसकी स्कूटी से कुत्ता टहला रहे हैं, चलो कम से कम कुत्ता तो टहला रहे हैं, खुद नहीं टहला।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
7: Jam out to your favorite songs with today's hits. Tune in has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. And hip-hop beats.
8: I'm in the game, I should I join with this G2-3.
7: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search Today's Hits or ask your device to play Today's Hits on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: डीआरडी ने रचा एक और कीर्तिमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया यूएलपी जीएम V3 मिसाइल का सफल ट्रायल, अब ड्रोन से ही ढेर होंगे दुश्मन के टैंक। देवभूमि में धूमधाम से जारी चारधाम यात्रा, अब तक करीब 16.5 लाख भक्तों ने किए दर्शन, खराब मौसम के चलते केदारनाथ में हेली सेवा रोकी गई। उत्तराखंड के टिहरी में ऐतिहासिक हनुमान मेले की रौनक, हजारों लोगों ने किए बजरंगबली के दर्शन, 500 से ज्यादा गांवों से पहुंचे श्रद्धालु। गंगा दशहरे के पावन दिन उत्सव के रंग में रंगेगी अयोध्या, धूमधाम से मनाई जाएगी राम दरबार स्थापना की पहली वर्षगांठ, 26 मई को विशेष अनुष्ठान। उत्तर भारत में बढ़ा हीट वेव का असर, दिल्ली में 46 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
10: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब खबरें सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयों और झूठे दावों के साथ परोसी जाती है। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी पुरानी तस्वीर को नया रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या फिर टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुन को साफ करते हैं। यहाँ वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम तथ्यों की रोशनी में लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि बंगाल में बस में बैठाकर अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है।